मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलो हर्ट्स और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का यह रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आप हमारा प्रसारण न्यूज़ ऑन AIR ऐप और DTH पर भी सुन सकते हैं। आज मंगलवार है, शक सम्वत 1948 की ज्येष्ठ मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 2 जून सन 2026, 5:57 होने को हैं। प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने को हैं। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित करते हैं।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ओमिन आउं लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक रक्षा सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
3: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध हैं। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल

0: धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए दो उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है। हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुचेरी में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेल उद्योग के राज्य स्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। ईरान ने चेतावनी दी है कि लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल के हमलों से अमेरिका के साथ संघर्ष विराम पर असर पड़ सकता है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाकों में हमले का आदेश दिया था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने कहा कि अमेरिका के साथ हुए समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम शामिल है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। और वहीं 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पवार, एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भी आज गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:05 हुए हैं। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में सबसे पहले समूह स्वर में सुनते हैं मनोहर पटेरिया की ये मातृवंदना।

0: लीजिए अब सुनिए राजेंद्र मेहता के स्वर में ये भक्ति पद।
1: जो क्षणिक नहीं अविनाशी हो, जहां बंधन नहीं समर रसिदास, जो सारे मिट जाते हैं

0: राजेंद्र मेहता के गाए इस भक्तिपद के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना संपन्न होता है। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए सुनी चिंतन, आलेख श्री पीएस चिंचोलकर का है।
1: ईश्वर ने हमें शरीर, इंद्रियां और मस्तिष्क के रूप में अद्भुत अनुदान प्रदान किए हैं। इनके सदुपयोग तथा सुनियोजन से प्राप्त होने वाली फलश्रुतियां भी विलक्षण हो सकती हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि इंद्रियां और ज्ञानेन्द्रियां यदि अनियंत्रित हो जाएं, तो पतन पराभव की ओर द्रुत गति से अग्रसर हुआ जा सकता है। अतः ये अनुदान, वरदान या अभिशाप दोनों ही सिद्ध हो सकते हैं। हमें चयन की स्वतंत्रता है कि हम किस दिशा में इन्हें नियोजित करें। भोग विलास और विषय के अंध व्यामोह से स्वयं को पृथक रखकर ही हम स्वयं का विकास कर सकते हैं। शरीर और इंद्रियों का सदुपयोग ही आत्मिक विकास में सहायक होता है। शरीर की इंद्रियां और मन ही साधना के उपादान हैं। इन्हें अपना सहचर बनाने से ही कठिन से कठिन मंजिल तक सुगमता से पहुंचा जा सकता है। इंद्रियों के हम मालिक हैं या गुलाम, इस तथ्य पर ही चेतना का विकास या पतन निर्भर करता है। इंद्रियों के गुलाम होने के कारण हम वासना से जकड़े रहते हैं। यदि चेतना उनकी मालिक है तो रसों का कोई महत्व तो नहीं रह जाता। इंद्रियां ऐसी स्थिति में शुद्ध रूप में रहती हैं। लेकिन इस परित्याग का अर्थ इंद्रियों को नष्ट कर देना नहीं, उनके प्रति मन की आसक्ति का परित्याग है। इंद्रियां अत्यंत उपयोगी हैं, उनसे प्राप्त जानकारियां अद्भुत हैं। यही बाह्य जगत से सूचनाएं, संवेदनाएं लेकर आती हैं और अनुभूति का माध्यम बनती हैं। यदि मन इन अनुभूतियों में लीन होने से स्वयं को बचा

0: सके तो किसी प्रकार का खतरा नहीं है। रसों में डूबे रहने से इंद्रियों का चेतना पर प्रभुत्व हो जाता है और पतन का मार्ग प्रशस्त होता है, लेकिन यदि ये इंद्रियां चेतन सत्ता के मार्ग निर्देशन में कार्य करें तो त्याग की प्रवृत्ति उपजती है। जिन योगियों की इंद्रियां शुद्ध हैं, उनके देखने, सुनने और स्पर्श करने आदि का ढंग अन्य व्यक्तियों से भिन्न होता है। महावीर, बुद्ध, कृष्ण, ईसा जो वासना से रहित थे, इसके उदाहरण हैं। इन महान आत्माओं के स्पर्श में भी दिव्यता का समावेश रहता था। अधिकांश व्यक्तियों की इंद्रियां अपना मार्ग भूलकर भटक जाती हैं। भोगी की सभी इंद्रियां उसे विपरीत दिशा में खींचती हैं। ऐसे व्यक्तियों के सुनने, स्पर्श करने और देखने में परस्पर विरोध रहता है। इससे जीवन में असंख्य विसंगतियां उत्पन्न होती हैं। आदि शंकराचार्य के मतानुसार रस इंद्रियों का आहार है। हम जो सुनते हैं वो कान का, जो देखते हैं वो आंख का, और मुंह जो ग्रहण करता है वही उसका भोजन है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर चीज देखी ही जाए, हर बात सुनी ही जाए, हर स्वाद ग्रहण ही किया जाए। इन सब में चुनाव का होना आवश्यक है। जो उपयोगी है, सार्थक है, उसे ही भीतर जाने दिया जाए, निरर्थक को बाहर ही छोड़ दिया जाए। प्रश्न ये है कि उपयोगी अनुपयोगी का चयन कौन करे? आंख कान को देखने सुनने की क्षमता है, चुनने की नहीं। चेतना का ही ये कार्य है, लेकिन वो प्रसुप्त मूर्छित पड़ी रहती है। अतः इंद्रियां सार्थक निरर्थक सभी संवेदनाओं को भीतर भरती रहती है। इस प्रकार मन के भीतर विचारों का कबाड़ एकत्र हो जाता है। अधिकांश मानसिक ऊर्जा तो सचमुच ही व्यर्थ में नष्ट हो जाती है। सही चुनाव से, इन्हें सही दिशा देने से उपयोगी और सार्थक परिणाम प्राप्त होते हैं। इस मूर्छना से बाहर निकलने के लिए इंद्रियों के प्रवाह को उलटना आवश्यक है। इंद्रियों को अपना गुलाम समझा जाए, प्रभु नहीं। इंद्रियों को साधना माना जाए, इंद्रियों पर संयम रखा जाए। इनकी शक्ति को सही दिशा में नियोजित करने का हमें प्रयास करना चाहिए।
1: चिंतन, अभी आप सुन रहे थे आलेख श्री प्रियस चिंचोलकर का था। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर सरायपाली केंद्र है। 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

शोक संतप्त तथा पश्चाताप की आग में झुलस रहे भरत को माता कौशल्या हृदय से लगाकर धीरज बंधा रही हैं। ज्ञान के उदय होने पर भी चाहे मन का मोह न मिटे, किंतु वो जानती हैं कि किसी अवस्था में भी भरत श्री राम से विमुख नहीं हो सकते। पुरोहित तथा कुलगुरु मुनिवर वशिष्ठ भरत को समयानुकूल उपदेश और लोकाचार की शिक्षा देकर दिवंगत महाराज के पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि के लिए प्रवृत्त करते हैं। सरयू तट पर चंदन की सुंदर चिता सजाकर दाह संस्कार होता है और एक दिन शुभ घड़ी और लग्न देखकर राजसभा में मुनिवर वशिष्ठ मंत्रियों तथा महाजनों की उपस्थिति में युवराज भरत को नीति तथा धर्म पालन का उपदेश देते हैं।

0: श्री रामचरित मानस का अभी आप सुन रहे थे। इसे संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया, मुख्य गायक स्वर कविता कृष्णमूर्ति का था। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:45 हुए हैं। कृषि चर्चा में खरीफ फसलों की बुआई पूर्व प्रबंधन की जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर नीतीश तिवारी।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर नीतीश तिवारी, वरिष्ठ वैज्ञानिक, सस्य विज्ञान विभाग, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। आज की चर्चा का विषय है खरीफ फसलों की बुआई हेतु प्रबंधन। किसान भाइयों, जैसे ही खरीफ फसल का मौसम आता है यानी बरसात का मौसम आता है, तो किसान भाई हमारे, चूँकि ये छत्तीसगढ़ का प्रदेश है, यहाँ पर मुख्य तौर पर धान की फसल लगाई जाती है, जो कि वर्षा ऋतु में ही सामान्य तौर पर लगाई जाती है। तो जैसा ही मानसून की शुरुआत होती है, बरसात की शुरुआत होती है, खरीफ के मौसम की शुरुआत होती है, तो हमारे खेती किसानी का दिन शुरू हो जाए। इस हेतु हमें बहुत सारे प्रबंध करने होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि समय समय पर आपसे चर्चा करते दौरान हमने आपको बताया कि आप ग्रीष्मकालीन जुताई कीजिए, उससे मृदा की जो स्थिति होती है बहुत अच्छी होती है और एक ज़मीन में भुरभुरापन बना रहता है। और निश्चित तौर पे जब खरीफ के मौसम में फसल लगाते हैं तो हमको जुताई की कम ज़रूरत पड़ती है। तो जो लोग ने ग्रीष्मकालीन जुताई करी है वो बहुत अच्छा कार्य किया है उन किसान भाइयों ने, और जिनने नहीं किया है वो भी चाहें तो अभी बुआई के पूर्व जुताई का कार्य संपन्न कराएं, जिससे कि उनको वर्षा होने पर अधिक जुताई करने की समस्या से ग्रसित ना होना पड़े और आसानी से उनकी बुआई का कार्य संपन्न हो। तो खरीफ फसलों की जो प्रबंधन है बुआई के लिए, वो मुख्य तौर पे ज़मीन से हम शुरुआत करते हैं। ज़मीन की तैयारी यदि आपने बहुत अच्छी से कर ली है, जुताई करके अपनी ज़मीन को रखा हुआ है आपने, तो कम जुताई पर ही हम आगे की फसल उगा सकते हैं। दूसरी बात आ जाती है बुआई जमीन के बाद हमारे बीज की। तो किसान भाई जिस भी प्रकार की फसल, खरीफ फसलों की बुआई करना चाहते हैं, जैसे धान है, मक्का है, सोयाबीन है, या तिल है, या और किसी प्रकार की फसल लगाना चाहते हैं, तो उस

0: फसल की बीज को अपने पास खरीद के या अपने पास सुनिश्चित कर लें कि उनके पास उस बीज की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है, जिससे कि आपके बुवाई कार्य के बीच में किसी प्रकार का विघ्न ना आए। तो बीज यदि आपके पास नहीं है तो आप प्रमाणित बीज खरीद सकते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य बीज निगम के द्वारा आप प्रमाणित बीज की प्राप्ति कर सकते हैं, या फिर किसी बीज की दुकान पर जाकर वहाँ पर प्रमाणित बीज का आप खरीदारी कर सकते हैं। तो बुवाई के पूर्व आप जिस तरीके से खेत की तैयारी करते हैं, उसी प्रकार आप सुनिश्चित कर लीजिए कि आप जिस भी किस्म का, जिस भी फसल को लगाना चाहते हैं, उसकी बीज की पर्याप्त मात्रा आपके खेत के अनुसार आपके पास होनी चाहिए। इसके पश्चात जब हम तीसरी बात करते हैं तो खाद की बात करते हैं, पोषक तत्वों की बात करते हैं। और जब पोषक तत्वों की बात करते हैं तो हमारे पास दो प्रकार की पोषक तत्व की बात होता है, एक जैविक और एक रासायनिक। जैविक पोषक तत्व देने वाले किसान भाइयों को अपने खेत से गोबर की खाद, आपके गड्ढे में है जहाँ पे गोबर की खाद, हम उस गड्ढे से निकाल के खेत में उसको अच्छे से मिला के बिखरा के जुताई करते हैं। यदि आपके पास गोबर की खाद नहीं मौजूद है, केचुए की खाद मौजूद नहीं है, आपके पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, तो आप बाजार से जो रासायनिक उर्वरक खरीदते हैं तो उसकी रासायनिक उर्वरक की मात्रा भी उस फसल के अनुसार खरीद के अपने पास रख लें, ताकि आपको फसल की क्रांतिक अवस्थाओं के दौरान, मतलब जिस समय पर जितने पोषक तत्व की आवश्यकता हो, उस पोषक तत्व को आप निश्चिंत होके आप उसको उपलब्ध करा सकें, फसल को उपलब्ध करा सकें। तो ये तीन बातों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। साथ ही साथ इसके अलावा आपको अपने खेत की मेड़ की साफ सफाई, पानी की व्यवस्था, पानी निकासी की व्यवस्था, इन सारी चीज़ों की भी व्यवस्था आपको देखनी है, जिससे कि आपकी खेती किसी भी प्रकार से प्रभावित ना हो और आप निश्चिंत होकर अपनी फसल को लगा सकें।
1: कृषि चर्चा में कृषि में खरीफ फसलों की बुआई पूर्व प्रबंधन की जानकारी दे रहे थे डॉक्टर नीतीश तिवारी। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:50 हुए हैं कार्यक्रम विवरण। आइए आपको बता दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। स्पोर्ट्स स्क्रीन का समय होगा 8:30 पर। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 10:30 पर आप सुनिएगा कीर्ति व्यास का वायलिन पर बजाया राग पूरिया धनाश्री। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम किसान कल्याण, इसका समय होगा 9:25। छत्तीसगढ़ ही समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइयां का समय होगा 8:30। इसमें आप सुनिएगा डॉक्टर सियाराम साहू की वार्ता छत्तीसगढ़िया लोक जीवन मां बरखा ऋतु। साथ ही प्रसारित होगा कहानी पाठ में डॉक्टर दीपशिखा की कहानी फुलवा, और सुनिएगा डॉक्टर मिता अग्रवाल का कविता पाठ। रंग तरंग में प्रसारित होगी लघु नाटिका एक तो रखना ही पड़ेगा, लेखक श्री लाल राम कुमार सिंह और प्रस्तुति समीर शुक्ल की होगी। कन्नड़ भाषा में समूहगान शिक्षा का समय होगा 11:05। रचनाकार होंगे B.R. गीथा। दोपहर 1:30 पर प्रसारित होगा ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन। इसमें आज की गोष्ठ का विषय होगा लइका मन के बालपन मां संपोषित करो। साथ ही सुनिएगा श्रीमती सुनैना साहू की कहानी पार्वती। कामकाज की बात में चर्चा होगी पर्यावरण संरक्षण ले जरूरी कोन्हों कारज नो है, स्मिता के महत्वला बनाना जरूरी है और बरसात पूर्व कपड़ा लत्ता के रख रखाव। साथ ही होगा गीत संगीत। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी शाम 5:10 पर छत्तीसगढ़ी में। अपन गुट का विषय होगा अपन संस्कृति मां गर्व करो। नियमित क्रम में सुनिएगा सवाल जवाब और माटी के गीत। किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल शाम 7:21 पर। इसमें आज की बात का विषय होगा समन्वित कीट नियंत्रण और खरपतवार प्रबंधन पर खेत के गहरी जुताई।

0: शाम 7:30 पर किसानवाणी में प्रसारित होगा फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानवाणी। इसमें इफको रायपुर के उप प्रबंधक दिनेश गांधी, नैनो और दानेदार खाद का विवेकपूर्ण उपयोग, खेती की लागत घटाएं और लाभ बढ़ाएं के बारे में बताएंगे। संचालन करेंगी निधि शर्मा और प्रस्तुतकर्ता होंगे शशि प्रकाश पांडे। सुबह 9:40 और रात 8:15 पर लोक संगीत की कलाकार होंगी सुखियारीन मानिकपुरी और साथी। श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आप मन के गीत का समय होगा दोपहर 12:30। चित्रपट संगीत का आप आनंद उठा सकेंगे सुबह 9:15, सुबह 10:30, दोपहर 1:05, दोपहर 2 बजे, दोपहर 2:30, शाम 7 बजे, रात 8 बजे, रात 9:15 पर। सुबह 11:30 पर प्रसारित होगा सदाबहार नगमे। श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद, इसका समय होगा रात 10 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर, इसका प्रसारण होगा सुबह 10 बजे। इसके प्रायोजक होंगे छत्तीसगढ़ संवाद, NCERT। यह प्रायोजित कार्यक्रम का प्रसारण होगा दोपहर 12 बजे। हमर हाथी हमर गोठ का समय होगा शाम 5:05 और शाम 6:30 पर। सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम हमारी पेड़ियां। श्रोताओं, हम आपको पुनः कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में बता देते हैं। स्पोर्ट्स स्क्रीन का प्रसारण होगा रात 8:30 पर। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनेगा कीर्ति व्यास का वायलिन पर बजाया राग पूरिया धनाश्री। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम किसान कल्याण का समय होगा रात 9:25। ये था हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:55 होने को हैं। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले संस्कृत में और फिर हिंदी में समाचार अनुप्रसारित करते हैं।
1: EM आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, म्यांमार देशस्य राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग इत्येषश्च ह्यः नवदिल्ल्यां द्विपक्षीयोपवेशनं कृतवन्तौ। उभयोः मध्ये ऐतिहासिक सभ्यतागत संबंधान इतोपि सुदृढीकर्तुं वार्ता अभवत्। संवादे म्यांमार भारत देशयोः मिथः सुरक्षां संपर्कं च समेत्य देशद्वयोः संबंधानां समेपि पक्षाः चर्चिताः। उपवेशनस्यानन्तरं विदेश सचिवः विक्रम मिश्री अवोचत् यत् देशद्वयेन विदेश व्यवहार विकास शिक्षा स्वास्थ्यादि विषयेषु कार्याचरणाय साहमत्यं प्रकटितम्।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: राष्ट्रपतेः द्रौपदी मुर्मुः अवदत् यत् भारतस्य नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट, महासागरादि नीतिषु म्यांमार देशः महत्वपूर्णः सहभागी अस्ति। ह्यः राष्ट्रपति भवने म्यांमार देशस्य राष्ट्रपत्युः यू मिन आंग लाइंग वर्यस्य स्वागतं कुर्वन्ति राष्ट्रपतेः मुर्मुः अवदत् यत् उभयोः देशयोः मध्ये पुरातनाः सम्बन्धाः सन्ति। राष्ट्रपति अवदत् यत् म्यांमार देशः भारतस्य दक्षिण पूर्व एशिया देशस्य प्रवेशद्वारः अस्ति, अपि च एकमात्रः आसियान देशः अस्ति यस्य भूसीमा भारतेन सह संलग्नास्ति। भारत ओमान व्यापकार्थिक सहभागिता सन्धिः CEPA इति ह्यः क्रियान्वितः अभवत्। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अवोचत् यत् अयं सन्धिः देशद्वयोः आर्थिक रणनीतिक संबंधान् दृढयिष्यति। वार्ताहरान् संबोधयन् श्री गोयलः अवोचत् यत् अयं सन्धिः नूतन

0: आपणम् उद्घाटयिष्यति। अनेन निर्याते वृद्धिः भविष्यति, निवेशः अपि वृद्धिं यास्यति। व्यापकार्थिक सहभागिता सन्धेः अन्तर्गतं भारतीय निर्यातकेभ्यः ओमाने उत्पादसमूहेषु विपणौ प्रतिशत 98-मिता शुल्कमुक्त कार्यानुमतिः भविष्यति। श्रीगोयलेन उक्तं यत् अनेन आजीविका संवर्धनाय विद्यार्थिभ्यः, श्रमिकेभ्यः, महिलाभ्यः, कृषकेभ्यः, मत्स्यजीविभ्यः, सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमेभ्यः च महत्वपूर्णरूपेण लाभो भविष्यति।
1: I am confident that this comprehensive agreement
2: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
1: of our shared future.
0: भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः रक्षामन्त्रिणोः द्वितीय संवादोपवेशनम् ह्यः नवदिल्ल्याम् अभवत्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अथ च ऑस्ट्रेलिया देशस्य उपप्रधानमन्त्री रक्षामन्त्रिश्च रिचर्ड माल्सः उपवेशनस्य अध्यक्षताम् कृतवन्तौ। श्रीसिंहेन प्रोक्तं यत् उपवेशनावधौ भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोर्मध्ये सुरक्षा सम्बन्धः सुदृढः अभवत्। श्री माल्स अवादीत यत् ऑस्ट्रेलिया भारत देशौ रक्षा सहभागितां सुदृढः अकुरुताम्। देशद्वयं सामुद्रिक क्षेत्रे मिलित्वा कार्यं करिष्यतः। वार्तायां द्विपक्षीय रक्षा सहयोग विषये प्रगतिः समीक्षिता, यया सहभागितायाः नूतन मार्गस्य अन्वेषणं भविष्यति। भाजपेति दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षः नितिन नवीनः ह्यः नवदिल्ल्यां दलस्य वरिष्ठैः पदाधिकारिभिः कार्यकर्तृभिः च सह उपवेशनं कृतवान्। प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् दलस्य सांसदः, प्रवक्ता च डॉक्टर संवितपात्रवर्यः नरेन्द्रमोदी प्रशासनस्य 12 वर्षाणां सेवायाः विषये, सङ्घटनात्मकविस्तारस्य विषये तथा च समाजस्य विभिन्नेषु वर्गेषु दलस्य प्रसारस्य विषये विवरणानि विनिमयीकृतवान् इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की है। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
4: Both sides underscored the importance.
5: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
4: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध हैं। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रैंडन लिंच कर रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि समझौते से भारत के काम

0: कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। उन्होंने बताया कि भारत को ओमान की 98% टैरिफ लाइनों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी, जो ओमान को होने वाले भारत के 99% से अधिक निर्यात को कवर करती है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरू भाई अंबानी के विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए 2 उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है। इस हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुचेरी में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेल उद्योग के राज्य स्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किए। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पंवार, एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता अरविंदर सिंह और जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडिया वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आप हमारा प्रसारण न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH पर भी सुन सकते हैं। सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक प्रसारण नमस्कार रायपुर। प्रस्तुत कर रहे हैं देवव्रत भगत।

नमस्कार रायपुर, मैं हूं देवव्रत भगत, लेकर आया हूं दिन की सबसे प्यारी शुरुआत नमस्कार रायपुर के साथ। साथियों, सुबह की पहली किरण अब धीरे धीरे आसमान में अपना रंग बिखेर रही है। रात की खामोशी सिमट चुकी है और प्रकृति एक नए दिन का स्वागत करने में जुटी है। हर तरफ एक नई ताजगी, एक नई ऊर्जा और एक नए आरंभ का एहसास महसूस किया जा सकता है। ये दिन का वो समय है जब सब कुछ एक साथ नहीं बदलता, बल्कि बहुत धीरे धीरे बदलता है। आसमान का रंग बदलता है, हवा का मिजाज बदलता है, रोशनी का स्वरूप बदलता है और फिर उसी के साथ बदलने लगती है हमारे आसपास की दुनिया। कहा जाता है कि जिंदगी भी सुबह की ही तरह होती है, इसमें भी एकदम से बदलाव नहीं आते। सपने पूरे होने में समय लगता है, मंजिल तक पहुंचने के लिए कदम दर कदम आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे सूरज धीरे धीरे क्षितिज से ऊपर बढ़ता है, वैसे ही हमारे प्रयास भी धीरे धीरे हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। इसलिए हर सुबह अपने साथ धैर्य, उम्मीद और विश्वास का संदेश लेकर आती है। तो बस चलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी को उसके अपने अंदाज

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय।
1: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
0: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आएं पूर्ण जांच करवाएं।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
0: 47 सालों से निरंतर सेवा में
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
2: दोस्तों, सुबह का समय केवल नए दिन की शुरुआत ही होना नहीं है, बल्कि नए विचारों की शुरुआत का भी होता है। खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को दूसरों की सेवा में खो देना। ये शब्द हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के। वाकई जीवन की सबसे बड़ी सफलता केवल अपने लिए जीने में नहीं, बल्कि दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में छिपी होती है। जब हमारे काम, हमारे शब्द या हमारे व्यवहार से किसी और का जीवन थोड़ा बेहतर होता है, तभी जीवन का असली अर्थ सामने आता है। और शायद यही बात हमें इतिहास के कुछ पन्नों में भी दिखाई देती है। आइए अब नजर डालते हैं आज के दिन इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर। साथियों, आज के ही दिन साल 1966 में अमेरिका का पहला अंतरिक्षयान सर्वेयर 1 चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा था। ये अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। साल 2014 में आज के ही दिन आंध्र प्रदेश के 10 जिलों को अलग कर तेलंगाना का गठन हुआ और वो भारत का 29वां राज्य बना। और आज का दिन भारतीय सिनेमा के लिए भी विशेष महत्व रखता है। साल 1988 में आज के ही दिन हिंदी फिल्म जगत के महान अभिनेता, निर्देशक और शोमैन राज कपूर ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। लेकिन कलाकार कभी केवल अपने समय में नहीं जीता, वो अपनी रचनाओं के जरिए पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में बना रहता है। राज कपूर की फिल्मों और गीतों में इंसानियत, संवेदनशीलता और दूसरों के खुशियों में अपनी खुशी तलाशने का भाव अक्सर दिखाई देता है। और उनकी इसी सोच के साथ अब आगे बढ़ते हैं उस गीत की ओर जो बताता है कि जीवन की सबसे बड़ी दौलत दूसरों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरना है।

0: साथियों, छत्तीसगढ़ में रोजगार की तलाश कर रहे दिव्यांग युवाओं के लिए रायपुर में विशेष रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस पहल से जुड़ी तैयारियों, रोजगार के अवसरों और पात्रता संबंधी जानकारी को लेकर हमने बात की उपसंचालक रोजगार डॉक्टर शशि अतुलकर से।
1: साथियों, दिव्यांगजनों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 5 जून को रायपुर में विशेष रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में निजी क्षेत्र की कई कंपनियां शामिल होंगी और योग्य अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं उपसंचालक रोजगार डॉक्टर शशि अतुलकर जी। अतुलकर मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में।
2: धन्यवाद जी।
1: सबसे पहले मैम आपसे यही जानना चाहेंगे कि 5 जून को आयोजित होने वाले इस विशेष रोजगार मेले का उद्देश्य क्या है?
2: दिव्यांगजनों के लिए विशेष रूप से आयोजित इस रोजगार मेले का मुख्य उद्देश्य है हमारे संपूर्ण छत्तीसगढ़ के दिव्यांगजनों को, जो भी कार्य करने के इच्छुक हैं और शिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार के अवसर निजी क्षेत्र में प्रदान करना।
1: किस तरह के, किन किन प्रकार के दिव्यांगजनों के लिए ये आयोजित किया जा रहा है मेला?
2: ये आयोजन हमने सीमित ही कहना चाहिए, सीमित किया है कि जो बौने हैं लेकिन वो कार्य करने में सक्षम हैं और पढ़े लिखे हैं, जैसे शैक्षणिक योग्यता हमारी मिनिमम जो है वो 10वीं कक्षा है, उससे ज्यादा जो भी पढ़े लिखे हैं उनके लिए ये आयोजित है, वे इसमें भाग ले सकते हैं। अस्थि बाधित हैं जो कि, क्योंकि ये निजी क्षेत्र में उनको जाना आना पड़ सकता है या कभी सीढ़ी चढ़ने की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए हमने उसमें कि जो बिना व्हील चेयर के चल फिर सकने वाले जो हम दिव्यांगजन अस्थि बाधित हैं वे इस मेले में भाग ले सकते हैं। साथ ही जो जिनकी दृष्टि कमजोर है, जो मोटे चश्मे को लगा के देख सकते हैं, ऐसे दिव्यांगजन इसमें शामिल हो सकते हैं। साथ ही जो श्रवण यंत्र को लगाकर सुन सकते हैं उनको भी हमने इसमें शामिल किया है। इस प्रकार सभी श्रेणी के दिव्यांगजन इसमें शामिल हो सकते हैं।
1: बिल्कुल। और अभ्यर्थी के लिए किस प्रकार के पद और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे मैडम?
2: अभ्यर्थियों के लिए निजी क्षेत्र में ज्यादा जो हमारी रिक्तियां प्राप्त हुई हैं वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर या जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड उनके सहायक के पद हैं उससे संबंधित हैं। साथ ही आईटीआई वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत आईटीआई की परीक्षा उत्तीर्ण की है किसी भी ट्रेड में, वो इसमें भाग ले सकते हैं।
1: बिल्कुल। और मैम, अगर कोई दिव्यांग इस रोजगार मेले में शामिल होना चाहता है तो वो क्या करे और कौन सी पात्रता जो है वो प्रमुख है इसके लिए?
2: रोजगार मेले हमारे संपूर्ण छत्तीसगढ़ में अभी ऑनलाइन ही आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें न केवल जो नियोजक हमारी निजी कंपनियां हैं वे भी हमारे जो ई रोजगार पोर्टल है, जो erozgar.cg.gov.nic.in हमारा जो रोजगार पोर्टल है उसमें रजिस्टर्ड

0: करते हैं और आवेदक भी ऑनलाइन ही आवेदन इसमें करते हैं। यदि कोई दिव्यांगजन अपने स्वतः उसमें आवेदन नहीं कर पाते हैं ऑनलाइन, तो हमारे माध्यम से हम उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं। और इसमें आधार से हमारी ये सारी गतिविधियां लिंक है। इसमें इस बात का भी प्रयास किया गया है कि हमारे जो नियोजक हैं वो विश्वसनीय है, कि जिसमें हमने ऑनलाइन में पोर्टल में ही उनका टैन नंबर, पैन कार्ड नंबर इत्यादि जो व्यवसायिक जो प्रमाणिकता के मानक होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए उन कंपनीज को हमने इसमें शामिल करने का प्रयास किया है।
1: और रोजगार मेले में शामिल होने के लिए अगर कोई आता है दिव्यांग, तो उस समय कौन कौन से जो जरूरी दस्तावेज हैं वो लेकर आने होंगे?
0: नियोजक ये समझता है कि जो भी उसने शैक्षणिक योग्यता उसकी है वो उसको प्रमाणित करे, तो जो दिव्यांगजन वहाँ उपस्थित होते हैं तो वो अपने समस्त शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र हो, ये देखा जाता है कि वो कहाँ के निवास कर रहे हैं तो उनका निवास प्रमाण पत्र देखा जाता है, आधार कार्ड में उनके पते की प्रमाणिकता को देखा जाता है, और इसके साथ ही उनके दो फोटो भी मंगवाए जाते हैं ताकि उनकी उनका रिकॉर्ड हमारे पास में रहे।
1: बिल्कुल मैम। और अंत में प्रदेश के दिव्यांग युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है और उन्हें इस रोजगार मेले में क्यों जरूर शामिल होना चाहिए?
0: दिव्यांग जनों को निश्चित रूप से इसमें सम्मिलित होना चाहिए, क्योंकि हमने प्रयास किया है, हमने इसमें यंग इंडिया जो एक ग्रुप है जो दिव्यांग जनों के लिए कार्य कर रहे हैं उनके सहयोग से हमने ज्यादा से ज्यादा हमारे रायपुर क्षेत्र के निजी क्षेत्र के जो उद्योग जगत की जो मुख्य कंपनियां हैं जिसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर है, हमारे निर्माण सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, इन सेक्टर्स की निजी कंपनियों को हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है। और काफी प्रयास से हमने ये प्रयास किया है कि जितने भी मैक्सिमम वहाँ उनके लिए पद वो ले सकते हैं दिव्यांग जनों को उन निर्धारित योग्यता के अनुसार वो उन्हें दे। तो मेरा सभी दिव्यांग जनों से जो भी बेरोजगार हैं और निजी क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वे निश्चित रूप से इसमें सम्मिलित हों ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान कर सकें।
1: बिल्कुल डॉक्टर अतुलकर, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद सर।

0: साथियों, रोजगार की तलाश कर रहे दिव्यांग युवाओं को लेकर भी आपने बातचीत सुनी, और अगर जमीन या मकान खरीदते समय थोड़ी सी सावधानी भविष्य के बड़े विवादों और आर्थिक नुकसानों से बचा सकती है, प्रॉपर्टी की जांच, दस्तावेजों की पड़ताल और ऑनलाइन उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानने के लिए उप पंजीयक रायपुर भारती शर्मा से हुई हमारी ये बातचीत सुनिए।
1: दोस्तों, प्रॉपर्टी खरीदते समय थोड़ी सी सावधानी आपको बड़े कानूनी और आर्थिक नुकसान से बचा सकती है। जमीन और मकान की जांच की प्रक्रिया को समझने के लिए हमारे साथ हैं रायपुर की उप पंजीयक भारती शर्मा जी। भारती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में। मैम, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले सबसे जरूरी जांच कौन सी करनी चाहिए?
2: सबसे पहले जरूर भुइया में जाकर, ऑनलाइन भुइया में जाकर उनकी वेबसाइट रेवेन्यू CGNIC इनमें जाकर ऑनलाइन भुइया में जाकर सेलेक्ट करके प्रॉपर्टी की जानकारी ले सकते हैं, और ऑफलाइन में संबंधित उपपंजक रजिस्ट्रार कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। उपपंजक कार्यालय में उपस्थित होकर वहां पे मतलब प्रोफार्मा में, एक निर्धारित प्रोफार्मा में जानकारी भर के संबंधित व्यक्ति की जो आवेदन किया है उनका, और वर्ष रजिस्ट्री का वर्ष, संभव हो तो रजिस्ट्री तारीख जैसी जानकारी देने से, और निर्धारित शुल्क 100 रुपए जमा कर, प्रति वर्ष 100 रुपए जमा करने के पश्चात 2-3 दिन में उक्त खसरे की जानकारी उस व्यक्ति को उपलब्ध हो जाएगी जो प्रॉपर्टी वो ले रहे हैं।
1: बिल्कुल। और आम लोग कैसे पता करें कि जमीन या प्लॉट का असली मालिक कौन है?
2: भुइया पोर्टल में जाकर
1: जी
2: ऑनलाइन में जाकर, ऑनलाइन जांच के लिए छत्तीसगढ़ राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट है जो रेवेन्यू CGNIC इन, उस पर जाकर ऑनलाइन मतलब खसरा नंबर या उस व्यक्ति का नाम डालेंगे तो अभी वर्तमान में कौन है उसका स्वामी, ये पता चल जाएगा।
1: बिल्कुल। और एक खास बात ये भी है कि आप भुइया पोर्टल का नाम ले रही हैं, ये भुइया पोर्टल क्या है और आम लोगों के लिए कितनी उपयोगी है?
2: भुइया पोर्टल सर, ये बहुत उपयोगी चीज है क्योंकि ये तो एक भुइया पोर्टल जो मैं बता रही हूँ रेवेन्यू CGNIC वाला, इसको तो कोई भी व्यक्ति यदि डालेगा, ये वेबसाइट में जाके, लिंक पे जाके यदि देखेंगे ना, सर्च करेंगे तो ये दोनों तरह से सर्च हो जाता है। एक तो उस व्यक्ति के नाम से जिसकी इनको सर्च करना है, जिससे प्रॉपर्टी ले रहे हैं, दूसरा खसरा नंबर डालने से, दो तरह से ये ओपन होता है। तो दोनों ही तरह से इसको आप देख सकते हैं इस पे जाकर कि वर्तमान में उसके मालिक कौन है।
1: और जैसे किसी पूरे खसरे में किसी एक हिस्से की या प्लॉट की जानकारी निकालनी हो तो वो कैसे मिल सकती है?
2: वो सर, यदि किसी मूल खसरे का यदि भुइया में चले गए और उसका पंजीयन हो चुका है, मान लो बटांकन हो गया है, तो जो सेल कर रहे हैं उनसे उनका बटांकन नंबर पूछ के, क्योंकि जो नंबर डालेंगे वो भुइया से उसका संबंधित खसरे का जानकारी मिल जाता है सर।
1: जी मैम, एक चीज ये भी है कि कई बार जो है एक कॉलोनी डेवलप हो जाती है और अगर हमें मकान या जमीन खरीदनी है तो

0: उस पूरी कॉलोनी की डिटेल अगर किसी को निकालनी है तो वो कैसे निकाल सकता है?
1: उस कॉलोनी, यदि कॉलोनी शहरी क्षेत्र में है
0: जी,
1: तो निकाय सीमा में है तो उसका एक विशेष प्रॉपर्टी आईडी होता है, नंबर होता है सर।
0: जी
1: उस आईडी को दर्ज करते ही कॉलोनाइजर का नाम और विवरण सामने आ जाएगा। इसके अलावा कॉलोनाइजर का नाम डालकर भी सर्च किया जा सकता है, इससे यह पता चल जाएगा कि कॉलोनाइजर ने वह जमीन मूल रूप से किसे खरीदी थी
0: जी।
1: ये। और अगर यदि किसी कॉलोनी में 50 प्लाट है तो उसमें किसी एक विशेष प्लाट की जानकारी चाहिए तो क्या करें,
0: जी जी
1: ये है। जैसे
0: जी जी
1: तो सबसे पहले उस पोर्टल में कॉलोनी का नाम और उसका खसरा नंबर सर्च करना होगा,
0: बिल्कुल
1: जिससे पूरे कॉलोनी का लेआउट और विवरण दिखाई देगा सर।
0: जी जी जी और यदि ये कहें कि अगर कोई क्रेता है, किसी भी व्यक्ति को जमीन खरीदनी है, तो सबसे जरूरी बात क्या ध्यान रखनी चाहिए उन्हें?
1: सबसे जरूरी बात ये कि सबसे पहले B1, यदि एग्रीकल्चर लेंगे तो B1 देख लें,
0: जी,
1: और फ्लैट की रजिस्ट्री हो रही है तो टैक्स रसीद देख लें, क्योंकि फ्लैट में मालिक का ना हक जो होता है वो तो उस मालिक का ही होता है फ्लैट में,
0: जी
1: लेकिन टैक्स रसीद में जो वर्तमान विक्रेता है वो उनका टैक्स पट रहा है कि नहीं।
0: जी
1: और एग्रीकल्चर में तो B1 ही है मेन, कि
0: जी
1: भैया
0: जी
1: मैं जाकर सर्च करें खसरा नंबर और नाम से, और बाकी 30 साल का सर्च करा सकते हो उपपंजक कार्यालय से कि
0: जी
1: पिछले 3 सालों में इन्होंने उस प्रॉपर्टी को सेल तो नहीं कर दिया है।
0: बिल्कुल। और अंत में हमारे श्रोताओं के लिए कोई संदेश में?
1: श्रोता के लिए ये संदेश है कि जब भी जमीन खरीदे
0: जी
1: तो एक बार भुइया पोर्टल में जाके या ऑफलाइन उपपंजक कार्यालय में संपर्क करके और पूरी जांच करने के बाद ही प्रॉपर्टी ले, ताकि किसी भी प्रकार के लोगों को परेशानी ना हो या धोखाधड़ी का शिकार ना हो, और मतलब भविष्य अन्यथा भविष्य में कानूनी विवाद और आर्थिक नुकसान का सामना उसको करना पड़ सकता है। इसलिए सारी जांच इस प्रकार की करने के पश्चात ही वो प्रॉपर्टी ले।
0: बिल्कुल। भारती शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़ी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम।
1: जी
2: दीवाना,
3: एक दीवाना शहर में,
2: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।

0: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, साइबर अपराध से जुड़ी घटनाओं की खबरें प्रतिदिन हमें पढ़ने और सुनने मिल रही हैं। साइबर अपराध से हम कैसे बच सकते हैं, हमें मोबाइल के उपयोग के समय किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, इस संबंध में बता रहे हैं रायपुर पुलिस कमिश्नर की ओर से एडिशनल DCP क्राइम रायपुर।
1: कुछ प्रमुख साइबर फ्रॉड के तरीकों के बारे में आपको बताना चाहूंगा। सबसे प्रमुख तरीका में से एक है फेक वेबसाइट स्कैम। इसमें ठग असली वेबसाइट की तरह दिखने वाले हूबहू नकली वेबसाइट बना लेते हैं। इनका URL ओरिजिनल वेबसाइट की तरह ही दिखाई देता है, जैसे flipkart.com की जगह लिखा रहेगा flipkart.offers.in। इस प्रकार के वेबसाइट में बहुत कम कीमत में सामान बिक्री करने के लिए उपलब्ध होता है, या किसी बहुत फेमस होटल्स के ओरिजिनल वेबसाइट की तरह नकली साइट तैयार की जाती है और सस्ते दर पर रूम की बुकिंग होने का ऑफर दिया जाता है। जैसे ही आप ऐसे फर्जी वेबसाइट पर कोई सामान लेते हैं या होटल्स के रूम को बुक करते हैं और आप पेमेंट करते हैं, आपके साथ ठगी हो जाता है। आपके निजी बैंकिंग संबंधी जानकारियाँ भी चोरी होती है। आप सतर्क और जागरूक रहें, हमेशा आधिकारिक एप्लीकेशन या सुरक्षित साइट पर ही जाकर शॉपिंग करें या किसी होटल्स की रूम की बुकिंग करें। फिर भी किसी प्रकार की ठगी होती है तो आप 1930 पर कॉल कर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं।
2: दोस्तों, भारतीय फिल्म संगीत की दुनिया से हाल ही में एक ऐसी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई जिसने दशकों तक अपने मधुर गीतों से श्रोताओं के दिलों में जगह बनाई। उनकी गायकी, संगीत यात्रा और हिंदी सिनेमा में उनके योगदान अतुलनीय हैं। और सुमन कल्याणपुर की संगीत के सफर, सिनेमा और संगीत के जानकार डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव से हमारी खास बातचीत में सुनिए। हिंदी फिल्म संगीत की दुनिया, भारतीय फिल्म संगीत की दुनिया ने हाल ही में एक ऐसी आवाज को खोया है जो यकीनन हमारे लिए एक अलग ही हमारे दिलों में छाप रखती थी। और उनसे हुई हमारी बातचीत डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव से सुनिए।
3: हिंदी फिल्म संगीत की दुनिया की एक बेहद मधुर और सम्मानित आवाज सुमन कल्याणपुर अब हमारे बीच नहीं रही। 31 मई को उनके निधन के साथ भारतीय संगीत जगत ने एक महत्वपूर्ण स्वर खो दिया है। उनके जीवन, संगीत और योगदान पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सिनेमा और गीत संगीत के जानकार डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव। डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में।
4: नमस्कार सभी श्रोताओं को।
3: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि सुमन कल्याणपुर को हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास में आप किस स्थान पर रखते हैं और संगीत की दुनिया में वो क्या विशेषता थी जिन्हें अन्य गायिकाओं से अलग बनाया?
4: सुमन कल्याणपुर जी भारतीय सिने

0: सिनेमा के स्वर्णिम युग की अंतिम सुमधुर गायिका थी और जिन्होंने अपना कैरियर 1954 से शुरू करके 1984 तक लगातार 30 साल तक बड़े ही उतार चढ़ाव भरे जीवन में उन्होंने गीत संगीत और पार्श्व गायन को अपना कैरियर चुना और अपने समकालीन सभी प्रख्यात मुख्य मेल सिंगर्स और फीमेल सिंगर्स जैसे मोहम्मद रफी साहब, शमशाद बेगम, आशा भोसले, तलत महमूद, मन्ना डे, किशोर कुमार और गीता दत्त जी के साथ ही महेंद्र कपूर के साथ उनके युगल गीत बहुत ही लोकप्रिय हुए, उन्हें मैं लता मंगेशकर और आशा भोसले जी के समकक्ष ही उनकी आवाज की मधुरता और शार्प पिच की वजह से उसी श्रेणी में रखना चाहूंगा जो सम्मान आशा जी और लता जी को मिला।
1: बिल्कुल, एक बात ये भी थी कि अक्सर उनकी आवाज की जो तुलना है वो लता मंगेशकर जी से की जाती थी, आप इसे किस तरह से देखते हैं?
0: मैं इस बात से सहमत हूँ कि शुरू में जब गायिकाओं के नाम नहीं छपे रहते थे रिकॉर्ड्स पर तो अधिकतर गानों में शुरुआत में सुमन जी की आवाज को जो उन्होंने गीत गाया है, क्योंकि लता जी सन 50 से ही काफी फेमस हो चुकी थी और इनका कैरियर, सुमन जी का कैरियर 1953-54 से आरंभ हुआ, तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स में सुमन जी के गाने को या तो आशा भोसले या लता जी भी प्रिंट करा दिया जाता था। छत्तीसगढ़ राज्य की छत्तीसगढ़ी बोली में एकमात्र मधुर गीत आज भी बहुत प्रचलित है।
1: जी, वो मधुर गीत कौन सा है?
0: जी, छत्तीसगढ़ी गीत जो उन्होंने 1966 में रिकॉर्ड किया था
1: जी
0: मुंबई में रफी साहब के साथ, जो आज भी हमारे छॉलीवुड के कलाकार अच्छे से जानते हैं। सुन सुन मोर मया पीरा के संगवारी रे, ये गाना हरि ठाकुर जी ने लिखा था
1: जी।
0: बहुत ही लोकप्रिय गाना हुआ, जब हम बच्चे थे तो इस गाने को प्रतिदिन सुनते थे।
1: बिल्कुल, और सुमन कल्याणपुर के कौन कौन से गीत जो हैं वो आज भी सबसे ज्यादा याद किए जाते हैं और क्यों?
0: सबसे ज्यादा प्रचलित उनका गीत जिसमें उनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला
1: जी,
0: वो एक भाई बहन के प्रगाढ़ रिश्ते को दर्शाता हुआ रक्षाबंधन का गीत है, बहना ने भाई की कलाई में प्यार बांधा है
1: जी।
0: वो रेशम की डोरी का गीत था जो 1975 में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया। उसके पहले इनकी ख्याति न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, इस गीत को हेमंत जी ने भी गाया, इन्होंने भी गाया।
1: और अगर ये कहा जाए कि फिल्म संगीत के स्वर्णिम दौर में सुमन कल्याणपुर का के योगदान को अगर हम देखें, और शायद नई पीढ़ी को उनके बारे में उतना ज्यादा नहीं मालूम होगा, और उन्हें सुमन कल्याणपुर को क्यों सुनना चाहिए?
0: उनकी आवाज की मौलिक रचना और सुमधुर गीतों का चयन
1: जी
0: उनको बहुत ही उच्च स्थान प्राप्त कराता है, क्योंकि सन 70 के दशक के बाद भी कुछ गायकों के द्वारा थोड़े से हल्के शब्दों का उपयोग होने लगा था, पर इनके एक भी गाने में किसी भी प्रकार के चीप लैंग्वेज या ऐसी भाषाओं का वो गीत चयन नहीं करती थी।
1: बिल्कुल, और अंत में यही जानना चाहेंगे कि सुमन कल्याणपुर की ऐसी कौन सी विरासत है जो उन्हें हमेशा यादगार बनाए रखेंगे?
0: उनका विरासत गीत तो मेरे हिसाब से जिंदगी इम्तिहान लेती है, और बहुत ही अनमोल गीत उनके हैं, मेरे महबूब न जा आज की रात न जा, ऐसे उनके सोलो गीत और युगल गीत दोनों ही हम सुनते आ रहे हैं और आगे भी सुनना चाहिए। उन्हें भारत सरकार ने सन 2023 में जब उनका स्वास्थ्य ठीक था पद्म भूषण के राष्ट्रीय अलंकरण से सम्मानित किया, और सुर श्रृंगार सम्मान उसके साथ ही मराठी फिल्म इंडस्ट्री ने गादीमा अवार्ड और लता मंगेशकर पुरस्कार भी उन्हें प्रदान किया गया।
1: बिल्कुल, डॉक्टर मनीष जी आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत
0: धन्यवाद।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय
1: आँखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
2: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 बच्चन ले सवलग सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
3: दोस्तों, आज हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के शोमैन राज कपूर को। और जब राज कपूर की बात होती है तो एक गीत अपने आप याद आ जाता है। एक ऐसा गीत जो मानो उनके पूरे जीवन दर्शन का सार है। एक कलाकार जो आया, लोगों के दिलों में बसा और अपनी अमिट छाप छोड़ गया। इसी एहसास के साथ आगे बढ़ते हैं उस अमर रचना की ओर जिसमें जिंदगी, सफर और यादों का पूरा दर्शन समाया हुआ है।

साथियों नमस्कार, रायपुर में फिलहाल इतना ही। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। दीजिए इजाजत अपने दोस्त देवव्रत भगत को और स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे हमारा दैनिक प्रसारण नमस्कार रायपुर। इसे आज आपकी सेवा में प्रस्तुत किया देवव्रत भगत ने। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजने को हैं समाचार प्रभात। हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। उत्तराखंड का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुला। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा भी उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
5: Both sides underscored the importance.
6: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
5: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
4: दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से व्यापार और आर्थिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर बातचीत हुई। म्यांमार भारत का रणनीतिक पड़ोसी देश है और इसकी 1640

0: 20 किलोमीटर लंबी सीमा नागालैंड और मणिपुर सहित भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से लगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भी श्री ऑनलाइन से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। 5 दिन की भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपति ऑनलाइन व्यापार और उद्योग जगत से बातचीत के लिए आज मुंबई जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है, अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। अमरीका पिछले वित्त वर्ष में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बैठक में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाने के प्रयासों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी है। श्री पात्रा ने कहा आज भाजपा और एनडीए सरकार को देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा का अवसर मिला है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
2: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
3: 2 to 3 ब्रांचेस आल्सो।
1: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
4: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार

0: आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड में चमोली जिला स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी की समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पति संरक्षण में सहयोग की अपील की है। वर्तमान में घाटी में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और दुर्लभ वनस्पतियां मौजूद हैं। वन क्षेत्राधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि ये घाटी 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी।
1: 21 जून से 31 ऑफ अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला

0: पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने आजमगढ़ जिले से एक युवक को गिरफ्तार किया है जिस पर पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने का आरोप है। एटीएस ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी दिशा निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नवनियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि अगर इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: कुल 22 रोवर्स को अब टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी 6 अलग अलग नौका समूहों का हिस्सा हैं। अब ये रोवर्स एशियाई खेलों और रोइंग विश्व कप जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल खिलाड़ियों में पेरिस ओलंपिक 2024 के प्रतिभागी बलराज पवार, एशियाई खेल 2022 के रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और एशियाई खेल 2022 में 2 पदक जीतने वाले जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज बारिश की संभावना है। कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित लगभग सभी हिंदी समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खियों में आज राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को वरीयता देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मसलों को भी मुखपृष्ठ पर जगह दी है। लोकसत्य ने पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। लाखों रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाया। दैनिक जागरण ने नए ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 के सफल परीक्षण के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ड्रोन लगातार 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। पत्र ने CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी की जांच शुरू होने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की आला अधिकारियों के साथ मंत्रणा को दूसरा शीर्ष समाचार बनाया है। हिंदुस्तान ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के कथन को पहली खबर बनाते हुए लिखा है, अमेरिका से व्यापार समझौता जल्द। वीर अर्जुन ने म्यांमा के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ

0: छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइया के आज के अंक में आप मन के स्वागत है। जय जोहार महेंद्र साहू कोतिले। श्रोता साथी हो, आज के पत्रिका में आप मन सुन सकत हो डॉक्टर सियाराम साहू ले वार्ता। विषय हवय छत्तीसगढ़िया लोक जीवन में बरखा ऋतु फुलवा। ये कहानी आप मन ला सुनाही डॉक्टर दीपशिखा पटेल और मोर भुइया के आखिर में डॉक्टर मीता अग्रवाल आप मन ला कविता सुनाही। आज के अंक में सबले पहली आवा आप मन ला सुनवात हन एक वार्ता जेकर विषय हावे छत्तीसगढ़िया लोक जीवन में बरखा ऋतु। अब वार्ताकार हावे डॉक्टर सियाराम साहू।
1: हमर बाबा हा एक ठन जनौला जन्मावाय, बता बारह में चार गए तब का बाँची। जनौला तो सीधा और सरल है कि बारह में चार गए तब आठ बाँची। तब हमर सियान हा कहे, अरे बेटा कुछ नहीं बाँचाए, बारह महीना में चार महीना चौमास में पानी नहीं गिरही तब वो आठ महीना कोनो काम के नहीं होए। ये महत्तम है छत्तीसगढ़िया लोक जीवन में वर्षा ऋतु के। ये हमार लोक जीवन के प्राण आए। छत्तीसगढ़िया लोक जीवन में वर्षा ऋतु सिर्फ मौसम भर नो है, भलुक जिंदगी के उत्सव और जीवन चक्र के सबले महत्वपूर्ण अध्याय हरे। हम एला ऐसन घलो कही सकत हन, वर्षा छत्तीसगढ़िया मन भर खेती के आरम्भ और संस्कृति के पुनर्जन्म आए। हमर छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा कहे जाते। हमर ये पहचान है सर्वस वर्षा ऋतु ऊपर आधारित होते। वैसे तो किसानी के नवा साल है अक्ती के दिन ले शुरू होते, जी हाँ गाँव के ठाकुर देव माता देवाला या अन्य देवी देवता के पूजा पाठ करके बीज बोए के शुरुआत होते। फिर जेठ महीना के आखिरी अवसाढ़ के लगती माँ जब करिया बादर आगास माँ उमड़त घुमड़त गरजत चमकत आते तब असली खेती किसानी शुरू होते। आंधी के संग झिमिर झामर टिपिर टापर बरसा होए लगते, तब किसान मेड़ पार मुही के जतन करत खातू कचरा ल बगरावत कांटा खूंटी ल सकेल थे और खेती के बूता माँ लग जाते। तब उखर मधुर कंठ ले ए गीत निकल पर थे, कांटा खूंटी ल सकेलव रे लैका और सियान बावत के दिन आगे भैया बोए ल चली धान। अषाढ़ के महीना में अर्तता के बोली ले नांगर जोतत किसान अपन पछीना ले धरती ल सींचते, तन के पछीना के बूंद झरथे और हृदय ले गीत के बोल। माटी के दुलरवा बेटा माटी के गीत गावत जब मेहनत करते तब पूरा वातावरण ददरिया के मोहक स्वर ले गूंजे लगते। आघू नगरिया बैला है टिकला डोली में उतर हूँ हो जाही चिखला हवा ले रे। अषाढ़ आते तब मन झूम जथे, धान के बामा शुरू हो जथे, अषाढ़ के बूंद

धरती बर अमृत तो आए संगे संग किसान बर घलो आषाढ़ महीना मा चुक जबे माने जीवन के सुविधा ले चुक जबे तेखर सेती कहे गे हे डार के चूके बेंदरा अउ आषाढ़ के चूके किसान। कृषि संस्कृति न केवल हमर लोक जीवन ल प्रभावित करथे बल्कि कवि हृदय ल घलो। तभे तो किसानी के बूता ल अपन लेखनी म लिखथे, चल धर तै झुहा टोपली मैं धरत हौ कुदारी, संगवारी मैं धरत हौ रापा कुदारी, ठलहा बैठे म जिंदगी नहीं चलाए, बिन जांगर पेरे पेट नहीं भराए, कमा के खाबो नहीं करन अलाली, संगवारी मैं धरत हौ रापा कुदारी। आषाढ़ महीना के नाहकत सावन आजत है, सावन सबला सुहात है, सावन महीना फसल के सिंगार करते, तब मन मयूरा खुशी के गीत गाते। सावन महीना खेती के काम जोर होते, बन कचरा के निंदई के संगे संग बियासी के बूता घलो आजत है। सावन महीना के घपटे बादर चमकत बिजली के संग किसान बियासी करत गीत के माध्यम ले अपन हृदय के उद्गार ला व्यक्त करते। ए सुघर बेरा मा छत्तीसगढ़ के क्रांतिकारी कवि कुंज बिहारी चौबे जी किसान के उद्गार ला लिखते, चल मोर भैया बियासी के नांगर, अरे कैसे मजा बियासी के नांगर, बिजली लफा लफ चमकत है, इंदर देवता तमकत है, जुड़ जुड़ बोहत है पुरवाही, दिखत है लच्छन गजब पानियाही, घपटे है उत्ती डहर करिया बादर, चल मोर भैया बियासी के नांगर। खेत के लहलहावत फसल ल देख के किसान के आनंद दुगना हो जत है। निंदई बियासी के संग धान चले के काम शुरू हो जत है। खेत में निंदत किसान श्रमिक के दल ददरिया गा के आनंद विभोर हो जत है। रिमझिम बरसा सावन के ददरिया के स्वर लहरी आत्मा ला तृप्त कर देते। सावन महीना ले किसानी तिहार के शुरुआत हो जत है। हरेली छत्तीसगढ़ और कृषि संस्कृति के प्रमुख त्यौहार आए। हरेली सावन महीना के अमावस के दिन मनाए जाते। हरेली लोक जीवन और कृषि संस्कृति के मंगल के पर्व आए। तभे तो लोक कंठ ले किसानी काम के ऐसन उद्गार होते। पानी पसिया पेज पी के पहावत हन जिन गानी, मैं छत्तीसगढ़िया भैया करथौ खेती किसानी, जियत किसानी मरत किसानी, नहीं जानो कुछु सियानी। लैका मन गेणी बना के चढ़ते, नाचते गाते और उछाह मनाते। सावन महीना के अंजोरी पाख नवमी तिथि के भोजली बोए जाते, जैन पुन्नी तक चलते। राखी तिहार के बिहान भर नदिया तरिया में ठंडा करे जाते। एमा आरती जागरण स्वागत और विसर्जन के गीत गाए जाते, जैन मा भोजली दाई के स्तुति होते। देवी गंगा लहर तुरंग, हमर भोजली दाई के भीजे आठो अंग। यही भादो महीना में चतुर्थी तिथि के बहुला चौथ मनाए जाते। ओखर दो दिन बाद भादो महीना अंधियारी पाक के छठ तिथि के माता मन अपन संतान के सुख समृद्धि बर कमरछट के उपास रही थे। एला भगवान बलराम के जन्मदिन घलो माने जाते। कमरछट के दो दिन बाद आते आठे कन्हैया, भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पूरा गांव उछाह मंगल ले मनाते। दूसर दिन दही लूट के आयोजन होते, जेमा गांव के ग्वाल बाल मन मगन होके ये परब ला सुघर बना देते। दही लूटो नंदलाल, दही लूटो नंदलाल, आठे कन्हैया दही लूटो। पोरा तिहार छत्तीसगढ़ के प्रमुख तिहार आए। पोरा तिहार भादो अमावस के मनाए जाते। पोरा पोर फूटना यानी धान में पोटरी पान आना। पोरा के दिन कृषि संस्कृति के आधार नंदिया बैला के पूजा करे जाते। नंदिया बैला में ठेठरी खुरमी चढ़ाए जाते, जिन हर भगवान शिव और माता पार्वती के प्रतीक आए। ये लोक आस्था के चरम हरे। जी हाँ, खान पान और रोटी पीठा में घलो देवत्व के दर्शन होते। नान्हे लैका मन नंदिया बैला के पूजा के बाद ओमा सिली लगा के खेलते दौड़ाते और आनंदित होते। नोनी मन जाता पोरा दिया चुकिया और माटी ले बने खिलौना ले सगा पहुना खेलते। महिला मन पोरा पटके बर जाते, जिहाँ सुवा नित्य करत अपन अंतस के भाव ला व्यक्त करते। तरिहरी नाना मोर नाना हरे नाना, कदम तरी मोंगरा के झाड़े, ये झाड़े रे सुवना कदम तरी मोंगरा के झाड़े। पोरा के तीन दिन बाद तीजा तिहार। छत्तीसगढ़ के लोक जीवन में तीजा तिहार के बड़

0: सप्तम है। भादो महीना के अंजोरी पाक के तीसर दिन तीजा के तिहार मनाए जाते। पोरा तिहार के रोटी धर के भैया के अगोरा रही थे। माता बहनी मन चाहे कोनो उम्र के होए मैके के दुलार पाए बर कुलकत रही थे। औ रही काबर नहीं, साल भर में एक बेर तो ये पावन अवसर आते। करु भात खा के तिझारिन मन उपास रही थे। पति के सुख समृद्धि औ दीर्घायु जीवन बर कठिन निर्जला उपास रही थे। ए उपास ला कुमारी कन्या मन घलो रही थे। माता पार्वती हर मनचाहा बर पाए बर भगवान शिव के कठिन तपस्या करे रहीस, ऐसे वेद पुराण में वर्णन औ लोक मान्यता है। तीजा के बिहान भर गणेश चतुर्थी ले शुरू हो जाते विघ्न विनाशक भगवान गणेश जी के पूजा अर्चना 11 दिन चलते। गणेश विसर्जन के बाद शुरू हो जाते पितर पाक। पितर पाक में हम अपन पुरखा मन के सुरता करत उखर प्रति अपन कृतज्ञता व्यक्त करथन। तोरई के साग संग बड़ा सोहारी और खीर के भोग लगावत पुरखा मन ला अर्पण तर्पण देथन। ए बीच खेती में आखिरी निंदई करगा छटई के काम और फसल ला खातू माटी के बरोबर मात्रा देवत पानी आदि के बने देखभाल करे बर लगते। पितर मोक्ष के संगे संग देवी दुर्गा के आराधना के पर्व कुमार नवरात्रि के पर्व शुरू हो जाते। देवी दुर्गा के भक्तिमय वातावरण ले गांव गूंजे लग जाते। माता देवाला में जमारा बुआ थे, मनोकामना के ज्योति जल थे, देवी के मूर्ति की स्थापना होते अब अपन मनवती मनाते। माता की स्थापना के सुमरनी सिंगार ले लेके विसर्जन तक अलग अलग प्रकार के गीत गा के माता के सेवा करे जाते। माता और जमारा विसर्जन के बाद दशहरा के पर्व मनाए जाते। उखर 5 दिन बाद शरद पूर्णिमा मनाए जाते। फिर वर्षा ऋतु समाप्त हो जाते। छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु सिर्फ पानी नहीं लावाए, यहाँ के लोक जीवन के खान पान रहन सहन सबों में परिवर्तन लाते। किसान मन बर ये चौमास आशा और संस्कृति के उत्सव होते। वर्षा ऋतु छत्तीसगढ़िया लोक जीवन बर ऋतु भर नो है, ये श्रम संगीत स्वाद और संबंध के मौसम आए। खेती में पानी भरत ही छत्तीसगढ़ के लोक जीवन आशा और विश्वास ले भर जते। ये सबो बात ला जाने के बाद हमर बाबा के बात है सिरतोन लगते कि 12 महीना में 4 महीना गीस ता का बाँचीस।
1: डॉक्टर सियाराम साहू ले अभी आप मन वार्ता सुनत रहे हो, जेकर विषय रहिस छत्तीसगढ़िया लोक जीवन मा बरखा ऋतु। और अब कार्यक्रम में आगू बढ़ा था वन और आप मन ला एक कहानी सुनवात हन जेकर शीर्षक हावे फुलवा। और कहानी सुनात हैं डॉक्टर दीप शिखा पटेल।
2: गजब दिन के गोठ है, एक गांव है जंगल के तीर मरीस। गांव में सब हंसी खुशी के साथ जीवन बितावत रहे। गांव में ककरो घर में सुख दुख आवे तो गांव में सबो जन मिल के निपटारा करे। गांव के तीर में किम रिकिम के रूख राई आमा जाम तेंदू महुआ बिही केरा अमली आनी बानी के रूख रहीस। गजब सुघर लगे संझा बिहनिया चिरे चिरगुन के मीठ बोली। उही गांव में डोकरा डोकरी रहे तेखर दो जन बेटा और एक जन बेटी रहे। बेटा मन के बिहाव हो गए है, नोनी के बर बिहाव नहीं हुए है। नोनी अपन दाई ददा के संग में रहे। डोकरा डोकरी मन अपन बेटी के फुलवा नाम रखे रहिन। सही में फुलवा हा फूल असन सुघर रहे। रोज बिहनिया उठ के अपन दाई के संग में रन्नी कुरिया में जाके घर लिप के पानी भर के खेत चल देवे। भाई भौजी मन फुलवा के काम देख के ईर्षा करे। फुलवा अपन दाई ददा संग खेत में जावे और चिरे चिरगुन ला देख के गजब कुलक कुलक के खेले। इसने इसने में फुलवा चिरे चिरगुन के भाका ला समझे लगे। ए डहर ओखर भाई भौजी मन फुलवा ला गजब टिटोली लगा के ताना मारे। फुलवा ला देखे तहा उखर भाई भौजी मन उला दुरिया ले चिल्लावे वही दे आवते करिया चिरई कहके। फुलवा रोवत अपन दाई की गोदी में बैठ जावे। इसने दिन बीतत जाते। अब डोकरा डोकरी के बेटा बहु मन अलग खाए कमाए ला धर लीन। फुलवा अपन सियान दाई ददा के संग रहेगे। फुलवा के भाई भौजी मन जंगल में रोज डाही मारे बर जावे। फुलवा घलो अपन सियान दाई ददा संग में

डाही मारे बर जावे तो ओखर भाई भौजी मन फुलवा ल देख के औ ताना मार के हंसे। फुलवा चुपचाप काम करत रहे औ अपन भाई भौजी ले पहले काम खत्म करके आमा के रूप में चढ़ के अपन सियान दाई ददा और भाई भौजी मन बर पके पके आमा ला भुइया म गिरावे। फिर वाह रे निर्दयी भाई भौजी रूख ले उतार के ओखर भाई मन चटकन में मार देवे। बिचारी फुलवा रोवत सुस्कत अपन दाई के लुगरा के छोर में आंखी के आंसू पोछत अपन दाई ला पोटार लेवे। ए डहर ओखर भाई मन नागर जोते और डाही मारे रहे तौन खेत में धान बोए है। बिचारी फुलवा का करे रात के अपन सियान दाई ददा मन ला खवा पिया के सोवा दिस और जंगल निकल गे। फुलवा तो पिंगला विद्या जानते रहे चिरई चिरगुन और सब जीव जनावर के बोली भाखा जाने समझे। फुलवा जम्मो जंगल के सिंह वाले बरहा मन ला गुहार लगाते। रात भर में बरहा मन फुलवा के खेत ला सिंह में कोट डरते। फुलवा अपन घर में चुपचाप आके सो जाते। इति बिहिनिया ले ओखर भाई मन नागर धर के जोते पर जावे ता देखते खेत के जुताई हो गए है। फुलवा के भौजी मन आंखें मटकावत ईर्षा के मारे कहते तोरे करिया चिरई बहनी के खेत ताए बिकट कमैलिन बने हैं। फुलवा रात के बियारी करे के बाद अपन दाई ला कहते दाई जान भाई मन करा ले खेत में बोए बर धान मांग के लान लेते। फुलवा के बात मान के दाई हर अपन बेटा मन जगह जाके कहते बेटा हो खेत में फुलवा हा घलो धान बोही धान दे देते हो। भाई मन आखी तरेरत कहते दाई तोला चिटको लाज नहीं आवे अब फुलवा टूरिया धान बोही हमर गांव में नाक कटवाओ। भौजी मन घलो अपन सास ला नंगत फुहरे फुहर गारी देते। दाई बिचारी कले चुप आगे। फुलवा अपन दाई के डबडबाए आंखिला देख के जान डरिस। फुलवा कहते दाई पुजारी बाबा घर जाके कुटकी मांग के लाबे। फुलवा के दाई ददा दोनों जन पुजारी घर जाके कुटकी मांग के लाते। फुलवा कुटकी ला धर के खेत में जाके हुम दे के जंगल के जम्मो देवता धामी मन के सुमरन करत कहते हे मोर पुरखा के देवता हो कुटकी बोवत हो सब जन मोर रक्षा करहूँ। कुछ दिन बीते के बाद फुलवा के खेत में कुटकी रगबग ले जाम गे। फुलवा के भाई के खेत में धान में सावा बदौरी उपज गे धान के एक बोझा नहीं होइस। फुलवा के गाड़ा भर भर कुटकी होए है। फुलवा जम्मो अनाज ला अपन घर के कोठी में भरवा देस। एक दिन रात के बेरा माँ फुलवा के भाई मन ईर्षा के मारे फुलवा के घर में आगे लगा देन। फुलवा के घर और कोठी में रखे कुटकी भुंजा के राख हो गए। फुलवा अपन सियान दाई ददा के कैसनो करके जीव बचाते। फुलवा गजब चेतलक बेटी हरे घर के राख हा जुड़ाते तब जम्मो राख ला बोरा में भर के भैंसा गाड़ी में शहर बेचे बर जाते। उही रद्दा में एक जन व्यापारी अपन सियान दाई ला धर के रेंगत अपन गाँव जात रही से संग में दुधारू गाय बछरू घलो धरे रहे। फुलवा की गाड़ी ला देख के व्यापारी कहते नोनी मोर सियान दाई ला तुर गाड़ी में बैठा लेते रेंगत रेंगत थक गए है। फुलवा कहते मोर गाड़ी में सोना चांदी भरे है कोनो मनखे के पांव पर जही त सब राख हो जही। व्यापारी कहते तुर गाड़ी भराए सोना चांदी कहूँ राख हो जही तो बदला में सोना चांदी और ये गाय बछरू ला दे देहूँ मोर दाई ले बढ़ के कोनो चीज नो है। व्यापारी के दाई ला फुलवा अपन गाड़ी में बैठा लेते। व्यापारी के गांव में पहुँच के ओखर दाई ला घर में उतार के फुलवा अपन गाड़ी में भराए बोरा ला देख के कहते एकरे सेती कह रहे हूँ नहीं बैठा रहूँ देख जम्मो सोना चांदी हा राख हो गए। व्यापारी देखते सिरतुन गाड़ी के बोरा में राख भरा है का करे बेचारा अपन बात में हार गए रही से जैसे कह रही से वैसने सोना चांदी और दुधारू गाय बछरू ला दे दिस। फुलवा गाड़ी में सोना चांदी और गाय बछरू ला धर के घर आ गए। फुलवा के भाई भौजी मन देख के अचरिच में पड़ गए। ओखर भाई आके पूछते कस नोनी गाड़ी में राख भर के ले गए रहे और कैसे सोना चांदी गाय बछरू धर के लाए हस। फुलवा हा अपन बड़े भाई ला नोनी कही के पूछत सुनिस त भाई के अंतस के कपट ला समझ गए। फुलवा कहते राख बेच के लाए हूँ जाके बड़े

0: घर माँ बताते हैं, लालच में आके दोनों भाई मन रात के अपनों घर में आगे लगा देते। घर कुरिया धान कोदो सब भुंजा गए। बिहनिया ले उठ के घर भुंजाए है, तेखर राख ला सकेल फुलवा के भाई भौजी मन बोरा में भर के गाड़ी में लाद के शहर शहर घूमे। राख ले लो हो राख ले लो, फिर सांझ के होत ले कोई राख नहीं लेन। का करे थके हरे थोतना उतारे गांव पहुँचिन। घर द्वार तो आगे में भुंजा गे रहा, भाई भौजी के सब गर्व टूट जाते। मुड़ी ल धरे दोनों भाई रोवत बैठे रहा। उतके बेरा पाछू डहाल ले उखर दाई ददा मन अपन बेटा मन के पीठ में हाथ रखते। फुलवा घलो अपन दाई के लुगरा के छोर ल धर के खड़े रहते। उखर भाई मन मुड़ी उठा के देखते और घोक पार के रो डरते। भाई भौजी मन फुलवा ल बाँह भर पुटार के कहते, हमला छिमा कर दे नोनी, ते हमर घर हमर गांव के देवी असनोनी। हमन तोला बेटी समझ के तोर इज्जत नहीं कर सकें। ते हमर बेटी नो अस बेटा अवस, हमर आंखी उघर गे। फुलवा ला बाँह भर पोटारा देख के डोकरा डोकरी मन के आंखी ले आंसू बोहावत है। अपन लेका मन ला एक होवत देख फुलवा के दाई कही थे, जैसे मोर लेका मन एक हो गए वैसने जम्मू के घर में खुशहाली रहे। सब जुर मिल के रहे और बेटी बेटा में कोनो भेद मत रखे। नार भात चुर गे मोर कहानी पुर गे।
1: फुलवा, ये कहानी अभी आप मन सुनत रहे हो डॉक्टर दीपशिखा पटेल ले। और कार्यक्रम के आखिर में अब आप मन ला सुनवाथन एक छत्तीसगढ़ी कविता पाठ सुनात हवे डॉक्टर मिता अग्रवाल।
2: मोर कविता के जो शीर्षक है वो है नदिया कस जिंदगी धारा। रावी सतलज सिंधु ब्रह्मपुत्र सा

जिंदगी भर ये सार समझ है, माया नाच नचावे जी। नदिया कस झरना है जिंदगी, रंग सबो

अभी गर्मी बहुत तपत है, तो हम मनखे मन के तो हाल बेहाल है। नदिया तरिया तको जौन प्रकृति के उपादान है ओकर एक चित्र खींचे के प्रयास करत हूँ। पानी की किल्लत बहुत होवत है, तो पानी जीवन जगत हवे जी, पानी जीवन जगत हवे जी, एकर करो मोल, अबूंद बूंद पानी ला जतनो, जीव द्वार खोल, जलहा बाचे जिंदगी बाचे, जलहा बाचे जिंदगी बाचे, बाचे सरी साज, और चेत लगा के संकट टालो, बूंद बनाए काज, पंच तत्व मा एक हरे जल, पंच तत्व मा एक हरे जल, बड़का दाम मान, सागर नदिया झरना तरिया, सागर नदिया झरना तरिया, कतको रूप जान, सब गुलना अपना लेथे जी, सब गुलना अपना लेथे जी, रंग अपन मिटाए, अब बर्फ भाप बन उड़ जावे जी, धुंगिया रूप भाए, धुंगिया रूप भाए, पानी बिन सब सून होए जी, पानी बिन सब सून होए जी, सबले बड़े शाप, और नीर पवन हाँ बदे मितानी, संगवारी माप, संगवारी माप, बिन पानी के पेड़ बचे ना, बिन पानी के पेड़ बचे ना, बचे सासा जान, और जिंदगी दाता प्राण विधाता, जीव जिंदगी मान, जीव जिंदगी मान, पानी जिंदगी जगत हवे जी, एकर करो मोल, अब बूंद बूंद पानी ला जतनो, जीव द्वार खोल, जीव द्वार खोल। मोर अगला रचना जौन है वो नारी सिंगार ऊपर है, हमारे छत्तीसगढ़ के। सांवर गोरी रंग पाए है, छत

0: अभी आप मन डॉक्टर मीता अग्रवाल ले कविता पाठ सुनत रह और एक संग छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइया के आज के ए अंक ले यह विदा देवा। जय जोहार महेंद्र साहू कोतिले।
1: अभी आपने सुना छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइया। संपादन और प्रस्तुतकर्ता महेंद्र साहू थे। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है।

मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 9 बजे हैं। प्रस्तुत है रंग तरंग में झलकी, एक तो रखना ही पड़ेगा। लेखक हैं श्री लाल राम कुमार सिंह और प्रस्तुतकर्ता हैं समीर शुक्ला।

0: होगा, कैसा होगा? 4 घंटे हो गए। हाय टाइगर, टाइगर सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं, कैसा होगा मेरा टाइगर?
1: ओ डियर, बस भी करो, सुबह से ऐसे ही बैठे हो, कॉफी तक नहीं लिया है आपने, बस टाइगर टाइगर कह रहे हो। आ जाएगा टाइगर।
0: अरे प्लीज रोजी, टाइगर की याद मत दिलाओ, मैं पागल हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा।
1: ऐसे मत बोलिए,
0: आप तो जानती हो टाइगर मेरी जान है।
1: हाँ, जानती हूँ।
0: रात को उसे गुड नाइट कहकर सोने गया। उसके बाद सुबह जब उठा उसे गुड मॉर्निंग कहने के लिए गया
2: तो वो अपने बेड पर नहीं था।
1: क्या?
2: पूरा घर ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला मेरा टाइगर।
1: ओ डियर, आ जाएगा आपका टाइगर, कहीं आसपास ही गया होगा। कॉफी पीकर तैयार हो जाइए, ऑफिस जाने का भी तो समय हो रहा है। मैं ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ।
0: नो रोजी, टाइगर के बिना मैं ब्रेकफास्ट नहीं खा सकता।
1: क्यों?
0: आज ऑफिस भी नहीं जाऊंगा।
1: नहीं, ऐसे नहीं
2: बोलते। मेरे कानों में टाइगर की आवाज गूंज रही है। कहाँ होगा, कैसा होगा मेरा टाइगर?

0: हेलो, कौन? टाइगर?
1: टाइगर? अरे यार, मैं टाइगर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त दास। दास?
0: ओह सॉरी दास, वेरी सॉरी।
1: अच्छा अच्छा थॉमस, सुनो, मैंने पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखा दी है और आप अभी

0: अखबार के दफ्तर चले जाना, वहां विज्ञापन विभाग के मैनेजर से मिल लेना और एक सूचना छपवा देना, ठीक है? और कल जैसे ही सूचना छपेगी टाइगर घर आ जाएगा, ठीक है?
1: मगर यार दास, मेरा टाइगर कैसे पढ़ेगा उस सूचना को?
0: ओहो थॉमस, अरे क्या हो गया है आपको भाई? टाइगर नहीं पढ़ेगा, जिसके पास टाइगर होगा वो पढ़ेगा और उचित पुरस्कार की बात पढ़कर तुरंत आएगा तुम्हारे पास।
1: ओ दास, यू आर ग्रेट। अभी जाता हूँ अखबार का दफ्तर। रोजी, ओ रोजी,
2: क्या हुआ? मैं यही हूँ, क्या है बोलो?
1: मैं टाइगर का दफ्तर जा रहा हूँ अखबार की सूचना छपवाने।
2: अब क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
1: अरे भाई, अखबार के दफ्तर में टाइगर के घूमने की सूचना देकर आता हूँ, कल छप जाएगा।
2: हाँ?
1: जिसके पास भी टाइगर होगा,
2: हाँ हाँ,
1: इनाम पाने की सूचना पढ़कर उसे लेकर आ जाएगा।
2: मैं मगर ब्रेकफास्ट तो खा लो।
1: आकर खा लूंगा। ओके
2: ओके बाय।
3: एक्सक्यूज मी, विज्ञापन विभाग के मैनेजर साहब से मिलना है।
4: वो सामने लिखा है, वहाँ चले जाइए।
5: बैठिए बैठिए बैठिए, कहिए।
3: थैंक यू मैनेजर साहब, मेरा टाइगर आज सुबह से बिना कुछ बोले बताए घर से चला गया है। मेरा नौकर लगभग आधा शहर ढूंढ लिया, कुछ पता नहीं चला। उसी की एक सूचना छपवानी है।
5: कितने साल का है आपका टाइगर? उसकी कोई तस्वीर लाए हैं क्या?
3: मेरा टाइगर अभी सिर्फ 2 साल का है मैनेजर साहब, और उसकी कोई तस्वीर तो नहीं है।
5: 2 साल का? अरे इतना छोटा सा बच्चा घर से कैसे निकल कर चला गया?
3: मैनेजर साहब, मेरा टाइगर तो पूरी कॉलोनी में दौड़ लगाता है, मगर ज्यादा देर तक घर से बाहर नहीं रहता। अभी करीब 6 घंटे हो रहे हैं घर से बाहर।
5: 2 साल का बच्चा पूरी कॉलोनी में दौड़ लगाता है, कमाल है। आप उसके पिता हैं?
3: नहीं, मैंने तो उसे मिस्टर पिल्ले के पास से खरीदा था जब वो 15 दिन का था तब।
5: खरीदा था? तो क्या मिस्टर पिल्ले अपना बच्चा बेच देते हैं?
3: मैनेजर साहब, ये तो उनका बिजनेस है।
5: बिजनेस है? अरे कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, बच्चा बेचने का बिजनेस, वंडरफुल।
3: मैनेजर साहब, मेरा टाइगर साधारण बच्चा नहीं है, उसकी माँ को मिस्टर पिल्ले हैदराबाद से लेकर आए थे।
5: अच्छा?
3: हाँ, उसी समय मैंने मिस्टर पिल्ले से उसके एक बच्चे की बुकिंग कर दी थी।
5: ओ।
3: पहली बार उसके 4 बच्चे हुए और उसमें से एक मेरा टाइगर है। मेरा टाइगर साधारण नहीं है, पुलिस वाले तो अपने विशेष दस्ता में रखने के लिए मांग कर चुके हैं।
5: अच्छा?
3: हाँ?
5: अब मिस्टर थॉमस, अब उस चमत्कारिक बच्चे के बारे में जो सूचना देनी है वो तो लिखवाइए।
3: लगभग 3 फीट हाइट, भूरे रंग के पूरे शरीर पर कुछ काले रंग के छल्ले बने हैं
5: जी।
3: पूंछ बिल्कुल काले रंग की है।
5: क्या कहा, पूंछ है?
3: हाँ हाँ मैनेजर साहब, टाइगर मेरा डियरेस्ट कुत्ता है और उसकी पूंछ का रंग काला है।
5: ओ मिस्टर थॉमस, मैं तो पागल हो रहा था बच्चा और चमत्कार को सुनकर। रुकिए, एक गिलास पानी पी लेता हूँ। आप ऐसा बताए जा रहे थे जैसे कि वो आपका अपना बच्चा यानी आपका बेटा है।
3: मैनेजर साहब, आज के जमाने में ये बेटे से बढ़कर है। मैनेजर साहब, टाइगर के गले में जो पट्टा बंधा है
5: चा?
3: उसमें पूरा पता और फोन नंबर भी है।
5: ओ।
3: मेरा टाइगर मिल तो जाएगा ना मैनेजर साहब?
5: अरे जरूर मिलेगा मिस्टर थॉमस, जरूर मिलेगा। वो भी आपके बगैर तड़प रहा होगा, जरूर मिलेगा, बस विश्वास रखिए।
3: अच्छा मैनेजर साहब, कितना पेमेंट करना है?
5: कल सूचना छपने के बाद अखबार के साथ बिल आपके घर पहुंच जाएगा, उसके बाद आप पेमेंट कर दीजिएगा।
3: अच्छा मैनेजर साहब, मैनी मैनी थैंक्स।
5: ओह, इट्स आवर प्लेजर सर।
6: हेलो, कौन बोल रहे हैं?
7: हाँ, मैं थॉमस बोल रहा हूँ।
8: अभी अभी अखबार में पढ़ा आपका कुत्ता टाइगर घूम गया है।
7: तो क्या आपने कहीं देखा है उसे?
8: अभी अभी तो सोकर उठे हैं, बाहर निकले।

0: तब कुछ किया जाएगा, ठीक है?
1: रोजी, आज का अखबार देना प्लीज।
2: क्या बात है, आज सुबह से अखबार मांग रहे हो?
1: रोजी, रोजी डियर,
2: हाँ बोलो।
1: अखबार में छपा है मेरा
2: हाँ
1: टाइगर अब जल्दी आ जाएगा घर।
2: ये लीजिए अखबार। हेलो, अब नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला। हेलो, हाँ मैं रोजी थॉमस बोल रही हूँ। नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला। थैंक यू। थोड़ी देर के लिए इसे बंद कर देती हूँ, परेशान हो गई हूँ। अरे मिल जाए तो बताए कि मिल गया। मिला क्या, पूछने की क्या जरूरत है? हाँ।
1: क्या हुआ रोजी, कोई फोन कॉल?
2: कोई क्या, फोन पर फोन, फोन पर फोन, मैं तो पागल हो रही थी। थोड़ी देर के लिए बंद कर देती हूँ।
1: ओ रोजी, ये क्या किया, फोन तो ऑन ही रखो।
2: क्यों,
1: अरे किस वक्त टाइगर के मिलने की खबर आ जाए, कुछ कहा
2: अरे
1: नहीं जा सकता। प्लीज उसे ऑन करो, ऑन करो।
2: अच्छा बाबा, ठीक है ठीक है, आप ब्रेकफास्ट खा लीजिए, मैं फोन अटेंड करती हूँ। हेलो,

0: हेलो, अब नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला। हेलो, हाँ, मैं रोजी थॉमस बोल रही हूँ। नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला। थैंक यू। उफ, थोड़ी देर के लिए इसे बंद कर देती हूँ, परेशान हो गई हूँ। अरे, मिल जाए तो बताए कि मिल गया। मिला क्या? पूछने की क्या जरूरत है? हाँ,
1: क्या हुआ रोजी? कोई फोन कॉल?
0: कोई क्या, फोन पर फोन, फोन पर फोन। मैं तो पागल हो रही थी। थोड़ी देर के लिए बंद कर देती हूँ।
1: ओ रोजी, ये क्या किया? फोन तो ऑन ही रखो। अरे,
0: क्यों?
1: किस वक्त टाइगर के मिलने की खबर आ जाए? कुछ कहा
0: अरे
1: नहीं जा सकता। प्लीज उसे ऑन करो, ऑन करो।
0: अच्छा बाबा, ठीक है ठीक है, आप ब्रेकफास्ट खा लीजिए, मैं फोन अटेंड करती हूँ। हेलो, जी हाँ, अभी ऑफिस जाएंगे। ठीक है ठीक है।
1: अच्छा रोजी, ऑफिस से आ रहा हूं, अपना ख्याल रखना।
0: हाँ,
1: अगर कोई टाइगर लेकर आ जाए तो इमीडिएट मुझे रिंग करना।
0: हाँ ठीक है ठीक है। टिफिन रख दी हूँ गाड़ी में, टाइम पर खा लेना। ओके बाय।
1: हेलो, थॉमस बोल रहा हूं।
2: कुछ पता चला टाइगर का?
1: अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। आप कौन बोल रहे हैं?
2: मैं कोतवाली से मुंशी मन राखन लाल बोल रहा हूँ। कुछ पता चले तो तुरंत खबर करना, रोज नामचे में दर्ज करना पड़ेगा।
1: ठीक है ठीक है।
3: कॉफी लाऊं सर?
1: नहीं राम सेवक, मन नहीं कर रहा है।
3: कॉफी पी लीजिए सर, ठीक लगेगा।
1: ठीक है, ले आओ। हेलो, हाँ मैं थॉमस बोल रहा हूं, आप कौन?
3: मैं फोगटपारा से फेरा राम बोल रहा हूँ। मेरे घर के सामने कल सुबह से एक कुत्ता बैठा है। टाइगर तो नहीं है, पर टाइगर जैसा है। चलेगा सर?
1: अरे जी नहीं, नहीं चलेगा। धन्यवाद। हेलो, हाँ हाँ मैं टाइगर ही बोल रहा हूँ।
4: आप टाइगर बोल रहे हैं तो मिस्टर थॉमस से बात कराइए।
1: अरे भाई, मैं थॉमस ही बोल रहा हूँ, बोलिए क्या काम है?
4: कमाल है, एक ही फोन पर टाइगर और थॉमस, दो मिस कॉल। बंद करो फोन।
1: ओ टाइगर, ओ। क्या बात है रोजी डियर?
0: ये कुत्ते लेकर आए हैं, कह रहे हैं देख लीजिए अपना कुत्ता।
1: हाँ भाई, क्या बात है, कौन है आप?
5: मैं चरोदा से आया हूँ। ये अखबार में छपा समाचार और इस गाड़ी में समाचार से मेल खाते पूरे 12 कुत्ते हैं। अब इसमें से आपका टाइगर कौन है देख लो।
1: इसमें से मेरा टाइगर कोई भी नहीं है। वो होता तो अभी तक आपकी गाड़ी से कूदकर मेरे पास आ गया होता।
5: देखो मिस्टर, क्या नाम बताया? मिस्टर थॉमस। अखा शहर अपुन को जानता है। अखबार में छपवाने से पहले अपुन को फोन करता है और उनका जानवर मिल जाता है। आपने इतना बड़ा समाचार छपवाया, आने जाने का, कुत्ता लाने का खर्चा और उचित इनाम देना, सब कुछ लिखा है। इतना सब पढ़ने के बाद शेरू चुप कैसे बैठ सकता था है?
1: हमने कह दिया ना, इसमें मेरा टाइगर नहीं है।
5: अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो साहब, आप भला आदमी है और मैंने अपना धंधा किया, धंधा गाड़ी किराए पर लिया, खोज खोज कर, चुन चुन कर, गली मोहल्ले से, अरे वो नाली के किनारे से भी कुत्ते को पकड़ा, कुत्ते को बिठाया, ब्रेड खिलाया, दूध पिलाया, पता ढूंढ कर इधर आया। अब इसमें से एक कुत्ता तो उतरवा लीजिए और मेरा हिसाब कर दीजिए इस अखबार के मुताबिक।
1: अरे ओ भाई, मेरा टाइगर है ही नहीं तो कैसे रख लूंगा?
5: अरे कैसे नहीं रखोगे साहब, वो मैं कुछ नहीं जानता। अखबार में आपने छपवाया, मैंने पढ़ा, मैंने जैसा पढ़ा वैसा किया। अब इसमें से एक कुत्ता तो आपको रखना ही पड़ेगा।
1: अच्छा जबरदस्ती है। अरे जब मेरा टाइगर है ही नहीं तो क्यों रखूं?
5: अरे टाइम खराब नहीं करने का साहब, गाड़ी का भाड़ा भी बढ़ जाएगा, चुपचाप एक कुत्ता उतरवा लीजिए, वरना मैं बहुत कुछ उतरवाना जानता हूँ, समझे ना? आपने अखबार में क्यों छपवाया? एक कुत्ता तो आपको रखना ही पड़ेगा।

ओह, गॉड प्रॉमिस करता हूँ, कसम खाता हूँ, अगर मेरा बेटा भी गुम जाएगा तो मैं अखबार में कभी नहीं छपवाऊंगा। ओह, दिन भर मोबाइल से परेशान, और अब ये एक कुत्ता तो रखना ही पड़े।

अभी आप सुन रहे थे रंग तरंग में झलकी, एक तो रखना ही पड़ेगा। लेखक थे श्री लाल राम कुमार सिंह। प्रतिभागी कलाकार थे संजय पांडे, राजेश फाये, सुमिता राय बर्मन, श्याम वर्मा, दीपक हटवार, समीर शुक्ल और के परेश। प्रस्तुति समीर शुक्ल की थी। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 9:15 हुए हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं फिल्म जॉनी मेरा नाम का गीत किशोर कुमार और उषा खन्ना की आवाज़ में। बोल इंदिवर के हैं और संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

0: अभी आपने सुनी राजेंद्र कृष्ण की रचना। इसे संगीत से संवारा था कल्याण जी आनंद जी ने। आवाज किशोर कुमार की थी और फिल्म थी ब्लैकमेल।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: मुकेश की आवाज में आइए सुनते हैं साहिर लुधियानवी की रचना। धुन बनाई है खयाम ने, फिल्म है कभी कभी।

Akashvani at 90. अमित खन्ना की रचना को संगीत से पिरोया है राजेश रोशन ने। स्वामी इस फिल्म का ये गीत है, इसे गाया है लता मंगेशकर ने।

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनी फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए हैं।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को दे गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है। कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
3: मुझे कुछ कहना है,
4: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
5: सुनिए।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड

0: ऑडियो एंड विजुअल समिट वेब्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेब्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर सरायपाली केंद्र है। 9:40 हुए हैं। प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ी गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत। कलाकार हैं सुख्यारिन मानिकपुरी और साथी। कार्यक्रम में इस सबसे पहले सुनते हैं सुख्यारिन मानिकपुरी और साथियों के स्वर में ये नाचा गीत।

स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल

0: वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं छत्तीसगढ़ी आंचलिक गीतों का कार्यक्रम लोक रंजन लोक संगीत। कलाकार हैं सुख्यारिन मानिकपुरी और साथ ही इनके स्वर में लीजिए सुनिए ये नाचा गीत।

0: लोक संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। इसमें छत्तीसगढ़ी गीत कलाकार सिंह सुखियारिन मानिकपुरी और साथी मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:55 होने को हैं, अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रादेशिक समाचार सुनिए।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। नगरीय निकाय चुनाव के तहत 4 जून को होगी मतगणना, इसी दिन पंचायत चुनाव के परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। प्रदेश में रेहड़ी पटरी कारोबारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 1 जून से 30 जून तक स्वनिधि महोत्सव और लोक कल्याण मेले का आयोजन किया जा रहा है और सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को ड्रोन स्प्रेयर की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला जिला बना धमतरी। अब समाचार विस्तार से। राज्य में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उप निर्वाचन के लिए मतदान कल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नगरीय निकायों में अध्यक्ष और पार्षद पदों के लिए हुए मतदान में 84.58% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों के जनपद सदस्य, सरपंच और पंच पदों के लिए 78.61% मतदान दर्ज किया गया। आयोग ने बताया कि मतदान के दौरान किसी भी क्षेत्र में अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। नगरीय निकायों के मतों की गणना 4 जून को की जाएगी। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए हुए मतदान के बाद मतगणना मतदान स्थल पर ही कराई गई, जिसके परिणामों की घोषणा 4 जून को की जाएगी। राज्य में यात्री बसों के किराए में वृद्धि को लेकर परिवहन विभाग ने बस संचालकों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं और मांगों पर चर्चा की। बस संचालकों ने बताया कि वर्ष 2021 के बाद से किराए में बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है। उन्होंने डीजल के दामों के अनुसार किराया तय करने के लिए स्थायी व्यवस्था बनाने की मांग की। परिवहन विभाग ने कहा है कि अन्य राज्यों की किराया दरों का अध्ययन कर जल्द निर्णय लिया जाएगा। बैठक में अखिल भारतीय पर्यटक परमिट के दुरुपयोग पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। प्रदेश में रेहड़ी पटरी कारोबारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 1 जून से 30 जून तक स्वनिधि महोत्सव और लोक कल्याण मेले का आयोजन किया जा रहा है। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग द्वारा आयोजित इस अभियान के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण सुविधा, यूपीआई और क्यूआर कोड जैसी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही उन्हें जनधन, आयुष्मान भारत, सामाजिक सुरक्षा बीमा और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि अभियान का उद्देश्य छोटे व्यापारियों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें सम्मानजनक जीवन के अवसर उपलब्ध कराना है। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र के गारपा और कोंडा गांव जिले के बड़े कनेरा पहुंचे। गारपा में आयोजित जन चौपाल में मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा तथा सुरक्षा से जुड़े कई विकास कार्यों की घोषणा की। वहीं बड़े कनेरा में आयोजित समाधान शिविर में उन्होंने कोंडा गांव जिले के लिए 152 करोड़ रुपये से अधिक लागत के 43 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। सुकमा में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासकीय योजनाओं का लाभ हर पात्र परिवार तक समयबद्ध रूप से पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। धमतरी जिला देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों यानी पैक्स के माध्यम से किसानों को ड्रोन स्प्रेयर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कलेक्टर अविनाश मिश्रा के मार्गदर्शन में जिले की 10 पैक्स समितियों में यह सुविधा शुरू की गई है। लोहरसी में आयोजित कार्यक्रम में इस पहल का शुभारंभ किया गया और प्रशिक्षित ड्रोन पायलटों ने ड्रोन स्प्रेयर का प्रदर्शन किया। अधिकारियों के अनुसार ड्रोन तकनीक से उर्वरक और कीटनाशकों का छिड़काव कम समय और कम लागत में किया जा सकेगा। इससे किसानों को आधुनिक एवं वैज्ञानिक खेती अपनाने में मदद मिलेगी और

कृषि क्षेत्र में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। रायपुर के पास सारंग में स्थित मिवान स्टील प्लांट में ब्रायलर फटने से भीषण आग लग गई। यह हादसा आज सुबह करीब 5 बजे हुआ। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए एक वीडियो भी जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नगरीय निकाय चुनाव के तहत 4 जून को होगी मतगणना। इसी दिन पंचायत चुनाव के परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। प्रदेश में रेहड़ी पटरी कारोबारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 1 जून से 30 जून तक स्वनिधि महोत्सव और लोक कल्याण मेले का आयोजन किया जा रहा है। और सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को ड्रोन स्प्रेयर की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला जिला बना धमतरी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: मीडिया वेव एफ एम्बेंट पर आकाशवाणी का यह रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10 बजे हैं, अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का यह रायपुर केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छत्तीसगढ़ संवाद।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं छत्तीसगढ़ संवाद।

भारत में सूचना क्रांति अपने सर्वोच्च शिखर पर है। जन संचार के माध्यम हो या सोशल नेटवर्क की दुनिया, जनमानस को अत्यंत प्रभावित किया है आधुनिक सूचना तंत्र ने। विज्ञान के नित नए आविष्कारों ने न सिर्फ समाज को विकसित किया है बल्कि सामाजिक विघटन को दूर करने में भी मदद की है। पहले कितने ही ऐसे क्षेत्र थे जहां संचार व्यवस्था की बहाली दुष्कर मानी जाती थी, खास तौर पर प्राकृतिक आपदाओं और आतंकी घटनाओं के वक्त त्वरित सहायता और बचाव कार्य की गति बहुत धीमी होती थी। लेकिन अब ये सारी समस्याएं दूर हो गई हैं। छत्तीसगढ़ में अत्याधुनिक डायल 112 के आ जाने से, यानी एक के नंबर सबोबर, और वो है नेक्स्ट जेन 112। इस आपात सेवा का विस्तार कर सुरक्षा व्यवस्था को अब और भी दमदार बना दिया गया है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने

0: आयल 112 के प्रतिक्रिया समय और समस्या समाधान को विशेष प्राथमिकता देने की बात कही है।
1: तो पहले खाली 16 जिला में था ये सेवा डायल 112, लेकिन अभी पूरे 33 जिला में ये सेवा हम लोग उपलब्ध करा दी है। पूरे 33 के 33 जिला में जितना ज्यादा सुविधा उपलब्ध करा सकती है वो हम सब लोग

0: सरकार की मंशा अब सभी 33 जिलों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित डायल 112 आपात सेवा लागू करने की है। इसके लिए 400 नए आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन और 60 राजमार्ग गश्ती वाहन तैनात किए गए हैं। ये सभी वाहन अति आधुनिक संचार उपकरणों से लैस है। डायल 112 के शुभारंभ पर छत्तीसगढ़ के माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा,
1: माननीय गृहमंत्री जी की उपस्थिति, मुख्यमंत्री जी, विष्णुदेव साय जी उपस्थित रहे और गृहमंत्री जी पुरिंदर जी, हमारे क्षेत्र के विधायक और अध्यक्ष जी, एक महत्वपूर्ण योजना जिसमें 112 और 112 नंबर पूरे छत्तीसगढ़ में 400 से अधिक स्थानों पे एक दिन में आज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, मोबाइल फोरेंसिक वैन, जो अपराध होते हैं और अपराध के साक्ष्य तत्काल नष्ट हो जाते हैं, और ये वैन सभी जिलों में 32 दिया जा रहा है। ये वहां पे फोरेंसिक जो एविडेंस होते हैं, जैसे हाथ के निशान है, कपड़े के निशान है, उनके ब्लड के सैंपल है, जो एक घंटे के बाद भीड़ आने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो ये एक एविडेंस इसी का कोर्ट में चलता है।

0: छत्तीसगढ़ में पहले से कार्यरत डायल 112 दरअसल भारत का एकल आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर है। किसी भी तरह के संकट की स्थिति में चाहे पुलिस की जरूरत हो, एम्बुलेंस की या फायर ब्रिगेड की, ये सेवा सातों दिन 2400 घंटे मुफ्त उपलब्ध रहती है। अब उच्चतम तकनीक के विकास के कारण इसके कार्य क्षेत्र का दायरा भी बढ़ गया है और राहत की समय सीमा भी घट गई है। गंभीर अपराध, चोरी, दुर्घटना, महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराध की स्थिति में डायल 112 एक विश्वसनीय कॉल नंबर है।
1: मैं राजेश भागड़े, उप पुलिस अधीक्षक बालोद से बोल रहा हूँ। डायल 112 यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी ने जगदलपुर मार्केट का उद्घाटन किया था। पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में कई जिलों में इसका उद्घाटन 112 का जो संचालन है वो नहीं हो रहा था, किंतु 19 तारीख को उन्होंने विधिवत उद्घाटन करके उसका शुभारंभ किया, जिसके तहत बालोद जिले में भी 112 का वो शुभारंभ हुआ है। और मैं बताना चाहूंगा कि भारत में डायल 112 एक एकीकृत आपातकालीन सेवा नंबर है, जिसे किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में तुरंत सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। यह सेवा पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस जैसी सेवाओं को एक ही नंबर पर उपलब्ध कराती है। डायल 112 की मुख्य विशेषताएं लगभग किसी भी आप मोबाइल या लैंडलाइन या किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप कर सकते हैं। SMS के द्वारा भी आप उसको सूचित कर सकते हैं। यह सेवा 24/7 उपलब्ध रहती है, जो मुख्यतः महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और आम नागरिकों की सुरक्षा हेतु उपयोगी होती है। आपात स्थिति में लोकेशन ट्रैकिंग और त्वरित सहायता की सुविधा भी डायल 112 के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। कई राज्यों में मोबाइल ऐप और अन्य फीचर्स के माध्यम में भी यह सुविधा उपलब्ध है, जो आने वाले दिनों में जिले में भी लागू किया जाएगा। और किन परिस्थितियों में इसका उपयोग कर सकते हैं ये मैं बताना चाहूंगा। अपराध या कोई चोरी की सूचना हो,

कोई सड़क दुर्घटना हो, आग लगना हो, मेडिकल इमरजेंसी हो, महिला सुरक्षा संबंधी कोई सहायता चाहिए या किसी भी प्रकार की तत्काल सहायता चाहिए तो डायल 112 तत्काल वो सेवा में हाजिर रहेगा। शहरों में ये जो जो इनका जो करने का टाइमिंग 10 मिनट का रहता है, किंतु देहात में आधा घंटे का टाइम उसको फरल किया गया है कि जब भी आप 112 को फोन करेंगे तत्काल आधे घंटे के अंदर सेवा आपको हमेशा उपलब्ध रहेगी। और डायल 112 का उद्देश्य अलग अलग आपातकालीन नंबरों को एक साथ, जैसे 100 नंबर है, 101 नंबर है, 108 आदि को एकीकृत कर नागरिकों को तेज और सरल सहायता उपलब्ध कराना ही मुख्य उद्देश्य है डायल 112 का।

0: छत्तीसगढ़ में डायल 112 केंद्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया नंबर है। भारत सरकार के आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली के ढांचे के तहत डायल 112 के अंतर्गत कई सेवाओं को एकीकृत किया गया है, जिनमें पुलिस आपातकालीन सेवा, एम्बुलेंस, अग्निशमन, महिला हेल्पलाइन, राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन, रेल हेल्पलाइन और बाल हेल्पलाइन शामिल है। इस पहल से अपराध कम करने में मदद मिल रही है। डायल 112 अपनी मुख्य तकनीकी संरचना और प्राथमिक प्रतिक्रिया वाहनों के माध्यम से संवेदनशील समूहों को प्रभावी ढंग से सेवा प्रदान कर रहा है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री प्रदीप गुप्ता ने बताया,
1: जहां पर ऐसी जनसंख्या है जहां पर हमारा डायल 112 की इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल जा सकती है और वहां पर कॉलर को सुविधा ज्यादा है अपनी खुद की भाषा में बात करने के लिए, तो ऐसे में वो अपनी खुद की भाषा में भी शिकायत और सहायता मांग सकता है और हमारा प्रयास रहेगा कि उस भाषा को समझने वाला व्यक्ति उससे वार्तालाप करे और उसकी पूरी बात समझ के तदनुसार हम वहाँ पर उसको सहायता पहुँचाएं। डायल 112 की जो सुविधा है पूरे देश में और वैसे ही छत्तीसगढ़ में है, वो सुविधा जो है वो उसमें लोकेशन बेस्ड सर्विस आती है, तो लोकेशन बेस्ड सर्विस में जो कॉलर है वो उस कॉलर की लोकेशन अपने आप जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो 112 को उपलब्ध करा देते हैं, तो इनके लोकेशन के आने से हम बड़े आसानी से तय कर सकते हैं कि जो हमारे इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल है उसको कहाँ पहुँचना है और लोकेशन को फर्दर रिफाइन करने के लिए उनसे हमारे जो इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल में पुलिस पर्सनल है वो फर्दर उनसे बात कर लेते हैं। 112 केवल पुलिस की अकेली सेवा नहीं है, ये एक इंटीग्रेटेड सेवा है, तो किसी को भी अगर पुलिस, मेडिकल या फायर के कोई आपदा में एक रिस्पांस चाहिए तो वो 112 डायल करके हमारे कमांड सेंटर तक पहुंच सकता है। कमांड सेंटर पे उसकी पूरी बात नोट की जाएगी और पुलिस का अगर सेवा चाहिए तो हम उसको खुद डिस्पैच कर देंगे, अगर उसको कोई मेडिकल सुविधा चाहिए तो हम उसके इवेंट को तत्काल जो 108 का कमांड सेंटर है उनको अग्रेषित करते हैं जिससे वो लोग एम्बुलेंस भेजते हैं, और अगर कोई फायर का इंसिडेंट है तो हम उसको फायर सर्विसेज को तुरंत नोटिफाई कराते हैं तो वो लोग आते हैं। इसके अलावा और भी वेमेन हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन की भी जरूरत अगर परिलक्षित होती है तो उन हेल्पलाइंस में बैठे हुए जो कमांड सेंटर के पर्सनल हैं उनको भी ये

सूचना दी जाती है तुरंत, चाहे वो रेल मदद की हो, वेमेन हेल्पलाइन हो, चाइल्ड हेल्पलाइन हो, आपदा प्रबंधन हो। तो ये सब का इंटीग्रेशन ये सुनिश्चित करता है कि अगर उसको मल्टीपल कॉल्स नहीं करने पड़ेंगे हर चीज के लिए। आने वाले दिनों में डायल 112 की सेवा यूनिवर्सल हो जाए, ये उद्देश्य रहेगा। और जैसे जैसे हमारे वनाच्छादित क्षेत्र जो हैं उनमें विकास पहुंचेगा, उनमें से जो इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम है वो खत्म होगी, हम चाहेंगे कि डायल 112 वहां पर और ज्यादा विस्तार में जाए। साथ ही साथ इसमें जो हमारा रेस्पॉन्स टाइम है वो एक बहुत महत्वपूर्ण घटक होता है, तो उस रेस्पॉन्स टाइम को कम करने के लिए हम जितने अधिकाधिक पर्सनल को इसमें लगाना चाहेंगे और अधिकाधिक इसमें इमरजेंसी रेस्पॉन्स व्हीकल्स इसमें डिप्लॉय करना चाहेंगे। तो ये सब संसाधन से जुड़ी बातें हैं और भविष्य में हम लोग इन सब में बढ़त करना चाहेंगे, क्योंकि हमारा जो आईटी सॉल्यूशन है वो लगभग परिपूर्ण है। तो अब जो उसमें इम्प्रूवमेंट मिलना है वो इन संसाधनों के अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट से मिलेगा। डायल 112 की जो सेवा है उसका उपयोग करें, कहीं पर भी आपको यदि स्वयं के लिए इसकी आवश्यकता पड़ रही है या आप देख रहे हैं कि कोई दूसरा नागरिक संकटापन्न है तो आप 112 को जरूर कॉल करें और उसको संपूर्ण जानकारी दें। यदि आप लोकेशन को जितना ज्यादा बारीकी से प्रिसाइज और एक्यूरेट बताएंगे, हमारी इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल को वहां जल्द से जल्द पहुंचने में उतनी सुविधा मिलेगी। तो ये सेवा पूरी तरह से जनता के लिए है, तो जनता को इसको एक तरह से अपना एसेट मान के इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा।

0: इक्के नंबर सबोबर। तत्काल सहायता के लिए ये नारा अब छत्तीसगढ़ की पहचान बन चुका है। गांव हो या शहर, इक्के नंबर यानी डायल 112 अब उपलब्ध है सबोबर यानी सबके लिए, सभी जगह और वो भी 24 घंटे। डायल 112 की कार्यप्रणाली जन अपेक्षाओं के अनुरूप है, तभी तो इसके प्रति आम जनता का विश्वास बढ़ा है। लोग खुश हैं अपनी समस्या का समाधान तत्काल पाकर। ऐसे कई मामले रोजमर्रा पेश आते हैं जिनमें जरूरत होती है तुरंत सहायता की, और वहां अगर आसानी से मदद मिल जाए तो फिर ऐसे में जनता जनार्दन के चेहरे आखिर क्यों न खिले। आप हैं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायगढ़ श्री अनिल सोनी।
1: पूरे छत्तीसगढ़ में फेज टू नेक्स्ट जेन के माध्यम से पूरे प्रदेश में डायल 112 जो कि एक एकीकृत इमरजेंसी रिस्पांस नंबर है उसका संचालन किया जा रहा है। इसी के तहत रायगढ़ जिले में 16 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल प्रदाय किए गए हैं जो कि 24/7 सेवा सुनिश्चित कर संचालित हो रही है, और 24/7 सुनिश्चित करने के लिए एक कमांड और कंट्रोल सेंटर स्थापित किए गए हैं जिसके अंतर्गत प्राइमरी और सेकेंडरी सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है। इसमें पुलिस, फायर, मेडिकल इमरजेंसी, इसके साथ साथ महिला चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन, आपदा सहायता और हाईवे इमरजेंसी जैसी सेवाओं को एक ही नंबर 112 से जोड़ा गया है। इसमें कोई भी व्यक्ति जो इमरजेंसी में हो, पुलिस से संबंधित या फायर से संबंधित या मेडिकल इमरजेंसी हो, चाहे महिलाओं और बच्चों या अन्य प्रकार से आपदा हो, तो उसमें केवल एक नंबर ही डायल करके या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर SMS के माध्यम से, वेब रिक्वेस्ट से, चैट बॉट से, किसी भी माध्यम से सूचना देकर मदद प्राप्त कर सकता है।

0: आपातकालीन परिस्थितियों में बेहद जरूरी होती है तुरंत राहत। इसके लिए डायल 112 का प्रतिक्रिया समय जितना कम होगा उतनी ही जल्दी होगा समस्या समाधान। बस्तर और सरगुजा जैसे दूरस्थ अंचलों में डायल 112 की पहुंच को विस्तार देने के लिए यहां चार पहिया वाहनों के अलावा दो पहिया वाहनों की सेवाएं भी ली जा रही हैं। इस तरह ये अभियान अब राज्य के कोने कोने में प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा श्री दीपक कुमार झा।
1: जो हमारी छत्तीसगढ़ पुलिस है इसमें डायल 112 की शुरुआत वैसे तो काफी समय पहले से है, 2018 से है, लेकिन उस समय कुछ जिलों में ही इसकी शुरुआत की गई थी। ये सेवा अभी पूरे प्रदेश के सभी 33 जिलों में इसको लागू कर दिया गया है। जैसे उदाहरण से हमें हमारे रेंज में केवल सरगुजा जिले में गाड़ियां थी इसमें। अभी सरगुजा जिले में पुरानी गाड़ियां थी, चुकी इतनी पुरानी हो गई तो वो तो कंडेम्ड हो गई, उसको बदल के नई गाड़ियां तो आई गई हैं और अन्य जिलों में भी आ गई हैं। जैसे 12 गाड़ियां सरगुजा जिले में है, कोरिया जिले की बात करें तो वहां भी 5 गाड़ियां हैं, हर एक जिले में अभी वाहन है। ये सेवा एक तरह से हम कह सकते हैं जो ये आम नागरिक है उनको तत्काल त्वरित रूप से सहायता मिल सके उसी के लिए एक अच्छी व्यवस्था है ये। और जैसे कोई आपातकालीन हो गई कहीं पे, मान लीजिए कोई रोड पे कोई देखता है किसी को एक्सीडेंट हो गया, किसी को चिकित्सा की आवश्यकता है, कहीं पर कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसमें पुलिस को तत्काल आना चाहिए, ऐसी स्थिति में लोगों को पता नहीं रहता है किस थाने में किसको फोन करें कहाँ करें, ये एक नंबर है मात्र पूरे प्रदेश में, मात्र एक नंबर 112। इसमें आप जैसे ही कोई आदमी फोन करेगा और बता के जानकारी देगा, लोकेशन देगा, तो पुलिस वहां पे सभी गाड़ियां जीके से लैस है, जो नियरेस्ट वाहन अवेलेबल होगी वो गाड़ी को सूचना चली जाएगी कंट्रोल रूम से और वो वाहन वहां पे तत्काल पहुंच जाएगी। कई बार अगर पुलिस तत्काल नहीं पहुंचे तो बड़ी कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लोगों का जिनकी जान का नुकसान भी हो जाता है अगर समय पर राहत नहीं पहुंचे। इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेवा है। और इसमें जो है इसमें हमारे पास जो है जैसे 112 में इस बार 4-व्हीलर के अलावा कुछ 2-व्हीलर वाहनों भी दी गई है। 18 से जैसे चल रहा है तब से लगातार इसके माध्यम से जो रिस्पॉन्स टाइम है उसको भी घटाने का काम किया गया। पहले जैसे कि ये शहरी क्षेत्र में 10 मिनट था और ग्रामीण एरिया में 30 मिनट का समय रहता था, तो उसमें भी लगातार हम काम कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी लोगों को, माननीय सीएम महोदय का जो बैठक हुई थी उसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि हमें इसको रिस्पॉन्स टाइम को कम से कम करना चाहिए ताकि पुलिस द्वारा के वाहन त्वरित रूप से जल्दी पहुंच सके और लोगों को सहायता पहुंचाई जा सके। और इससे जो है पुलिस के प्रति लोगों को जो विश्वास है निश्चित रूप से बढ़ा है। क्या होता है देखिए, जैसे थाने में कोई गाड़ी रहती है कई जगह गई हुई रहती है और हमको उसको आवश्यकता है, थाने गाड़ी उपलब्ध नहीं है, तो फिर अब पुलिस पहुंच नहीं पाती है। पहले तो 2-2 घंटे 4-4 घंटे हो जाते थे स्पॉट पे जाने में। अभी क्या है, 112 के वाहन जो नियरेस्ट है वो मिलेगी, अगर कोई एक वाहन कहीं और गई है तो उसके दूर वाली जो वाहन रहेगी वो आ जाएगी। इस प्रकार से कोई ना कोई वाहन जल्दी से जल्दी वहां जरूर मौके पहुंच जाएगी। तो ये काफी अच्छी व्यवस्था है और इससे निश्चित रूप से लोगों की मदद, आम लोगों की मदद होगी। लोग उसमें काम करते हैं उनके लिए भी अनुशासन का पालन करना आवश्यक है, किस प्रकार से सर्विस के लिए है उसके लिए किस प्रकार से आवश्यक है वो उस बात को भी समझें। इसमें मुख्य रूप से महिला की सुरक्षा के जुड़ा हुआ मामला भी है, वरिष्ठ लोगों की जो वरिष्ठ नागरिक है जो विशेषकर जैसे अकेले रहते हैं उनको भी आपात स्थिति में सहायता मिल सकती है। महिलाओं के संबंध जैसे मैंने बताया उनके उनको भी कोई इस तरह घटनाएं आती है, कोई छेड़छाड़ संबंधी कोई शिकायत करनी है, कोई कुछ और है उसके बारे में कर सकती है। आपातकालीन जैसे चिकित्सा की वजह ने बताने बताया दुर्घटना हो जाती है उसके वजह से जो बच्चे हो जाते हैं लापता हो जाते हैं उनके संबंध में भी, तो हर प्रकार से आपदा प्रबंधन में भी इसकी जो है महत्वपूर्ण वो है। और ये नंबर जो है 112 अभी 108 102 इस प्रकार की जो नंबर होते थे उन सबसे भी जुड़ा हुआ है। आपको अलग अलग नंबरों पर फोन करने की जरूरत नहीं है, 112 फोन करें, इसलिए इसका टैगलाइन ही यही है एक के नंबर सुबह सभी काम के लिए यही एक नंबर है। निश्चित रूप से लोगों को आम जनता को इससे काफी मदद मिलेगी 112 की इस

0: डायल 112 छत्तीसगढ़ सरकार का आम नागरिकों के लिए एक त्वरित पारदर्शी और प्रभावी कदम है। इस आधुनिक तकनीक से पुलिस व्यवस्था और भी मजबूत हो रही है। एक नंबर अनेक माध्यम और त्वरित सहायता की सोच पर आधारित डायल 112 सेवा प्रदेशवासियों को किसी भी संकट की स्थिति में तुरंत रेस्क्यू और मदद उपलब्ध कराने का सबसे सशक्त माध्यम बन रही है। इन नए हाईटेक वाहनों के सड़क पर उतर जाने से न केवल आपराधिक मामलों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी, बल्कि आम नागरिकों को भी तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद आपातकालीन चिकित्सा और सुरक्षा सहायता मिल सकेगी।
1: दिलीप ध्रुव बोल रहा हूँ, धमतरी जिले से। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुजरा में कार्यरत हूँ। 112 की सेवा है, बिल्कुल निःशुल्क है पूरे छत्तीसगढ़ में। इसके 112 डायल करने पे आप आपदा प्रबंधन हो गया, अपराध नियंत्रण हो गया, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा, महिला और फायर ब्रिगेड प्रकार की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। 112 कॉल करने के बाद आप लाइव लोकेशन आपका ट्रैक किया जाता है। उसके करने के बाद वहाँ के इमरजेंसी व्हीकल को और नजदीकी व्हीकल को आपके पास भेजा जाता है। 112 सीधा आप कहीं भी डायल कर सकते हैं। दुर्घटना, चिकित्सा, अग्निशामन सब प्रकार की सुविधा के लिए आप 112 कॉल कर सकते हैं। तो डायल करने से आप चिकित्सा सुविधा मिल सकता है, पुलिस सुविधा मिल सकता है और महिलाओं की सुरक्षा

इन नए हाईटेक वाहनों के सड़क पर उतर जाने से न केवल आपराधिक मामलों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी, बल्कि आम नागरिकों को भी तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद आपातकालीन चिकित्सा और सुरक्षा सहायता मिल सकेगी। एके नंबर सबोबर यानी डायल 112 को लेकर आम नागरिकों में सरकार के प्रति विश्वास की जो लहर जागी है, वो उनके उत्साह से साफ जाहिर होती है। जनता अब निर्भीक है, उत्साहित है और सम्मान के साथ बढ़ रही है उजाले की ओर।

0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे छत्तीसगढ़ संवाद।
1: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर। इस

कार्यक्रम के प्रायोजक थे छत्तीसगढ़ संवाद। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10:30 हुए हैं। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म बर्निंग ट्रेन से। आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की। गीत लिखा है साहिर लुधियानी ने और संगीत राहुल देव परमन का है।

AIR at 90. लीजिए सुनिए फिल्म धन दौलत का गीत। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ है। मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को संगीत से संवारा है राहुल देव बर्मन ने।

0: अभी आपने सुना फिल्म अंधा कानून का गीत। इसे लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत से संवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, आवाज किशोर कुमार की थी।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
2: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
3: फोनी फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
4: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए।
2: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
5: गीत मेरे होठों को गया कोई।
2: कभी कोई किस्सा याद आता है।
6: यादे।
2: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
7: मुझे कुछ कहना है,
8: मुझे भी कुछ कहना है।
2: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
9: सुनिए।

चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर सरायपाली केंद्र यात्रा कार्यक्रम कुछ ही पलों में। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर सरायपाली केंद्र है। 11 बजने को है आकाशवाणी के दिल्ली के

0: केंद्र से समाचार अनुप्रसारित करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार में पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
3: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण और समय सीमा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। दस्ते ने बताया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका ₹100 और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न ₹25 का भुगतान करना होगा। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज इटली के राष्ट्रीय दिवस पर वहां के लोगों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी और भी मजबूत होती रहेगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि यदि इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 322 अंक गिरकर 73,945 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक लुढ़ककर 23,229 पर कारोबार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कन्नड़ भाषा में समूहगान शिक्षा। रचनाकार हैं बी आर गीथा।

0: अच्छा बच्चों, सब लोग आ गए हैं ना?
1: हाँ, आ गए हैं।
0: आप किस स्कूल में पढ़ते हैं?
1: मारुति संगीत पाठशाला।
0: मारुति संगीत पाठशाला के बच्चे हैं आप लोग?
1: हाँ।
0: तो आज

0: एक नया गाना सिखाएंगे।
1: हाँ, सिखाएंगे।
0: किसने लिखा है मालूम है? दोड्ड रंगे गौड़ा। किसने लिखा है ये गाना?
2: दोड्ड रंगे गौड़ा।
0: तो आप गाना सीखने के लिए तैयार हैं?
2: हाँ, तैयार है।
0: इस गाने का शीर्षक है कडल हक्की गलू। क्या है?
2: कडल हक्की गलू।
0: तो पहले क्या करना, इस गाने को लिख लेना है ना?
2: हाँ।
0: तो बाद में हम गा सकते हैं, नहीं तो नहीं गा सकते है ना?
2: हाँ।
0: तो पहले क्या करना, पेन पेंसिल पेपर सब उठा के अपने आगे रख लेना है।
2: हाँ।
0: रख लिया है?
2: हाँ।
0: अच्छा, तो मैं डिक्टेट करती हूँ, आप
2: हाँ।
0: सब लिख लीजिए।
2: हारु
0: तिहवु हारु तिहवु
2: हारु तिहवु हारु तिहवु
0: कडल करेय खग कुला
2: कडल करेय खग कुला
0: यनी तो मुगिला
2: यनी तो मुगिला
0: उद्द अगला
2: उद्द अगला
0: जी की

0: पहले क्या करना, इस गाने को लिख लेना है ना?
1: हाँ.
0: तो बाद में हम गा सकते हैं, नहीं तो नहीं गा सकते, है ना?
1: हाँ, हाँ.
0: तो पहले क्या करना, पेन पेंसिल पेपर सब उठा के अपने आगे रख लेना है.
1: हाँ.
0: रख लिया है?
2: हाँ.
0: अच्छा, तो मैं डिक्टेट करती हूँ, आप
1: हाँ.
0: सब लिख लीजिए.
1: हाँ.
0: हाडू तिहवु हारु तिहवु कडल करेय खग कुला
2: कडल करेय खग कुला
0: यनी तो मुगिला
2: यनी तो मुगिला
0: उद्द अगला
2: उद्द अगला जी की दानी तू
0: बांदड़ा
2: बांदड़ा.
0: अच्छा, तो एक पहला स्टैंजा है. हाँ?
1: हाँ.
0: आगे का स्टैंजा है, बान लोक नगुव नाक
2: बान लोक नगुव नाक
0: हारो हक्की पालिगे
2: हारो हक्की पालिगे
0: रेक्के बीसी धैर्य सूसी
2: रेक्के बीसी धैर्य सूसी
0: चुक्की मुट्टो हम्मीगे
2: चुक्की मुट्टो हम्मीगे.
0: लिख लिया?
1: हाँ.
0: सब लोग लिख लिया?
1: हाँ.
0: अच्छा, तो अगला स्टैंजा, दूर दूर हारी हारी
2: दूर दूर हारी हारी
0: व्योम कानुवा बगे
2: व्योम कानुवा बगे
0: हसीव मरेसी
2: हसीव मरेसी
0: वांछे मेरेसी
2: वांछे मेरेसी
0: दिगंत सेरो लघु बगे
2: दिगंत सेरो लघु बगे.
0: हाँ, तो अब बच्चा आखिर स्टैंजा.
1: हाँ.
0: वो भी सुना दो.
1: हाँ.
0: लिख लेते हैं.
1: हाँ.
0: याव नाडो यंथ काडो
2: याव नाडो यंथ काडो
0: हारो आसे हक्कीगे
2: हारो आसे हक्कीगे
0: मुक्त गगन नूरु काल
2: मुक्त गगन नूरु काल
0: ईजो शक्ति रेक्केगे
2: ईजो शक्ति रेक्केगे.
0: तो सब लोग एक गाना तो लिख लिया.
1: हाँ.
0: अब इसे कैसे गाना, किस तरह गाना, ये तो मालूम हो रहा है ना?
1: हाँ.
0: अच्छा जी, जरा चुपके रहना, गीता जी आ रही है दीदी.
1: हाँ? हाँ.
0: उसी को हम रिक्वेस्ट कर देंगे. हाँ?
1: हाँ.
0: गीता जी आइए यहाँ, हमारे बच्चे सब ये गाना सीखना चाहते हैं. पहले इसके आरोह अवरोह क्या है ये बताएंगे?

0: कर्नाटक संगीत में ये चक्रवाक राग होता है और हिंदुस्तानी में इस राग को कहते हैं आहिर भैरव। इसका ताल है कर्नाटक संगीत में चतुरस्र जाति एक ताल तीसर नड़े। इस ताल को हिंदुस्तानी में कहते हैं दादरा। तो अब भैया विश्वनाथ नाकुट जी भी यहाँ आए हैं, वे तबला बजाने के लिए तैयार होके बैठे हैं। तबला बजा के दिखाते हैं ना।
1: धादिना धातिना धादिना धातिना धादिना धातिना धादिना धातिना।
0: अब आप लोगों को मालूम हो गया ना यह गाना कौन सी राग पर आधारित है। अब दीदी आपको सिखाती है ये गाना।
2: ताकी ता, ताकी ता।

हाँ, दूसरा अंतरा का धुन कैसा है ये मालूम हो गया, मगर जो स्वर आते हैं वो नहीं मालूम हुआ है ना। तो गीता दीदी स्वर को भी सिखाती हैं।

अब ये आखिर का अंतर जो है ना वो पहली अंतर था ना, बान लोक नगुवना का, उसी के जैसे ही है। अच्छा तो गाते हैं।

तो बच्चों, अब इस पूरे गाने की धुन आपको याद होगी, है ना? अब घर पे जाके खूब प्रैक्टिस करना, तो आप सब लोगों को ये गाना बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगी, करेंगे ना? अच्छा बच्चों, तो नमस्कार।

समोसर में भी सुन रहे थे आप सुगम संगीत मीडियम एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर सरायपाली केंद्र है। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं फिल्म आपकी कसम का एक गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर किशोर कुमार की, बोलानंद बख्शी की और संगीत राहुल देव परमन का।

0: अभी आपने महेंद्र कपूर और आशा भोसले के युगल सर्वे सुना। साहिर लुधियानवी की रचना, संगीत रवि का था और फिल्म थी गुमराह।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रम।

0: के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: बिंदिया शहरी महिलाओं का अनोखा कार्यक्रम सुनना ना भूलिए, प्रत्येक रविवार, सोमवार और गुरुवार को दोपहर 1:30 से दोपहर 2 बजे तक महिला समस्याओं का समाधान है बिंदिया, मीठी मीठी बातों का गुणगान है बिंदिया, डॉक्टर की सलाह, परिचर्चा, वार्ता और गीत संगीत की बहार है बिंदिया। हेलो बिंदिया में बहनों के विचारों और गीतों का संसार है बिंदिया।
2: आइए अब सुनते हैं राजा मेहंदेली खां की रचना। इसे संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आवाज लता मंगेशकर की है और फिल्म का नाम है अनीता।

हरे रामा हरे कृष्णा। आइए इस फिल्म का गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। आनंद बख्शी के बोलों को संगीत से संवारा है राहुल देव बर्मन ने।

आइए अब सुनते हैं हसरत जयपुरी की रचना। इसे संगीत से संवारा है शंकर जय किशन ने। आवाज़ लता मंगेशकर की है और फिल्म का नाम है गुमनाम।

0: सदाबहार नगमे अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र है। 11:55 होने को है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रादेशिक समाचार सुनिए।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। नगरीय निकाय चुनाव के तहत 4 जून को होगी मतगणना। इसी दिन पंचायत चुनाव के

0: परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। प्रदेश में रेहड़ी पटरी कारोबारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 1 जून से 30 जून तक स्वनिधि महोत्सव और लोक कल्याण मेले का आयोजन किया जा रहा है और सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को ड्रोन स्प्रेयर की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला जिला बना धमतरी। अब समाचार विस्तार से। राज्य में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उप निर्वाचन के लिए मतदान कल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नगरीय निकायों में अध्यक्ष और पार्षद पदों के लिए हुए मतदान में 84.58% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद सदस्य, सरपंच और पंच पदों के लिए 78.61% मतदान दर्ज किया गया। आयोग ने बताया कि मतदान के दौरान किसी भी क्षेत्र से अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। नगरीय निकायों के मतों की गणना 4 जून को की जाएगी। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए हुए मतदान के बाद मतगणना स्थल पर ही मतगणना कराई गई, जिसके परिणामों की घोषणा 4 जून को की जाएगी। प्रदेश में रेहड़ी पटरी कारोबारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 1 जून से 30 जून तक स्वनिधि महोत्सव और लोक कल्याण मेले का आयोजन किया जा रहा है। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग द्वारा आयोजित इस अभियान के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण सुविधा, यूपीआई और क्यूआर कोड जैसी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। राज्य में यात्री बसों के किराए में वृद्धि को लेकर परिवहन विभाग ने बस संचालकों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं और मांगों पर चर्चा की। बस संचालकों ने बताया कि वर्ष 2021 के बाद से किराए में बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है। उन्होंने डीजल के दामों के अनुसार किराया तय करने के लिए स्थायी व्यवस्था बनाने की मांग की। परिवहन विभाग ने कहा है कि अन्य राज्यों की किराया दरों का अध्ययन कर जल्द निर्णय लिया जाएगा। धमतरी जिला देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों यानी पैक्स के माध्यम से किसानों को ड्रोन स्प्रेयर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कलेक्टर अविनाश मिश्रा के मार्गदर्शन में जिले के 10 पैक्स समितियों में यह सुविधा शुरू की गई है। लोहरसी में आयोजित कार्यक्रम में इस पहल का शुभारंभ किया गया और प्रशिक्षित ड्रोन पायलटों ने ड्रोन स्प्रेयर का प्रदर्शन किया। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए रायपुर कोरबा रायपुर हसदेव एक्सप्रेस को 1 अगस्त से प्रतिदिन चलाने का निर्णय लिया है। वहीं ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान बिलासपुर यलहंका बेंगलुरु के बीच 3 जून से 2 जुलाई तक 5-5 फेरों के लिए समर स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएगी। रायपुर के पास आरंग में स्थित मिवान स्टील प्लांट में बॉयलर फटने से भीषण आग लग गई। यह हादसा आज सुबह करीब 5 बजे हुआ। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग बुझाने के प्रयास जारी हैं। विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस के लिए जानकारी के लिए वीडियो भी जारी किया है। रायपुर जिले के दिव्यांग युवाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से रोजगार कार्यालय रायपुर द्वारा 5 जून को विशेष रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। यह रोजगार मेला शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक कॉलेज बैरन बाजार रायपुर में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होगा। मेले में 80 बाधित, बौने, कम सुनने तथा देखने में कठिनाई वाले दिव्यांगजन भाग ले सकेंगे। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है। वहीं एक द्रोणिका छत्तीसगढ़ से होते हुए ओडिशा तक विस्तारित है। इसके प्रभाव से आज उत्तरी और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के जिलों में मेघ गर्जन और तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है। हवा की गति 50-60 किलोमीटर होने के आसार हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नगरीय निकाय चुनाव के तहत 4 जून को होगी मतगणना। इसी दिन पंचायत चुनाव के परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। प्रदेश में रेहड़ी पटरी कारोबारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 1 जून से 30 जून तक स्वनिधि महोत्सव और लोक कल्याण मेले का आयोजन किया जा रहा है और सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को ड्रोन स्प्रेयर की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला जिला बना धमतरी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलो हर्ट्ज़।

और FM बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: सब दंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार। बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जहाँ पेड़ और पानी साथ हों वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी ऐसा ही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों वहाँ जीवन में भी खुशहाली आ जाती है।
3: बहुत बहुत सुंदर संदेश आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों में हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ सरगुजा से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिवा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा।
2: बोरखेड़ा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नैना जैन, दीपक, मयंक मूणत और चेतन नाहटा।
3: अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का। बड़ी सुंदर प्रतिक्रिया भेजी है, आइए सुनते हैं।
2: नमस्कार। एक सप्ताह में उमंग कार्यक्रम हमें इतनी अधिक जानकारी से समृद्ध कर देता है कि कार्यक्रम की समीक्षा में आपसे किस अंक की चर्चा करें और किस अंक को छोड़ें ये दुविधा हो जाती है, क्योंकि उमंग का प्रत्येक अंक अपनी खासियत लिए होता है।
3: आपने आगे लिखा है, हम हर एक अंक को नियमित रूप से सुनते हैं। 27 अप्रैल सोमवार को भारत की प्रथम महिला पायलट सरला ठकराल के प्रेरक व्यक्तित्व की नाट्य प्रस्तुति सुनी और जान सके कि उनके ससुर श्री के एस शर्मा जी का कितना बड़ा योगदान उनको पायलट बनाने की मुहिम में रहा। आपने आगे लिखा है,
2: 28 अप्रैल को उमंग कार्यक्रम में भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा के अंतर्गत गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था पर सरल शब्दों में पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई। 30 अप्रैल को नालंदा विश्वविद्यालय और 1 मई को तक्षशिला विश्वविद्यालय पर दुर्लभ संग्रहणीय जानकारी मिली। उमंग की पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद और आभार।
3: तो कृष्ण कुमार गुप्ता जी, आपको भी हमारा आभार इस प्रोत्साहन से भरे संदेश के लिए। हम आपकी उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाओं की सचमुच सराहना करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है गाँव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी और प्रमोद कुमार डूडी।
3: आप सभी श्रोताओं को संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब प्रस्तुत है हमारी रोचक जानकारी से भरी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। आप सबका स्वागत है इस श्रृंखला में। श्रोताओं, पिछले कई हफ्तों से हम कर रहे हैं भूगोल यात्रा।
2: हमने रोचक चर्चा की समुद्रों की, वर्षा वनों की और मैंग्रोव वनों की। तो अजीत जी, आज हम अपनी भूगोल की यात्रा में उमंग कार्यक्रम के माध्यम से कहाँ चल रहे हैं?
3: विमलेश जी, आज ही नहीं, इस पूरे सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
2: शीत मरुस्थल? ये कैसी बात हुई अजीत जी? हमने तो अक्सर सुना है कि मरुस्थल गर्म होते हैं और वहाँ रेती रेत होती है।
3: जी विमलेश जी, दरअसल होता यह है कि जब भी हम मरुस्थल सोचते हैं ना, तो अक्सर हमें रेत के टीले और गर्मी याद आती है।
2: बिल्कुल।
3: लेकिन तथ्य कुछ और है।
2: जी।
3: दरअसल मरुस्थल की पहचान गर्मी और रेत से नहीं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि कहा जाए तो कम वर्षा से होती है।
2: जी, तो आज हम किस शीत मरुस्थल की बात करेंगे
3: बताइए।
2: मैंने पढ़ा था कि पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका।
3: जी वो तो है।
2: श्रोताओं, आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। ये दुनिया के सबसे अद्भुत स्थानों में से भी एक है। इसके बारे में जानना ऐसा है मानो किसी दूसरी दुनिया के बारे में जानना।
3: जी विमलेश जी, श्रोताओं, यहाँ सालाना 50 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसका क्षेत्रफल 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 1.42 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ लगातार हिमपात होता रहता है।
2: जी श्रोताओं, इसे पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। यहाँ का सबसे कम तापमान लगभग -90 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। जरा सोचिए, ऐसी ठंड के यहाँ सांस लेना भी एक चुनौती है। ऐसी ठंड है इस जगह पर कि यहाँ के वाहनों के और

0: मशीनों के इंजनों को भी हमेशा चालू रखा जाता है, क्योंकि इंजन यदि बंद कर दिया गया तो ईंधन मात्र 3 सेकंड में ही जम जाएगा।
1: और श्रोताओं, साथ ही साथ इनकी बैटरीज भी काम करना बंद कर देंगी।
0: जी,
1: आपको बता दें कि यहाँ के लिए वाहन विशेष रूप से बनाए जाते हैं।
0: यहाँ की दो और बेहद रोचक बातें, पहली ये कि यहाँ के कुछ इलाकों में साल भर अक्सर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी गति लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, इतनी तेज कि इंसान भी खड़ा नहीं हो सकता।
1: तो ये तो हुई पहली रोचक बात, अब आइए करते हैं दूसरी रोचक बात क्या है।
0: दूसरी रोचक बात ये है कि यहाँ कई ऐसी घाटियां हैं जहाँ बर्फ बिल्कुल नहीं पड़ती, ये ड्राई वैलीज कहलाती हैं। वैज्ञानिक इसे प्रकृति का अनोखा करिश्मा मानते हैं कि जहाँ पर्वत पर चारों ओर बर्फ पड़ रही है, उन्हीं पर्वतों की घाटियों में भला बर्फ क्यों नहीं पड़ती।
1: विमलेश जी, हमारा उमंग प्रसारण शैक्षिक है
0: जी,
1: तो जरा बच्चों की भी बात कर लें। एक प्रश्न है मेरा कि क्या अंटार्कटिका के शीत मरुस्थल में बच्चे स्कूल जाते हैं?
0: अजीत जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर है यहाँ भी बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ कोई स्थायी जनसंख्या तो नहीं है, सिर्फ कुछ शोध केंद्र हैं जहाँ शोधकर्ता वैज्ञानिक और अनुसंधान केंद्र के कर्मचारियों और कुछ सैनिक अपने बच्चों के साथ रहते हैं। यहाँ के कुछ क्षेत्रों में विशेष स्कूल चलाए जाते हैं जिनमें बच्चे पढ़ते हैं।
1: विमलेश जी, आपने कहा कि यहाँ अनुसंधान केंद्र है
0: जी।
1: हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि वैज्ञानिक यहाँ किस प्रकार का अनुसंधान करते हैं।
0: जी जी, यहाँ अनुसंधान के मुख्य विषय हैं जलवायु, शीत मरुस्थल के जीव और अंतरिक्ष इत्यादि।
1: जी,
0: श्रोताओं ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि शीत मरुस्थलों में भारतीय वैज्ञानिकों के दल ने भी 9 जनवरी 1982 को कदम रखा। भारत के अंटार्कटिक अभियान को ऑपरेशन गंगोत्री भी कहते हैं। बाद में यहाँ भारत द्वारा दक्षिण गंगोत्री के नाम से शोध केंद्र की स्थापना हुई।
1: तो अब विमलेश जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे
0: जी,
1: हमारे श्रोताओं की ओर से है ये। मेरा प्रश्न है कि अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव कौन कौन से हैं?
0: अजीत जी, यहाँ पाए जाने वाले जीवों में मुख्य हैं पेंगुइन, जो शानदार तैराक भी होते हैं, ध्रुवीय भालू, सील, वेल और कई समुद्री पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं, जो यहाँ के कठोर वातावरण में भी जीवन को बनाए रखते हैं।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच तो ये है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, जीवन अपना रास्ता बना ही लेता है
0: जी।
1: यही तो जीवन की खूबसूरती है।
0: बिल्कुल।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी।
0: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
1: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए।
1: प्रश्न का उत्तर भेजने के लिए आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे ईमेल के पते पर भी हमें संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: आप CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप NCERT की ध्वनि पाठ्य पुस्तकों को सुनना चाहते हैं तो आप इन्हें दीक्षा और NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है लुई पाश्चर।
0: इस कार्यक्रम में महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उनकी उन खोजों के बारे में बताया गया है जिनके कारण खाद्य सुरक्षा और जीवाणुओं से होने वाले विभिन्न रोगों के प्रति चिकित्सा विज्ञान की अवधारणा में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए।
2: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
3: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पाश्चर आई वुड बी नथिंग।
2: 27 दिसंबर सन 1892, सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान की दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पास

अक्षय जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मॉन्सिनर द अवेडी उन्हें यह मेडल प्रदान करेंगे।

लोगों ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।

0: लोगों ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है। उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेम्बर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
1: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
3: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
1: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
4: देखो, मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते हैं।
5: हाँ, ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
4: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
5: हाँ, मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
4: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
1: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
6: चलो, अरे भेड़िया,
1: लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
3: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लोहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की

0: छड़ से दाग देता था।
1: चलो चलो चलो
2: ठहरो, लोहा गर्म हो रहा है।
3: ये लीजिए, बिल्कुल लाल हो गया।
4: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पाश्चर घबरा गए।
0: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
4: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया।
0: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
4: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
0: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
4: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
5: लुई पाश्चर
6: सर,
5: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
6: कहिए सर।
5: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहां बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
6: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
5: ठीक है।
0: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
4: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है। और अच्छी बात ये है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुँचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन हैं।
0: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
4: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
0: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी, जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
4: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में

0: बताया, जिससे पास्टर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
1: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
0: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
1: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
0: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
1: तो फिर उन्होंने क्या किया?
0: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
2: अरे आजा आजा आजा आज,
3: ए, ए, हाँ इंजेक्शन लगा दूँ?
4: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगे और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
1: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई।
5: सर सर ये टेलीग्राम।
4: अच्छा लाओ दिखाओ। हाँ अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
5: क्या हुआ सर?
4: देखो टीके वाली सभी भेड़ें बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
5: कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो सर।
4: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़ें मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं।
5: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
4: हाँ चार्ल्स।
1: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
0: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
6: सर सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ, पैरों और जांग पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
4: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
6: डॉक्टर साहब कुछ तो करिए, वरना मेरा बेटा।
4: देखिए आप,
6: ओह गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
4: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ
6: मेरा
4: अच्छा,
6: बेटा।
4: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा।
1: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
0: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
1: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
0: पाश्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर

0: वर्षों तक पाश्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
1: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाज़ियों ने पाश्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पाश्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पाश्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
0: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पाश्चर के दिमाग में थे वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पाश्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
1: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
2: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
1: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पाश्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पाश्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रेडम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, My grandfather was the gentlest with the goodness of his heart, most affectionate and sensitive individual. He was a humanist, always working towards the improvement of the human condition.
3: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लुई पाश्चर और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो मुझे यानी अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम आप मन के गीत।

कार्यक्रम के पहली गीत ला स्वर दे हवें जवाहरलाल बघेल और संगवारी मन। ईमेल भेजे हवें हमर ए संगवारी मन चर डोंगरी पिपरियाले दुर्गाराम साहू अजय किशन जय कुमारी इंद्राणी माया साहू चिरमिरी कुरासियाले इंद्रभान सिंह अनुभव ऋषभ और राम सहोदर मेचका सुंढूले भूपेंद्र नाग पूर्णिमा लिखिल और तरुणदीप बोगाटोलाले मालिक राम सिन्हा तारामती इंदु चांदनी मुनिंद्र कुमार और सविता पिपरियाले कमलकांत गुप्ता दीपा रिमझिम गुप्ता समडील नवापाराले मुकेश गुप्ता श्रद्धा अदिति राधे दीपक अंकु राघव गुप्ता लोरमी तिलकपुरले हवें चंद्र कुमार मरावी चंद्रेश मालती और मयंक देवरी भाटापाराले गन्नूलाल रजक के आर साहू अश्वनी वर्मा गणेश राम पोटियाकला दुरुगले संजय साहू सुजाता शशांक और सीमा साहू नवागढ़ कटैले हवें नारायण प्रसाद वर्मा चंद्रकांत शारदा उजीत वर्मा बन बघेरा राजनाथ गांवले योगेश सारवा आशा नीरज नीलेश अंजलि और रोशनी सारवा हिच्छा महासमुंदले अदालत दास वैष्णव मानस शांति ऋचा और गायत्री भानपुरी मुसराले आत्माराम यादव सुखदेव विदेशी हुमेश्वर मनेश्वर लाक्षी और तुलसी डोंडी लोहारले हवें चंचल नेताम कामेश और माहिर इहेले हवें डोमेन्द्र और गंगेश्वरी नेताम भाटापाराले विष्णु साहू पूरब वीरा हर्ष कुमकुम और योगेश्वरी धमतरीले हवें रामचंद माखीजा सविता स्वाति माही पूजा छुटकी और शरद कुमार डोडवानी लेवैले गुलाबदास मानिकपुरी राजा दास और रानी खमरिया बिलासपुर ले हवें साबित खान धर्मेंद्र प्रजापति सावित्री देवी और प्रतीक कुमार और बठेना पाठन ले बलकरण वर्मा अंजनी ज्योति प्रहलाद राजेंद्र उमेश और धनेश्वरी वर्मा पाती पठोए हवें रिंगनी ले दिनेश वर्मा करुणा वर्मा कटोरा तालाब रायपुर ले हवें मोहनलाल देवांगन प्रभा देवी पहदा कोरबाले समयलाल कुर्रे सावित्री देवी और सरक बुंदियाले गब्बर साहू और निर्मला देवी साहू पटपर डोंगरगढ़ ले रामगोपाल ध्रुव नरेंद्र कुमार कविता और जयंती ध्रुव शिक्षक नगर दुर्ग ले हवें राकेश वर्मा सचिन और वाणी वर्मा और रुआबांधा शनिचरी बाजार भिलई ले सुशील जैन कल्पना सेया सौरभ शौर्य और शुभम जैन आप मन के पसंद में सुनन ए गीत।

अगला गीत ला स्वर्दे हवें खुशीदास मानिकपुरी और बिंदु देवांगन सुने खातिर ईमेल भेजे हवें भाटापारा ले बचकामल मोतीलाल यादव बसंत भृगु और विनय कुमार ठाकुर हजदा नंबर दो ले हवें कमलेश साहू जितेंद्र उपायल कोरासी भैंसा रेपुर ले पवन कुमार साहू क्रांति देवी पंकज सुस्मिता उदीपिका बाग बहरा भदर सिले पन्नालाल सेन खुशबू तारा कौशल सेन भीम खोज तरपोंगी ले हवें संतोष गुप्ता हितेश होमेश लक्ष्मी प्रतिभा शीतल भड़गा कोदवा गुड़ान ले श्यामसी मरावी राजकुमारी रानी रजनी राहुल ओ पूजा कुई ग्राम भंगी टोला ले हवें ननकाराम धुर्वे जामुनबाई फिरतराम ओ मालती लोरमी चचेड़ी ले शंकर कोलाम संतोषी संजय संध्या ओ शिवम पाहरा अहिवारा ले पोषण बंछोर चंद्र किरण प्रीति ओ छाया खोंदला उदयपुर ले हवें जीवधन सिंह पैकरा घुरनी करिश्मा उकलेश्वर सिंह कांकेर संबलपुर ले फागुराम यादव ज्योति ओजस्वी लच्छनपुर ले हमर संगवारी मन है विश्वनाथ साहू पंकज ओ तिरुपति साहू गंडई पंडरिया ले शिवा यादव राज चिंटू तरुण चोवाराम कन्हैया ओ निर्मला यादव बिलईगढ़ ले हवें जगदीश देवांगन पुष्पांजलि जया जाह्नवी ओ तृप्तेश इन्हें ले हवें रोशन देवांगन कौशल्या हेमलता और डिम्पल देवांगन तखतपुर ले हवें मिश्री लाल विश्वकर्मा मीरा देवी विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा पाती पठोए हवें बंगला मटिया बालोदले शिव कुमार अंगारे अंजनी त्रैंबिका लीना अंशुमाला आशुतोष अंगारे सिमगले रमेश कुमार यादव माया रिंकू सनी कोमल यादव इन्हें ले हवें सविता जैन मोनिका जैन और महासमुंद ले हवें सुभाष शर्मा छाया कुमुदनी ओ ओंकार शर्मा करण गरिमा अर्जुन भारती मोती ओ हेमलता तिवारी आप मन के पसंद में सुनवावत हन एक गीत

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपली केंद्र ले आप मन सुना था कार्यक्रम आप मन के गीत। अगला गीत ला स्वर्दे हवें पंचराम मिर्झा और कुलवंतिन बाई। ईमेल भेजे हवें धरसी वाले छेदुलाल यादव, सीता, अर्चना, अरुणा, अनुराधा, अल्पना यादव, रानू, खुशी, प्रवीण कुमार साहू और इकबाल कुरैशी। संतोषी नगर रायपुर हवें छन्नूलाल यादव, पुष्पलता, अर्पिता, अभिनव, बलदाऊ, राजेश्वरी, आस्था, अनुराग, डुग्गू, कान्हा यादव। रसेड़ा ले हवें मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या, कीर्ति कुमार, डिकेश साहू। गुढ़ाराज ले मनोज साहू, चित्रेखा, देवेंद्र, लवीना, चंचल, वासनी और गरिमा साहू। मेघापारा चिल्फिले रामकुशल पटेल, संतोषी, दीपांशु, दिव्या, दीपांजलि, दीपक, टेकलाल पटेल। कर्मा चौक लोहारी डी ले हवें हमारे ये संगवारी मन अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी, खुशांत और निशांत। रानी गांव नगरी ले खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा, शुभम और सेजल साहू। नादिया गंडई ले हवें मूलचंद पटेल, मीनाक्षी, आशीष और सीमा। नागर कोहरा ले जग्गा राम साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, समीक्षा और आराध्या। कोहका भिलई ले उत्तम सिंह जंघेल, मोरस, अनिल कुमार, अजित, आयुष और नंदिनी जंघेल। बोड़सरा नैला ले प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली और प्रियांशु। भानबेड़ा मुंगवाल ले भरत राम पडोटी, जयंती, हेमंत, उमंग और मोक्ष। भाटापारा ले दान सिंह रावत, पद्मिनी, शुभम और सौरभ। धनोरी तेलीवाला ले निसार सलमानी, नौशाद, आलिया और अयान। और हिंगोली महाराष्ट्र ले हवें शाहजी पुड़खे, नंदा हनुमान और उत्तम जमदाड़े। पाती पठोए हवें हमारे संगवारी मन कोटा रायपुले योगिता वर्मा, रुचि, खुशी, ओजल वर्मा, गैनलाल मिश्रा, चंद्रकांति, अर्चना, धनंजय मिश्रा, अपमनहो, धवलपुर, गरियाबंदले। भाटापारा ले राधेश्याम और जितेंद्र साहू। रामनगर रायपुर ले राजेश अंबादे, शशिकला और पूजा अंबादे। और देवभोग अमली पदर ले हवें निकुंज तिवारी, लाची और ममता तिवारी। तो आवाओ आप जम्मू संगवारी मन के पसंद में सुनन ए गीत।

कार्यक्रम के अगला गीत ला स्वर दे हवें छाया शर्मा माया शर्मा। ईमेल भेजे हवें हमारे संगवारी मन देवशंकर तामुरिया प्रभा देवी अजय तुषार डॉली बेबी पूजा राधिका औ मास्टर अल कबीर आप मनोहर डोंडी लोहाराले गंडई पंडरियाले पवन कुमार सेन प्रभा देवी लक्की विक्की नानू रविन्द्र रौनक सेन मोहला मानपुरले विष्णुराम यादव बस्ताबाई कविता अनेश गीताशी औ वैभव आमा खुड़्रा रेंगाखा ले हवें देवी सिंह नेताम राजेंद्र सिंह दक्ष प्रिया उ गीत सरगम नेताम हटौत बाजार ले कमलनाथ पटेल राकेश समीर और राजकुमारी पटेल पुतकी कला कवर्धा ले राधेश्याम पांडे वीणा विनय शंकर नयन और सुमांशु सिंगारपुर ले चिंताराम धुर्वे कामिन चंद्रध्वज और सानू नेवई उतई ले विक्की देवांगन उर्वशी जतिन जयंत और कुनिका टेकापार बालोद ले हवें चिंताराम यादव रवि प्रकाश यादव मदनपुर कवर्धा ले श्रवण कुमार साहू योगेश और राहुल कांकेर ले हवें फागुराम यादव ज्योति और ओजस्वी यादव धमनी राजिम ले समय लाल धीवर मुन्नी गोविंद ममता कुणाल और युवांश धीवर गंडई टिकरी पारा ले जागेश्वर देवांगन कचरीबाई दीपक कुमार जयश्री ऋषभ और ऋचा देवांगन बाजारवाड़ महासमुंद ले भीष्मदास नर्मदा हिरमनी दीपक और लक्ष्यदास पांडुका ले छामेश्वरी साहू टीकम घुरवा भूषण कुसुम वासु मोक्ष लेखू गोपाल और भोला तेंदु भाटा मगरलोड ले उमेन कुमार निषाद मोहेश्वरी देविका पोषण दिव्यांशा और भूपेश और शिवा पाती पठोय हवें हमारे संगवारी मन की किरमेटा बेलहारी पाटन ले संतोष शर्मा रुक्मणी शर्मा जुनवानी दुरुग ले हवें सुरीत रमेश साहू भाटापारा ले मिलवदास कुलदीप संतोष संजय लक्की यश नीलाक्ष और विवान बेमेतरा ले सुरेश कुमार सारथी पूर्णिमा हेमलता कमलकांत और वीरेंद्र व्रजकांत कोटा रायपुर ले हवें अरुण वर्मा अन

कल्याण सिंह चौहान, छाया शर्मा और माया शर्मा के स्वर में ये गीत अभी आप मन सुने हो। कार्यक्रम के आखिरी गीत ला स्वर दे हवें जयंती यादव। ईमेल भेजे हवें भाटापारा ले हिमकेश्वर साहू, करण राहुल और चंपा साहू, सौंगा मगरलोड ले फनेश कुमार चंदन, सावित्री मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र और हेयांश, खम्हार मुड़ा ले शिवाय गिरी गोस्वामी, एकांशी बाघामुड़ा, कोमा खान ले प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी प्रकाश, गायत्री यशवर्धन और यशस्वी, फुलझर घटारानी ले योगेश्वर साहू, डूमेश्वरी यामिनी मुस्कान और हर्षिता, पलारी ले प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल और यशस्वी, गणेश धाम परसुली ले जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलवदास जय देवेश, धनवंतीन बाई और मोतीन बाई मानिकपुरी, कटनी ले अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कनौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रज्जन रजक, लालू सोना मोना हनी और यश, पलारी ले नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद पराग, पुनाराम और कृष्णा, भंवरपुर ले राधेश्याम देवांगन, चंपा राजू और स्नेहा, पहदा ले नीतीश कुमार, तनुजा, ईशांत, लखनलाल और सावित्री बाई देवांगन, परसा टोला ले ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी तुषारणी और खुमेंद्र, कोयलारी कवर्धा ले कैलाश चंद्राकर, मुकुंद पूर्णेंद्र और साहिल, बुटगहन ले रामदुलारी प्रजापति, रामशरण चंद्रेश, चंद्रकला और शशिकांता, नेपानगर ले सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल नीति, सुरभि अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र जी शाह, बिलईगढ़ ले खीकराम देवांगन और रेनू, अंबागढ़ चौकी ले रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान, मुंडा टोला ले डोमेन नेताम, गंगेश्वरी चंचल, कामेश और माहिर, भोरमदेव ले जीवनलाल साहू, राजबाई लोकनाथ और वेदिका, पाती पठोय हवें जामुन ले विकास वर्मा, खुशी ग्रंथ वर्मा, संजय पूजा प्रधान, भाटापारा ले नारायण यदु, पुनिया राकेश और आरती यदु, और मोपका भाटापारा ले दयालु राम वर्मा, तेज राम, सहदेव राम और चिरंजीवी वर्मा।

ये गीत संग आप मन के गीत कार्यक्रम सिरावत है। कार्यक्रम पर गीत ला जोरे रहीन बीर भान साहू। ता अब एक कार्यक्रम ले शुभ्राला देव विदा जोहार।

0: आप मन के गीत, अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1 बजने को है समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक

0: योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशातिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशातिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल हैं। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दें तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। गृह मंत्रालय ने आवर्जन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। इसमें आवर्जन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण और समय सीमा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। रिलायंस कम्युनिकेशंस ग्रुप के पूर्व प्रबंध निदेशक अमिताभ झुनझुनवाला को सीबीआई ने करोड़ों रुपए के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला भारतीय स्टेट बैंक से लिए गए 1200 करोड़ रुपए के सावधि ऋण, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लिए गए 500 करोड़ रुपए के लेटर ऑफ क्रेडिट और सिंडिकेट बैंक से लिए गए 350 करोड़ रुपए की क्रेडिट सुविधा के कथित दुरुपयोग से संबंधित है। एजेंसी ने पहले ही 16 व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद में 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये 6 जून तक खुला रहेगा। सीबीएसई ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपये और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपये का भुगतान करना होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 81 अंक गिरकर 74,186 पर, जबकि निफ्टी 44 अंक लुढ़ककर 23,338 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

प्यार में कभी कभी, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना शान के स्वर में। गीत राज कौशल और विशाल दादलानी का था, संगीत विशाल सिराज और संपत का।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत।

बाजी। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना उदित नारायण और साधना सरगम के युगल स्वर में। मजरूह सुल्तानपुरी की शब्द रचना को सुरों से सजाया था अनु मलिक ने। कार्यक्रम के अंत में सुनिए अमित कुमार और अलका याज्ञिक के स्वर में जावेद अख्तर का लिखा गीत। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फिल्म का नाम है नरसिम्हा।

चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आप हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीटीएच पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम विवरण, आइए अब आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें।

आज रात 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम किसान कल्याण आप सुनेंगे आज रात 9:25 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनिएगा कीर्ति व्यास का वायलिन पर बजाया राग पूरिया धनाश्री।

अब से कुछ ही देर में यानी दोपहर 1:30 पर कार्यक्रम घर आंगन में आज के गोट का विषय होगा लयिका मन के बालपन मा संपोषित करब। साथ ही सुनिएगा कहानी पार्वती, कहानीकार होंगी श्रीमती सुनैना साहू। कामकाज की बातें में चर्चा होगी पर्यावरण संरक्षण लिए जरूरी कुन्हु कारज नहीं है, स्मिता के महत्वला बनाना जरूरी है और बरसात पूर्व कपड़ा लत्ता के रखरखाव। साथ ही आनंद लीजिएगा गीत संगीत का। युवा साथियों के कार्यक्रम युववाणी में अपन गोट का विषय होगा अपन संस्कृति मां गर्व करो। साथ ही होगा क्रम सवाल जवाब और माटी के गीत। समय 5:10 पर।

शाम 7:21 पर कार्यक्रम चौपाल में आज की बात का विषय होगा समन्वित कीट नियंत्रण और खरपतवार प्रबंधन पर खेती के गहरी जुताई। शाम 7:30 पर किसानवाणी में सुनिएगा फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानवाणी। नैनो और दानेदार खाद का विवेकपूर्ण उपयोग खेती की लागत घटाए लाभ बढ़ाए इस विषय पर जानकारी देंगे दिनेश गांधी उप प्रबंधक इफको रायपुर। संचालन निधि शर्मा का प्रस्तुतकर्ता होंगे शशि प्रकाश पांडे।

रात 8:15 पर सुनिएगा लोक संगीत। कलाकार होंगे सुखियारिन मानिकपुरी और साथी। श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद सुनिएगा आज रात 10 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ शाम 5 बजे और प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां शाम 6:30 पर। चित्रपट संगीत आप सुन सकते हैं दोपहर 2:30 पर, शाम 7 बजे, रात 8 बजे और रात 9:15 पर।

कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय दोपहर के 1:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम घर आंगन।

हैं जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। ये गीत ला गुनगुनावत मैं आ गए आप मन के संगवारी रोशनी राठौर। आप सबो श्रोता बहनी मल्ला जय जोहार, राम राम। बहनी हूँ, आज मैं जब आकाशवाणी आवत रहन ना, तो मोर मन में ये गाना बार बार ध्यान में आवत रहीस कि हमन जब छोटे छोटे रहन ना, तो अक्सर ये गाना ला गावन और गुनगुनावन। कतेक सुधखर है ना ये गाना हा? अब ये गाना मोला एका सेती सुरता आगे कि रास्ता में दू चार झन लइका मन हा अपन कंधा में जुन्ना बोरा ला लटका के

प्लास्टिक डिब्बा और पन्नी भिनत रहे तो मोला देख के बड़ दुख होइस कि जेन उम्र में लैका मन ला चिराई का स्वतंत्र विचरण करना चाहिए तेन उम्र में लैका मन ला ऐसे का हो गए कि कमाए ला पड़ा था वह बहनी हो। बहुत बार कोनो दृश्य कोनो बात हा हमन ला सोचे बर मजबूर कर देते। महू हा सोचे बर मजबूर हो गए कि आजकल काकरो बहुत बड़े परिवार तो नहीं है, हर मनखे के एक झन या ज़्यादा ले ज़्यादा दू झन लैका है, त का पति पत्नी दोनों मिल के लैका मन ला पाल पोस नहीं सके। आजकल कमजोर वर्ग मन ला फ्री में अनाज मिलत है, निःशुल्क पढ़ाई होत है, स्वास्थ्य बर चिकित्सा की व्यवस्था है, त ऐसे का कारण है कि लैका मन काम करे बर मजबूर हो गए है। गहराई में जब जाबो न तब पता चलते कि हमन जो परिवार चलाए के ढंग है, रहन सहन है, ओ हा गलत है। पत्नी मर मर के कमावत है, पति जो है नशा पानी में बुड़े है, काम बुता में जावत नहीं है, त ऐसन में का लोग लेका ला पाले जा सकत है। बहनी हो, यदि खुद में परिवार चलाए के समर्थ नहीं है, जिम्मेदारी उठाए बर तैयार नहीं है, तब परिवार बढ़ाए के कोनो मतलब नहीं है। आज स्थिति अति खराब नहीं है जौन आज से 50 साल पहले गरीबी रही। आज तरह तरह के काम धंधा आगे थोकुन मेहनत करके परिवार ला चला के जिंदगी जिए जा सकत है। काबर की सरकार है घलो अपन तरफ ले हर छोटे ले छोटे काम बर सहयोग करत है। ता हम सब के जिम्मेदारी बन थे कि लैका मन के जौन बालपन है तेल ला संभाल के रखन, ओला संजो के रखन, लैका मन ला खूब पढ़ावन ताकि मजबूत भविष्य के निर्माण हो सके।

0: बहनी हो, अभी आप मन ह समूह शर्मा गीत ल सुने हो। ये गीत ल सुने के बाद अब आवा आगू बढ़थन आज के क्रम कहानी कोती। फिर कहानी शब्द सुनते साथ काबर मन में जिज्ञासा पैदा हो जाते कि कहानी में आगू का हो ही। ता आवा सुनथन कहानी पार्वती और कहानीकार बहनी है श्रीमती सुनैना साहू।
1: घर आंगन सुनैया जम्मो बहनी मनला सुनैना साहू के जय जोहार। बहनी हो, आज मैं हाँ आप मनला एक संघर्ष करके आगू बढ़िया महिला के जिंदगी के कहानी सुनावत हूँ, जेखर शीर्षक हावे पार्वती। संगवारी हो, हमर कहानी शुरू होते एक सुघर गांव ले। हर बेर से ही यहू कहानी माँ सुघर नदिया है, तरिया है और खेत खार है। शुद्ध वातावरण ले परिपूर्ण गांव के जेखर नाव है कैलाशपुर। कैलाशपुर के मनखे मन के मुख्य व्यवसाय आए किसानी और इही गांव माँ एक परिवार रथे जेखर नाव है हेमू। नानुक परिवार में उखर पत्नी रथे और दू झीन लैका जेमा एक नोनी और एक बाबू। नोनी के नाव रथे पार्वती। हर घर कस ओखरो घर माँ दाई बाबू मना कमाए ला जाते माने खेती किसानी के बूता करे खातिर। औ जेन पार्वती रथे तेन हा अपन भाई सन स्कूल जाते। पार्वती ला बचपन ले पढ़े लिखे के बड़ शौक रहा है और कक्षा माँ वहाँ आघू घलो रहा। धीरे धीरे बेरा हाँ पहावत गीस और पार्वती नोनी के बिहाव के चिंता उखर बाबू जिला उखर माला सताए लागिस। फिर पार्वती के पढ़े लिखे के जिज्ञासा हाँ बढ़त गीस और उखर मन में आए कि मैं बहुत पढ़ लिख के आगू बढ़ाऊँ। और कथे ना उही बिन मतलब के गोठ के नोनी जात तो आए पढ़ लिख के काय करही, आखिर दूसर घर जाना है, घर बूता और चूल्हा चौका के कामला तोला करना है बेटी। मन तो पार्वती के बहुत ज़्यादा पढ़े के रथे, आगू बढ़े के रथे, फिर का करे। पार्वती के जोन परिवार और समाज के आगू ओखर कहीं नहीं चले। और एक दिन ओला देखे खातिर उही गांव के तीर में सगा आते और ओला पसंद करके चल देते। धीरे से कुछ दिन माँ पार्वती के बिहाव मारते, भोला संग पार्वती के बिहाव मार जाते। गांव माँ न्योता न्योता थे, पार्वती घर गड़वा बाजा के धूम माचे लगते। बिहाव के आगास होते और एक दिन चूरमाटी, दूसरिया दिन माइन भात और आगे बिहाव के संझा। पूरा घर माँ आंगन माँ बाजा के गूंज गूंजा थावे। सगा सोदर मन मना आते, नाचते, गाते और थोड़ी बेरा माँ भोला के बरात हाँ पार्वती घर पहुँच जाते। बरतिया मन हाँ नाचत है, गावत है और भोला के बरात के धूम माचे हवे। कहाँ जी हाँ, कैलाशपुर माँ। और का कहना है पार्वती के बिहाव के, फिर यही सब माँ इति पार्वती के मन में चलत रहते। मैं तो पढ़ेला चाहत रहे हूँ, आगू बढ़ेला चाहत रहे हूँ, फिर मोर मन के गोठा मने में रह जही का। मैं जिंदगी माँ कुछ नहीं करे पाऊँ का, अतिक माँ मोर जिंदगी बंधा के रह जही। और संगवारी हो, यही बीच माँ

हाँ, पार्वती के बिहा हो जे थे और वो हाँ दुल्हीन बन के अपन ससुराल आते और पार्वती के भोला के जिनवन साथी हो जे थे। बेरा हाँ धीरे धीरे पहावत जाते, दोनों के गृहस्थी हाँ आगू बढ़त जाते। बेरा हाँ पहाते और पार्वती के मन में आगू बढ़े के इच्छा हाँ सिराए नहीं रहा। अभिनो ओला ओकर मन में आत रहते कि मैं हाँ कुछ करूँ और आगू बढ़ाऊँ। और ये बात ला थोरिक थोरिक भोला हाँ घलो समझे लगे ल थे। तब फिर पार्वती के भाव ला देख के वो हाँ सोचते का कहीं पार्वती हाँ करना चाहते। यही सब बीच में पार्वती के गृहस्थी हाँ बाढ़त जाते और पार्वती के घर में लोग लेकर घलो के आगमन हो जाते। जैसे शुरू ले पार्वती जिज्ञासु नोनी रथे तब वो हाँ मन में ओकर मन में हर बेर ये बात आतेच रथे कि का मैं घर गृहस्थी के संग अपन समाज खातिर और गांव खातिर कुछ कर सकत हूँ। और मन के बात ला वहाँ मन में नहीं रखें और एक दिन भोला ले कही डर थे। शुरू ले पार्वती ला भोला हाँ समझे और ओखर गोठला सुन के बात ला सुन के ओखरो मन में लगते कि काबर मैं हाँ पार्वती के साथ देवाओं के नहीं और संग में भोला हाँ ओखर संग में साथ दे थे। संगवारी हो कुछ कारज हाँ जिंदगी में आसान नहीं हो है। फिर मन में मनखे हाँ ठान लेते ना तब फिर हर बाधा ला पार करे के ओखर भीतर में अपने आप शक्ति आ जाते। और बात एमेर माई लोगिन के रहीस त चुनौती तो कम नहीं रहे। पार्वती जानत रहते कि चुनौती तो आही फिर अपन आप में कुछ करके निकलना है, कुछ करके दिखाना है, ये ओखर भावना हाँ ओला बल देते। और यही मेरन ले पार्वती के नवा अध्याय के आगाज होते, एक आम नारी ले विशेष नारी के कहानी। पार्वती हाँ घर ले छोटे कुन काम ले शुरुआत करते जेमा वहाँ पटवा डोरी बांस जैसे जिनिस मन ले अपन कुटीर उद्योग के शुरुआत करते। शुरू में थोड़ी समस्या थे कि ला कहाँ बेचना है, कैसे कामला आगू बढ़ाना है। ता ये बेरा भोला ओला ढाढ़स बंधाते और आगे बढ़े के हिम्मत देते। पार्वती के मेहनत ला देख के गांव के औ माई लोगिन मन ला घलो ये विश्वास आयला लगते कि हमू मन का एकड़ी में बंधा जावन औ कुछ करे के सोचन। और धीरे धीरे पार्वती संग एक ले पाँच, पाँच ले पंद्रह और ऐसे ही कुछ माई लोगिन मन के समूह बन जाते। अब कामला पार्वती नहीं खोजे संगवारी हो, काम हा पार्वती ला खोजते। काम इतना अच्छा चलते कि समूह में जेन आमदनी होवे ओमा कुछ रुपया कुछ जिनिस ला बिसाय खातिर रखे जाए और कुछ रुपया आपस में बांटे अपन घर घर गृहस्थी पर और कुछ रुपया ला समूह में जोड़े के शुरुआत करते पार्वती हाँ। देखते देखत पार्वती के समूह हाँ संगठन हाँ अतका बाढ़ जथे कि एक गांव ले दूसरैया गांव और दूसरैया गांव ले तीसरैया और देखत देखत कई गांव के संगठन के पार्वती हाँ मुखिया बन जथे। ऐसे नहीं है संगवारी हो कि हम कुछ करे के प्रयास करथन तब विघन नहीं आवे, आथे। और जब बात महिला मन के आते त चुनौती और बाढ़ जथे। और बात जब गांव के माई लोगिन के होते ना तब फिर जान दे पार्वती ला घलो बहुत संघर्ष के सामना ला करेला पड़ीस। काबर की हाँ आपो मन जानत हो कहानी सुनत हो ता बिल्कुल वो हाँ थोकिन कम पढ़े लिखे रहते। त फिर आघू सुनो संगवारी हो पार्वती के सीखे के जिज्ञासा हो तो ओला कभू रुकन नहीं दिस। वहाँ जब कुछ समस्या होवे ओला त वहाँ समझे के प्रयास करे, ओला सीखे के प्रयास करे और समस्या के निवारण करे। और कथे ना मन में है विश्वास तब पूरा हो ही हर आस, हम होबोन कामयाब एक दिन। और कहानी यही मेरन खत्म नहीं हो संगवारी हो। पार्वती हाँ अपन काम मा ओ माई लोगिन मनला जोड़ी जेन मनला सिरतोन मा काम बुता के रुपया पैसा के जरूरत रहा है ओखर कड़ी हाँ बाढ़त गीस। एक ले दू गांव, दू गांव ले तीन गांव, ऐसने ही करत करत कई गांव के हजारों लाखों महिला मन के समूह बन गए। एक पार्वती ले लाखों पार्वती के जन्म हुईस। देखते देखत पार्वती के चर्चा हर शहर में पहुंच गई। एक गांव के कम पढ़े लिखे महिला हाँ अतका बड़ कहानी रच दीस और ओखर गांव गांव शहर शहर में ओखर मान सम्मान बाढ़े लग गए।

0: औ आघू मा संगवारी हो, एक बेरा ऐसे आथे के पार्वती के सम्मान राष्ट्रीय स्तर मा होय लागथे। जानथो ना काबर? काबर के खुद कम पढ़े लिखे के बाद भी पार्वती हाँ गांव गांव के महिला मन के हिम्मत बनथे, ओ मनला आघू बढ़े के रास्ता दिखाथे, उखर प्रेरणा बनथे। त हम कही सकत हन के शिक्षा तो बड़ जरूरी है, फिर अगर मन मा कुछ करे के ठान लेथे मनखे हाँ, त फिर कोनो चीज हाँ कोनो जिनिस हाँ हमर रास्ता के आड़ नहीं आए, बाधा नहीं बने। और पार्वती हाँ घलो आघू बढ़ के ये दिखा दीस कि कुछ करे खातिर, कुछ बढ़े खातिर, बने खातिर कोनो जिनिस हाँ बाधा नहीं बने। और आज पार्वती के जोन मान है सम्मान है तेन देश विदेश मन मा पहुँच गए संगवारी हो। तो ऐसे होते एक महिला के कहानी जेन प्रेरणा ले परिपूर्ण होते, पार्वती के कहानी।
1: बहनी हूँ, अभी आप मन हाँ सुनत रहो कहानी पार्वती, और कहानी ले सुनावत रहें श्रीमती सुनैना साहू। भाई कहानी ला तो आप मन हाँ सुन लियो, फिर अब पारी है आप मन की ये बताए के कि कहानी आप मन ला कैसे लगीस। एकर खातिर आप मन हाँ ईमेल और पाती जरूर पठो हो। अब आवो बढ़थन मनोरंजन डहर और सुनथन ये सुघर गीत ला जौन ला गाय हावे नथु तोड़े हैं।

बहनी हो, जब जरूरत पड़थे तभे हमार ध्यान ह ओ जिनिस कोती जाथे, है ना। अउ अभी भयंकर गर्मी है पड़त हे तो हमार ध्यान ह जावत हे कि ये सब पर्यावरण ला नुकसान पहुँचाए खातिर होवत हे। देखे जाए तो विकास के नाम में पेड़ ला ज़्यादा ले ज़्यादा काटत हन, फिर लगावत कतका हन, तो काटे के अनुपात में बिल्कुल नहीं के बरोबर। आज मनखे प्रकृति ऊपर तो पूर्ण रूप ले विजय तो पागे है और विकास के दृष्टि ले ठीक बात भी आवे, फिर ऐसन करके मनखे अपने पाँव में कुल्हाड़ी लमारा थे। आधुनिकता के नाम में प्रकृति ले छेड़छाड़ कर थी, जेकर खामियाजा तो हम मनखे ले ही भुगतना पड़ा थे ना। बहनी हो, पूरे सौर मंडल में मात्र हमर पृथ्वी में ही जिंदगी संभव है। यदि समय रहते हम सब पर्यावरण ला संरक्षित नहीं राख बोन तो आने वाला समय में भयंकर दुष्परिणाम हमी ला भुगतना पड़ी। काबर कि पर्यावरण संरक्षण ले जरूरी कोन्हो कारज नहीं है। तभे तो कहे गए है, पर्यावरण के रखो ध्यान तभी बनेगा देश महान। बहनी हो, मनखे हा सामाजिक प्राणी आवे और सामाजिक संरचना में रिश्ता के खास स्थान है। प्रेम के महीन रेशा ले बुने ये रिश्ता तो होते बहुत नाजुक, लेकिन रिश्ता के ये बेल ला इसने त्याग और विश्वास के जल ले सींचना जरूरी है, नहीं तो ये रिश्ता समय ले पहले ही मुरझा जाते, दम तोड़ देते। रिश्ता ला सहेजे खातिर एक दूसरे ला समय देना, आपसी सम्मान बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। कई बार का होते कि पुराना संबंध छोटे छोटे बात, गलत फहमी या अफवाह के कारण टूट जाते, लेकिन बहुत ही सोच समझ के सही गलत के पता करके संबंध ला तोड़ना चाहिए। काबर कि एक बार यदि संबंध खराब हो जाते ना, तब फिर वो रिश्ता में मिठास वापिस नहीं आवत। ये संबंध में कवि रहीम भी कहे हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। बहनी हो, मनखे के मूलभूत आवश्यकता का हरे तो रोटी, कपड़ा और मकान। और आज हो गए 2 जून। पुराना कहावत घलो हवे ना, 2 जून के रोटी, जेकर मतलब होते सुबह और शाम 2 वक्त भरपेट भोजन मिल जाना, यही सबले बड़े खुशी आवे। और यदि रोटी के बाद कपड़ा के बात करबुन तो भई रोटी ऐसा कपड़ा भी है तो उतके जरूरी है। अब देखो ना, मानसून है घलो लखठियात जावत है। बहनी हो, गर्मी है अब बस कुछ दिन के पहुना आवे, तभी बरसात ले पहले कपड़ा लत्ता के रख रखाव भी जरूरी है। त एकर खातिर का करें, जैसे गद्दा, तकिया, कालीन, मसलन या सुपेती होगी या ऐसन साड़ी हो गए, आदमी मन के कोट हो गए जो ल धोए नहीं जा सके, तेन मन ल बने घाम देखा देवन, तहाँ ले वाला सुरक्षित सूखा नीम के पान, कपूर डल्ली, डामर गोली हो गए, तेन मन ल बीच बीच में रख के डाल देवन। वैसन ही रोज उपयोग करे लायक चादर, कपड़ा, पर्दा हो गए, सोफा कवर हो गए, तहूँ मन ल पानी गिरे के पहले एक बार धो लेवन। और जौन कपड़ा के उपयोग ये मौसम में नहीं करना है, ओला बने पेटी, बक्सा, अलमारी, संदूक में सुरक्षित जमा के रख देवन। बहनी हो, अभी घाम बने करत है, फिर पानी गिरे ले सिलन होना स्वाभाविक बात आवे, तो जौन कपड़ा अलमारी में हो ही तेन सब ला एक बार घाम दिखाना भी जरूरी है। बहनी हो, गोट बात करते रह बोन तो गाना कत कबेर सुन बोन, भई बातचीत के संग मनोरंजन भी तो जरूरी है ना, तो आवाओ सुनता।

बहनी हो, अब हमरो जाए के बेरा हो गे। फिर जावत जावत हम इही कहबोन, पसीना पोहा के जौन कमा थे उही 2 जून के रोटी सान लेखा थे। त 2 जून के 2 तारीख और पहला मंगलवार के आप सब श्रोता बहनी मल्ला रोशनी राठौर के राम राम।

घर आंगन, अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 2 बजे हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म जूली से, स्वर दिया है किशोर कुमार ने, गीत आनंद बख्शी का, संगीत राजेश रोशन का है।

Akashvani at 90. आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। अगला गीत फिल्म दीवार से आवाजें आशा भोसले और किशोर कुमार की, साहिर लुधियानवी की शब्द रचना, संगीत राहुल देव बर्मन का है।

स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी

0: साझा करें, तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: चित्रपट संगीत की अंतिम प्रस्तुति फिल्म फकीरा से स्वर दिया है लता मंगेशकर ने। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

0: चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:15 होने को हैं। दोपहर समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का

0: द्वार खलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता था। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
0: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य के प्रतीक हैं। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तब सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है बल्कि ये युवाओं को सपनों को देखने का अधिकार देती हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्तियां उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलती हैं जिनमें अपार प्रतिभा है लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे प्रगति करने से वंचित रह जाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्ज्वल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी जड़ों को न भूलें।
0: भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य के प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं समाज और राष्ट्र के निर्माण में आपका सक्रिय योगदान रहना चाहिए।
1: गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशाटिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशाटिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमेरिका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोकभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं उन्हें बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द या दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें।

0: नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल है। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। केरलम विधानसभा में कांग्रेस नेता शानिमोल उस्मान उपाध्यक्ष चुनिए गए हैं। शानिमोल उस्मान को 99 वोट मिले, जबकि विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मोहसिन को 34 वोट प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी के तीनों सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है, उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जाँच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला, जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। शहजाद भट्टी के गिरोह ने मोहम्मद शेख को एक राजनीतिक पार्टी की महिला नेता को धमकाने और उसकी हत्या करने का काम सौंपा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रवर्तन निदेशालय ED मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने सलीम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ ये कार्रवाई की है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। निदेशालय ने विदेश से लाए गए 2 किलो 600 ग्राम सोने को जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 4,20,00,000 रुपए है। खुफिया जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने दुबई से आए 2 यात्रियों को पकड़ा। मामले की जाँच की जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 1 वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए संघर्ष विराम पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। समझौते के बाद क्षेत्र में तनाव कम होने की संभावना थी, लेकिन हाल के सैन्य उल्लंघनों से इसकी स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

0: एक रिपोर्ट।
1: ईरान ने लेबनान में इजरायली हमले जारी रहने पर अमेरिका के साथ सभी प्रकार की बातचीत रोक दी है। अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध विराम समझौते के लिए ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमले रोकने की पूर्व शर्त रखी थी। उसने होर्मुज जल डमरो मध्य पूरी तरह से बंद करने और लाल सागर के मुहाने पर स्थित बाब अल मंदेब जल डमरो मध्य सहित अन्य मोर्चे खोलने की बात कही है। ईरान का कहना है कि लेबनान और गजा में इजरायली हमले पूरी तरह बंद होने तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। लेबनान में जारी संघर्ष अमेरिका और ईरान के बीच संभावित युद्ध विराम समझौते में एक बड़ी बाधा बन चुका है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेगा। मुलाकात का उद्देश्य दोनों पार्टियों के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और जन केंद्रित राजनीतिक पहुंच पर विचारों का आदान प्रदान करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में पहले गिरावट और फिर आधा प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 508 अंक के उछाल के साथ 74,775 जबकि निफ्टी 140 अंक की वृद्धि के साथ 23,523 पर कारोबार कर रहा था। और अब बात खेलों की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज बारिश का अनुमान है। अगले 2 से 3 दिन तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आवृजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

ब्रह्मचारी। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर के स्वर में। गीत हसरत जयपुरी का था, संगीत शंकर जयकिशन का। अब सुनिए फिल्म फ़र्ज़ का गीत। आवाज़ें एक बार फिर मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर के। गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है। कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
4: मुझे कुछ कहना है,
5: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
6: सुनिए।

अप्रैल फूल, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर के स्वर में। हसरत जयपुरी की शब्द रचना, संगीत शंकर जयकिशन का था। लीजिए अब सुनिए मुकेश और सुमन कल्याणपुर के स्वर में भरत व्यास का लिखा गीत, संगीत सतीश भाटिया का। फिल्म का नाम है बूंद जो बन गई मोती।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए पर पढ़ते फिर पढ़ के भुला जाते।
0: अरे तो सुने करना,
1: कैसे बात करत हस, किताब थोड़ी ना बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: तो काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग माँ माटी के गीत, हमार गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एखर असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बर तैं बैठबे ना तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
0: बेरा हवा संझा कून 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 तक चलते, जेमा तैं मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और

साथी, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना मुकेश और सुमन कल्याणपुर के स्वर में। मजरूह सुल्तानपुरी की शब्द रचना को सुरों से सजाया था नौशाद ने। अब सुनिए फिल्म मोहब्बत इसको कहते हैं का गीत, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की। गीत एक बार फिर मजरूह सुल्तानपुरी का, संगीत खय्याम का है।

0: बस आँखों की बुझा लूं तो चले जाएगा।
1: चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं, हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ 5 बजे आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।
2: राष्ट्रपति ने कहा कि

0: म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं और उन्हें बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दें तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंतरिक कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में तेज बारिश का अनुमान है। अगले 2 से 3 दिन तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. President Draupadi Murmu has said that education is a powerful means of empowerment as it enables individuals to become self-reliant, aware and capable. Addressing the tribal beneficiaries of scholarship schemes in New Delhi today, the President said true development can only be achieved when all sections of society progress socially, economically and educationally. The President highlighted that the government scholarship schemes have transformed the lives of tribals by enabling access to higher education and new opportunities. President Murmu emphasized that India has no shortage of talent and stressed on the need to identify, nurture and provide the right platform for it to flourish.
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
1: The Central Board of Secondary Education CBSE portal for verification of issues in the supplied scanned copy of answer books and for re-evaluation of answers has been made live from today and will remain open till the 6th of June. The CBSE said the facility can only be availed by the students who have obtained a scanned copy of their evaluated answer books. The board stated that Aadhaar verification has been included for security reasons. For children who do not have Aadhaar, the parents, relatives or guardians' Aadhaar details can be used. CBSE has advised students to watch the tutorial video carefully for step-by-step instructions on how to apply for verification of marks and re-evaluation. The Enforcement Directorate ED is conducting a massive search operations at 20 locations across Mumbai, Surat, Ankleshwar and Rajkot against a transnational organized narcotics trafficking syndicate operated by Salim Ismail Dola and his associates. According to the Enforcement Directorate, investigations have uncovered a highly organized transnational criminal network. The network was involved in procuring precursor chemicals and clandestinely manufacturing

न जी भर के देखा न कुछ बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। नमस्कार, स्वागत करती हूँ मैं अपराजिता आप सभी का आप ही के अपने चैनल आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये समय है मन भावन का, जिसमें हम आपकी पसंद के गाने आप तक पहुंचाते हैं और आप अपनी रिक्वेस्ट हम तक भेजते हैं एक ईमेल के जरिए। फिलहाल मैं आपको सुनवा रही हूँ एक बहुत ही प्यारा गीत जल बिन मछली फिल्म से, लता जी की आवाज़ में, और ऐसे ही बहुत सारे गाने सुनवाएंगे आपको यहीं।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready, cohesive, Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.

0: वर्मा, अनुज, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बोडाना, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप। आप सब सुनना चाहते हैं प्यासा सावन फिल्म से एक गाना। तुलसी मस्कीन भी प्रोग्राम को सुन रही हैं और आपके साथ है वीना, आशीष, राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता, केशु रिधान खुराना भी आपके साथ हैं। प्रोग्राम ये आपको बहुत अच्छा लगता है ऐसा आपने बताया। और NPS नुआंकर का भी मैसेज हमें मिलता है, रफ़ी साहब की आवाज़ में दुनिया झुकती है, इस फिल्म से आप एक गाने की रिक्वेस्ट हमें लिखकर भेजते हैं। आपके साथ है निर्मला, विशाल सोपान और नारायण इंगले। शमशूल कमर राही का हमारे पास ईमेल आया है गंज डुंडवारा से, और खानदान फिल्म से आपने एक गाना सुनने की रिक्वेस्ट लिख भेजी। आपके साथ है शाहीन फातिमा, अदनान खान और अनु खान। तो भाई मुकेश साहब की आवाज़ में, और एक और हमारे पास फरमाइश आई है आफ्ताब अंसारी की, आप सुनना चाहते हैं दोस्ती फिल्म से गुड़िया हमसे रूठी रहोगी ये गाना। और आपके साथ हैं रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी। फिलहाल हम रिक्वेस्ट पूरी कर रहे हैं अपने एक श्रोता की, लता जी और मुकेश साहब की आवाज़ में एक बहुत ही खूबसूरत गाना है प्रेम कहानी फिल्म से, पहुंचा रहे हैं आप तक।
1: कहा आपका ये बजा ही सही के हम

मन भावन सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अपराजिता और मेरे साथ हैं आपके ढेर सारे मैसेजेस ईमेल्स। तो देखते हैं कि किसकी ईमेल हमें पहले मिली है। दिग्दर्शन गौर हमारे साथ हैं मेरठ कैंट से, आपके साथ कविता भी हैं। आप मुकेश साहब की आवाज़ में एक गाना सुनना चाहते हैं। संदीप मक्कड़ का भी मैसेज हमें मिला है और साथ ही मैसेज भेजते हैं हमें बोधराज खोरवाल, आप संगम फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल के साथ। साथ ही मैसेज मिलता है हमें मास्टर अशोक कुमार का और आपके साथ बहुत सारे आपके परिवार के लोग हैं सनावद मध्य प्रदेश से। अर्चना

0: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मीनाक्षी पाहुजा है। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय तैराक हूँ और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के तौर पर काम कर रही हूँ। आकाशवाणी को 90 साल पूरे करने पर बहुत बहुत बहुत बधाई। 90 साल का कामयाब सफर तय करना कोई आसान बात नहीं है। आकाशवाणी मेरे लिए एक परिवार की तरह है। आपने मुझे आज तक अपने साथ जोड़ कर रखा है, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे जीवन की हर पड़ाव, सफलता, मेरे जीवन के संघर्ष, कोई भी चीज़ आपसे छुपे नहीं। आपने अपने कार्यक्रम के माध्यम से मुझे कई अवसर दिए कि मैं देश भर के श्रोताओं से जुड़ी रहूँ। आप मेरी आवाज़ बने, मैं इसके लिए आपकी कृतज्ञ हूँ।
1: मनभावन सुन रहे हैं आप अपराजिता के साथ। नईम खान का हमें विष्णु गार्डन से मैसेज मिला है। दीपांशु खोरवाल, अमन, सचिन, जयराम खोरवाल आपके साथ हैं और उत्तम सिंह जंगेल प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। आपके साथ भिलाई से हैं शकुन जंगेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंगेल और अंजलि जंगेल। और आप निकाह फिल्म से एक गाना सुनने की रिक्वेस्ट लिख भेजते हैं। ताज मोहम्मद प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। गुलाम साबिर राही महराज जहां आपके साथ हैं आज़ाद नगर लक्षर हरिद्वार से। और मास्टर खिलू परवेज भी प्रोग्राम को सुन रहे हैं किशनगंज से। और रविन्द्र मोहन दास का भी मैसेज हमें मिलता है आशा देवी के साथ। साथ ही मैसेज आता है अनंता वढ़े का, आप अनजान जी का गीत सुनना चाहते हैं चल चमेली बाग में इस फिल्म से। और आपके साथ है रामेश्वर वाड़े, शुभम, साक्षी, खुशी, समस्त वाड़े परिवार। वाड़ी खामगाम से आप प्रोग्राम को सुन रहे हैं। और अगला मैसेज हमें मिलता है अनिल मोहन का, अनिल मोहन मुल्तानी डांडा से। उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक के साथ हमारे साथ हैं। और रविन्द्र मोहन दास, अरविंद कुमार, सुदर्शन मुखी, फैज अहमद खत्री, हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल सोनिल और एंजल और सोनू और पप्पी के साथ आप ममता फिल्म से एक गाना सुनना चाहते हैं लता जी और हेमंत कुमार की आवाज़ में। तो ये गाना हम आप तक पहुंचा रहे हैं आपके अपने आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। और कुछ एक दो नाम और मैं पढ़ना चाहती हूँ। सतीश अनेजा, मोहसिन रजा, जय और यूनिस खत्री भी प्रोग्राम को सुन रहे हैं।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में एफएम गोल्ड पर प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग। और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बातें करेंगे पूर्व उप महानिदेशक अभियांत्रिकी श्री अजय कुमार श्रीवास्तव जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका अपने चैनल एफएम गोल्ड पर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए।
0: इस 8 जून को आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं, आप आकाशवाणी के इस 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को किस दृष्टि से देखते हैं?
1: मैडम रेडियो ने ये 90 साल का सफर बहुत सम्मान के साथ तय किया है। ये जो स्लोगन है हमारा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय उसको लेकर आगे बढ़ता रहा है आकाशवाणी। मुझे लगता है कि सीधे सीधे मनोरंजन और समाचार के क्षेत्र में एक उज्ज्वल नाम रहा आकाशवाणी का। और देखा जाए तो जो एक भाषाई अंतर हमारे देश में है उसको कम करने के लिए बहुत प्रयास आकाशवाणी किए हैं। हमारी जो अवैध भारतीय सेवा बहुत लोकप्रिय रही, उर्दू सेवा भी आकाशवाणी ने शुरू की है, ये भी बहुत श्रोताओं को आकर्षित करती है। रेडियो बहुत लोगों के लिए एक साथी के रूप में रहा। मैंने अपने सर्विस के दौरान एक क्षेत्र है मध्य प्रदेश में खोरई, वहाँ विजिट किया था, तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि वहाँ एक हमारे श्रोता थे जी। उनको जब हम लोग मिले तो देखा कि छोटा सा घर था, घर क्या एक गुमटी जो होती है उस तरह का

0: उनका उसमें वो रहते थे, और उन्होंने जब ये बताया कि मेरे परिवार में सिर्फ रेडियो ही मेरे साथ है, तो हम लोगों को बहुत सुखद आश्चर्य हुआ और थोड़ी सहानुभूति भी हुई कि वो एक रेडियो के साथ ही अपने परिवार को मानते हैं, उसी में वो रहते हैं। तो रेडियो ने बहुत अच्छे जिंदगी का साथ दिया है लोगों को।
1: सर अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आकाशवाणी से जो आपका पहला परिचय, जो बचपन की जो पहली याद जो आकाशवाणी से जुड़ी हुई, वो क्या है आपके पास?
0: देखिए, मैं उन लोगों में हूँ जिनकी हॉबी, जिनका सपना, जिनका प्रोफेशन वही रहा जो उनकी चाहत। मैं बचपन में हमारे गांव में जब रहता था तो हमारे घर में एक बल्ब टाइप का रेडियो होता था। उन दिनों गांव में बिजली नहीं थी तो वो रेडियो बैटरी से चलता था और बहुत कम रेडियो सेट हुआ करते थे। हमारे पास आज भी उस रेडियो का जो समय लाइसेंस फीस लगती थी वो लाइसेंस अभी भी हम लोग पास में सुरक्षित है। और उस समय रेडियो सुनने के लिए बहुत सारे लोग गांव से इकट्ठे हो जाते थे, सब लोग साथ में सुना करते थे। तो उसमें मैंने देखा कि जो विशेष अवसर होते थे, जैसे कि युद्ध काल हो या कोई कहीं बाढ़ आती हो, उन दिनों लोगों के लिए रेडियो बहुत खास हो जाता था। और सुनते हुए उनके चेहरे के भाव, मैं छोटा था लेकिन वो मेरे हृदय में आज भी अंकित हैं, उनके चेहरे की खुशी, उनके चेहरे की चिंता, वो देखकर मेरे मन में ये विचार आता था कि मुझे ऐसे ही किसी माध्यम में सेवा करनी चाहिए जहाँ लोगों को भले ही हम प्रत्यक्ष ना सही, अप्रत्यक्ष रूप से ही कुछ खुशी बांट सकें। यही मेरा परिचय पहला रेडियो के साथ में था।
1: सर आपने आकाशवाणी के इंजीनियरिंग विभाग में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है, और आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप प्रोग्रामिंग विंग में भी काफी इंटरेस्ट लेते थे, प्रोग्रामिंग में भी अच्छा खासा आपका इंटरेस्ट है। तो सर आपका जो पसंदीदा कार्यक्रम था प्रोग्रामिंग में, वो क्या था, हम जानना चाहेंगे?
0: रेडियो में एक्चुअली मैंने लोकल रेडियो स्टेशन से शुरू किया था फील्ड में। इसके पहले मैं आकाशवाणी के जो योजना विभाग है जिसको हम लोग PND यूनिट बोलते थे, वहाँ मैं काम करता था। उसके बाद मुझे फील्ड में लोकल रेडियो स्टेशन सागर में काम करने का मौका मिला। वहाँ बहुत जुड़ के रहा मैं श्रोताओं से, और उसमें मैंने देखा कि जैसे लोगों की एक भ्रांति रहती है कि सिर्फ फिल्मी गीत ही रेडियो का एक माध्यम है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ लोकगीत बहुत ही पॉपुलर थे, ऐसे भी बुंदेलखंड लोकगीतों का क्षेत्र रहा है, बहुत वो सुनना चाहते थे अपने लोकल जो गीत होते थे लोकगीत उनको। और दूसरे प्रोग्राम जैसे महिलाओं का प्रोग्राम बुंदेली में हम लोग करते थे, कृषि जगत एक प्रोग्राम होता था, उसमें कुछ कैरेक्टर्स जैसे कक्का जी या इस तरह कैरेक्टर्स डेवलप होते थे, उनसे लोग जुड़ते थे तो अपना सा महसूस करते थे लोगों को। मुझे बतौर इंजीनियर काम करने का मौका मिला, लेकिन मैं सौभाग्यशाली था कि मुझे हर जगह बहुत अच्छी टीम मिली, चाहे वो प्रोग्राम के लोग रहे हों या एडमिन विभाग के लोग रहे हों। मैं एक अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूं अगर आपके पास समय हो।
1: जी बिल्कुल सर।
0: जब आकाशवाणी पदस्थापना के दौरान मेरे साथ हमारे स्टेशन डायरेक्टर थे लाशंकर गुहा जी, वो प्रोग्राम को बहुत अधिक समर्पित व्यक्तियों में से थे। हम लोग एक पिछड़ा इलाका था सागर का, वहाँ कभी भी निकल जाते थे श्रोताओं के बीच में उनकी नब्ज जानने के लिए कि उनको क्या पसंद है और क्या हम लोग ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही किसी सर्दी की शाम को हम लोग किसी गांव से लौट रहे थे, तो मैं गोहा जी और हमारे ड्राइवर थे, हम तीनों लोग थे। तो एक रास्ते में छोटा सा ढाबा था तो सोचा चलो चाय पीते हैं। गांव में सर्दी के जो दिन होते हैं उसमें शाम बहुत जल्दी रात में बदल जाती है, तो काफी अंधेरा हो गया था। तो हमने जैसे गाड़ी रोकी तो एक लड़का आया 17-18 साल का, तो उसको हमने चाय का बोला। थोड़ी देर के बाद वो चाय लेके आया, मैंने ड्राइवर को पैसे देने को कहा। ड्राइवर जब पैसे दे के लौटा तो उसने मुझे 50 में से 40 रुपए वापस किए। तो मेरे समझ में नहीं आया कि 3 लोगों में 50 रुपए कैसे, 10 रुपए कैसे डिवाइड हुए। तो मैंने उसको फिर से भेजा कि देखो जाओ उसके पास, उसने शायद गलती कर दी है कैलकुलेशन में। जब ड्राइवर लौटा तो हंसता हुआ आया, बोले सर वो आपके पैसे उसने नहीं लिए हैं। मुझे आश्चर्य हुआ, मैं उसके पास गया, मैंने पूछा भाई क्या तुमने ये 10 रुपए लिए हैं, मुझे लगता है 15 रुपए होना चाहिए, क्यों 5 रुपए तुमने

0: कम दिए। वो मुझे बोलते सर आप बहुत अच्छे गाने सुनाते हैं इसलिए मैंने आपसे 5 रुपए नहीं लिए हैं। सच में वो 5 रुपए की जो कर्ज है वो उसको मैं, मुझे लगता है कि मैं ना तो सर्विस में कभी चुका पाया और शायद कभी चुका भी ना पाऊं। जो प्रेम हमको अपने श्रोताओं से मिलता है, अपने लोगों से मिलता है, उसकी सचमुच कोई कीमत नहीं होती।
1: जी सर, गीतों का जिक्र किया है आपने, तो हम जानना चाहेंगे आपकी पसंद का कोई गीत।
0: इसके लिए तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा जो गाना रहेगा वो एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, वो अगर आप सुना पाए तो अच्छा होगा।
1: बहुत बढ़िया पसंद है सर।

0: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग, और हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं पूर्व उप महानिदेशक अभियांत्रिकी अजय कुमार श्रीवास्तव जी। सर, हम बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। समय के साथ आकाशवाणी ने तकनीक के क्षेत्र में काफी प्रगति की है, और एनालॉग से डिजिटल और आधुनिक प्रसारण तकनीकों तक के इस बदलाव को आप किस रूप से देखते हैं?
1: देखिए, बदलाव तो हमेशा सुखद होता है, और अच्छी बात ये रही कि हम सब लोगों ने इसको बहुत अच्छे ढंग से स्वीकार किया है। मैंने अपने सर्विस के समय में काफी बदलाव देखे हैं, जैसे कि हम लोग जो मॉड्यूलेशन की टेक्निक थी, जिसको पहले हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलते थे, वहां से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में आए। तब मैं यहाँ आकाशवाणी के P&D यूनिट में असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करता था। करीब 100 स्टेशन थे जिनको हम लोगों ने इंस्टॉल किया था ऑल ओवर इंडिया। और इसके बाद तो हम सब लोग जानते हैं, रिकॉर्डिंग में भी डिजिटलाइजेशन हुआ, फिर सैटेलाइट ट्रांसमिशन शुरू हुआ, जिससे हमारे केंद्रों के बीच में रिले बहुत आसान हो गया। अभी अभी कुछ 7-8 साल

0: पहले हम लोग स्ट्रीमिंग से सभी लोगों के बीच में जुड़े हैं
1: जी।
0: और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत बार कुछ लोगों को ये भ्रम रहता है कि आकाशवाणी शायद बहुत एब्सोल्यूट होती जा रही है, ऐसा नहीं है। जब हम स्ट्रीमिंग से जुड़े तो ये एक ग्लोबल माध्यम था और हम लोग कोशिश करते थे कि देखें ये कहाँ तक हमारी रीच है। तो सुदूर देशों में न्यूजीलैंड के दूसरे किनारों से, वहां से मैं लोगों को अपने जो मेरे परिचित थे उनके थ्रू या एम्बेसी के थ्रू कांटेक्ट लेता था, उन लोगों से बात करता था, उनसे क्वालिटी और कंटेंट के बारे में बात करता था, तो मुझे बहुत अधिक उत्साहजनक परिणाम मिलते थे। मुझे लगता है कम से कम 10-12 कंट्रीज को मैंने कांटेक्ट किया होगा और वहां से बड़े अच्छे रिजल्ट मिले, और शायद आज भी होगा कि लोग अपने यहाँ से जुड़ना चाहेंगे। जैसे अगर कोई आदमी बिहार से है तो वो बिहार में जो मगही है या वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज में ट्रांसमिशन होते हैं उससे जुड़ना चाहता है। और अब तो बहुत अधिक लोग, जिस तरह का माहौल है उसमें भावुक हो गए हैं लोग, लोगों के बीच में इस तरह की बात आती है कि वो अपने घर से अपने देश से जुड़े, तो भाषा एक बहुत अच्छा माध्यम होती है, और भाषा में भी अगर उनकी अपनी बोली में हो तो बहुत अच्छा होता है
1: जी। सर, आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस यात्रा में इंजीनियरिंग विभाग की भूमिका को आप किस प्रकार देखते हैं?
0: इंजीनियरिंग की अकेली अपनी कोई भूमिका नहीं है, जहाँ तक है हम सब लोग साथ साथ चलते हैं। अगर कोई भी एक विंग कमजोर होता है, विशेषकर हमारे प्रोग्राम का जो कंटेंट है और तकनीकी है, इन दोनों को अगर साथ साथ नहीं लिया जाए तो थोड़ा मुश्किल होगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कंटेंट के साथ साथ तकनीक अगर जुड़ जाती है, जैसे FM जब हम लोगों का आया, और मुझे याद है कि जब हम रेडियो का प्रसारण बुंदेली जो गीत थे उनका प्रसारण FM में करते थे तो लोग बहुत खुश हो जाते थे। जब हम अपनी गाड़ी लेके गांव के चौपाल में जाते थे तो लोग करीब 50-60 लोग इकट्ठे हो जाते थे। कुछ लोगों के पास तो FM सेट होता था लेकिन उनको ट्यून करना नहीं आता था, वो आके जो सुनते थे तो उनके चेहरों की चमक से लगता था कि वो उस क्वालिटी को किस तरह से एंजॉय करते हैं। और दूसरी बात एक और जो महत्वपूर्ण है, बहुत बार हम इसको इग्नोर कर देते हैं, आर्काइव को लेके, जो कुछ आज है ये कल के लिए इतिहास हो जाता है। तो हम आज जो भी काम करते हैं उसका प्रिजर्वेशन बहुत जरूरी है। तो अभी जो तकनीक है इसमें प्रिजर्वेशन बहुत आसान है। मेरी पदस्थापना विद भारती में थी और वहाँ बहुत ही जाने माने लोगों की रिकॉर्डिंग, उनके इंटरव्यू और एक प्रोग्राम जिसको आप लोग भी शायद सुनते होंगे कभी, हवा महल
1: जी,
0: वहाँ इन सब प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग हमारे जो टेप होते थे उसमें होती थी, उसका डिजिटलाइजेशन हुआ। आज उनको रखना बहुत आसान है। कभी कभी यह होता है कि जैसे कोई प्रोग्राम एक डायलेक्ट में बना है तो उसको दूसरे डायलेक्ट में बदलना लगता है कि हम इसको दूसरे डायलेक्ट के लोगों को भी सुनाएं। तो वो जब आप अपने आर्काइव से निकाल के उसका कन्वर्शन करते हैं, उसको दोबारा बनाते हैं, तो वो बहुत अधिक अच्छा लगता है। जैसे कि हम अपने घरों में देखते हैं, अपने परिवार में देखते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि हमारा इतिहास क्या था। अगर हम आज की चीजों को भी प्रिजर्व करें, हो सकता है हमको आज महत्वपूर्ण ना लगे लेकिन कल बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है वो
1: जी।
0: तो हैंड इन हैंड चलना ज्यादा अच्छा है, मतलब किसी एक विंग को बारे में सोचने की अपेक्षा।
1: समय है एक और गीत का।
0: गीत मैं आपको एक गीत अनुरोध करूंगा, एक फिल्म थी तीसरी कसम, परमेश्वरनाथ रेणु की कहानी पर आधारित थी
1: जी।
0: वो पृष्ठभूमि तो उसकी बिहार की है लेकिन वो उन्होंने बुंदेलखंड में फिल्माई हुई थी, तो उसका एक गाना है लाली लाली डोलिया में लाली ले दुल्हनिया, अगर वो आप सुना पाए तो बहुत अच्छा होगा।
1: बिल्कुल सर, बहुत अच्छी पसंद है।

0: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग, और हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं पूर्व उप महानिदेशक अभियांत्रिकी अजय कुमार श्रीवास्तव जी। सर, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नई पीढ़ी के जो प्रसारक हैं और इंजीनियरिंग क्षेत्र के जो आने वाले युवा हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा?
1: देखिए, मैं ये तो नहीं मानता कि मैं संदेश देने लायक मैं कुछ कह सकता हूँ, वो लोग अपने अनुभव से सीखते हैं। उनसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि ये जो माध्यम है, यहाँ सेवा या नौकरी जैसे शब्द का उपयोग बहुत उचित नहीं होता है। अगर यहाँ आप समय से बंधकर काम करेंगे तो शायद उतना संतुष्टि आपको नहीं मिलेगी। तो आत्म संतुष्टि के लिए आकाशवाणी में काम करना है अगर, तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है। हम एक परिवार की तरह काम करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि परिवार के बीच में थोड़ा सा तनाव आता है, थोड़े से कभी कभी लोगों के बीच में असहमति होती है। इस असहमति का मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। हम एक केंद्र में पदस्थ थे, वहाँ हमारे जो प्रोग्राम विंग थे वो एक प्रोग्राम बना रहे थे। करीब रात के 10 बजे होंगे, वो अचानक आए मेरे पास, तो बोले कि चलो यार ये प्रोग्राम सुनो कैसा है। तो हम लोग स्टूडियो में गए, प्रोग्राम सुना, और मैं थोड़ा सा वोकल रहा हूँ तो मुझे वो पसंद नहीं आया। मैंने उनको बताया कि देखिए आप इस प्रोग्राम को रात को करने वाले हैं, मुझे लगता है ये थोड़ा सा लाउड है, तो उस हिसाब से थोड़ा सोचिए। वो थोड़ा सा नाराज हो गए और फिर हमें अपने काम से आ गया। उन दिनों बजट चल रहा था, हम लोग रात में काम करते थे। फिर थोड़ी देर के बाद वो आए, मुझे बोले यार वो मैंने अपना प्रोग्राम डिलीट कर दिया है। मुझे भी हर्ट हुआ कि अरे ऐसे कैसे हुआ। वो प्रोग्राम डिलीट करने के बाद उन्होंने रात को 1:30 बजे तक फिर से प्रोग्राम बनाया, और फिर वो मुझे अपने घर लेने आए कि चलो यार आप सुनो प्रोग्राम। तो ये चीज है कि जब तक आप एक दूसरे से मिलकर काम नहीं करेंगे, तब तक आप उसको अचीव नहीं कर सकते हैं। तो मेरा अनुरोध यही है कि अगर कोई व्यक्तिगत किसी तरह की कोई डिफरेंसेस है, उनको सर्विस में ना जोड़कर ये सोचें कि ये हमारा

0: श्रोताओं के प्रति एक पूजन है, पूजा भाव से काम करना है।
1: बिल्कुल सर, टीम वर्क बहुत जरूरी है। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, उम्मीद है हमारे श्रोताओं को भी बहुत पसंद आया होगा। अभी हम बात कर रहे थे पूर्व उप महानिदेशक अभियांत्रिकी श्री अजय कुमार श्रीवास्तव जी से। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये अवसर देने के लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाकर उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है, बल्कि ये युवाओं के सपनों को देखने का अधिकार देती हैं। केंद्र सरकार ने आवर्जन और विदेशी नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार जो विदेशी भारत में 180 दिनों के लिए आते हैं और अपने वीजा की अवधि बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें वीजा की समाप्ति से पहले ही पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पहले यह पंजीकरण 180 दिन की अवधि पूरी होने के बाद 14 दिन के भीतर कराया जा सकता था। गृह मंत्रालय ने आवर्जन और विदेशी नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। हालांकि निर्धारित अवधि के बाद विलंब होने से पंजीकरण की अनुमति केवल आपात परिस्थितियों में ही दी जाएगी। इसके अलावा पहली बार नियमों में ऑनलाइन अपील प्रणाली जोड़ी गई है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल मशातिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉ. जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री मशातिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए।

0: म्यांमार के राष्ट्रपति ओम मिन औलाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जय कुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ओम मिन औलाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोकभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेव और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द या बिना किसी स्पष्ट कारणों के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दे तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंतरिक कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। अगले 2 से 3 दिन तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. President Draupadi Murmu has said that education is a powerful means of empowerment as it enables individuals to become self-reliant, aware and capable. The president was addressing the tribal beneficiaries of scholarship scheme in New Delhi today. She highlighted that the government's scholarship schemes have transformed the lives of tribals by enabling access to higher education and new opportunities. She said, true development can only be achieved when all sections of society progress socially, economically and educationally.
2: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातियों समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तब सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
1: The Centre has notified amendments to the Immigration and Foreigners Rules mandating that foreigners arriving in India for up to 180 days must register themselves before the expiry of the visa if they seek to extend the stay in the country. Previously, registration had to be completed within 14 days after the end of the 180-day period. However, late registration beyond this period will now be permitted only under emergent circumstances. For the first time, an online appeal system has been added in the rules. The Supreme Court today took a serious note of the encroachments within the protected areas of the Agastya Malai ecological landscape in Tamil Nadu and Kerala. The Apex Court directed that a time-bound eviction plan be prepared and implemented on a priority basis. The top court also directed that disciplinary and legal action be initiated against all identified 118 serving and retired government servants who were found to be encroachers. The Enforcement Directorate ED is conducting a massive search operations at 20 locations across Mumbai, Surat, Ankleshwar and Rajkot against a transnational organized narcotics trafficking syndicate operated by Salim Ismail Dola and his associates. According to the agency, the network was involved in procuring precursor chemicals and clandestinely manufacturing mephedrone, also known as MD. It allegedly transported and distributed narcotics drugs

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ अपराजिता। लम्हे फिल्म से ये प्यारा सा गाना आप सबके लिए लता जी की आवाज में।

यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: These require qualifications and experience in fields such as information technology, administration, accounts, research, translation, and data entry operations. Applications in the prescribed format along with self-attested documents must be sent through speed post or registered post to the director, Rampur Raza Library, Hamid Manzil, Kilar Rampur, 244901, Uttar Pradesh, within 21 days from the release of this advertisement in the Employment News. Detailed information regarding qualifications, eligibility and application procedures is available on the official website. Do refer to www.rzalibrary.nic.in. I repeat, it is www.rzalibrary.nic.in. National Horticulture Board, NHB, under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, has extended the last date for submission of applications for deputation posts including Senior Administrative Officer, Junior Translation Officer and Personnel Executive. The vacancies are in various pay levels as per the 7 CPC. The revised last date for receipt of applications through proper channel is 8th June 2026. Detailed eligibility conditions, prescribed application format and the other terms available on the NHB website under the Tenders and Vacancies section. Do refer to the official website, that is at www.nhb.gov.in. Indian Army Headquarters Northern Command has invited applications for 8 posts of stenographer grade 1 in the administrative branch at Udhampur on deputation including short-term contract basis. The post is in level 6 as per the 7 CPC. Eligible officers from central or state governments, union territories, public sector undertakings, universities, research institutions and autonomous or statutory organizations holding analogous post or having 10 years regular service in level 4 post may apply through proper channel. Applications with CADA clearance, NOCs, RPAS, vigilance and integrity certificate and other required documents must reach the headquarters Northern Command within 30 days from the release of this advertisement in the Employment News. Detailed eligibility criteria, application format and terms and conditions available on the official Indian Army website. Do refer to www.indianarmy.nic.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: Namaskar. रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर पदों की संख्या 2, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर पीपीपी परियोजनाएं पदों की संख्या 1, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर पर्यावरण पदों की संख्या 1, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर सड़क कार्य 1 पद, प्रोजेक्ट मैनेजर इमारत 2 पद और प्रोजेक्ट मैनेजर पर्यावरण 1 पद। विस्तृत विज्ञापन, निर्धारित आवेदन प्रारूप और संपूर्ण नियम और शर्तों की जानकारी के लिए देखिए दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास लिमिटेड की वेबसाइट www.dsiidc.org। भारत सरकार, रेल मंत्रालय, रेलवे भर्ती बोर्ड आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। तकनीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, रिक्तियों की संख्या है 323। तकनीशियन ग्रेड 3, रिक्तियों की संख्या है 6242। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए रेलवे भर्ती बोर्डों की वेबसाइट। होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र पंजाब परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन स्वायत्त निकाय टाटा मेमोरियल केंद्र

0: इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है चिकित्सा अधिकारी न्यूक्लियर मेडिसिन एक पद, चिकित्सा अधिकारी रेडियो डायग्नोसिस एक पद, चिकित्सा फिजिसिस्ट एक पद अनुसूचित जनजाति के लिए, जबकि एक पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। वैज्ञानिक अधिकारी SB ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। वैज्ञानिक सहायक C न्यूक्लियर मेडिसिन एक पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। वैज्ञानिक सहायक B बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। वैज्ञानिक सहायक B फिजियोथेरेपी एक पद अनारक्षित है। वैज्ञानिक सहायक B रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। तकनीशियन C नेटवर्किंग एक पद EWS वर्ग के लिए आरक्षित है। तकनीशियन C ऑपरेशन थिएटर एक पद अनारक्षित है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 11 जून 2026। विस्तृत विवरण के लिए देखिए वेबसाइट tmc.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: मैं अनाड़ी हूँ।
3: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
4: नमस्कार। कार्यक्रम परिक्रमा में आपका स्वागत है। मैं हूं सरफिरोजी। श्रोताओं, जून का महीना शुरू हो चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि ये महीना आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा। साथ ही साल 2026 का भी लगभग आधा सफर पूरा हो चुका है, तो पिछले 5 महीनों से आप जिन कामों को टालते आ रहे हैं उन्हें पूरा करने का अब सही समय है। तो थोड़ा वक्त लीजिए, ठहरिए, खुद को रीसेट कीजिए और इन लक्ष्यों को पूरा करने की योजना बनाइए। इसके साथ ही आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। नमस्कार अभिषेक।
5: हेलो सरफिरोजी। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा 100.1 FM गोल्ड। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। विद मी टुडे इज माय को-होस्ट सरफिरोजी। And well, listeners, he is celebrated as a prolific and brilliant literary figure because he mastered multiple genres. Secondly, he produced a staggering volume of work, including 14 novels and nearly 1,000 poems. And thirdly, he innovated by creating the fictional universal landscape of Wessex. Yes, he is none other than the celebrated English Victorian novelist and poet Thomas Hardy. And we shall talk about him later in a program. But first, we begin with the news headlines at this hour.
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया।
5: Government notifies Immigration and Foreigners Amendment Rules 2026 with key changes in registration timelines and the appeals mechanism.
4: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई।
5: ऑरेंज अलर्ट इश्यूड फॉर थंडर स्क्वाल कंडीशंस इन राजस्थान, गुजरात, वेस्ट मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड कोस्टल आंध्र प्रदेश टुडे।
4: और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा।
5: And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about Heat Action Day.
4: जी अभिषेक। श्रोताओं, आजकल भीषण गर्मी और लू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। तापमान कई जगहों पर 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है और इसलिए आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं, गर्मी के असर को कम करने के तरीके। आप इस चिलचिलाती गर्मी और हीट वेव से कैसे बच सकते हैं। आज यानी 2 जून को विश्वभर

0: हीट एक्शन डे के रूप में मनाया जाता है।
1: That's right, Sir Firozi, and the focus is very important, raising awareness about the risks of extreme heat and heat waves, which are becoming more frequent worldwide. And it is an initiative led by Red Cross, Red Crescent Climate Center, and the International Federation of Red Cross and the Red Crescent Societies, IFRC, to raise awareness about the dangers of extreme heat.
0: जी अभिषेक, और बात करें इस साल इस दिवस के थीम की, तो इस दिवस की इस साल थीम है इंडोर हीट, यानी घर के अंदर की गर्मी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अक्सर हमें बताया जाता है कि भीषण गर्मी के दिनों में हमें घर से बाहर निकलते वक्त किस तरह के उपाय अपनाने चाहिए, लेकिन इस साल इस दिवस का जो विषय है ये गर्मी से जुड़े उन छिपे हुए खतरों को सामने लाया है जिनका सामना लोगों को घरों, स्कूलों और वर्कप्लेस जैसी जगहों पर करना पड़ता है।
1: Absolutely, and we often think heat is only an outdoor problem. So what makes indoor heat so serious? Because buildings can trap heat without proper ventilation or cooling, indoor temperatures can become dangerously high, especially during heat waves.
0: इसलिए जागरूकता और कुछ आसान कदम उठाना बहुत मायने रखता है, जैसे आप घरों या फिर वर्कप्लेस जैसी जगहों पर वेंटिलेशन बेहतर रखें, शरीर में पानी की कमी ना होने दें। तो अभिषेक, जब आप अपने श्रोताओं को बताते हैं कि उन्हें गर्मी से किस तरह के खतरे हैं।
1: यस सर फिरोजी, वी आर टॉकिंग अबाउट हीट एग्जॉशन, डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक एंड सीरियस हेल्थ इम्पैक्ट्स, स्पेशली फॉर वल्नरेबल ग्रुप्स लाइक चिल्ड्रन, सीनियर सिटीजंस एंड आउटडोर वर्कर्स।
0: बिल्कुल अभिषेक, इन सब के बीच हीट एक्शन डे अत्यधिक गर्मी के बढ़ते खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को हीट स्ट्रोक जैसे स्वास्थ्य जोखिमों से बचाने के लिए मंच प्रदान करता है।
1: Exactly, Sir Firozi, and heat action day encourages people and authorities to prepare in advance by sharing safety measures, improving early warnings and spreading awareness on how to stay safe during heat waves and what kind of simple steps can people actually follow.
0: बिल्कुल अभिषेक, आपने कहा सिंपल स्टेप्स, तो ये बहुत ही बेसिक और बुनियादी बातें हैं, जैसे कि हमें खूब पानी पीना चाहिए, दोपहर के जो सबसे गर्म घंटे हैं उसमें सीधी धूप से बचें, हल्के कपड़े यानी सूती कपड़े पहने, और ऐसे लोग जो गर्मी को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं उनका भी हम हालचाल लेते रहें।
1: एब्सोल्युटली, एंड द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अर्ज द पीपल ऑफ द कंट्री टू टेक अटमोस्ट केयर ड्यूरिंग द प्रिवेलिंग हॉट वेदर एंड फॉलो द गाइडलाइंस इशूड बाय वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इन दिस रिगार्ड।
0: पिछले महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोगों को लगातार पानी पीते रहना चाहिए और धूप में बाहर निकलते समय सावधानी बरतनी चाहिए।
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: Yes, and now shifting focus to some refreshing ideas to beat the summer heat. Yes, and this time the suggestion comes with a cultural flavor.
0: बिल्कुल अभिषेक, प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि गर्मी से राहत पाने के लिए लोग गर्मियों के अलग अलग पेय पदार्थ पी सकते हैं, जैसे कि आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू का शरबत, बेल पन्ना, पानकम, नीरमोर, संबारम, कोकम शरबत या फिर सोल कड़ी भी। ये पेय पदार्थ पारंपरिक रूप से देश के अलग अलग हिस्सों में बनाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे पेय पदार्थ एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को भी दर्शाते हैं।
2: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली हैं। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
1: And just one sip of these traditional coolers from the tangy aam panna to the soothing lassi feels like a wave of freshness washing away the scorching summer heat. And referring to mangoes, which are often talked about in summer, the Prime Minister said every region has its own mango, its own flavor and its own aroma. He mentioned different varieties of mangoes such as Langra of Kashi, Alfonso of Maharashtra, Kesar of Gujarat and Himsagar of West Bengal.
2: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो

0: कंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है।
1: Yes, and heat is not just uncomfortable, it can be dangerous. But the good news is there are simple ways to reduce its impact on our daily lives.
2: बिल्कुल अभिषेक, तो बुनियादी बातों से शुरुआत करते हैं। जब गर्मी बहुत ज्यादा हो तो हम क्या कर सकते हैं?
1: First, stay hydrated, drink water frequently, even if you don't feel thirsty. Avoid going out during peak afternoon hours, usually between 12 p.m. and 4 p.m.
2: इसके अलावा हल्के रंग के ढीले ढाले सूती कपड़े पहनना सबसे सही है। साथ ही आप जब बाहर जा रहे हैं तो छाते या हैट कैप का इस्तेमाल करना ना भूलें।
1: And what about homes and workplaces? Can they help in reducing heat stress?
2: बिल्कुल अभिषेक, दिन में पर्दे बंद रखना, रात में क्रॉस वेंटिलेशन का इस्तेमाल करना और बिल्डिंग्स के आसपास पेड़ लगाने जैसे छोटे छोटे कदम बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं।
1: And we often forget about checking on others, right?
2: बिल्कुल अभिषेक, खासकर बुजुर्गों, बच्चों और जो बाहर काम करते हैं, एक बार उनका हालचाल पूछ लें तो उन्हें होने वाली कई बीमारियों से वो बच सकते हैं। गर्मी से बचाव का मतलब है छोटे छोटे समझदारी भरे कदम उठाना, जो मिलकर हमारी सेहत को अच्छा रख सकते हैं, जोखिम को कम कर सकते हैं और सबसे जरूरी, गर्मियों को सभी के लिए ज्यादा सुरक्षित बना सकते हैं।
1: So, listeners, stay cool, stay safe and take care of yourself and those around you.
2: कम शब्दों में कहें तो हीट एक्शन डे याद दिलाता है कि हमें गर्मी में बढ़ते तापमान के बीच सावधान रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए और सुरक्षित रहना चाहिए, क्योंकि गर्मी को हराने की शुरुआत होती है जागरूकता से और सही कदम उठाने से।
1: So to wind up our talk on this heat action day, the message is clear. Heat is not just an outdoor challenge, it's an indoor reality too. And it demands awareness and preparedness everywhere, because protecting life starts at home, at work, and in every space we live in.
2: श्रोताओं, अब समय है आपको देश भर की परिक्रमा पर लेकर चलने का और अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि आज हमारे लिए उनके पास क्या खास जानकारी है। सबसे पहले शुरू कर रहे हैं छत्तीसगढ़ से। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में करीब 4000 दुर्लभ पांडुलिपियां मिली हैं। ज्ञान भारतम अभियान केवल पांडुलिपियों के संरक्षण का प्रयास नहीं है, बल्कि ये हमारी ऐतिहासिक स्मृतियों, सांस्कृतिक पहचान और ज्ञान की विरासत को भविष्य तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण जरिया भी है। इस पर हमारे रायपुर संवाददाता जानकारी दे रहे हैं।
3: क्या आपने कभी सोचा है कि किसी पुराने संदूक, पूजा घर या पारिवारिक संग्रह में रखी एक हस्तलिखित पांडुलिपि हमारे इतिहास, संस्कृति और ज्ञान परंपरा के कितने अनमोल रहस्यों को अपने भीतर समेटे हो सकती है? इन्हीं धरोहरों को खोजने और सुरक्षित रखने के लिए देश भर में ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी यह अभियान तेज गति से आगे बढ़ रहा है और लगातार महत्वपूर्ण उपलब्धियां सामने आ रही। अभियान के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में दुर्लभ पांडुलिपियां और ऐतिहासिक दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में चार पीढ़ियों से सहेज कर रखी गई रामचरितमानस की दुर्लभ पांडुलिपि मिली है, जबकि सरगुजा जिले के लुंड्रा क्षेत्र में ताड़ पत्रों पर लिखी प्राचीन पांडुलिपियों का महत्वपूर्ण संग्रह सामने आया है। पेंड्रा में लगभग 500 वर्ष पुरानी हस्तलिखित श्रीमद् भागवत गीता, ऐतिहासिक वंशावलियां और पुराने नक्शे भी खोजे गए हैं। गुजा के झिरमिट्टी गांव में लगभग 250 वर्ष पुरानी रामचरितमानस आधारित पांडुलिपि का डिजिटल संरक्षण किया गया है। वहीं दामा खेड़ा स्थित कबीर आश्रम में 326 वर्ष पुरानी दुर्लभ पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। इस अभियान की उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में बिलासपुर जिले के ऐतिहासिक मल्हार में प्राप्त दुर्लभ ताम्र पट्टिकाओं का उल्लेख किया है। लगभग 1400 से 1500 वर्ष पुरानी मानी जा रही ये ताम्र पट्टिकाएं उस दौर की शासन व्यवस्था, संस्कृति और सामाजिक जीवन की महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करती हैं। ज्ञान भारतम अभियान के अंतर्गत अब तक छत्तीसगढ़ में 4000 से अधिक पांडुलिपियों का सर्वे किया जा चुका है। इन धरोहरों को डिजिटल माध्यम से सुरक्षित किया जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान परंपरा से जुड़ी रह सकें। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
1: In a significant step towards strengthening Puducherry's industry

0: battling societal or economic adversity, and his performance in the 1951 film Awara was so impactful that Time magazine ranked it among the top 10 greatest movie performances of all time. Let's listen in to a dialogue from that movie.
1: बस यही तो हमारे नए समाज का कमाल है, जो चोर दूसरों की जेब काटते, पब्लिक की आंख में फूल डालते, मेरे जैसे पसला सूट पैंट पहनते, उन्हें हम शरीफ समझते, और जो ईमानदारी से मेहनत मजदूरी करके पेट पालते, फटे पुराने कपड़े पहनते, उन्हें चोर डाकू आवारा समझकर थर लिया जाता है।
2: राज कपूर हिंदी सिनेमा जगत का वो नाम है जो 8 दशकों तक फिल्मी आकाश पर जगमगाता रहा और आने वाले कई दशकों तक भुलाया नहीं जा सकेगा। फिल्म अभिनेता, निर्माता, निर्देशक राज कपूर भारत के साथ साथ तत्कालीन सोवियत संघ और चीन में भी अत्यधिक लोकप्रिय रहे।

0: आग नीलकमल आवारा श्री 420 जिस देश में गंगा बहती है जागते रहो राम तेरी गंगा मैली आदि राज कपूर साहब की कुछ मुख्य फिल्मों के नाम हैं। हम आपको उनकी फिल्म अनाड़ी का एक डायलॉग सुनाते हैं।
1: मैं अनाड़ी हूँ, हम जैसे को इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं। इस दुनिया में जीने का अधिकार तो उनको है जिन्हें सड़कों पर बटुए मिले और उन्होंने वापस नहीं किए। ये दुनिया दिल वालों की नहीं, दिमाग वालों की।
2: Yes, and we also remembering Dominic Francis Dom Moores, who passed away on this day in 2004. He was a foundational figure in the Indian English literature, a prolific poet, journalist, war correspondent, and a documentary filmmaker. He published nearly 30 books, including several acclaimed poetry collections and autobiographies. And like we were mentioning in the beginning of our program, Thomas Hardy was born on this day in 1840. He was a monumental English novelist and poet of the Victorian era, widely celebrated for his vivid depictions of rural life and tragic, socially critical narratives. Heavily influenced by Romanticism and the changing pastoral landscape of his native Dorset, his works challenge strict Victorian morality.
0: आज ही जयंती है भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशकों में से एक मणिरत्नम साहब की। ये तमिल तथा हिंदी दोनों भाषाओं के ख्याति प्राप्त फिल्म निर्माता हैं। मणिरत्नम ऐसे निर्देशक हैं जिन्होंने अपनी उम्दा फिल्मों से भारतीय फिल्म उद्योग को विश्व में पहचान दिलाई। फिल्म निर्देशक के रूप में इनकी पहली फिल्म कन्नड़ में पल्लवी अनुपल्लवी थी, जिसमें अभिनेता अनिल कपूर और लक्ष्मी ने काम किया था। मणिरत्नम को अब तक 6 राष्ट्रीय पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। मणिरत्नम की मुख्य फिल्मों में नायकम, गीतांजलि, रोजा, बॉम्बे, साथिया तथा युवा और दिल से आदि प्रमुख हैं।

0: भारतीय टेलीविजन और सिनेमा जगत के प्रसिद्ध अभिनेता निर्देशक नीतीश भारद्वाज का आज जन्मदिन है। एक साधारण मराठी ब्राह्मण परिवार में जन्मे नीतीश ने न केवल अभिनय की दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़ी, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के किरदार के जरिए लाखों करोड़ों दर्शकों के दिलों पर भी इन्होंने राज किया। आपको सुनाते हैं इनकी इसी धारावाहिक का एक डायलॉग।
1: इन्हें बोलने दीजिए पितामह, बोलने दीजिए।
2: यदि मैं दूत न होता तो क्या कर लेते युवराज?
3: यूं मेरी माता श्री की बात करने पर मैं तुम्हारी जीव खींच लेता
2: और
3: तुम्हें बंदी बनाकर कारागृह में डाल देता।
2: राजदूत को बंदी बनाओगे युवराज? उस अतिथि को बंदी बनाओगे जिसके स्वागत के लिए कुरुश्रेष्ठ गंगापुत्र भीष्म और आचार्य श्रेष्ठ द्रोण और कृप गए थे?

0: श्रोताओं, अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इजाजत दीजिए सर फिरोजी और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 305.8 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर, और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सरायपाली केंद्र है। 5 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: दीवाने गजराज
1: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये गर्जंडी, सिंह, भरदा, पलहड़ा, धर्मपुर, गौरा, गणेशपुर, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के रामानुजगंज और वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये चिनिया, महावीरगंज, शिवपुर, कनक पुर, टकिया, मेंढारी, भगवानपुर, नवापारा, इकनारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये सकालो, किशुनपुर, घंघरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, पड़ोली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, सायर, कुमडेवा, लक्ष्मणगढ़, उदर बसवार, केदमा, जगरना नाथपुर, ढोढ़ा गांव, कठबुड़ा, शिवनाथपुर, घासीडी, दातीढाप, गढ़गांव, बैडाड़, चोरकी पानी, कंडराजा, पेंट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव, तपकरा में हाथियों की कुल संख्या 33 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, रानी कोम्बो, कुंजारा, लोटा पानी, मयूर चूंदी, बरटोली, खड़ा माचा, चट्टान पारा, महुआडी, खुटसेरा, पतेबहाल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं।

0: धर्मजयगढ़ वन मंडल की छाल, धर्मजयगढ़ और कापू में हाथियों की कुल संख्या 124 है। ये आमगांव, पोटिया, ओंगना, चैनपुर, रुपुंगा, बोजिया, बनहर, औरानारा, बेहरा मार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गठघोरा वन मंडल के एतमानगर, जडगा और किंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये कोदवारी, सलिहा भाटा, बांधा पारा, लालडी, झुनकीडी, जुनवानी, कुकरी कादर, फुलसर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये छर्रा टांगर, बंगूरसिया, जुनवानी, चिमटा पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये तालदादर, पकरीद, नवागांव, कोठारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडईपानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारीपानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: हमर हाथी हमर गोट ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम कुछ ही क्षणों में। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। समय है कार्यक्रम विवरण का। हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के कुछ मुख्य कार्यक्रमों का विवरण आपको बता दें। स्पोर्ट्स कैन सुनेगा रात 8:30 पर, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम 5:10 पर युवा साथियों के कार्यक्रम युववाणी में अपन गोट का विषय होगा अपन संस्कृति माँ गर्व कराओ। होंगे क्रम सवाल जवाब और माटी के गीत। प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां सुनिएगा शाम 6:30 पर। किसानों के कार्यक्रम चौपाल में शाम 7:21 पर आज की बात में सुनिएगा समन्वित कीट नियंत्रण और खरपतवार प्रबंधन पर खेत की गहरी जुताई विषय पर जानकारी। शाम 7:30 पर किसानवाड़ी में होगा फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानवाड़ी, जिसमें नैनो और दानेदार खाद का विवेकपूर्ण उपयोग खेती की लागत घटाए लाभ बढ़ाए विषय पर जानकारी देंगे दिनेश गांधी उप प्रबंधक इफको रायपुर। संचालन करेंगी निधि शर्मा, प्रस्तुतकर्ता होंगे शशि प्रकाश पांडे। लोक संगीत के कार्यक्रम में रात 8:15 पर कलाकार होंगे सुखियारिन मानिकपुरी और साथी। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम में आज सुनिएगा किसान कल्याण पर कार्यक्रम रात 9:25 पर। श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद सुनिएगा रात 10:00 और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनिएगा कीर्ति व्यास का वायलिन वादन, राग होगा पुरिया धनाश्री। ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। अब सुनिए कल के कुछ मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। स्पोर्ट्स कैन प्रसारित होगा कल रात 8:30 पर। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिली किए जाएंगे। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम के अंतर्गत

मध्यमवर कल्याण पर कार्यक्रम सुनिएगा कल रात 9:25 पर। सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर का समय होगा कल सुबह 7:05 पर। कल सुबह 8:30 पर प्रस्तुत होगा आपके पत्र, प्रस्तुतकर्ता होंगे दीपक हटवार। गांधी चर्चा, इस कार्यक्रम में कल सुबह 9:00 सुनिएगा महात्मा गांधी के संस्मरण, मेरे समकालीन का धारावाहिक पाठ, वाचक स्वर प्रकाश उदय और रमा शंकर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 10:00 सुनिएगा देवाशीष भट्टाचार्य का गिटार पर बजाया राग गौड़ सारंग और पंडित बुधादित्य मुखर्जी का सितार पर बजाया राग अहिल्या बिलावल। इस कार्यक्रम में कल रात 10:30 पर आप सुनेंगे विदुषी लक्ष्मी शंकर का गाया राग मारू बिहाग में ख्याल। ईमेल भेजो, छत्तीसगढ़ी गीत सुनो प्रसारित होगा कल सुबह 11:05 पर। नाटक मुन्नी बाई सुनेगा कल दोपहर 1:30 पर। लेखक श्री विभु कुमार, प्रस्तुतकर्ता श्री लाल राम कुमार सिंह। युवाओं का कार्यक्रम युवाणी सुनेगा हिंदी में कल शाम 5:10 पर, जिसमें आजकल का विषय होगा विश्व साइकिल दिवस और होंगे क्रम पत्र मिला और यादें। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। शाम के 5:10 हुए हैं, अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवा।

0: हमर संस्कृति ही हमर पहचान है, हमर अंतस के सम्मान है।
1: जिन माटी में जमन जन्म धरें उही कोरा के अभिमान है।
0: अपन संस्कृति के भाव सजा के युवाणी के बगिया माँ हम आगे आपके दो मयारू संगी, मैं थनेश्वरी बघेल
1: और मैं ललिता साहू। तलेवा झोको हम दोनों संगी डहर ले मया भरे
0: राम राम, राम जय जोहार। ललिता, हमार कला संस्कृति परंपरा के इतिहास अगलो बड़ सुघर हावे संगवारी। कतकुन परंपरा ऐसे है जेन हा बड़ जुन्ना बेरा ले चलत आथे और वो रीति नीति ला आज घला हमन हा जियत हन।
1: हो संगवारी, हमार भारत भुया मा विविधता देखे ला मिलते। बोली भाखा, खान पान, रहन सहन भले अलग हावे, फिर यहाँ एकता के मिसाल घलो हावे।
0: बिल्कुल, जम्मो तीज तिहार ला मिलजुल के मनाथन, काम बुता मा तको सहयोग के भाव देखे ला मिलते। फिर कभू कभू मैं हा सोचता हूँ ललिता कि दूर दराज के गाँव मन में जैसे पहाड़ी इलाका मन के रहन सहन हा घला कति कठिन होत हुई की के।
1: वो तो होते छो ही संगवारी, काबर की बहुत अकन सुविधा बढ़ तो शहर में आयल लगते। अब जीवन यापन करना है ता जिंदगी में संघर्ष तो करेज पर थे।
0: बिल्कुल भाई, सिर तो कहा था ललिता, ये तय सही कहे कि संघर्ष करेज ला पर थे। तब वोमा वोमन हा अपन भीतर के कलाकारी ला उजागर करके नवा आकार देते। नहीं ते जेन बूता तैहा ले उनकर सियान मन हा करत रीन है वोला वोमन हा आगू बढ़ाते।
1: वहु मन अपन परंपरा ला जीते, तिहार बार मा एक दूसर संग मिल के मनाते।
0: बिल्कुल, और हर खास तिहार मन में आने आने पकवान अपन महत्व ला बता देते। वैसने ही जैसे अपन परदेश के कलेवा हा।
1: हाओ, पहनावा ओढ़ना तन ढके के संगे संग सुघरई ला बढ़ा देते। फिर ओहा सिर्फ कपड़ा ही नहीं, वो खास जगह के पहनावा मनला परिभाषित करते।
0: बिल्कुल संगवारी, सही कहा था। कहूँ जाथन ता देखथन कि अक्सर खान पान के स्वाद तो लेथन ही, फिर संग मा उहां के सवांगा के घलो हमन हा शौकीन हो जाथन। बोलचाल के भाखा संग में उहां के रहन सहन ल जाने के प्रयास करथन और लोगन संग घलो मिलथन।
1: सही कहतस, वैसे तो सबला अपन अपन जगह हा बहुत पसंद होते।
0: हाँ भाई,
1: भले सारी जिनिस रही जही फिर मन तो करते कि एक बार उहां चल देते।

0: बिल्कुल। अब जब हम कहूँ पर्यटन स्थल मन में जाथन तब बहुत अकन प्राकृतिक जिनिस ल समझथन। उहाँ के रुख राई कबू कबू लागते कि ये रुख ह हमर ले कोन जानी कतेक बड़े होही उमर म कहिके। संगवारी वन जीव जंतु जेहा अपन यहाँ नै मिलय ओला देख के मन ह मार जाथे।
1: भाई प्रकृति ही हे जेन हा कोनो जगह के सुघरई ला औ बढ़ा देथे औ इही सुघरई मन के ला आकर्षित करथे।
0: बिल्कुल सही के हमर भुइया मा प्रकृति औ इहाँ के संस्कृति अद्भुत हावे। अब बेरा हे त एला संजोए राखे के।
1: प्रकृति के रखवार मन परंपरा औ कला संस्कृति ला संजोए के राखथे संगवारी, काबर की ओमन पर्यावरण संग रही के जीवन यापन करथे।
0: बिल्कुल, एखर ले हमूला सीख मिलथे कि परंपरागत चलत अपन रीति रिवाज नियम कला संगीत नृत्य एखर संग गर्व ले जियन।
1: सिरतुन कहत हस कई जन अपन बीच ऐसे संगी घला होते ना कि अपन हुनर प्रतिभा ले परिपूर्ण होके सुघर रूप में कोनो जिनिस ला सजाते।
0: बिल्कुल, और ऐसा जिनिस मन के उपयोग करते जेमा मेहनत घलो ज्यादा लगते ही फिर उतके सुघर घलो दिखते वहा। और हम यहू देखथन कि कहीं जो सगा घर जाथन ता उहां एक ना एक ऐसा जिनिस जरूर देखे ला मिलते जेहा हमला मोह डार थे। मन लगते कि एला संग मा लिख जाते का।
1: सही कहत हस संगी हो अपन संस्कृति

0: ई परंपरागत चलत अपन रीति रिवाज नियम कला संगीत नृत्य एखर संग गरब ले जियन।
1: सिरतुन कहत हस कई जन अपन बीच ऐसे संगी घला होते ना कि अपन हुनर प्रतिभा ले परिपूर्ण होके सुघर रूप में कोनो जिनिस ला सजाथे।
0: बिल्कुल, और ऐसा जिनिस मन के उपयोग करते जेमा मेहनत घलो ज्यादा लगते ही फिर उतके सुघर घलो दिखते वहा। और हम यहू देखथन कि कहीं जो सगा घर जाथन ता उहां एक ना एक ऐसा जिनिस जरूर देखेला मिलते जेहा हमला मोह डारथे, मन लगथे कि एला संग मा लेक जतेव का।
1: सही कहत हस, संगी हो अपन संस्कृति विरासत के गोट करबो ता बहुत अकन ऐसा जिनिस घलो हावे जेहा विलुप्ति के कगार मा हे।
0: सिरतोन में संगवारी हो नवतप्पा के विदा लेके बेरा हो गे हावे, और अब अगोरा है ता मानसून के, और मानसून के बाद अब अगोरा है ता बस मानसून के, और मानसून के बाद तो किसानी भी तो शुरू हो जाते ललिता। फिर खेत मा नांगर नहीं ट्रैक्टर चलत नजर आही, और ते औ आज हर किसानी बूता मा ज्यादा मशीन के उपयोग होय से ती बनिहार मन ला रोजगार घलो कम मिलत हावे।
1: हाँ, आखिरी में हमन यही कहिबो संगी हो, पुरखौती जोन चलत आत है ना वो पद्धति वो मन के उपयोग घला करन भले बेरा थोरकुन लग जाए फिर नंदावत जिनिस मन के संरक्षण तो हो पाही ना।
0: हो पाही बिल्कुल, अब यही गोट बात मन ला चेत राखत अपन संस्कृति परंपरा मा गर्व ले जियन। जिहा अतिथि ला भगवान और वसुधा ला परिवार माने जाते, इहा के संस्कृति बर हर भारतीय गर्व ले मुस्काते।

0: संगवारी हो इन गीत लपन स्वर में सजाए रहीन अनुराग ठाकुर, साधना यादव, कविता हीरक ने जी हा।
1: अब गीत ला सुने बर चाहरीन हमारी संगवारी मन हा। डोंडी लोहारा ले संगवारी मन हावे डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी चंचल कामेश माहिर नेताम, लच्छनपुर ले संगवारी मन है विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति साहू, लगान पंडरिया ले उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी साहिल भारती बघेल, रायपुर ले संगवारी मन हावे संगीता वर्मा, नागेश यामिनी प्रीति, अभिजीत यादव, योगेंद्र गंगवीर और अभिलाषा शर्मा मनहा।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
2: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
3: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
2: बस
3: बस
2: समझ गया।
3: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: तो ललिता,
0: हाँ,
1: आजकल देखथन ता हमारे युवा संगवारी मन हा अपन सपना ला पूरोए बर अपन पढ़ाई ला घलो ज्यादा महत्व देवत है और संगे संग कमाए बर घलो ध्यान देवत है, मतलब दो पैसा आना जरूरी समझा था वे।
0: हाँ संगवारी, आजकल का है ना कौशल विकास बहुत जरूरी है।
1: हाँ।
0: काबर की अगर हमन के माँ बाप मन के ऊपर ही अगर आश्रित हो जाबो तो माँ बाप मन अपन जिंदगी ले और कैसे बढ़िया घूम पाए,
1: काबर की ओकरो जिंदगी है तो हाँ, मेहनत हाँ, ले बीते हावे।
0: हाँ, तो आजकल ना हमार युवा संगवारी मन बहुत मतलब
1: जागरूक
0: हो गए हैं। हाँ, और अपन पढ़ाई लिखाई ला अपन ले भी ज्यादा महत्व देते, अपन काम काज ला एक समय सीमा तक रख के ओकर बाद में पढ़ाई करके बहुत मेहनत करके आईएएस वाईएएस बनत है।
1: बिल्कुल भाई, बहुत जरूरी हावे की अपन खुद के मेहनत ले एक बहुत बढ़िया पद पाना और अपन अपन नाम संग अपन माँ बाप के नाम घलो रोशन करना, तो एखर बर जरूरी हावे। और हमन इसने ही जानकारी मनला बढ़ाए बर हमन हमार युवानी कार्यक्रम में हमन खास क्रम लाथन आज के दिन, यानी कि क्रम सवाल जवाब अंक। तो भाई देरी नहीं करन और झटकुन शुरू करथन आज के खास क्रम सवाल जवाब। तो भाई ललिता, पाछू दरी पूछे गेरी से सवाल लो ओकर जवाब ल बता देथन संगवारी मन ला।
0: हाँ।
1: तो संगवारी हो क्रम सवाल जवाब अंक 232 के हमर पहलिया सवाल रही से आप मन हा मिला लो सही उत्तर ला। हमर पहलिया सवाल हावे सबसे जहरीला पदार्थ के नाव बतावा।
0: तो संगवारी हो ए सवाल के सही जवाब रही से रेडियम और बोटुलिनम टॉक्सिन। तो संगवारी हो बोटुलिनम टॉक्सिन के उपयोग सौंदर्य प्रसाधन में बोटॉक्स के रूप में करे जाते।
1: तो संगवारी हो ए अंक खातिर हमारे दूसरिया सवाल रही से भारत के सबले बड़े राज्य जनसंख्या के दृष्टि से कौन हवे।
0: तो संगवारी हो ए सवाल के जवाब हावे उत्तर प्रदेश। और संगवारी हो सबले कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम हरे।
1: तो संगवारी हो ए अंक खातिर हमर तीसरिया सवाल रही से कौन देश हा पर्यावरण संरक्षण बर ग्रीन आर्मी के

0: शुरुआत करीन है।
1: तो संगवारी हो तिसरैया सवाल के सही जवाब हवे ऑस्ट्रेलिया, और संगवारी हो ग्रीन आर्मी योजना है ना 2014 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा शुरू करे गई रही से, जेकर उद्देश्य रही 1500 युवा मन ला पर्यावरणीय कार्यक्रम में शामिल करना।
0: तो संगवारी हो सवाल जवाब अंक 232 के हमर चौथा सवाल रही से, हाल ही में हमर राज्य में निस्वार्थ चिकित्सा और मानव सेवा बर कौन ला पद्मश्री सम्मान ले सम्मानित करेगी से।
1: तो संगवारी हो सवाल जवाब अंक 232 के चौथा सवाल के सही जवाब रही से डॉक्टर रामचंद्र गोड बोले और श्रीमती सुनीता गोड बोले जी हाँ। तो संगवारी हो डॉक्टर रामचंद्र और ओकर बाई सुनीता गोड बोले मन हाँ छत्तीसगढ़ के बस्तर दंतेवाड़ा क्षेत्र में आदिवासी समुदाय के स्वास्थ्य सेवा बर प्रसिद्धि पाए हावे चिकित्सक दंपत्ति हरे, जेन मन 35 ले ज्यादा बछर तक नक्सल प्रभावित क्षेत्र में निस्वार्थ भाव ले चिकित्सा पोषण और जन जागरूकता के काम करे हावे।
0: तो संगवारी हो ए अंक खातिर हमर पांचवा सवाल हावे, क्रिकेट के जन्मदाता देश कौन राष्ट्रला माने जाते।
1: तो संगवारी हो एकर जवाब हावे इंग्लैंड, और इंग्लैंड है ना संगवारी हो 16वीं शताब्दी में हो रही से यहाँ पे क्रिकेट के जो जन्मदाता है इंग्लैंड वहाँ 16वीं शताब्दी में एक जन्म हो रही से, और पहला आधिकारिक तौर में टेस्ट मैच 1877 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेले गए रही से।
0: तो संगवारी हो हमें छठवा और आखिरी सवाल रही से, छठवैया सवाल रही से, छत्तीसगढ़ी जनौला मारो ता रो देवे धरो ता चुप हो जावे।
1: तो संगवारी हो ए छत्तीसगढ़ी जनौला के सही जवाब रही सावे बाजा ढोलक मृदंग बर्तन। तो संगवारी हो इन मन ला जब हम मारथन ना तो आवाज़ आते, और हाथ लगा के रखथन ना तो कंपनता हर रुक जाते, तो आवाज़ आना बंद हो जाते।
0: तो भाई सवाल के जवाब ल तो आप मन हम इलाड़ रहे हो संगवारी हो, तो भाई जेन सही जवाब पठो है तेन संगवारी मन के नाव ला घलो जान लेथन। हमर करा आहे छह सही जवाब बर संगवारी मन हावे, बिलाई गढ़ले रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता डिंपल देवांगन, पलारी छत्तीसगढ़ ले नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद परम संगवारी मन हा, और लखन लाल देवांगन, पहांदा पलारी ले नितेश कुमार, ईशांत सावित्री बाई, तनुजा बाई देवांगन, डोंगरगांव ले राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, पीपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ ले उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी भानुप्रिया योगिता वंशिका दिवाकर, हिंगोली महाराष्ट्र ले साहजी बोड़खे, श्रीमती नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे, भड़गा कोदवा गुड़ान ले श्याम सिंह मरावी, राजकुमारी रानी रजनी राहुल पूजा मरावी, कुई ग्राम भंगी टोला ले ननकाराम धुर्वे, जामुनबाई धुर्वे, फिरत राम धुर्वे, मालती धुर्वे, बन बघेरा राजनांदगांव ले योगेश सारवा, नीरज नीलेश अंजलि रोशनी सारवा, महामाया चौक चिल्फी मेघापारा ले राम कुशल पटेल, दीपांशु दिव्या दीपांजलि, दीपक टेकलाल पटेल मना,
1: पटेल नगर मलोट ले डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, आरजू जजोरिया और गुड्डू, रोहांसी पलारी ले श्यामलाल साहू, युवराज साहू, मुकेश साहू, नंदनी साहू, मनीष साहू, मयंक साहू, जानकी साहू, बाजार चौक कुल्लू बंजारी जिला राजनांदगांव ले रवि नारायण उइके, ईशांत उइके, चंद्र प्रकाश उइके, डिसिता मालिनी और मुनमुन, रिंगनी छत्तीसगढ़ ले दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, बागबहरा भदरसी ले पन्ना लाल सेन, खुशबू सेन, तारा सेन, कौशल सेन, भाटापारा ले बचकामल मोतीलाल यादव, बसंत भृगु, विनय ठाकुर, चोवाराम बादल, अब्दुल मजीद कुरेशी, रेहाना बेगम, नवागढ़ कटई ले नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, शारदा मयंक वर्मा, कन्या दमोह विकासखंड बिरसा, बालाघाट मध्य प्रदेश ले ध्रुवाराम साहू, परसराम साहू, देवानंद साहू, श्वेता योगिता, केंजल साहू, हिच्छा महासमुंद ले अदालत दास वैष्णव, मानस शांति वैष्णव, रीचा गायत्री वैष्णव, कांकेर संबलपुर ले फागू राम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव।
0: और संगवारी मन हावे आर्यनगर कोहका भेलई ले उत्तम सिंह जंघेल, मोरस अनिल अजीत आयुष नंदिनी जंघेल, गंडई टिकरी पारा ले जगेश्वर देवांगन, कचरीबाई दीपक कुमार, गायत्री ऋषभ ऋचा देवांगन, भीमखोज तरपुंगी ले संतोष गुप्ता, हितेश होमेश लक्ष्मी प्रतिभा शीतल गुप्ता, छत्तीसगढ़ पलारी ले प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा, संगवारी मनहावे देवरी

0: भाटापारा ले गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश राम मिस्त्री, हरदेव लाला पारा वार्ड सिमगा ले रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकू सन्नी, कोमल यादव, बाघामुड़ा कुमा खान छत्तीसगढ़ ले प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी देवांगन, प्रकाश देवांगन, गायत्री यशवर्धन, यशस्वी देवांगन, खमहार मुड़ले सतीशगिरी गोस्वामी, श्रेयांश शिवाय, एकांश गोस्वामी, गेंदाटोला बाजार चौक राजनांदगांव ले वीरेंद्र गुप्ता, अंजलि योगिता, गजेंद्र गुप्ता, सुंदर पारा रोहासी ले डगेसर राम साहू, नूतन गौरव घनश्याम, अलका जानवी साहू, दतरेंगी ले द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा मनहा।
1: और यही रिक्के हमन संगवारी मन है हसदा नंबर दो ले कमलेश साहू, जितेंद्र प्रवीण, पायल, लक्ष्मी, गीतांजलि, आकांक्षा, पार्वती, टिकेश्वरी, नागेश्वरी, तुलसाराम साहू, गांव तेंदुभाटा मगरलोड जिला धमतरी ले उमेंद्र कुमार निसार, मोहेश्वरी देविका, पोषण नूतन, सुरेंद्र यशस्वी, भास्कर, किशन, भूपेश, दिव्यांश, शिवा निषाधा, ग्राम पंचायत भदरसी ले घनाराम सेन, गीतेश सेन, दीपेश सेन, निर्मला सेनहा, लक्षणपुर ले रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी सतीश शिवम, मुकेश कुमार साहू, ग्राम पुरैना शहीद नगरी छुई खदान जिला खैरागढ़ ले पूजा जंघेल, बेबी धारनी, रेखा मास्टर, ध्रुव जंघेल, कुटेना पांडुका जिला गरियाबंद ले झामेश्वरी साहू, टीकम लाल, भूषण लाल, कामती कामता साहू, प्रीतम वासुदेव, खल्लारी भीम खोजले, जी एल साहू, सरोज साहू, छोटी पिंकी, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र ले संतोष खड़से, विनोद खड़से, साल्हे भाटा महासमुंद ले जीतू ध्रुव, केवल ध्रुव, किरण दिव्यांशी, खेमू ध्रुव, बाजार वार्ड महासमुंद ले भीष्मदास, मानिकपुरी, नर्मदा हिरमणि, दीपक, लक्ष्यदास, भनपुरी मुसरा ले आत्मा राम यादव, सुखदेव विदेशी, होमेश्वर मनेश्वर, लाक्षी तुलसी यादव।
0: तो पांच सही जवाब पठैया हमार संगवारी मनहावे सिंगार बाड़ी घुटकू ले भगत राम पटेल, किशन सोना मानवी पटेल, श्यामनगर दुर्ग ले प्रदीप खंडेलवाल, नीता खंडेलवाल, धरदी सरगांव छत्तीसगढ़ ले चंदूलाल पटवा, सुनीता हर्ष कुमार पटवा, विनीत कुमार क्रिस्टी पटवा, औ संगवारी मन हावे पुरैना शहीद नगरी छुई खदान ले धर्मेंद्र जंघेल, संतराम लोधी, नागेश्वर जंघेल, साहूकार लोधी, औ संगवारी मन हावे आमा खुड़रा रिंगा खार ले देवी सिंह नेताम, गीत सरगम नेताम मनहा, इंदिरा चौक तखतपुर ले मिश्री लाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस, औ गंगा देवी विश्वकर्मा, कुटना पांडुका गरियाबंद ले संगवारी मन हावे झामेश्वरी साहू, टीकम लाल, भूषण कामती कामता, प्रीतम वाशुमन हा। तो ये तो रही से भाई छह सही जवाब पठुया हमार संगवारी मन के नाव। तो बहुत बहुत बधाई है भाई आप जम्मो संगवारी मल्ला जे मन हा सही जवाब पठो के भेजे हो। तो अवैया सवाल ला लिखू फिर उखर ले पहली चलो भाई सुन लेथन ये सुगर माटी के गीतला।

0: वाहरे करम हरि के। संगवारी हो ये सुघर गीत ला अपन सुर में सजाए रही ने सुनील सोनी मनहा।
1: और सुने बन चाहे रही से ये संगवारी मनहा दतरंगी भाटापारा ले लोखेलाल वर्मा हीरामणि पारसमणि पुष्पेंद्र मणि वर्मा लुकाऊपाली छतवन ले पुनीत राम सूर्यवंशी निर्मला सिंह निहारिका पंकज सिंह सूर्यवंशी डोंडी लोहारा बालोद ले देवशंकर नमूरिया अजय देव तुसार डॉली बेबी पूजा आरती प्रभा देवी तामूरिया कोयलारी ले कैलाश चंद्राकर मुकुंद पूर्णेन्द्र साहिल चंद्राकर बोडसरा नैला ले प्रमोद कुमार साहू बीमा वैभवी विभूति साहू सौंगा मगर लोड ले फनेश कुमार चंदन सावित्री देवी मोहित कुमार देविका रानी गजेंद्र हेयांस कुमार चंदन खलारी भीमकोजले जीएल साहू सरोज छोटी पिंकी डोरी घोटिया ले मोहला मानपुर ले महेश कुमार निषाद रंभा रानी निखिल नैतिक पुष्पांजलि स्वप्निल कुमार निषाद काकदेही नगर पंचायत समुदा ले रोहित कुमार साहू नंदनी अमन साहू ग्राम गुढ़ा राज ले मनोज साहू चित्रेखा देवेंद्र लवीना चंचल वासनी गरिमा साहू मनहा।
0: संगवारी हो एक ठन सूचना सुनाओ। सूचना हावे पिछले 25 मई के दिल्ली ले कार्यक्रम प्रसारण करे जाए से थी हेलो युवानी के प्रसारण नहीं हो पाए रहीस ओखर प्रसारण अब आगामी 8 जून के होए के कारण काली यानी बुधवार के हेलो युवानी के रिकॉर्डिंग नहीं करे जाए सूचना समाप्त हुई। तो संगवारी हो सवाल लिखे बर आप मन हाँ तैयार हो गए हो तो देरी नहीं करन आप मन के अगोरा ल दूरिहा था नौ हमर नवा सवाल ल बता था। तो सवाल क्रम सवाल जवाब अंक 233 के हमार पहले यह सवाल हावे लिख लो

0: हमर पहले यह सवाल है, कौन से राज्य सरकार हा, कौन से राज्य सरकार हा यूपीएससी परीक्षा के तैयारी करैया, यूपीएससी परीक्षा के तैयारी करैया मनबर सीएम इंस्पायर योजना शुरू करे है।
1: संगवारी हो, क्रम सवाल जवाब अंक 233 के पहले यह सवाल है, कौन से राज्य सरकार हा यूपीएससी परीक्षा के तैयारी करैया मनबर सीएम इंस्पायर योजना शुरू करे है।
0: सवाल जवाब अंक 233 के दूसरे यह सवाल लिखो, राजस्थान के कौन प्रसिद्ध लोक संत, राजस्थान के कौन प्रसिद्ध लोक संत के 52 सिलसिला 52 स्तंभ कहे जाते।
1: संगवारी हो, एक क्रम के दूसरा सवाल है, राजस्थान के कौन प्रसिद्ध लोक संत के 52 सिलसिला 52 स्तंभ कहे जाते।
0: ए अंक खातिर तीसरा सवाल लिखो, तीसरा सवाल है, फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कौन धावक हा पुरुष 100 मीटर दौड़ में नवा राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए है।
1: सिंगवारी हो, ए अंक खातिर तीसरा सवाल हावे, फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कौन धावक हा पुरुष 100 मीटर दौड़ में नवा राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए है।
0: सवाल जवाब अंक 233 के चौथा सवाल लिखो, चौथा सवाल है, भारत के प्रथम औद्योगिक नीति के घोषणा कौन से बच्चर करेगी रहीस।
1: संगवारी हो, ए अंक खातिर चौथा सवाल हावे, भारत के प्रथम औद्योगिक नीति के घोषणा कौन से बच्चर मा करेगी रहीस।
0: सवाल जवाब अंक 233 के पांचवा सवाल है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाए जाते।
1: संगवारी हो, ए अंक खातिर पांचवा सवाल हावे, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाए जाते।
0: सवाल जवाब अंक 233 के छठवा सवाल है, डीआरडीओ हा भीषण ठंड में तैनात सैनिक मनबर यूनिफॉर्म लॉन्च करे है, यूनिफॉर्म के का नाम है।
1: संगवारी हो, सवाल जवाब अंक 233 के छठवा सवाल यानी कि आखिरी सवाल हावे, डीआरडीओ हा भीषण ठंड में तैनात सैनिक मनबर यूनिफॉर्म लॉन्च करे हावे, यूनिफॉर्म के का नाव है।
0: तो संगवारी हो, सवाल जवाब अंक 233 के सवाल अगर कोनो में छूट गए हो ही तो मैं हाँ एक घाव फिर दोहरावत हूँ, लिख लो हो। पहले यह सवाल हावे, कौन से राज्य सरकार है यूपीएससी परीक्षा के तैयारी करे या मन भर सीएम इंस्पायर योजना शुरू करे है। दूसरे यह सवाल हावे, राजस्थान के कौन प्रसिद्ध लोक संत के 52 सिलसिला 52 स्तंभ कहे जाते। ए अंक खातिर तीसरा सवाल हावे, फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कौन धावक हा पुरुष 100 मीटर दौड़ में नवा राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए है। चौथा सवाल हावे, भारत के प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कौन से बच्चर करेगी रहीस। ए अंक खातिर पांचवा सवाल हावे, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाए जाते। ए अंक खातिर छठवा सवाल है, डीआरडीओ हा भीषण ठंड में तैनात सैनिक मनबर यूनिफॉर्म लॉन्च करे है, यूनिफॉर्म के का नाम है। तो भाई सवाल तो लिख रहे हो तो जवाब लग हलो बढ़िया सही सही भेजू और ओकर बर हमार पता चाहिए आप मल्ला। तो हमार पता ला लिखो, पाती के माध्यम ले सही जवाब पठो हो तेकर बर पता हावे, क्रम सवाल जवाब अंक युवानी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक पोस्ट बॉक्स नंबर 97 आकाशवाणी रायपुर छत्तीसगढ़ पिन कोड है 492001। ईमेल के माध्यम ले अपन जवाब ल भेजू तेकर बर पता हावे airyouth9@gmail.com और एकर सब्जेक्ट कोड हावे संगवारी हो Y13। ता आज के क्रम सवाल जवाब इहे तक।
2: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
3: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
4: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आएं पूर्ण जांच करवाएं।
3: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
4: 47 सालों से निरंतर सेवा में
3: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड तेली बांधा रायपुर।
0: तो ललिता गोट बात तो कर बच्चे, फिर मोर मन करत है मैं हाँ तुला मोर पसंद के गीत सुना दे।
1: चल आज सुना।

0: संगवारी हो अभी सुनत रहिन ए सुखर माटी के गीत जेला अपन सुर में पिरोए रहिन अलका चंद्राकरमन
1: और ये संगवारी मन सुने बर चाहे रहिन है परसा टोला अंबाकर चौकी ले ओम प्रकाश मसिया सिलोचनी खुमेंद्र तुवारणी मसिया पीपर पारा पालचुआ मुंगिली ले उत्तरा दिवाकर परमेश्वरी योगिता नितिन वंशिका दिवाकर हा कोरासी छत्तीसगढ़ ले पवन कुमार साहू क्रांति देवी पंकज सुस्मिता दीपिका साहू छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा ले चंदूलाल नारायणी नोमेश नेहा वान्या सिंगरौल बोगाटोला मोहला मानपुर ले मानिक राम सिन्हा तारामती

0: मुनिंद्र इंदु चांदनी सविता देवी सिन्हा बंगला मटिया बालोदले शिवकुमार अंगारे अंजनी त्रयंबिका लीना अंशुमाला आशुतोष अंगारे कुमारदा राजनांदगांवले तारा चंद साहू ओम माही धनेन्द्र साहू जवाहर नगर दुर्गले आरसी कांबड़े करुणा मीना अश्वनी विपुल कांबड़े देवरी भाटापाराले मुकेश कुमार रजक युवान हाव्या तन्नु तानिया नित्या रजक सहजपुर लोहारा दनिया खुर्दले गुनीराम राजपूत संतोषी हेमप्रभा पुष्पराज सूरज राजपूत भीमखोज तरपोंगी ले संतोष गुप्ता हितेश होमेश लक्ष्मी प्रतिभा गुप्ता पुतकी कला कवर्धा ले राधेश्याम पांडे वीणा विनय शंकर नयन सुमांशु पांडे गेंदाटोला बाजार चौक ले वीरेंद्र कुमार गुप्ता अंजलि योगिता गजेंद्र गुप्ता
1: ललिता जैसे जैसे गर्मी के दिन हाँ बाढ़त जाते जगह जगह माँ पानी की किल्लत हा बाढ़े लगते भाई।
0: हाँ वो तो है थनेश्वरी, आजकल सोशल मीडिया में घलो देखे सुने ला मिलते, सुने ला तो मिलते संग माँ सौहत देखे ला मिलते।
1: ये सही केस भाई, पानी बहुत जरूरी है, सांस तो ले लेथन फिर उतके जरूरी दाना पानी के संग माँ पानी घलो अति आवश्यक हवे।
0: ये कर बना पौधा लगाना बहुत जरूरी है, जुड़ छह यहाँ तो मिल ही जाही, संग माँ माटी के अपरदन घलो रुक जाही और बरसात घलो बने हो जाही और ते और सबले बड़का गोट अभी जो तापमान दिनों दिन बढ़त जाते ना वो थोड़कीन
1: कम हो जाही। ये हो इस ना बात, पौधा लगाए भरले नहीं हुए संगवारी हो, उखर जतन करके मतलब लइका बरोबर देख रेख करके ओला बड़का करना एक बहुत बड़का जिम्मेदारी आए। ता भाई पौधा लगावा और ओकर देख रेख घला करो, ओकर बाढ़े ले काहे हमन ला जुड़ छाइया घलो मिल जाही। ता यही गोड़ बासंग चलो भाई सुनथन ये गीतला।

0: संगवारी हो अभी सुनत रहें येसु घर माटी के गीत जेला अपन सुरदेरीन लता खापरडे और नारायण गीर मनहा
1: और सुने बर चाहे रही ने ये संगवारी मन हा भिलाई छत्तीसगढ़ ले मुकेश शर्मा सरिता गौरव गरिमा शर्मा पजौनिया जलौन उत्तर प्रदेश ले सत्येंद्र कुमार चनलौसी चनसौलिया पुरेना खपरी बलौदा बाजार ले केशव प्रसाद साहू अनिता अनुषा अनुष्का उषा साहू
0: त ललिता
1: हमर
0: मनखे जीवन मा मनखे ला कभू गुमान नहीं करना चाहिए
1: सही कहत हस
0: काबर की मनखे जीवन ऐसे है कि हमन ना का धर के आए हन और का धर के जाबो एकरे सेती कोनो भी जिनिस ऊपर कभू गुमान नहीं करना चाहिए बल्कि सेवा भाव और मया एक दूसर सन बना के रखना चाहिए
1: सही कहतस थनेश्वरी आजकल जानथस कोनो है ना ककरो सेवा भाव के हिसाब ले नहीं चला थे सब ना अपन अंजोली मा पैसा धर के भागत है तो ककरो कोनो ला तकलीफ दे मा विश्वास रखा थे बल्कि ऐसे होना चाहिए हमन इंसान मन ला कि ए माटी के चोला हर है माटी में आए हन और वही माटी में जाबो जल के राख हो जाबो तो हमन ला सेवा भाव करना चाहिए दूसरे मन के आदर करना चाहिए दूसरे मन के जरूरत ला अगर हम मदद कर सकन तो वो करना चाहिए
0: और हमार मदद ले काखरो बना थे तब बिल्कुल बनन देना चाहिए चलो भाई अब यही सुघर गोड बात संग सुनथन ये माटी की गीतला

0: ताकि पहले बता देते हैं काली कार्यक्रम काली की युवानी सजी हिंदी में जिमे अपन सुनु पत्र मिला औ यादे यही की गुड़बा संग आज की युवानी ले अपन संगवारी थनेश्वरी बघेल
1: और ललिता साहू के राम राम जय जोहार।

0: संगवारी हो अभी सुनत रहिन ये सुघर माटी गीत जिला अपन सुर दे रही ने भगत साहू मनहा
1: और सुने बर चाहे रहिन ये संगवारी मनहा छत्तीसगढ़ पलारी ले प्रकाश वर्मा निखिल प्रिंस या शशि वर्मा
0: और संगवारी मनहावे कन्या दमोह बालाघाट ले ध्रुवा राम साहू परसराम देवानंद साहू मनता संगवारी हो जाए के बेरा हो गए है त

0: युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी का ये रायपुर और सराईपाली केंद्र है, 6 बजने को हैं समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत ने कहा है कि नेपाल और भारत के द्विपक्षीय संबंधों में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत नेपाल सीमा को लेकर टिप्पणी और उसके बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के बारे में पूछे गए सवाल के उत्तर में कही। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% सीमांकन हो चुका है।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अवांछित संदर्भों को भी खारिज किया। श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। ये वार्ता ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, दवा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर केंद्रित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। दोनों नेताओं ने भारत दक्षिण अफ्रीका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सार्थक वार्ता की। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन आज मुंबई पहुंचे। आज शाम लोकभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। ये मुलाकात भाजपा को जाने कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। नई दिल्ली में आज जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सतत विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें। केंद्र सरकार ने आव्रजन और विदेशी नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार जो विदेशी नागरिक भारत में 180 दिन के लिए आते हैं और अपने वीजा की अवधि बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें वीजा की समाप्ति से पहले ही अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ये पंजीकरण पहले 180 दिन की अवधि पूरी होने के बाद 14 दिन के भीतर कराया जा सकता था। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, न्यायमूर्ति चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति संजीव सचदेव और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद

0: न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने पिछले महीने 23 अरब 20 करोड़ लेन देन का रिकॉर्ड बनाया है। इस उपलब्धि पर वित्तीय सेवा विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से नागरिकों को डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए धन्यवाद दिया। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश कादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सराईपाली केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। कुछ ही क्षणों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है।
2: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: अरे सुमित, तुमने बाइक इधर क्यों मोड़ दी?
1: अरे इसी रोड पर ही तो हमको जाना है यार। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: हेलो
0: सुमित, ये तुम क्या कर रहे हो?
1: हेलो, अरे बात कर रहा हूँ यार, मुझे बात तो करने दे।
0: सुमित, तुम गाड़ी रोक कर भी तो बात कर सकते हो।
1: अरे छोड़ ना यार, मैं तो चलती गाड़ी में ही कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: कौन? संदीप।
0: सुमित देख के।
1: हाँ बोल यार।
0: सुमित
1: कब आना है?
0: अरे देख के सामने।
1: ठीक है, और कौन आएंगे?
2: सुमित आज इस दुनिया में नहीं है और उसका दोस्त घायल है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल ना करें। खुद के और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करें।
3: मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद बीमा कंपनी वाले क्लेम देने में बहुत देर कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं?
4: अरे जो सामान मैंने खरीदा वो तो खराब निकला, बेचने वाला इसे वापस नहीं ले रहा है, अब मैं क्या करूं?
5: मेरी बहन के ससुराल वाले उसे रुपयों के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं। इस मुसीबत से मैं उसे कैसे बचा सकती हूँ?

ऐसी कोई भी परिस्थिति कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकती है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए। हमारे संविधान में क्या है, किसी भी विवाद या परिस्थिति में समाधान का प्रावधान।

जानने के लिए सुनिए आकाशवाणी रायपुर और प्रदेश के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर रविवार शाम 6:30 बजे समन्वित कार्यक्रम कानून की बात।

आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 6:10 होने को हैं। अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।

ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग स्मिता शर्मा के जय जोहार। अब आप सुनो आज के प्रमुख समाचार। नगरीय निकाय चुनाव के तहत 4 जून के हो ही मतगणना, यही दिन पंचायत चुनाव के परिणाम घलो घोषित करे जाही। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बीजापुर जिला के कुंडापल्ली गांव पहुंचिन। ये दौरान उमनहा जन चौपाल के माध्यम ले लोगन संग गोठ बात करिन। और धमतरीहा देश के पहली ऐसन जिला बन गया है जिहां सहकारी समिति मन के माध्यम ले किसान मन ला ड्रोन स्प्रेयर के सुविधा देवाए जाही। अब समाचार विस्तार ले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हां कहिन है कि शिक्षा सशक्तिकरण के एक ठन शक्तिशाली साधन है। शिक्षा लोगन ला आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाते। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थी मन ला संबोधित करत राष्ट्रपति हां कहिन कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सबो वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप ले प्रगति करें। राष्ट्रपति हा कहिन कि युवा मन हा राष्ट्र के शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य के प्रतिनिधित्व करते। ओमन हा युवा मन ले विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवा मन ले आग्रह करिन कि ओमन हा अपन जड़ ला सुरता रखें। राज्य में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत के आम और उप निर्वाचन पर मतदान काली शांतिपूर्ण ढंग ले होइस। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नगरीय निकाय में अध्यक्ष और पार्षद पद पर हुए मतदान में 84.58% मतदाता मनहा अपन मताधिकार के प्रयोग करिन। उन्हें त्रिस्तरीय पंचायत में जनपद सदस्य, सरपंच और पंच के पद पर 78.61% मतदान दर्ज करेगी। आयोग बताइस कि मतदान के दौरान कोनो भी क्षेत्र ले अप्रिय घटना के सूचना नहीं मिले है। नगरीय निकाय के मत के गिनती 4 जून के करे जाही। उन्हें त्रिस्तरीय पंचायत पर हुए मतदान के बाद मतगणना मतदान स्थल में ही कराएगी, जिसका परिणाम के घोषणा 4 जून के करे जाही। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बीजापुर जिला के कोंडापल्ली गांव पहुंचिन। ये दौरान उमनहा जन चौपाल के माध्यम ले लोगन के समस्या सुनिन। मुख्यमंत्री हा अधिकारी मनला निर्देश दिन कि जन चौपाल मा मिले सबो आवेदन और समस्या के समय सीमा मा निपटारा करे जाए। श्री साय हा कहिन कि सुशासन तिहार सिर्फ एक ठन प्रशासनिक अभियान नहीं है, फिर यह सरकार और जनता के बीच विश्वास ला और ज्यादा मजबूत करे के माध्यम है। मुख्यमंत्री हा ग्रामीण मनला भरोसा देवाइन की उखर समस्या के निपटारा बर सरकार हा पूरा जिम्मेदारी ले काम करत है। जन चौपाल के दौरान मुख्यमंत्री हा आने आने विभाग मंडहा ले लगाए गए स्टॉल के अवलोकन करिन। उन्हें हितग्राही मनला वन अधिकार मान्यता पत्र, जातीय निवास प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना, श्रम कार्ड, किसान हितग्राही योजना संग्रह, दूसर योजना मन के बारे में जानकारी दीन। मुख्यमंत्री हा आत्मसमर्पित माओवादी दंपति मंडहा ले संचालित किराना दुकान घलो पहुंचिन और उनखर जीवन में आए सुघर बदलाव के तारीफ करिन। एकर पहले मुख्यमंत्री श्री साय काली नारायणपुर जिला के अबूझमाड़ क्षेत्र के गारपा और कोंडा गांव जिला के बड़े कनेरा पहुंचिन। गारपा में राखे गए जन चौपाल में मुख्यमंत्री हा ग्रामीण मन ले सोझे गोठ बात करके उखर मन के समस्या सुनिन और क्षेत्र भर स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा और सुरक्षा ले जुड़े कतकोन विकास काम के घोषणा करिन। उन्हें बड़े कनेरा में राखे गए समाधान शिविर में उमनहा कोंडा गांव जिला पर 152 करोड़ रुपया ले ज्यादा के 43 ठन

0: विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन करिन। प्रदेश में रेहड़ी पटरी कारोबारी मन ला आर्थिक रूप ले मजबूत बनाए बर 1 ले 30 जून तक स्वनिधि महोत्सव और लोक कल्याण मेला के आयोजन करे जावत थे। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग दहार ले राखे गए ये अभियान में स्ट्रीट वेंडर्स मन ला ऋण सुविधा UPI और QR कोड जैसन डिजिटल सेवा देवाए जाहि। संगे संग उमन ला जनधन, आयुष्मान भारत, सामाजिक सुरक्षा बीमा और दूसर जन कल्याणकारी योजना मन ले घालो जोड़े जाहि। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR News और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR News। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा था

0: जाही। संगे संग उमनला जनधन, आयुष्मान भारत, सामाजिक सुरक्षा बीमा और दूसर जन कल्याणकारी योजना मन ले घालो जोड़े जाही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: औ अब आगू बढ़बो बाचे समाचार कोती। धमतरी जिला हा देश के पहली ऐसन जिला बन गया हवे जिहां प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति यानी पैक्स के माध्यम ले किसान मनला ड्रोन स्प्रेयर के सुविधा देवाए जाही। कलेक्टर अविनाश मिश्रा की अगुवाई में जिला के 10 पैक्स समिति में ये सुविधा शुरू करेगी है। लोहरसी में राखी गई कार्यक्रम में ये पहल के शुरुआत करेगी और प्रशिक्षित ड्रोन पायलट मनहा ड्रोन स्प्रेयर के प्रदर्शन करें। अधिकारी मन के अनुसार ड्रोन तकनीक ले उर्वरक और कीटनाशक के छिड़काव कमती बेरा और कमती लागत में करे जा सकी। राज्य में यात्री बस के किराया में बढ़ोतरी लाले के परिवहन विभाग हा बस संचालक मन संघरा बैठका करके उनकर समस्या और मांग के बारे में गोठ बात करें। बस संचालक मन हा बतें कि बच्छर 2021 के बाद ले किराया में बढ़ोतरी नहीं हुए है, फिर डीजल के कीमत में सरलग बढ़ोतरी हुए है। उमन हा डीजल के दाम के अनुसार किराया तय करे बर स्थायी व्यवस्था बनाए के मांग करें। परिवहन विभाग हा कहे है कि दूसर राज्य के किराया दर के अध्ययन करके जल्दी फैसला करे जाही। विश्व पर्यावरण दिवस के मौका में देहरादून में राखे गए कार्यक्रम में नारायणपुर के लिंगो मुदियाल कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र ला पर्यावरण चैंपियन अवार्ड ले सम्मानित करेगी है। लिंगो मुदियाल कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र डहर ले पाछू बछर में जैविक खेती ला बढ़ावा देबर वृक्षारोपण अभियान, जल संरक्षण गतिविधि, नशा मुक्ति जन जागरूकता कार्यक्रम, किसान और विद्यार्थी मन बर प्रशिक्षण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में सुघर काम करेंगे है। उन्हें गौरेला पिंडरा मरवाही जिला के सेमरा के स्वामी आत्मानंद शासकीय विद्यालय लाघलो राष्ट्रीय स्तर के पर्यावरण चैंपियन अवार्ड दे जाही। ये विद्यालय के चयन पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और स्वच्छता ले जुड़े काम में सुघर प्रदर्शन भर करेंगे है। उन्हें विश्व पर्यावरण दिवस में 5 जून के रायपुर में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल डहरले पोस्ट प्रतियोगिता आयोजित करे जाही। प्रकृति से प्रेरित होकर जलवायु और भविष्य का संरक्षण करें विषय में हुवैया ये प्रतियोगिता में 4 आयु वर्ग के प्रतिभागी मनहा भाग ले सकें। रेलवे प्रशासन हा यात्री मन के सुविधा पर रायपुर कोरबा रायपुर हसदेव एक्सप्रेस ला 1 अगस्त ले हर दिन चलाए के फैसला ले है। उन्हें ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान बिलासपुर और यलहंका बेंगलुरु के बीच 3 जून ले 2 जुलाई तक 5-5 चक्कर भर समर स्पेशल ट्रेन घलो चलाए जाही। अब पेश है मौसम के हाल। अवैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश में 1-2 जगह में हल्का वर्षा होए के या गरज चमक के संग छींटा पड़े के संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार एक ठन ऊपरी हवा के चक्रीय चक्रवाती घेरा पूर्वी मध्य प्रदेश और ओखर लगे छत्तीसगढ़ के ऊपर विस्तारित है। उन्हें एक ठन दूसर द्रोणिका मध्य पाकिस्तान ले तटीय पश्चिम बंगाल तक छत्तीसगढ़ होवत बने है। एकर असर ले प्रदेश में काली 1-2 जगह में अंधर चले के अवकाशीय बिजली गिरे के आशंका है। अब थोरकुन समाचार सार मा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE हा बताया है कि उत्तर पुस्तिका में पाए गए गलती के सत्यापन और ओखर पुनर्मूल्यांकन बर पोर्टल आज ले शुरू हो गए है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रही। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल की अध्यक्षता में काली मंत्रालय में मंत्रिमंडलीय उप समिति के बैठक हुई। बैठक में पाछू खरीफ विपणन बछर में समर्थन मूल्य में खरीदे गए धान के निष्पादन और कस्टम मिलिंग और अवैया खरीफ सीजन में धान खरीदी के तैयारी के बारे में चर्चा करेगी। रायपुर जिला के दिव्यांग युवा मन ला रोजगार ले जोड़े बर रोजगार कार्यालय रायपुर डहर ले 5 जून के बैरन बाजार के शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक कॉलेज में विशेष रोजगार मेला के आयोजन करे जाही। और कोरबा जिला के पाली थाना क्षेत्र में भीमसेनिया जंगल तीर पाछू संझा होए एक ठन सड़क हादसा में फटफटी में बैठे एक जन युवक के

0: होगिस उहे एक झन दूसर युवक ह गंभीर रूप ले घायल हो गए हे। आखिर मा प्रमुख समाचार एक घाव फिर। नगरीय निकाय चुनाव के तहत 4 जून के होही मतगणना, यही दिन पंचायत चुनाव के परिणाम घलो घोषित करे जाही। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बीजापुर जिला के कोंडापल्ली गांव पहुंचिन। ये दौरान उमन हा जन चौपाल के माध्यम ले लोगन संग गोठ बात करिन। और धमतरिया देश के पहले ऐसा जिला बन के हवे जिहां सहकारी समिति मन के माध्यम ले किसान मन ला ड्रोन स्प्रेयर के सुविधा देवाए जाही। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचको नरेन्द्र दत्त सेमवालः। आदौ मुख्य वार्ताः। राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू वर्यया प्रोक्तं यत् शिक्षा सशक्तीकरणस्य महत्वपूर्णं साधनं विद्यते, अपि च वास्तविक विकासः तदैव सम्यक् रूपेण प्राप्स्यते यदा समाजस्य सर्वे एव पक्षाः सामाजिकेन आर्थिकेन शैक्षिकेन च रूपेण विकसिताः भविष्यन्ति। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इत्यनेन विगतमासे 23.20 अर्बुद रूप्यकाणां आदान प्रदान विषयकं शिखरं समावाप्तम्। केन्द्र सर्वकारेण आव्रजन नियमे निर्गतायाः अधिसूचनायाः अनुसारम् अधुना 80+100 दिनानि यावत् आगम्यमानाः वैदेशिकाः यदि स्वकीयं प्रवाससमयं वर्धयितुमिच्छन्ति तर्हि तेभ्यः आव्रजनावधेः समाप्तिपूर्वम् एव पञ्जीकरणम् अनिवार्यमस्ति। भारतस्य मुख्य न्यायाधीशः न्यायमूर्तिः सूर्यकान्तः इत्यसौ अद्य सर्वोच्चन्यायालयस्य 5 न्यायाधीशेभ्यः पदस्य शपथवचनं प्रायच्छत्। सर्वोच्च न्यायालये न्यायाधीशानां संख्या समेध्य 38 संजाता। अपि च विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह जर्मनी देशस्य थुरिंगिया इत्यस्य मंत्री राष्ट्रपति च मारियो वोक्ट इत्यसौ च अद्य नवदिल्ल्यां क्वांटम संचारस्य फोटोनिक्स इत्यस्य उद्योग नेतृत्व भूतस्य डीपटेक सहयोगस्य च विषये चर्चितवन्तौ। अथ वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मुवर्यया प्रोक्तं यत् शिक्षा सशक्तीकरणस्य महत्वपूर्णं साधनं विद्यते। शिक्षा एव जनान् आत्मनिर्भरं जागरूकः सक्षमश्च कारयति। अद्य नवदिल्ल्याम् असौ जनजातीय छात्रवृत्ति लाभार्थिनः सम्बोधयति स्म। अस्मिन् अवसरे सा प्रोक्तवती यत् वास्तविक विकासः तदैव सम्यक् रूपेण प्राप्स्यते यदा समाजस्य सर्वे एव पक्षाः सामाजिकेन आर्थिकेन शैक्षिकेन च रूपेण विकसिताः भविष्यन्ति।
2: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तब सशक्त समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
1: सा रेखांकितवती यत् सर्वकारस्य छात्रवृत्ति योजनया जनजातिवर्गेभ्य उच्चशिक्षायाः अवसराणां च आदानेन प्रदानेन तेषां जीवनं परिवर्तितम्। द्रौपदी मुर्मुवर्या अकथयत् यत् भारते प्रतिभासम्पन्नानां नैयून्यं न अस्ति, अपि तु तेषाम् अभिज्ञानं पोषणं तेभ्यः उचित मार्गदर्शन प्रदानं च आवश्यकमस्ति।
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
1: यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इत्यनेन विगतमासे 23.20 अर्बुद रूप्यकाणां आदान प्रदान विषयकं शिखरं समावाप्तम्। वित्तीय सेवा विभागः सार्वजनिक संदेश माध्यमे लिखिते संदेशे डिजिटल इति रूपेण धनादान प्रदानं स्वीकर्तुं नागरिकान् प्रति आभारं व्यक्तीकृतवान्। अवधेयं यत् यूपीआई इत्येतत् प्रकल्पं विश्वस्य सर्वोच्चत्वेन रियल टाइम पेमेंट इति प्रकल्परूपेण समुद्भूतमस्ति, यत् देशस्य डिजिटल अर्थव्यवस्थायाः आधारः वर्तते। केन्द्र सर्वकारेण आव्रजन नियमे विदेश नियमेषु च संशोधनम् अधिसूचितमस्ति। नियमानुसारं भारते 80+100 दिनानि

0: एकां समयबद्ध अतिक्रमणमुक्ति योजनां निर्मातुं तां च प्राथमिकाधाररूपेण प्रतिष्ठापयितुं च निर्देशं प्रायच्छत्। सर्वोच्च न्यायालयः अतिक्रमणं कुर्वन्तः सर्वान् 18.1% सेवानिवृत्तान् सर्वकारीय कर्मचारिणः विरुध्य अनुशासनात्मकं वैधानिकं च कार्याचरणं प्रवर्तयितुं आदेशं प्रायच्छत् इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं राखी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम हमारी बेड़िया में। हमें बहुत खुशी होती है जब आप फोन व पत्र के माध्यम से हमें सुझाव भेजते हैं और हमें उत्साहित करते हैं। हमें आपके सवालों व सुझावों का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो श्रोताओं, आज फिर हम आपके लिए एक और नई कहानी को साथ लेकर आए हैं। हमें आशा है आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आएगी। आज की कहानी को शुरू करने से पहले आप हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारा फोन नंबर है
1: 9311504004। जी हाँ, 9311504004।
0: दोस्तों, कहने को तो हम सब एक आजाद भारत में रहते हैं, पर आजादी हमें आज भी पूरी रीति से नहीं मिली है। आज भी हमारे देश में लड़कियां कई रूप से पाबंद हैं और उन्हें कई क्षेत्रों में अभी भी आजादी नहीं मिलती है। आज भी हमारे समाज में लड़कियों को पढ़ने की, नौकरी करने की, अपने सपने पूरे करने की आजादी नहीं है। परंतु वे आज भी बाल विवाह, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, शारीरिक शोषण, पुरुष प्रधानता, सती प्रथा जैसी प्रचलन में पाबंद हैं। आज हम हमारी कहानी के द्वारा बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे कि किसी की कही बात किसी के दिल में किस प्रकार घर कर जाती है, वे उनके जीने तक की इच्छा को खत्म कर देती है या फिर अंदर ही अंदर उन्हें तनाव में ले जाती है। आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर।
2: अरे ज्योति, कहाँ हो?
3: जी काकी, आइए आइए, अंदर आइए।
2: कैसे हो, आजकल दिखाई नहीं देते।
3: बस काकी, बढ़िया हूँ। अरे काकी, ये घर के कामों से फुर्सत कहाँ मिलती है? पहले तो पीयू काम में हाथ बटा देती थी, पर अब तो वो पढ़ाई में लगी हुई है। बस परमेश्वर करे बच्ची की मेहनत सफल हो जाए।
2: अरे ज्योति, तेरी क्या मत मारी गई है क्या, जो लड़की को घर के काम न सिखा कर पढ़ने में लगा दिया है?
3: अरे काकी, कैसी बातें कर रही हो आप, आजकल पढ़ाई के बगैर कुछ है क्या?
2: ज्योति, तू नहीं समझेगी, लड़की को फोन दे रखा है, अकेले बाहर आने जाने की अनुमति भी दे रखी है, यह सब तुझको आगे भारी पड़ेगा।
3: नहीं नहीं काकी, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी पीहू ऐसी नहीं है।
2: हाँ, पर बाहर की हवा लगने में समय नहीं लगता, बाकी तो जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तो बस समझा रही थी, उम्र में तजुर्बे से तुमसे बड़ी हूँ।
3: जी काकी, पर मेरी पीहू ऐसी नहीं है।
2: मैं जानती हूँ ज्योति, तभी तो कह रही हूँ, जिन संस्कारों में बच्ची पली बड़ी है उसे उसी में रहने दो, ये बाहर नौकरी के लिए जाना, ज्यादा पढ़ना, फिर बच्चे पूछते भी नहीं है माँ बाप को, तुम उन्हें जानती हो ना, मेरे राजसमंद वाले भाई को?
3: हाँ काकी।
2: उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, इतनी अच्छी लड़की थी, समझदार, होशियार, बाहर सूरत पढ़ने गई और फिर लौट कर आई नहीं।
3: काकी, जितना मैं अपनी बच्ची को जानती हूँ ना, मेरी पीहू अपने माता पिता की बहुत कदर करती है, अगर हम उसे कहे ना तो वो बिना कुछ कहे सब कुछ छोड़ देगी, पर हम चाहते हैं कि हमारी बच्ची खूब आगे बढ़े, अपना

0: अपने गांव का, अपने माता पिता का, सबका नाम रोशन करे।
1: हाँ चलो ऐसा ही हो, बस अब मैं चलती हूँ ज्योति। कभी समय निकाल कर घर पर आना और अपना, मोहन का और पीहू का भी ध्यान रखना।
0: जी काकी, आप भी अपना ध्यान रखिएगा।
2: पीहू बेटा।
3: जी माँ, आई।
0: बेटा आप क्या कर रहे थे?
3: माँ मैं पढ़ रही थी, फिर पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई थी, आपने आवाज दी तो उठ कर गई।
0: बेटा तुम सच में पढ़ती ही हो ना बस, या फोन में कुछ?
3: नहीं नहीं माँ, ये आप कैसी बात कर रहे हो? माँ सब ठीक है ना?
4: ज्योति मैंने सुना है, ये क्या पूछ रही हो तुम पीहू से?
0: आप आज वो पड़ोस वाली काकी आई थी, खूब सुना रही थी मुझे। सीधे सीधे तो कुछ बोल नहीं पाई, परंतु बहुत कुछ कह के गई है। मुझे बस मेरी बच्ची पीहू की चिंता हो रही है।
4: ज्योति तुम अच्छे से जानती हो हमारी पीहू कैसी है, तुम उसकी माँ हो।
0: वो तो मैं जानती हूँ, पर आप भी तो जानते हो ना, हमारे यहाँ लड़कियों को ज्यादा पढ़ने की अनुमति नहीं है, बस वो घर संभालती है। आज तो बस काकी भूल कर गई है, पर कल कोई ऊंच नीच हो गई तो सारे गांव वाले हमें ही सुनाएंगे।
4: अरे ये कैसी बातें कर रही हो, ऐसी बातों ना तो सोचो ना ही करो। हमारी पीहू बहुत होशियार है, अच्छे से पढ़कर कलेक्टर बनेगी और हमारे पूरे गांव का नाम रोशन करेगी हमारी बेटी।
0: हाँ आप सही कह रहे हैं।
4: और ज्योति अब ना तुम कुछ ऐसा सोचोगी ना ही कोई ऐसी बात करोगी जिससे हमारी पीहू परेशान हो, उसे मन लगाकर पढ़ने दो, बस कुछ ही दिनों में उसकी परीक्षा है।
3: जी माँ आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जिससे आपका या फिर पापा का नाम खराब हो, मैं बस आपका नाम रोशन करने का काम करूँगी।
4: शाबाश बेटा, चलो पीहू अब तुम तुम्हारे कमरे में जाकर पढ़ाई करो। ज्योति मैं जानता हूँ गाँव में ज्यादा लोग पढ़ाई के महत्व को नहीं समझते, उनके लिए चूल्हा चौका एक लड़की की जगह और संस्कार है, घर पति बच्चे यह सब संभालने के लिए बनाया है, पर सही उम्र में और पढ़ना या कुछ बनकर अपने गांव शहर अपने देश के लिए कुछ करना गलत नहीं है। हमारे पीहू के विचार बहुत अच्छे हैं, वो चाहती है कि वो हमारे और ऐसे कई गांव की परिस्थितियों को बदले और कुछ सहयोग कर सके।
0: जी आप सही कह रहे हैं, अब मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी जिससे हमारी पीहू परेशान हो।
4: चलो अब सो जाते हैं।
1: पीहू बेटा कैसी हो?
3: मैं अच्छी हूँ काकी जी, आप कैसी हो?
1: मैं भी अच्छी हूँ पीहू बेटा। ये अचानक से तुम्हारा वजन कैसे बढ़ गया?
3: वो क्या है ना, सारा दिन बैठकर पढ़ती रहती हूँ ना, इसलिए बस अब कुछ दिन बाद परीक्षा है, उसके बाद सैर कसरत करके मैं पहली जैसी हो जाऊंगी।
1: हाँ बेटा सेहत पर भी ध्यान दो, मोटी लड़कियों को आजकल कोई पसंद नहीं करता।
0: काकी हमारी पीहू इतनी प्यारी है कि कोई भी उसे देखते ही पसंद कर लेगा।
1: अरे ज्योति बुरा मत मानो, मैं तो पीहू की भलाई के लिए ही बोल रही हूँ। अच्छा वैसे तुम्हें पता चला, पास के गांव की रेखा शहर गई थी पढ़ने के लिए, वही एक लड़के के साथ चक्कर चल गया।
0: अरे वो रेखा उर्मिला काकी की बेटी?
1: हाँ वही रेखा।
0: अरे उर्मिला काकी ने उसके लिए कितना किया था?
1: तभी तो तुम्हें समझाती हूँ ज्योति, समय रहते समझ जाओ, पर तुम तो कुछ सुनती समझती ही नहीं हो।
3: पर काकी सब एक जैसे तो नहीं होते हैं ना?
1: पीहू बेटा तुम अभी छोटी हो, तुम कुछ नहीं समझती। ज्योति पर तुम तो समझदार हो ना, कैसा जमाना है, तुम तो समझती हो ना कि लड़कियां सुरक्षित नहीं है।
0: जी काकी शायद आप सही बोल रहे हो, और पीहू बेटा आप छोटे हो, आप चुप रहो। चलो काकी मैं अभी घर चलती हूँ। पीहू बेटा मैं तुम्हें बाहर जाने नहीं देख सकती बेटा, तुम्हें जितना पढ़ना है यहीं पर पढ़ो और एक आम जिंदगी जियो जैसे सब जीते हैं, ठीक है बेटा? मैं जानती हूँ तुम्हारे सपने बड़े हैं, पर मैं नहीं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा हो जिससे मैं अपनी बेटी को ही खो दूं।
3: माँ वैसे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पर आप चिंता मत करो, मैं वही करूँगी जो आप कहोगे।
0: थैंक यू बेटा, मैं चाहती थी कि जो तुम चाहती हो वो बन जाओ, पर बेटा अब

0: मुझे बहुत डर लग रहा है।
1: माँ आप डरिए मत, मैं यहीं हूँ आपके पास।
2: पीहू तुम किचन में?
1: अरे बाबा आप, वो मम्मी की ना तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए मैं खाना बना रही थी।
2: क्या हुआ ज्योति को?
1: कुछ नहीं, बस वो ऐसे ही, और वो कमरे में अभी आराम कर रही हैं।
3: अरे आप आ गए?
2: तुम ठीक हो ज्योति? क्या हुआ तुम्हें? पीहू बेटा तुम जाओ पढ़ाई करो, यह मैं देख लूँगा।
1: नहीं पापा, मैं बाद में पढ़ लूँगी, आप माँ के साथ बैठो।
2: ज्योति मुझे बताओगी क्या हुआ?
4: ज्योति पड़ोसियों की इधर उधर की और अपने दिल की चिंता, वह उसका निर्णय कि पीहू बाहर जाकर नहीं पढ़ेगी, वह समाज में चल रही हर एक बात मोहन को कह सुनाती है कि किस प्रकार वह अपने लोगों से लड़ते लड़ते थक चुकी है। देखते हैं अब मोहन किसका साथ देगा और किस प्रकार इस परिस्थिति को संभालेगा।
2: पीहू इधर आओ बेटा, मुझे आपसे और आपकी माँ से ये उम्मीद नहीं थी। अब बेटा तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, परीक्षा दो, मुझे तुम पर भरोसा है, मेरी बेटी अपना मुकाम हासिल कर लेगी, बस इतनी मेहनत करके पीछे मत हटना।
1: थैंक यू सो मच पापा, मुझ पर भरोसा करने के लिए।
2: जाओ अपने कमरे में जाओ बेटा। ज्योति मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा है तुम पर मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ कि ऐसे ही किसी की बात सुनकर इतना नकारात्मक मत हो, अपनी बेटी पर भरोसा करो। अगर इस समय हमने उसका साथ नहीं दिया तो शायद जरूर हमारी बच्ची हमसे दूर हो जाएगी।
3: मुझे माफ कर दीजिए, मैं खुद ही अपनी बच्ची का जीवन खराब करने चली थी।
2: ज्योति लोगों का हम कुछ नहीं कर सकते, हम उनके मुंह भी नहीं बंद कर सकते। कोई मोटा हो तो भी उन्हें दिक्कत है, कोई पतला हो तो भी उन्हें दिक्कत है। हम सबको परमेश्वर ने उसकी स्वरूप और समानता में बनाया है, इस बात के लिए हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए।
3: जी सही कहा आपने।
2: ज्योति याद रखना, वही बच्चे माँ बाप से दूर हो जाते हैं जिनके माँ बाप उन्हें समझते नहीं। अपनी बेटी का साथ दो, उस पर भरोसा करो और उसकी मेहनत की कद्र करो। प्रार्थना करो कि परमेश्वर से कि हमारी बच्ची सफल हो जाए और परमेश्वर उसे अच्छी बुद्धि दे, लोगों की बातों पर नहीं परमेश्वर पर भरोसा रखो।
3: जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल ऐसे ही करूँगी, मैं अपनी बच्ची का साथ दूंगी।
2: और हाँ मैं खुद जाऊंगा अपनी बच्ची के साथ उसे परीक्षा दिलवाने।
3: पीहू आज तो तुम्हारा नतीजा आने वाला है ना परीक्षा का?
1: हाँ माँ।
3: बेटा आप इतने परेशान क्यों हो?
1: डर लग रहा है माँ मुझे।
3: अरे मेरी बेटी मुझे पता है नतीजा अच्छा ही आएगा, तो डर मत।
2: पीहू ज्योति जल्दी बाहर आओ, कहाँ हो? अरे पीहू बेटा तुमने परीक्षा पास कर ली है और तुम्हारा पहला पड़ाव भी कलेक्टर के लिए पास हो गया है।
1: आप सच बोल रहे हो ना?
2: हाँ बेटा हाँ, ज्योति मैंने कहा था ना कि पीहू कर लेगी। चलो मिठाई उठाओ, चलो मेरे साथ।
3: कहाँ?
2: काकी कैसी हो, ये लो मुंह मीठा करो।
5: अरे मिठाई किस खुशी में?
2: हमारी पीहू ने पहला पड़ाव पार कर लिया है।
5: अरे वाह, बहुत बहुत बधाई।
3: जी हाँ काकी, अब आप देखना जिस तरह हमारी पीहू ने परीक्षा अच्छे अंकों से पास करी है ना, वो आगे के भी सारे पड़ाव पार कर और जरूर अपने मुकाम पर पहुँच कर हमारे देश का नाम ऊंचा करेगी।
5: हाँ ज्योति, और तुम सब मुझे माफ कर देना, मैंने पीहू के लिए गलत बोला, पर अब मुझे विश्वास है हमारी पीहू सबसे अलग व समझदार है।
2: शुक्रिया काकी, और पीहू ही क्या, हमें किसी के लिए भी कुछ भी गलत बोलने का हक नहीं है बिना उसकी परिस्थिति जाने।
5: हाँ बेटा मुझे माफ कर देना।
2: नहीं नहीं काकी कोई बात नहीं, यह तो खुशी मनाने का समय है।
4: तो श्रोताओं जैसा कि हमने आज पीहू की कहानी से देखा कि किस प्रकार पीहू बहुत पढ़ने वे अपने परिवार गांव देश का नाम रोशन करने के सपने देखती थी, परंतु समाज की गलत वे नकारात्मक सोच का असर उसके परिवार उसकी माँ के मन तक आ गया। परंतु मोहन की समझदारी की वजह से पीहू अपने सपने को पूरा कर पाई। कार्यक्रम से जुड़े विचार और सवाल आप हम तक शीघ्र से शीघ्र पहुंचाएं। हमारा नंबर है
6: 9311504040।

0: 04। जी हाँ, 9311504004।
1: हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़ियाँ, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। इसी के साथ मैं राखी आपसे विदा लेना चाहूंगी। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।
2: प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियाँ अभी आप सुन रहे थे मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सराईपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, प्रादेशिक समाचार के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
3: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
4: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
7: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
8: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
7: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
8: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
7: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
8: क्यों?
7: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
9: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
10: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
11: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
10: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
11: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
10: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
11: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
9: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
12: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
11: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
12: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
11: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
12: आकाशवाणी से।
9: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
13: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बीजापुर जिले के कोंडापल्ली गांव पहुंचे। नगरीय निकाय चुनावों के लिए मतगणना 4 जून को होगी। इसी दिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। और धमतरी देश का पहला ऐसा जिला बना जहां सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को ड्रोन स्प्रेयर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि शिक्षा

0: सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता था। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी जड़ों को न भूलें। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बीजापुर जिले के कोंडापल्ली गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जन चौपाल के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन चौपाल में प्राप्त सभी आवेदनों और समस्याओं का समय सीमा में निराकरण किया जाए। श्री साय ने कहा कि सुशासन तिहार केवल एक प्रशासनिक अभियान नहीं बल्कि सरकार और जनता के बीच विश्वास को और मजबूत करने का माध्यम है।
2: कोई प्रमाण पत्र होगा, आय, जाति, निवास, ये सब, कोई आप लोगों का जमीन बारी का दस्तावेज चाहिए तो सब देने का काम करेंगे और आगे खेती बाड़ी को भी बढ़ाएंगे। इधर इमली महुआ सब बहुत है, उसका वैल्यू एडिशन करा के हमारे बेटा बेटियों को रोजगार से जोड़ने का काम, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, ये बकरी पालन, ये सबको बढ़ावा देंगे।
0: मुख्यमंत्री आत्मसमर्पित माओवादी दंपत्ति द्वारा संचालित किराना दुकान भी पहुंचे और उनके जीवन में आए सकारात्मक बदलाव की सराहना की। राज्य में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उपनिर्वाचन के लिए मतदान कल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नगरीय निकायों में अध्यक्ष और पार्षद पदों के लिए हुए मतदान में 84.58% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद सदस्य, सरपंच और पंच पदों के लिए 78.61% मतदान दर्ज किया गया। आयोग ने बताया कि मतदान के दौरान किसी भी क्षेत्र से अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। नगरीय निकायों के मतों की गणना 4 जून को की जाएगी। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए हुए मतदान के बाद मतगणना मतदान स्थल पर ही कराई गई। इसके परिणामों की घोषणा 4 जून को की जाएगी। प्रदेश में रेहड़ी पटरी कारोबारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 1 जून से 30 जून तक स्वनिधि महोत्सव और लोक कल्याण मेले का आयोजन किया जा रहा है। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग द्वारा आयोजित इस अभियान के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण सुविधा, यूपीआई और क्यूआर कोड जैसी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही उन्हें जनधन, आयुष्मान भारत, सामाजिक सुरक्षा बीमा और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि अभियान का उद्देश्य छोटे व्यापारियों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें सम्मानजनक जीवन के अवसर उपलब्ध कराना है। राज्य में यात्री बसों के किराए में वृद्धि को लेकर परिवहन विभाग ने बस संचालकों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं और मांगों पर चर्चा की। बस संचालकों ने बताया कि वर्ष 2021 के बाद से किराए में बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है। उन्होंने डीजल के दामों के अनुसार किराया तय करने के लिए स्थायी व्यवस्था बनाने की मांग की। परिवहन विभाग ने कहा है कि अन्य राज्यों की किराया दरों का अध्ययन कर जल्द निर्णय लिया जाएगा। बैठक में अखिल भारतीय पर्यटक परमिट के दुरुपयोग पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए रायपुर कोरबा रायपुर हसदेव एक्सप्रेस को 1 अगस्त से प्रतिदिन चलाने का निर्णय लिया है। वहीं ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान बिलासपुर और यलहंका बेंगलुरु के बीच 3 जून से 2 जुलाई तक 5-5 फेरों के लिए समर स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। धमतरी जिला देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों यानी पैक्स के माध्यम से किसानों को ड्रोन स्प्रेयर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कलेक्टर अविनाश मिश्रा के मार्गदर्शन में जिले में 10 पैक्स समितियों में ये सुविधा शुरू की गई है। लोहरसी में आयोजित कार्यक्रम में इस पहल का शुभारंभ किया गया और प्रशिक्षित ड्रोन पायलटों ने ड्रोन स्प्रेयर का प्रदर्शन किया। अधिकारियों के अनुसार ड्रोन तकनीक से उर्वरक और कीटनाशकों का छिड़काव कम समय और कम लागत में किया जा सकेगा। इससे किसानों को आधुनिक तथा वैज्ञानिक खेती अपनाने में मदद मिलेगी और कृषि क्षेत्र में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।

0: विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में देहरादून में आयोजित समारोह में नारायणपुर के लिंगो मुदियाल कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र को पर्यावरण चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र द्वारा बीते वर्षों में जैविक खेती को बढ़ावा देने, वृक्षारोपण अभियान, जल संरक्षण गतिविधियों, नशा मुक्ति, जन जागरूकता कार्यक्रमों, किसानों और विद्यार्थियों के प्रशिक्षण तथा जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। वहीं विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून को देहरादून में होने वाले समारोह में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के सेमरा में स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय विद्यालय को राष्ट्रीय स्तर का पर्यावरण चैंपियन अवार्ड प्रदान किया जाएगा। इस विद्यालय का चयन पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और स्वच्छता संबंधी गतिविधियों में उत्कृष्ट कार्य के लिए किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून को प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा रायपुर में पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रकृति से प्रेरित होकर जलवायु और भविष्य का संरक्षण करें विषय पर होने वाली इस प्रतियोगिता में 4 आयु वर्ग के प्रतिभागी हिस्सा ले सकेंगे। रायपुर के पास मंदिर हसौद स्थित मिवान स्टील लिमिटेड संयंत्र में आज सुबह भीषण आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी की स्थिति बन गई। आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर दूर तक दिखाई दिया। सूचना मिलते ही रायपुर तथा आसपास के क्षेत्रों से दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। और अब पेश है मौसम का हाल। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा पूर्वी मध्य प्रदेश और उससे लगे छत्तीसगढ़ के ऊपर विस्तारित है। वहीं एक अन्य द्रोणिका मध्य पाकिस्तान से तटीय पश्चिम बंगाल तक छत्तीसगढ़ होते हुए बनी हुई है। इसके असर से प्रदेश में कल एक दो स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है।
1: आज प्रदेश में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ तेज हवा और वज्रपात और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। तेज हवा का गतिविधि लगभग 50 से लेके 60 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है। ये मेघ गर्जन का गतिविधि जो है 4 जून से बढ़ने की संभावना है और अधिकतम तापमान में आज और कल में लगभग 1 से लेके 2 डिग्री का हल्की वृद्धि होने की संभावना है और तत्पश्चात कोई विशेष परिवर्तन होने की तो संभावना नहीं है।
0: इस बीच आज दोपहर बाद गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में तेज हवा के साथ बारिश हुई है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। CBSE ने कहा है कि यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। रायपुर जिले के दिव्यांग युवाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से रोजगार कार्यालय रायपुर द्वारा 5 जून को बैरन बाजार स्थित शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक कॉलेज में विशेष रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में अस्थि बाधित, बौने, कम सुनने और देखने में कठिनाई वाले दिव्यांगजन भाग ले सकेंगे। और कोरबा जिले के पाली थाना क्षेत्र में भीमसेनिया जंगल के पास बीती शाम हुए एक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बीजापुर जिले के कोंडापल्ली गांव पहुंचे। नगरीय निकाय चुनावों के लिए मतगणना 4 जून को होगी। इसी दिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। और धमतरी देश का पहला ऐसा जिला बना जहां सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को ड्रोन स्प्रेयर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। एक सूचना सुनिए। आगामी शुक्रवार 5 जून 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो चौपाल कार्यक्रम का विषय होगा स्वच्छ दुग्ध उत्पादन और उसका परिवहन। आपकी समस्याओं और जिज्ञासा

के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सुधीर उप्रीत, अधिष्ठाता डेयरी विज्ञान और खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 400-3482, 400-3483 और 400-3484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग शुक्रवार 5 जून 2026 को 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण शुक्रवार को ही संध्या 7:30 में किया जाएगा। हमें आपके फोन कॉल का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। मीडियो वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सराईपाली केंद्र है। हाजिर हैं हम चित्रपट संगीत के संग। फिल्म तमन्ना का गीत आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू की आवाज़ है, इंदिवर के बोल और अनु मलिक का संगीत।

ആകാശവാണി @90 चित्रपट संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से। सुमन कल्याणपुर की आवाज में सुनिए इंदिवर की शब्द रचना। संगीतकार जोड़ी है कल्याण जी आनंद जी की। फिल्म का नाम है पारस।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म एक लड़का एक लड़की का गीत, आवाजें कुमार सानू और साधना सरगम की थी, धुन बनाई थी आनंद मिलिन ने और शब्द रचना थी समीर की। समीर की ही शब्द रचना लीजिए सुनिए नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में, आवाजें अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की। फिल्म का नाम है आदमी खिलौना है।

चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे, इसका शेष भाग सुनिएगा रात 8 बजे और रात 9:15 पर। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:21 होने को हैं। प्रस्तुत है किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल।

0: विनीता दीदी राम राम।
1: राम राम निधि, संगे संग चौपाल सुनैया जम्मो संगवारी मन घलो हमर दोनों के
0: राम राम। विनीता दीदी,
1: हाँ,
0: आज चौपाल सुनैया संगवारी मन ला आज हमर कार्यक्रम होवैया प्रसारण के क्रमवार जानकारी दे दन का।
1: हाँ वैसे है निधि, तोर मन ले मन है निधि, भाजी का खा जाए भाटा, फिर संगी मन ला हर दिन के क्रम के सुरता रही थे सरपेट्टा जाने अब ते बता डर भाई काय काय बतावे ते
0: तब संगी हो। आज हो ही हेलो किसान वाणी फोन इन कार्यक्रम जेमा हमर औ आप संग वाणी हो ही विशेषज्ञ के गोट बात कृषक प्रश्न मंच क्रम सूचना औ हो ही गीत संगीत है ना। औ दीदी
1: का
0: आज के गोट
1: गोठियावत तो हंस निधि औ काय गोठ औ काय काय गोठियावे काय बतावे बता।
0: वैसने दीदी अभी गर्मी मनमाने पर थे ऐसा,
1: हाँ।
0: में ज्यादातर खेत खाली रही थे है ना, और जिखर ले हम
1: जिखर में जिसे सिंचाई
0: पानी की व्यवस्था है तो उन भले साग भाजी ला बने लगा लेते
1: लगाए रही थे, फिर देख निधि सिंचाई पानी की व्यवस्था थे उनमें साग सब्जी लगाए रहे थे, फिर यू बात है कि किसान जो है कभी खाली नहीं रहा है। अब अभी देख अवैया दिन के तैयारी में लग गए किसान जो है, अब जैसे देख बीजा है, खातुक व्यवस्था है, खेत के माटी की जांच है, खेत और मेड़ पार के तैयारी करना है, ऐसा ढंग ले कतको नौकर काम रह रही थे है ना।
0: हाँ दीदी, बीज के बारे में तो कहे जाते ना कि जैसे बोए बीज वैसे हो ही चीज, ती पाए के बीज ला उपचारित करे जाते और प्रमाणित बीज के उपयोग करे जाते।
1: अनिधि ऐसे ना खातुक व्यवस्था घला पहले करके रखे में का है काम है सही बेरा में हो जाते, नहीं तो डारा के चुके बेंद्रा उस समय चुके किसान है ना पछवा जाते। और देख माटी के जांच हो जाए में का है माटी के पोषक तत्व के कमी बेसी पता चल जाते, तो वो मुताबिक जो है किसान हा फसल ला जरूरत के मुताबिक खातु दे देते है ना, माने भुइया ला खातु मिल जाते बरोबर है?
0: हाँ, और खेत के बन कचरा निदाई के सफाई जो है गला अभी के दिन में बने हो जाते,
1: हाँ।
0: संग में खेत के मेड़ पार ला ई बेरा में दुरुस्त घलो करे जाते।
1: बिल्कुल, देख निधि खेत के बन कचरा निंदा सफाई बर सबले अच्छा होते खेत के गहिर जुताई। गहिर जुताई का है खाली खेत में माटी है जो है बने ढंग ले तरी ऊपर हो जाते है ना, तब ऐसा में का है निंदा है कांदी है जड़ सहित ऊपर आ जाते है ना भाई, ते पाए के यही है बने होते।
0: दीदी, गहरी जुताई करना खेती के एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।
1: हाँ, वो
0: जब
1: तो
0: खेत में मौजूद कीट व्याधि ओकर संग औ निदा खरपतवार ला नियंत्रित करे में सहायक होते।
1: हाँ, ये तो सही कहे निधि ते हैं, देखो गहिर जुताई करेल का है तरीक माटी ऊपर आ जाते जेखर ले का है कीट औ जो ओकर अंडा होते वो सूर्य के तेज उताप लेना औ पक्षी जो चिड़े चुरगुन होते तेकर मन के संपर्क में आके सबो हमर जथे।
0: हाँ, और संगे संग खर

0: खरपतवार के जड़ और बीज ह माटी के गहराई में दब के नष्ट हो जाते
1: हाँ
0: जेकर ले ओकर बढ़वार है कमती होती
1: बिल्कुल वैसन ढंग ले खेत के गहर जुताई जोन है फसल के अच्छा उत्पादन और अच्छा पैदावार पर बहुत जरूरी होते है ना
0: और रासायनिक कीटनाशक निदानाशक के निर्भरता ला कमती करे बर घला गहरी जुताई बहुत जरूरी होते
1: बहुत जरूरी है और एक बात और कहा निधि देख कहते तो जो माटी होते तो माटी के उर्वरता बनाए रखे बर है ना विशेषज्ञ मन भी की थे और समय के ही मांग है कि हम जैविक खेती के उपयोग करन और जो रासायनिक जो वो खातु के उपयोग करते ना ओकर बहुत जरूरी जरूरी मात्रा में उपयोग करन है ना ताकि हमारे माटी के उर्वरता बने रहा है
0: और माटी के उर्वरता बने रही ओकर संग संग जो हमारे पर्यावरण है
1: हाँ
0: तीनों सुरक्षित
1: सुरक्षित रही बिल्कुल तो ऐसा ढंग ले हम जैविक खेती ला ही उपयोग करन और वही अपनावन ते ही फायदा के है।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय।
1: आँखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
0: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
0: 47 बच्चन ले सौलभ सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
2: दीदी ऐसा नहीं, देख हर मौसम के अपन अपन महत्व रही थे।
3: वो तो है
2: ना, तो गर्मी है भले मन माने पड़े, फिर खेती किसानी पर गर्मी है
3: सब। हाँ, सही कहे।
2: ऐसा नहीं कि देख भाई,
3: वही हम कहे ना निधि कि हाँ। भाई गर्मी होए, बरसात होए, ठंड होए, किसान 12 महीना खेत में लगे रही थे। हाँ। ये बता रखे अब तो गर्मी है तब संच के रहे काम कर लेते।
2: हाँ।
3: है ना।
2: हाँ।
3: मंजनी मंजना नहीं करे और करना और भी नहीं चाहिए।
2: खुद भी नियले निकल के अपन जोड़ जोड़ में अपन काम ला करे पर लग जाते।
3: हाँ।
2: और एती का है थोड़की सुस्ता के फिर अपन सांझ करना अपन फिर काम लगा।
3: हाँ, बस माने किसान कभू खाली नहीं रहा है।
2: नहीं रहा है,
3: है ना। और देख निधि गोड़ बात करा तब बेरा हुआ थे किसान वाणी के, है ना। प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

निधि अब पारी है वो क्रम के जिकर संगवारी मन ला अगोरा है जिकर बारे में ते बताए रहे है ना हाँ। तो संगवारी हो अब जान गयो आप मन है आज क्रम है हेलो किसान वाणी फोन इन कार्यक्रम। तो आज के विषय है खेती के लागत घटाओ और लाभ बढ़ाओ, नैनो और दानेदार खाद के विवेकपूर्ण उपयोग करेले। और विशेषज्ञ हैं श्री दिनेश गांधी उप महाप्रबंधक इफको रायपुर से। प्रस्तुत करता है शशि प्रकाश पांडे और संचालन है निधि शर्मा के।

0: भे। लावैसन के लागत में भारी बचत हुआ थे, सीधे पौधा में असर करते। एकर छिड़काव जोन है तेना पत्ती ऊपर करे जाते। फसल और पैदावार दोनों में सुधार आते। पर्यावरण ऊपर भी बहुते अच्छा प्रभाव पड़ते। माटी के सेहत बने रही थे। फिर ये नैनो यूरिया के इस्तेमाल कौन ढंग से करन, कैसे करन, ओकर मात्रा कैसे रहे, कब एकर छिड़काव करन, जम्मू बात के जानकारी, जिज्ञासा, समस्या के समाधान करे खातिर नैनो और दानेदार खाद का विवेकपूर्ण उपयोग खेती की लागत घटाएं, लाभ बढ़ाएं। ये विषय में आप मल्ला जानकारी दे खातिर, शंका के समाधान करे खातिर हमर संग स्टूडियो में है श्री दिनेश गांधी, उप महाप्रबंधक इफको रायपुर। सबसे पहले दिनेश गांधी जी, आप मन के हम स्वागत करथन हमर ये क्रम हेलो किसानवाणी मा। राम राम।
1: राम राम।
0: सर, हम आप मन संग अभी गुड बात औ करबो, फिर संगवारी मन के जिज्ञासा है तो संगवारी मन का कहते तेला सुनथन ओ मन के फोन मा। हेलो किसानवाणी।
2: हाँ हेलो किसानवाणी।
0: हाँ गा, कौन बोला था, कहाँ ले?
2: मिथिलेश कुमार साहू बोला था, रानी गांव नगरी ले।
0: हाँ साहू जी, बहुत बहुत स्वागत है आप मन के ये क्रम में। का पूछना चाहते हो आप मन?
2: हम जैसे घटाना है अभी, का है पूरा रासायनिक खाद डाल डाल के लागत बाहर आ रही है ना।
0: हाँ
2: हाँ, खेती के लागत घटाए बर हम का करना चाहिए, काबर की अभी जो हमन रासायनिक खेती हो गई आजकल लगभग लगभग वही चला थी, माल मवेशी सब बिछत जाते और सब यंत्र कम कम हो गए, तो अब की स्थिति में खेती की लागत घटाए बर का करना चाहिए, कुछ जैविक खाद वगैरह के बारे में बताते हो?
0: तो नैनो और दानेदार खाद है ना?
2: हाँ हाँ
0: हाँ। तो एक उपयोग कर थो आप मन?
2: हाँ कर था, नैनो यूरिया से पिछले साल कर रहे हूँ, अच्छा उपयोग आधा मिली से। दानेदार खाद तो जैसे डीपी वगैरह डाल से साल सोसाइटी में गलत थोड़ा सा मात्रा कम करके देते, ताकि अंधाधुंध उपयोग मत हो सके। एक बार शासन भी ध्यान देते और कम मात्रा में देते, लेकिन लोग बागवान वाला के साल खातु कम मिला थे, कम मिला थे, कहते हैं, लेकिन ये हमारे फायदा बढ़ा रहे, ये सब चीज कहा थे।
0: हाँ तो ये हमारे भूया पर कौन ढंग से फायदा पहुँचाते तेला हमारे विशेषज्ञ मन बतावत है।
1: राम राम साहू जी।
2: राम राम
1: साहू जी, ये जो आप प्रश्न करे कि हम अपन खेती के लागत ला कैसे कम कर सकथन, है ना, तो ओकर लिए सबसे बढ़िया जो आज के हमारे विषय वही है कि हमला रासायनिक खाद जो दानेदार खाद है ओकर उपयोग ला कम करना है, और जो अन्य जैसे जैविक उर्वरक है, बायोडिकम्पोजर है, नैनो उर्वरक है, एकर जो सस्ता खाद है, सस्ता विकल्प है, ओकर उपयोग ला बढ़ाना है। तो आप जैविक खाद जैसे एनपीके कंसोल्टिया है ना, या बायोडिकम्पोजर है, या नैनो उर्वरक के उपयोग करके 50% तक जो है रासायनिक दानेदार खाद के उपयोग ला कम कर सका, ठीक है। तो ओकर लिए आप ला का करना है कि शुरू में जो हम डीएपी डालतन ओकर मात्रा ला आधा करना है दानेदार डीएपी के, है ना, ओकर जगह नैनो डीएपी से आप ला बीज उपचार करना है। और जो आप यूरिया देते वो तीन भाग में देते, तो पहला यूरिया आप ला देना है जो 15 से 20 दिन में आप देते, और दूसरा तीसरा यूरिया के जो छिड़काव आप करते हो ओला आप नैनो यूरिया से विस्थापित कर सकते हो, कर स्प्रे करके नैनो यूरिया की खड़ी फसल। तो इस तरीके से आप यूरिया और डीएपी की मात्रा ला दानेदार के आधा कर सकते हो। एक अलावा जो जैव उर्वरक है ओकर इस्तेमाल करके आप मिट्टी के उर्वरा शक्ति ला बढ़ा सकते हो, ताकि आप जो भी खाद डालत हो मिट्टी में वो पौधे ला पर्याप्त तरीके से मिल सके अच्छे तरीके, तो ये विकल्प है। उसके अलावा आप गोबर के खाद इस्तेमाल करो, वो आपकी मिट्टी के गुणवत्ता ला बढ़ी, कई तरह के पोषक तत्व तो जो है आपकी जमीन में देके काम करी, और इस तरीके से आप समन्वित से खेती करके अपन खेती के लागत ला घटा सकते हैं।
2: जी। और एक कटौती प्रश्न है, जैसे अभी हम रबी फसल में धान लगाते
1: हैं,
2: जी, जी, और ओकर जैसे 13 बच गई, जैसे आजकल पूरा हार्वेस्टर सिस्टम चला धान कटाई और 13 खेत में पड़े रहते,
1: जी,
2: और कुछ किसान मन हो जला दे,
1: जी,
2: बल्कि जलाना तो नहीं चाहिए,
1: जी जी, आपके जैसे इफको भी बायो डिकम्पोजर बनाते तो वो बहुत अच्छा तरीका है, आपके जो भी वेस्ट मटेरियल है खेत में ओकल आप ओला बहुत जल्दी सड़ा सकत हो, है ना, तो रबी के धान के बाद में जो भी आपके पुआल वगैरह बचे है या ओला आपला सड़ाना है, तो बायो डिकम्पोजर के आपला वो 25 ग्राम के एक सीसी आते है ना, वो एक एकड़ के लिए पर्याप्त है। ओकर लिए आप ला का करना है कि 20 लीटर पानी लेना है, 20 से 25 लीटर, और ओमे आधा

खेती किसानी के काम बूता में हमर किसान संगवारी मन बहुत मेहनत करते हैं। फिर फसल के पैदावार बर नैनो यूरिया तरल रूप में पौधा बर एक ठन बहुत ही अच्छा तकनीक हवे। ये नाइट्रोजन उर्वरक है। एकर उपयोग ले कम लागत में फसल के पैदावार ह बाढ़ते, माटी के सेहत ह सुरक्षित रहते। नैनो यूरिया ले खेत और किसान दोनों ला बड़ लाभ।

0: किलो गुड़ और 750 ग्राम आपला बेसन डालना है और ओमे आपला वो पूरा बायो डिकम्पोजर के डीपी वाला डाल देना है, ठीक है। ओला एक सप्ताह तक आपला घोल ला बना के रखना है, छाव में रखना है और ओला सीधा एक दिन में एक बार जो है वो क्ला घड़ी के सीधा दिशा में आप लोग घुमाना है। तो एक हफ्ते बाद आप देखो कि ओकर जो काई जो है ना सवाल है वो पूरा आपके ऊपर सतह बना ली। ओकर बाद में वो घोल ला आप 200 लीटर पानी में मिला के एक एकड़ में छिड़काव कर सकत हो। आप लोग थोड़ा पहले खेत ला हल्का जुताई करना है, अगर थोड़ा हल्का पानी दे सको आप सिंचाई तो और अच्छी अच्छा है। ओकर बाद आप ओकर छिड़काव कर दो पूरा एक एकड़ में 200 लीटर के घोल ला, तो आपके 45 दिन में वो खेत जो है बढ़िया पूरा उसका सड़ा दी है आपके जो भी अपशिष्ट पदार्थ तो इकर उपयोग ऐसे। आप फिर अब जो में आप 2 लीटर पानी बचा के रखू तो वापस से उसमें गुड़ और बेसन मिला के फिर से पानी मिला के आप फिर से नया घोल तैयार कर सकते।
1: हेलो किसान वाणी।
2: हेलो किसान वाणी।
1: हाँ कौन बोलत हो गा, कहाँ ले बोलत हो?
2: मैं दानी राम चंद्रवंशी बोले खुदी दी लखनपुर कमरधा ले।
1: हाँ चंद्रवंशी जी बहुत बहुत स्वागत है, का पूछना चाहत हो आज आप मन हमारे विशेषज्ञ मन ले?
2: ये खेती किसानी के सब धान उनके पैदावार में लागत ले खर्च कम कर करना है और आमदनी बढ़ाना है क्योंकि ये नैनो यूरिया नैनो डीएपी के बारे में लगा पूछे बोल दीदी
1: के कौन ढंग से एकर उपयोग करना चाहिए,
2: कहाँ मिली और खर्चा कम आते डीएपी ले दानेदार यूरिया डीएपी तो सब होते दानेदार खातु और कौन सी खातु डाले जाए यही सब वो बात पूछे बोल लगा है दीदी।
1: तो कहाँ से मिली आप मल्ला जानना है, जानकारी लेना है?
2: हाँ
1: हाँ जी विशेषज्ञ मन बैठे हैं बतावत हैं।
2: हाँ दीदी।
0: किसान भाई ये जो नैनो यूरिया नैनो डीएपी है वो आप समिति में उपलब्ध है, है ना, वहाँ परमिट से आप ले सकते हो सभी समिति में जो भी आपकी समिति है और एकर अलावा एकर उपयोग से आप निश्चित अपन लागत में कमी कर सकते हो। कबर कि ये जो है एकर दाम दानेदार यूरिया और दानेदार डीएपी से कम है। जो यूरिया आप लोग 267.50 रुपये में मिलते एक बोरी तो नैनो यूरिया जो है और आधा लीटर के एक बॉटल वो एक बोरी के बराबर काम करते हो 225 रुपये में मिलते आप। और जो डीएपी आप लोग 1350 रुपये बोरी में मिलते तो नैनो डीएपी के एक बॉटल जो है वो 600 रुपये में, मतलब उधर से आधे से भी कम कीमत में आप लोग मिली। और आप नैनो डीएपी ला बीज उपचार में भी उपयोग कर सकते हो और खड़ी फसल में छिड़काव भी कर सकते हो। 30 से 35 दिन के फसल होना चाहिए तो उसमें नैनो यूरिया नैनो डीएपी दोनों ला आप घोल बना के स्प्रे कर सकते हो या कोई कीटनाशक दवाई आप छिड़काव करते हो उस समय में तो ओकर साथ भी आप मिला के कर छिड़काव कर सकते हो। तो आपके लेबर के भी समस्या ला ये ख़त्म कर ही, अलग से लेबर आप लगाए की जरूरत नहीं पड़े और आपके लागत भी कम हुई है घर से और पैदावार आपके निश्चित रूप से दानेदार से अच्छा रही।
1: हाँ चंद्रवंशी जी आप मन फोन करे हो, हाँ ओकर भर आपन के बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हेलो किसान वाणी
3: जी, मैं भगत राम पटेल बोलत हूँ सिंगारबाड़ी घुटकुले। राम राम।
1: राम राम भैया, क्या पूछना चाहते हो आज के क्रम में आप मन?
3: हाँ हाँ दीदी, आज मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हमका नैनो जिन खाद यूरिया जिन उपयोग करना है तो अभी जिन हम रासायनिक उपयोग करा था तो ऐसी ओखर उपयोग जिन कौन टाइप के करना है जैसे हमारे जिन पैदावार है कोई भी सब्जी या धान के वो अच्छा हो सके?
1: जी
0: किसान भाई राम राम, आप लोग अगर रासायनिक खाद के साथ में नैनो यूरिया नैनो डीपी के इस्तेमाल करना है तो रासायनिक खाद के मात्रा ला आप ला कम करे लगी। ओकर लिए डीएपी जो आप शुरू में डालते हो जैसे एक बोरी डालना है तो आधा बोरी डालने लगी है ना, ओकर जगह में आप ला नैनो डीएपी से बीज उपचार करना है तो ओकर लिए 1 किलो बीज के लिए 5 मिलीलीटर जो है नैनो डीएपी पर्याप्त है। ओला थोड़ा सा और जैसे एक एकड़ के लिए 40 किलो बीज की जरूरत पड़ते तो मैं 250 ml जो है नैनो डीएपी लगी और मैं थोड़ा आधा लीटर पानी के घोल बना के आप 40 किलो वाला बीज ला अच्छे से मिला के वाला आधा घंटा सुखाए के बाद में ओकर बोनी कर सकत। ओकर बाद में जो हम यूरिया डालथन शुरू में 20 से 25 दिन बाद बोनी के या 15 दिन बाद ओला अपना दानेदार से देना है और दूसरा और तीसरा बार जो हम खड़ी फसल में यूरिया के छिड़काव करथन ओला न करके हम नैनो यूरिया के छिड़काव कर सकथन और एक नैनो डीएपी के 30 से 35 दिन में छिड़काव करना है खड़ी फसल में और नैनो यूरिया के साथ में और ओकर 20 दिन बाद फिर से एक नैनो यूरिया के मतलब 2 बार नैनो यूरिया के स्प्रे हुई और 1 बार नैनो डीएपी ऐसे करके हम यूरिया और डीएपी दोनों के मात्रा ला आधा कर सका था और नैनो के इस्तेमाल से आपके लागत भी घटी आपके पैदावार भी बढ़ी और आपकी जमीन भी सुरक्षित रही है। कर
3: बहुत सुंदर जानकारी आप लोग आकाशवाणी परिवार ला गाड़ा गाड़ा बधाई जय जवाहर। राम राम।
0: धन्यवाद।
1: राम राम भैया। हेलो किसान वाणी कौन बोलत होगा?
3: मैं राजेंद्र कुमार दामले को क्या
1: हाँ दामले जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्रम। हाँ का पूछना चाहते हो आज आप मन हमर विशेषज्ञ मन ले?
3: कि अपन नैनो है खाद नैनो यूरिया खाद है और दानेदार यूरिया खाद है एकर में का फर्क है और कते ज्यादा फायदा करते हैं हमारे बारे में बाजार?
1: हाँ विशेषज्ञ मन बताते भैया।
0: किसान भाई आप

0: नो यूरिया और दानेदार यूरिया में जो अंतर जानना चाहते हो, तो एक तो कहा है कि दानेदार खाद जो है वो हम सीधा जमीन के खाद है, वो जमीन में जाते और जमीन के माध्यम से पौधा ला प्राप्त होते है ना, तो ये जो है जितना ज्यादा हम देबो पौधा ला उतना ज्यादा पौधा में हरापन आते, उसमें शिथिलता आते, कोमलता आते और ज्यादा कीड़ा बीमारी के प्रकोप होते और पौधा जो है जरूरत से ज्यादा उसका इस्तेमाल कर लेते तो ओकर बढ़वार भी ज्यादा हो जाते और उसमें एक समय के बाद जब आंधी तूफान आते तो वो पौधा गिरे के भी भय रहता है ना। लेकिन नैनो यूरिया जो है वो जमीन के खाद नो है, वो पौधा के खाद है। इला जब हम पौधे के ऊपर छिड़काव करते हैं तो ये पत्ती के माध्यम से पौधे के अंदर प्रवेश करते और जितना पौधे आवश्यकता है उसके हिसाब से वो उलकर उपयोग करते, तो बहुत ज्यादा हरापन भी नहीं आए, कोमलता भी नहीं आए और बहुत उसका बढ़वार भी नहीं हुए, तो कीड़ा बीमारी के प्रकोप भी कम लगते और पौधा के गिरे के जो संभावना रहते वो भी बहुत कम हो जाते कर। तो ये निश्चित रूप से दानेदार खाद से बेहतर है और ओकर विकल्प के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब पौधा छोटे रहते वो समय में हमला 20 से 25 दिन में एक बार दानेदार के इस्तेमाल करना चाहिए शुरू में जमीन में, ओकर बाद जब पौधा बड़े हो जाते 30 से 35 दिन के हो जाते तब हमला 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से नैनो यूरिया के इस्तेमाल करना चाहिए पहला छिड़काव, फिर 20 दिन बाद दूसरा छिड़काव करना चाहिए गभोट के एक हफ्ता पहले तक, तो ऐसा करके हम जो नाइट्रोजन की कमी है पौधा में ओकर पूर्ति कर सकते।
1: तो सर जी अपन जैसे धान हर निकलत रहते जिस समय पुड़ रहा रहते
0: जी,
1: तो समय हम सोचते हैं कि धान ला निकले तकलीफ मत हो कि दानेदार यूरिया अपन मार देते हैं जल्दी निकल,
0: हाँ।
1: तो समय ये नैनो यूरिया भी छिड़काव कर
0: जी जी पोल्ट्री पानी के एक हफ्ते पहले तक आप एक छिड़काव करो तो निश्चित रूप से आप दानेदार की जगह एक इस्तेमाल करके जो आप लाभ लेना चाहते हो वो ले सकते हो, कोई दिक्कत
1: जी सर, जानकारी दो सर, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: हेलो किसान वाणी।
3: हेलो, हाँ निधि मैडम नमस्ते।
2: नमस्ते, राम राम। हाँ कौन बोलत होगा, कहाँ से बोलत हो?
3: हाँ दीदी मैं मानवेंद्र साहू बोलत हूँ।
2: हाँ मानवेंद्र जी के बहुत बहुत स्वागत करते हमारे क्रम में, का पूछना चाहते हो आप मन?
3: तो प्रश्न अपन ये है कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाना है तो अभी नैनो यूरिया आगे कई ठन आगे है ना, तो अभी जैसे आगामी वाला धान बोना है तो जैसे रासायनिक खाद वगैरह अगर उपयोग अगर हम कम करना चाहते हैं, अगर कैसे कम जैसे खाद वगैरह है या जैविक खाद है तो कौन कैसे तरीका है जिसमें से उत्पादन भी होए और लागत भी कम होकर तरीका के बारे में जानना है।
2: तो नैनो और दानेदार खाद के अपन उपयोग के बारे में जानना चाहता हूँ।
3: जी जी
2: जी, तो विशेषज्ञ मन बतावत है
3: जी। हाँ।
0: किसान भाई आप जो पूछे हो कि कैसे हम रासायनिक खाद के उपयोग कम करके लागत कम कर सकन और जो वैकल्पिक खाद है उसका इस्तेमाल करके पैदावार अच्छा ले सकन, तो ओकर लिए आप जो है नैनो उर्वरक है, जैव उर्वरक है, बायोडिकम्पोजर के इस्तेमाल करके 50% तक अपन रासायनिक खाद जो दानेदार खाद है ओकर मात्रा ला कम कर सकत हो। ओकर लिए आप जो शुरू में DAP खाद डालते हो ओला आधा करना है आप लोग मात्रा ला, ओकर जगह नैनो DAP से बीज उपचार करना है और साथ में आप जो जैव उर्वरक है ओकर से भी बीज उपचार कर सकत हो, है ना। ओकर लिए एकर 5 ml प्रति किलो के हिसाब से मात्रा लगते, ओकर बीज उपचार करे के बाद में आप जो है एक बार 15 से 20 दिन बाद दानेदार यूरिया के इस्तेमाल कर सकत हो शुरू में जब पौधा छोटे रहते, ओकर बाद में जब पौधा 30 से 35 दिन के हो जाते तब आप नैनो यूरिया के एक छिड़काव कर सकत हो 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से, साथ में नैनो DAP के भी आप छिड़काव कर सकत हो उसी दर पे।
3: हाँ।
0: जी ओकर बाद में आप 20 दिन बाद एक बार फिर से नैनो यूरिया मतलब पोटर पानी के एक हफ्ते पहले तक आप ला करना है गभोट अवस्था से पहले, तो ओकर से आपके यूरिया और फास्फोरस नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों के पौधा ला पूर्ति हो जाते आसानी से।
3: अच्छा। हाँ।
0: तो एकर अलावा अब हमार नैनो जिंक नैनो कापर भी आगे है तो ओकर भी इस्तेमाल आप एक साथ में छिड़काव के रूप में करूँ तो वो भी आपके पैदावार बढ़ाए में सहायक हो।
2: आशा करते हैं कि आप मन की समस्या के समाधान हो गए हुई।
3: जी बिल्कुल जी,
2: जी फोन करे हो आप मन के भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर हम आप मन से ये जानना चाहबो जैसे नैनो यूरिया के उपयोग ला तो हम करत हन, फिर ओकर उपयोग ला हमला कब और कैसे करना चाहिए तेनो लाभ मन बता देते हो?
0: जी मैम इसका उपयोग करने के लिए हमको जैसे नैनो DAP है तो वो सबसे पहले बीज उपचार के लिए उपयोग करना चाहिए, तो उसका 5 ml जो है 1 kg बीज के लिए पर्याप्त है, तो एक एकड़ में 40 kg बीज की आवश्यकता होती है तो 200 से 250 ml नैनो DAP का इस्तेमाल करना चाहिए, उसको 500 ml पानी में घोल बना के 40 kg बीज में हमको मिला के आधे घंटे सुखाने के बाद में उसका बीज बोनी करनी चाहिए। उसी तरीके से जब पौधा 30 से 35 दिन का हो जाता है बोनी के बाद तब उस समय नैनो यूरिया और नैनो DAP दोनों का हमको पहला छिड़काव करना चाहिए।

0: अभी एक लीटर पानी में 4 मिलीलीटर। हम लोग ये सलाह देते हैं किसान भाई को कि जो हमारा बोतल है नैनो यूरिया नैनो डीपी का 25 ml का रहता है, तो उसमें वो 2.5 ढक्कन जो है एक टंकी पानी, एक टंकी जो स्प्रेयर होता है उसमें डाल के एक एकड़ के लिए छिड़काव कर सकते हैं। तो जो 0.5 लीटर का जो हमारा बोतल होता है वो 8 टंकी में जाता है, तो एक एकड़ के लिए पर्याप्त है। उसके बाद 20 दिन बाद एक छिड़काव नैनो यूरिया का और करना चाहिए, तो जिससे वो यूरिया और नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों की पूर्ति हो सकती है। तो ये समय और उसकी मात्रा
1: जी। तो दिनेश जी, ये माँ हम यहू देखते हैं कि जैसे कत को संगवारी मन यह सोचते कि जे नैनो यूरिया है तो ओला का हमन कीटनाशक या तो फिर दूसर उर्वरक के साथ मिला सकथन का?
0: जी बिल्कुल, आप इसको कीटनाशक के साथ जरूर मिला सकते हैं। जब भी कीटनाशक छिड़काव कर रहे हैं उसके साथ में आप नैनो या नैनो डीपी को मिला के अगर स्प्रे करते हैं तो आपको अलग से और स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आप दानेदार खाद के साथ में मिला के इसको स्प्रे नहीं कर सकते, क्योंकि ये सीधा पत्ती के माध्यम से पौधे के अंदर प्रवेश करता है। तो अगर दानेदार के साथ आप मिलाएंगे तो वो ज़मीन में चला जाएगा, तो वो पौधे के लिए उपयोगी नहीं रहेगा और उसका उपयोग नहीं हो पाएगा।
1: फिर मन में यही प्रश्न आते हैं, जैसे हमन फसल पर उपयोग करत हन नैनो यूरिया के, तो कर कतका मात्रा हमला लेना पड़ता?
0: जी बहुत अच्छा प्रश्न मैम। इसका जैसे मैं बताया कि 1 लीटर पानी में 4 ml हमको उपयोग करना है, तो एक टंकी जो रहती 15 लीटर की उसमें 60 ml मतलब 2.5 ढक्कन होता है, और एक एकड़ के लिए 500 ml की जो बोतल है 0.5 लीटर वो पर्याप्त है। वो 8 टंकी में जाता है और 8 टंकी के एक एकड़ में स्प्रे के लिए पर्याप्त माना जाता है। तो इस तरीके से 0.5 लीटर जो है वो एक एकड़ का डोज है इसका।
1: तो जिसे सर आप मन बतावत हो कि ये सीधा पत्ती में हम जेकर छिड़काव जैसे करथन तो एक लाभ मिलते, तो नैनो यूरिया के पत्ती में छिड़काव के बाद कहूँ बरसा हो जाए या पानी गिर जाए तो ऐसा बखत में हमन मतलब का करना चाहिए?
0: जी मैम, अगर आप नैनो यूरिया या नैनो डीएपी से पत्तियों में छिड़काव किए पौधों में तो कम से कम आपको 10 से 12 घंटा जो है वो पानी नहीं गिरना चाहिए। अगर 12 घंटे के अंदर पानी गिर गया है तो आपको फिर से छिड़काव करना चाहिए। तो पहले हमको ये देख लेना चाहिए कि उस दिन कहीं पानी गिरने की संभावना तो नहीं है, तो उसको हमको टालना चाहिए आगे के लिए।
1: जी तो आप मन संग अभी हम अवगोड बात करबो फिर संगवारी मन के फोन। नैनो यूरिया तो हमारे खेत पर हमारे भुइयां पर बड़ लाभ के है, ये हमारे पर्यावरण ला कौन ढंग से सुरक्षित रखते तेकर बारे में बताते हो आप मन?
0: जी इसके उपयोग से हम दानेदार के उपयोग की मात्रा को कम कर सकते हैं, और दानेदार से जो भी दुष्प्रभाव है जैसे जो यूरिया हम इस्तेमाल करते हैं उससे जो नाइट्रेट बनता है वो भूमिगत जल को प्रदूषित कर रहा है, और उसको जब हम लोग पीने के पानी में इस्तेमाल करते हैं तो उससे कई तरह की बीमारियां जो हैं कैंसर है या और तरह की बीमारियां ब्लू बेबी सिंड्रोम है वो पैदा होती है, तो उससे हम बच सकते हैं। तो ये मानव स्वास्थ्य के लिए भी हितकारी है। दूसरा, ज़मीन में ज़्यादा रासायनिक खाद के प्रयोग से ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है वो धीरे धीरे क्षीण होते जा रही, कम होते जा रही है। तो जितना कम हम रासायनिक उर्वरक ज़मीन में देंगे उतनी हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बनी रहेगी। इसके अलावा जो रासायनिक खाद उपयोग हम करते हैं वो गैस बन के हवा में भी उड़ जाती है, जिसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग का जो आ रहा है उसमें भी इसका योगदान रहता है, जो वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने का काम करती है। तो उसको भी कम करके, इसकी मात्रा को कम करके हम उसको भी ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पानी को, हवा को और मिट्टी को, तीनों को बचाने का काम करती है नैनो यूरिया या नैनो डीपी।
1: हेलो किसान वाणी।
2: हाँ दीदी, मोर माया भरे राम राम।
1: राम राम का कौन बोला था, कहाँ ले?
2: मैं नवागढ़ कटाई जिला में तरह 36 जिले नारायण प्रसाद वर्मा बोला था दीदी।
1: हाँ वर्मा जी, का पूछना चाहते हो आज आप मन हमर विशेषज्ञ मन ले?
2: हाँ दीदी, जैसे ये नैनो यूरिया और दानेदार यूरिया के उपयोग हमन हाँ खरीफ और रबी फसल में कैसन ढंग ले कर सकथन और कब कब करबो, और जैसे अपन आप मन बता था दीदी कि पैरा उपचारित यूरिया, तो ये जो नैनो यूरिया है यू में पैरा उपचारित हो सकते का दीदी? ही जम्मो बात ल पूछे बर फोन लगाए हाँ वहाँ
1: विशेषज्ञ मन बतावा थे भैया।
2: हाँ
1: जी
0: हाँ, राम राम किसान भाई।
2: हाँ राम राम भैया, राम
0: जी
2: राम।
0: जो नैनो यूरिया नैनो डीएपी के उपयोग जो करना है वो आप ला नैनो डीएपी के शुरू में ही बीज उपचार के से उपयोग शुरू करना है, तो कल लिए 1 किलो बीज पर आप ला 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी के उपयोग करना है, और एक एकड़ में जैसे 40 किलो बीज आप ला लगते धान के तो उनमें 200 से 250 ml नैनो डीएपी लगी, और 0.5 लीटर पानी के साथ घोल बना के 40 किलो ला अच्छे से भिगो के बीज ला फिर आधा घंटा सुख

0: आय के बाद आप ओकर बोनी कर सकत।
1: अच्छा
0: जी, ओकर बाद में आप ला 30 से 35 दिन के जब पौधा हो जाते वो समय नैनो यूरिया और नैनो डीएपी दोनों के घोल बना के 4 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हो खड़े फसल में। तो वो जो है एक टंकी में 60 ml आप ला इस्तेमाल करना है और 8 टंकी में आधा लीटर 500 ml के जो नैनो यूरिया नैनो डीएपी के आप ला जरूरत पड़ी उस समय। ओकर 20 दिन बाद आप जो है वो नैनो यूरिया के एक और छिड़काव कर सकते हो गभोट के एक हफ्ते पहले तक। तो ऐसे करके आपके जो भी पौधे के नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो आवश्यकता है ओकर पूर्ति हो जाएगी और आपके उपज भी बढ़ी और दानेदार यूरिया के खपत ला आप आधा कर सकत।
1: अच्छा
0: जी,
1: सुघर जानकारी पर बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
2: दिनेश गांधी जी, आप मन बेरा निकाल के उपयोगी जानकारी हमारे संगवारी मन ला देव और संगे संग उखर मन के शंका के समाधान घलव करियो। जानकारी दे खातिर आपो मन ला बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।
0: राम राम।

संगवारी हो, ये रहीस हेलो किसान वाणी फोन इन कार्यक्रम। विषय रहीस खेती के लागत घटाए और लाभ बढ़ाए नैनो और दानेदार खाद के विवेकपूर्ण उपयोग से। विशेषज्ञ रहीन है श्री दिनेश गांधी, उप महाप्रबंधक इफ्को रायपुर। प्रस्तुतकर्ता रहीन शशि प्रकाश पांडे और संचालन रहीस निधि शर्मा के।

0: संगवारी हो, आप मन भर सूचना है। संगी हो, अवैया शुक्रवार 5 जून 2026 के प्रसारित होने वाले हेलो चौपाल कार्यक्रम के ये वक्त के विषय हुई स्वच्छ दुग्ध उत्पादन और उसका परिवहन। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन और उसका परिवहन आप मन समस्या और जिज्ञासा के समाधान करे खातिर हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहे विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर उपरीत, अधिष्ठाता डेयरी विज्ञान और खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर। आप मन अपन जिज्ञासा और शंका के समाधान पाए खातिर हमन ला फोन कर सकते हो। हमारे फोन नंबर है 4003482, 4003483 और 4003484। रायपुर के एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग शुक्रवार 5 जून 2026 के 11:30 बजे ले 12 बजे तक करे जाही और ये कार्यक्रम के प्रसारण शुक्रवार के ही संध्या 7:30 बजे करे जाही। हमन मल्ला आप मन के फोन के अगोरा रही संगी हो, सूचना यहीं तक।
1: और निधि, अब संगवारी मल्ला अगोरा है कृषक प्रश्न मंच क्रम के अंतर्गत आज के प्रश्न बताए के है ना, बता देते हो मन अगोरा है तो संगवारी हो आज के प्रश्न लिख ले। आज के प्रश्न है नैनो यूरिया के उपयोग फसल में कब कब करना चाहिए। एक बेरो सुन लो संगी हो प्रश्न ला, नैनो यूरिया के उपयोग फसल में कब कब करना चाहिए। और ये सवाल के जवाब झटकुन लिख के भेजो संगी हो ताकि सही बेरा में अपन के नाम जो है शामिल हो सके। पाछू हफ्ता आज के दिन जो प्रश्न पूछे रहे वो रही से कृषि यंत्र के उपयोग के बाद ओखर रख रखाव कौन ढंग ले करना चाहिए। सही जवाब है उपयोग के बाद कृषि यंत्र ला धो पोछ के सूखा करके ऑयल ग्रीसिंग करके रखना चाहिए। और सही जवाब भेजिया संगवारी मन के नाम बता देनी थी।
0: मदनपुर कवर्धा ले श्रवण कुमार साहू, योगेश राहुल साहू, देवरी भाटापाल ले गन्नूलाल रजक, मुकेश कुमार रजक, युवान और तन्नू रजक, बेमेतरा ले सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता और कमलकांत सारथी, वीरेन्द्र वृक्षकांत सारथी मनहा।

0: थरिया भरे वाले हे चंदूलाल सिंगरौल नारायणी सिंगरौल मन हा।
1: तो ये सबो संगवारी मन बधाई, इखर जवाब जो है सही है। और निधि अब आप ते जो क्रम बता रहे हैं ही हिसाब से एक बढ़िया सही गीत सुन लेते हैं,
0: है ना दीदी?
1: तो बिल्कुल सुनता नहीं है। बुद्धि सागर शर्मा और रजनी रजक के स्वर में ये गीत।

0: संगी अभी सुनिन ये सुघर गीत जे लगावत रही ने बुद्धिसागर शर्मा और
1: रजनी
0: रजक मन हा और ये किसानवाणी के प्रायोजक रही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार
1: और निधि अब हुआ थे जाए के बेरा तो जाए के पहली संगवारी मना बता देथन काली के कार्यक्रम काली चौपाल मा गोट बात के संग क्रम हो ही चिट्ठी मिली पत्र उत्तर कार्यक्रम आज की सलाह क्रम में जानकारी के विषय हो ही राहर उत्पादन के उन्नत तकनीक विशेषज्ञ हुई आशीष गौरव शुक्ला कृषक प्रश्न मंच क्रम और गीत संगीत भी हो ही संगी हो तब देव विदा चौपाल सुनैया जम्मो संगवारी मना विनीता
0: और निधि के राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल, आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजने को हैं, हाजिर हैं हम चित्रपट संगीत के संग।

0: मेरी सूरत तेरी आंखें, इस फिल्म का गीत सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे। शैलेंद्र की शब्द रचना थी, संगीत आरडी बर्मन का था।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में

0: जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोट, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनो संगी संगवारी मल्ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

चित्रपट संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर और सराईपाली केंद्रों से। सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में सुनिए इंदिवर की शब्द रचना। संगीतकार जोड़ी है कल्याण जी आनंद जी की। फिल्म का नाम है पारस।

शगुन इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं आवाजें मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की, साहिर लुधियानवी के बोल और खय्याम का संगीत।

चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। रात के 8:15 होने को हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं सुखियारिन मानिकपुरी और साथी। पहले सुनते हैं सुखियारिन मानिकपुरी और साथियों के स्वर में बरखा गीत।

इसी गीत के संग लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। इस कार्यक्रम में कलाकार थे सुखियारिन मानिकपुरी और साथी आकाशवाणी का ये रायपुर और सराईपाली केंद्र है। श्रोताओं एक सूचना सुनिए, आगामी शुक्रवार 5 जून 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो चौपाल कार्यक्रम का विषय होगा स्वच्छ दुग्ध उत्पादन और उसका परिवहन। आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सुधीर उप्रीत, अधिष्ठाता डेयरी विज्ञान और खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 400-3482, 400-3483 और 400-3484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग शुक्रवार 5 जून 2026 को 11:30 से 12 तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण शुक्रवार को ही संध्या 7:30 में किया जाएगा। हमें आपके फ़ोन कॉल का इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:30 होने को हैं। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की

0: उमंग, साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और हरिहरन अमसाकरोनन तथा एमआर अर्जुन ने प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। हॉकी इंडिया ने महिला हॉकी नेशंस कप के लिए किया टीम का ऐलान, सलीमा टेटे को सौंपी टीम की कमान। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और निर्णायक महिला T20 मुकाबला आज टॉन्टन में। महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में कल भारत का सामना भूटान से। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मीरा एंड्रीवा ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बनाई। एन श्रीराम बालाजी और मार्सेलो डेमोलिनर पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से, जहां अनुभवी पीवी सिंधु और मेंस डबल्स की जोड़ी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और पुरुष डबल्स में हरिहरन अमसाकरुनन और एमआर अर्जुन की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। आइए जानते हैं प्रतियोगिता के पहले दिन कैसा रहा भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन।
1: इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के पहले दिन भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन मिला जुला रहा। महिला सिंगल्स में दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने आज लगातार सेटों में जीत हासिल करके टूर्नामेंट के दूसरे दौर में प्रवेश किया। सिंधु ने इस सुपर 1000 टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के मैच में थाईलैंड की बुसानन ओंगबांग रुंगफॉन को 25-23, 21-16 से पराजित किया। पुरुष डबल्स में हरिहरन अमसाकरोनन और एमआर अर्जुन ने मलेशियाई जोड़ी नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और वी क्योंग पर 21-18, 21-10 की जीत के साथ दूसरे दौर में प्रवेश किया। मालविका बंसोड़ पहले दौर में ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई। उन्हें थाईलैंड की सातवीं वरीयता प्राप्त पूर्ण पावी चोचू वोंग ने हराया, जबकि महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद को इंडोनेशिया की फ्रेबियाना द्वीपूजी कुसुमा और मेलेसा त्रियास पुष्पी तासारी से हार का सामना करना पड़ा। किदाम्बी श्रीकांत पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में जापान के युशी तनाका से 19-21, 15-21 से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए। वहीं लक्ष्य सेन भी इंडोनेशिया के अलवी फरहान से हारकर बाहर हो गए। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो भी चीन के चेन फांग हुई और गुआ शिनवा की जोड़ी से हारकर बाहर हो गए। अब भारतीय बैडमिंटन प्रशंसकों की निगाहें सिंगापुर ओपन जीतने के बाद आत्मविश्वास से भरपूर भारत की स्टार पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पर होगी, जो कल से प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
0: एक तरफ जहां हरिहरन अमसाकरोनन और एमआर अर्जुन की जोड़ी ने, मेंस डबल्स जोड़ी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, और कल भी भारत की मेंस डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी मैदान पे आएंगे, जहां उन्होंने हाल ही में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारत का प्रतिनिधित्व किया। अब सीधे रुख कर लेते हैं हॉकी के मैदान की ओर, जहां नेशंस कप के लिए टीम की घोषणा कर दी गई है। हॉकी इंडिया ने FIH हॉकी वुमेन्स नेशंस कप के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। ये टूर्नामेंट 15 से 21 जून तक न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में खेला जाएगा। एक नजर खिलाड़ियों पर।
2: विमेंस नेशंस कप के लिए टीम की कमान सलीमा टेटे को दी गई है, जबकि सविता और बीचू देवी खारीबाम को गोलकीपर के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। डिफेंस में सुशीला चानू पुखराम बम, इशिका चौधरी, निकी प्रधान और ज्योति बैकलाइन में अपना इंटरनेशनल अनुभव लेकर आई हैं। उनके साथ लालथंत लुआंगी और शिल्पी डबास भी होंगी। सलीमा टेटे, नेहा, सुनीता टोप्पो, साक्षी राणा, दीपिका सोरेंग, सोनम, लालरेम सियामी मिडफील्ड में अपना दमखम दिखाएंगी, जबकि नवनीत कौर, दीपिका, ऋतुजा दादासो पिसल, इशिका और अन्नू फॉरवर्ड की भूमिका में नजर आएंगी। प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैन।
0: ये नेशंस कप इस साल होने वाले महिला विश्व कप की तैयारियों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। अब बात कर लेते हैं प्रतिष्ठित फ्रेंच ओपन पर। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मीरा एंड्रीवा ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। एंड्रीवा ने आज रोमानिया की सोरेना क्रिस्टी को 6-0, 6-3 से शिकस्त दी। मीरा ने दूसरी बार महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। वहीं इसी वर्ग में आर्याना सबालेंका ने नाओमी ओसाका को 7-5, 6-3 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं कल हुए मुकाबले में मार्टियो अर्नाल्डी ने पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की और एन श्रीराम बालाजी और मार्सेलो डेमोलिनर ने पुरुष डबल्स

0: एक क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आइए जानते हैं कैसा रहा उनका प्रदर्शन।
1: फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ी एन श्रीराम बालाजी और उनके जोड़ीदार मार्सेलो डेमोलिनर ने प्रतियोगिता के पुरुष डबल्स वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इस जोड़ी ने कल रोलां गैरा में बड़ा उलटफेर करते हुए छठी वरीयता प्राप्त जर्मन जोड़ी केविन क्रावियेट्स और टिम पुएट्स के खिलाफ प्री क्वार्टर फाइनल मैच में 7-5, 6-4 से जीत दर्ज की। इंडो ब्राजीलियन जोड़ी ने संयमित प्रदर्शन करते हुए क्ले कोर्ट के इस बड़े टूर्नामेंट का प्री क्वार्टर फाइनल मैच 1 घंटे 25 मिनट में जीता। इसके साथ ही बालाजी और डेमोलिनर दोनों ने ग्रैंड स्लैम में पहली बार क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। ये टूर्नामेंट में उनकी लगातार तीसरी जीत है। इससे पहले उन्होंने दूसरे दौर में जर्मनी के जैकब फ्राइटर और मार्क वॉलनर पर 7-5, 6-2 से शानदार जीत दर्ज की थी। हालांकि पुरुष डबल्स प्रतियोगिता में भारत को कुछ झटके भी लगे। भारत के यूकी भांबरी और न्यूजीलैंड के माइकल वीनस को दूसरे दौर में अनुभवी सिमोन बोलेली और एंड्रिया वारससोरी के हाथों 3-6, 4-6 से हार का सामना करना पड़ा। भांबरी और वीनस ने अपने अभियान की शुरुआत मजबूती से की थी। इस जोड़ी ने पहले दौर में अर्जेंटीना के फ्रांसिस्को सेरुंजोलो और मारियानो केस्टेलबोइम पर 7-5, 6-2 से जीत दर्ज की थी। लवलीन निगम, स्पोर्ट्स कैन।
0: वहीं पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में अलेक्जेंडर ज्वेरेव का मुकाबला राफेल जोडार से जारी है और जेकब मैसिक का मुकाबला जोआओ फोंसेका से होगा। अमेरिका की दिग्गज टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स लगभग 4 वर्ष तक खेल से दूर रहने के बाद 44 साल की उम्र में आगामी क्वींस क्लब टूर्नामेंट से पेशेवर टेनिस में वापसी करेंगी। 23 बार की ग्रैंड स्लैम सिंगल्स चैंपियन सेरेना इस ग्रास कोर्ट टूर्नामेंट में डबल्स वर्ग के जरिए प्रतिस्पर्धी टेनिस में वापसी करेंगी। और अब बात शतरंज की। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के 7वें दौर में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार वापसी करके खिताब की उम्मीदों को जीवित रखा है। विश्व चैंपियन डी गुकेश और आर प्रज्ञानंदा ने ओपन वर्ग में महत्वपूर्ण जीत हासिल की, जबकि दिव्या देशमुख ने महिला वर्ग में हमवतन कोनेरू हम्पी को हराया।
2: प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों ने जबरदस्त वापसी करते हुए अपने अपने मुकाबले जीते। गुकेश ने अमरीकी ग्रैंड मास्टर वेस्ली सो के साथ मुकाबले में 1.5 अंक हासिल किए। उन्होंने क्लासिकल बाजी में मौका गंवाने के बाद आर्मागेडन टाई ब्रेक में जीत हासिल करके अपना कुल स्कोर 8 अंक पर पहुंचाया। वो हालांकि 6 खिलाड़ियों के डबल राउंड रॉबिन तालिका में सबसे निचले स्थान पर है। प्रज्ञानंदा ने फ्रांसीसी ग्रैंड मास्टर अलीरेजा फिरोजा को लगातार दूसरी बार क्लासिकल बाजी में हराकर पूरे 3 अंक हासिल किए। प्रतियोगिता में उनके अब 9 अंक हो गए हैं। प्रज्ञानंदा इसके बावजूद 5वें जबकि गुकेश 6ठे स्थान पर बने हुए हैं। इस टूर्नामेंट में अभी 3 दौर की बाजियां खेली जानी बाकी हैं और भारतीय खिलाड़ियों के पास वापसी कर शीर्ष पर पहुंचने का मौका है। वेस्ली सो 12.5 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर बने हुए हैं, जबकि अलीरेजा 10 अंक के साथ दूसरे स्थान पर हैं। प्रज्ञानंदा विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन और जर्मनी के विंसेंट कीमर सभी समान 9 अंकों के साथ संयुक्त 3रे स्थान पर हैं। दिव्या ने हम्पी को आर्मागेडन टाई ब्रेक में हराकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। अगले दौर में दिव्या का मुकाबला शीर्ष पर चल रही बिबिसारा असोबायेवा से होगा। इस मुकाबले को जीतकर दिव्या बढ़त हासिल करना चाहेंगी। असोबायेवा ने हालांकि अपनी शानदार फॉर्म बरकरार रखते हुए क्लासिकल बाजी में चीन की झू जिनर को हराकर पूरे 3 अंक हासिल किए। उनके अब 12.5 अंक हैं, दिव्या के 10 अंक हैं। इससे पहले 6ठे दौर में चारों भारतीय खिलाड़ियों को हार का सामना करना पड़ा था। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
0: अब रुख कर लेते हैं फुटबॉल के मैदान की ओर, जहां कल भारत का अहम मुकाबला खेला जाना है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम कल सेमीफाइनल में भूटान के खिलाफ खेलेंगी। ग्रुप चरण में शानदार प्रदर्शन के बाद भारत की निगाहें खिताबी मुकाबले में जगह बनाने पर लगी होंगी। भारतीय टीम 2 मैच में 6 अंक के साथ ग्रुप बी में शीर्ष पर रही, जिसमें उन्होंने मालदीव पर 11-0 की जीत के साथ अपना अभियान शुरू किया। और बात अब महिला क्रिकेट की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3रा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। भारत ने यास्तिका भाटिया और जेमिमा रॉड्रिक्स के अर्धशतकों की बदौलत श्रृंखला का पहला मैच 38 रन से जीता था। वहीं दूसरे मैच में कैम्प्स के शानदार प्रदर्शन की बदौलत इंग्लैंड ने वापसी कर श्रृंखला को 1-1 से बराबर कर लिया था।

0: इस श्रृंखला 12 जून से शुरू हो रहे T20 विश्व कप के मद्देनजर बेहद अहम है। वहीं पूर्व भारतीय लेग स्पिनर साईराज बहुतुले को आज पुरुष राष्ट्रीय टीम का स्पिन गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया, जो पहले देश के अंडर 19 और भारत के ए टीम के साथ काम कर चुके हैं। और श्रोताओं, अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक खास खिलाड़ी के बारे में जानने का, जिसने इस बात को साबित किया कि प्रतिभा किसी उम्र, साधन या बड़े शहर की मोहताज नहीं होती। जब हौसलों में उड़ान हो और बाजुओं में दम, तो राह की हर बाधा खुद ब खुद छोटी हो जाती है। इस पुरानी कहावत को शत प्रतिशत सच साबित कर दिखाया है देश के एक ऐसे उभरते सितारे ने, जिसने अपनी जादुई बल्लेबाजी से पूरे क्रिकेट जगत को हैरत में डाल दिया। हम बात कर रहे हैं बिहार के समस्तीपुर जिले के एक छोटे से कस्बे ताजपुर से निकले महज 15 वर्षीय युवा क्रिकेट सनसनी वैभव सूर्यवंशी की। जी हां, वही वैभव सूर्यवंशी जिन्होंने आईपीएल 2026 के मंच पर राजस्थान रॉयल्स की जर्सी पहनकर जब मैदान पर कदम रखा तो इतिहास खुद ब खुद लिखा जाने लगा।
1: An absolutely remarkable season for Vaibhav Suryavanshi.
2: IPL 2026 का खिताब भले ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने नाम किया हो, लेकिन इस सीजन को वैभव सूर्यवंशी के दमदार प्रदर्शन के लिए याद रखा जाएगा। वैभव 15 साल की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने हैं। IPL 2026 में वैभव ने अपनी तूफानी और सूझबूझ भरी बल्लेबाजी से ये साबित करके दिखाया कि पिछले साल का प्रदर्शन कोई तुक्का नहीं था। राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए वैभव ने आईपीएल में खेले 16 मुकाबलों में 237 के स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए। वैभव ने इस सीजन में एक शतक और 5 अर्धशतक लगाए। आईपीएल में वैभव ने सूझबूझ से बल्लेबाजी की और हर गेंद को सिर्फ बाउंड्री के पार पहुंचाने की होड़ में नहीं रहे। उन्होंने मुश्किल हालातों में राजस्थान रॉयल्स की लड़खड़ाती हुई पारी को कई बार संभाला, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेले गए मुकाबले में देखने को मिला। वैभव ने दूसरे क्वालिफायर में 47 गेंद में 96 रन की दमदार पारी खेली। कागिसुर रबाडा, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह से लेकर तमाम दिग्गज तेज गेंदबाजों ने वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ अलग अलग तरीकों से गेंदबाजी की, लेकिन वैभव ने न सिर्फ हर किसी का डट कर सामना किया बल्कि मुंहतोड़ जवाब भी दिया। बुमराह के खिलाफ पहली ही गेंद पर लगाया गया उनका छक्का शायद इस सीजन की उनकी सबसे अच्छी यादों में से एक रहेगा। वैभव ने ऑरेंज कैप, मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी, एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन और सुपर सिक्सेस ऑफ द सीजन का अवार्ड अपने नाम किया।
1: 776 रन्स इन ओनली हिज सेकंड सीजन, हिज फर्स्ट फुल सीजन इन द तारा आईपीएल, वैभव सूर्यवंशी गेट्स द ऑरेंज कैप। 72 सिक्सेस हिट दिस ईयर, द इमर्जिंग प्लेयर, सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन, वैभव सूर्यवंशी।
2: वैभव ने इस आईपीएल में कुल 72 छक्के लगाए, जो एक सीजन में किसी भी बल्लेबाज के द्वारा लगाए गए सर्वाधिक छक्के हैं।
1: गोस फुल, द बॉल गोस लॉन्गर, दिस इज मैसिव। यू माइट से इट्स जस्ट सूर्यवंशी डूइंग सूर्यवंशी थिंग्स। Straight back down the ground again. He's putting on a show, this young man, Vaibhav Suryavanshi. Straight up, but this time the fielder at cover is the one who's watching. That's the biggest of them all, and you thought you'd seen it all. This is third tier.
2: वैभव आईपीएल में गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 1000 रन पूरा करने वाले बल्लेबाज भी बने। वे पावर प्ले में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे और उन्होंने डेविड वार्नर का रिकॉर्ड तोड़ा। वैभव ने एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। उन्होंने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के साथ 12 छक्के लगाए और 16 गेंद में अर्धशतक लगाते हुए आईपीएल प्ले ऑफ में संयुक्त रूप से सबसे तेज 50 लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया।
0: और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें sportscan की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और sportscan की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल

0: इस्राइल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए 1 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति 1 महीने के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।
1: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। CBSE ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गईं और अनधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर CBSE ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
3: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वो अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी।
2: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
4: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
2: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से

लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉकेट टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेशी निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सफल परीक्षण स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी के बढ़ती परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं और उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवर, अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनके नियुक्तियों को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अतिक्रमण करने वाली सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्यवाही शुरू की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राय बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद शुक्रवार से पदभार ग्रहण करेंगी। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। NTA ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स OTT की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्षों से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्मों को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।

0: द हेल्प ऑफ दिस स्कीम आई स्टार्ट ऑन माई ड्रीम।
1: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
0: 2 to 3 ब्रांचेस ऑल्सो।
2: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और वुमेनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
3: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी हैं। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
2: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गाँव तक पहुँच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
4: ये आकाशवाणी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे, उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है। सरकार ने श्री वरुण भारद्वाज को CBSE में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। रूस ने कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसमें 21 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि देश में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने अमेरिका से यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजने का भी आग्रह किया। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत सेवारत 550 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों ने संघर्षग्रस्त देश में नागरिकों की सुरक्षा और शांति स्थापना प्रयासों में उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। इनमें 53 महिलाएं शामिल हैं। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: फिल्म कामचोर का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। इंदिवर की शब्द रचना और राजेश रोशन का संगीत था।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: चित्रपट संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर और सराईपाली केंद्र से। मीरा का मोहन इस फिल्म का गीत सुनिए अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की आवाजों में। अरुण पौडवाल की बनाई धुन और इंदिवर के बोल।

0: इसी गीत के संग चित्रपट संगीत समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:25 होने को है। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान कल्याण।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल किसान कल्याण और किसान केंद्रित नीतियों के माध्यम से किसानों का सशक्तिकरण। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल सीरीज नाउ वी ब्रिंग योर डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट एम्पावरिंग फार्मर्स थ्रू वेलफेयर and farmer-centric policies. Participants are Shekhar Iyer, political analyst, and S.P. Singh, senior journalist. The moderator is Sonu Sood.
3: In the last 12 years of NDA government, Prime Minister Narendra Modi has continually stressed on farmers' welfare as one of the topmost priorities of the government. Agricultural production and agricultural exports have gone up steadily, and we have become a leading producer of food grains, millets, milk, coconut, spices, fruit.

0: fruits, vegetables in the world. While ensuring food security for 140 crore Indians, the strong agricultural growth has made us an integral part of the global food value chain. In the last 12 years, the government has brought in path-breaking, targeted reforms for every stage of the agricultural cycle, optimizing productivity and ensuring transparent delivery of the benefits of government schemes through use of latest technology and digitization. To discuss the holistic government initiatives to maximize farmer welfare over the last 12 years and how it has given stability and momentum to our agriculture sector, we are joined today by two special guests, Mr. S.P. Singh and Mr. Shekhar Iyer. Mr. Singh, Mr. Iyer, a warm welcome to both of you at this special Akashwani series on completion of 12 years of NDA government.
1: Namaskar, thank you.
0: So, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह का हमने एक तेजी देखी है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिस तरह से हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है, ना सिर्फ फूड ग्रेन्स में, हॉर्टिकल्चर में, बाकी जो कृषि के एलाइड सेक्टर्स हैं, किस तरह से आप आंकते हैं सरकार का जो ये 12 वर्षों में अप्रोच रहा है कृषि क्षेत्र की तरफ, उसमें कौन सा ऐसा प्रमुख केंद्र बिंदु है जिससे आपको लगता है कि ये संभव हो पाया है?
2: देखिए, इस सरकार की जो अगर सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर अगर हम देखें तो खेती किसानी के मामले में और कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने की उन्नत दिशा में ले जाने में या किसानों की दशा और दिशा को सुधारने में अगर किसी ने अहम रोल अदा किया है तो इस सरकार के इस 12 साल को एक माइलस्टोन के तौर पर देखा जा सकता है, एक अच्छा फेज कहा जा सकता है। सबसे पहला काम इस सरकार का अगर देखें तो सुधार के तौर पर, कृषि सुधार की दिशा में कृषि मंत्रालय का नाम पहले बदला गया। इसका नाम कृषि मंत्रालय था, इसको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किया गया। इसका पर्पज सिर्फ यह था कि किसानों, कृषि के साथ जो किसान से जुड़े हुए एलाइड सेक्टर है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, खेती और किसानी। दूसरा, किसान कृषि का की परिभाषा को सरकार ने बदला, वो उसके तरीके पहले था खेती और बाड़ी, लेकिन खेती के साथ देखते देखते बाड़ी कहीं गायब हो गई, विलुप्त सी हो गई। तो इस सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि उन्होंने बाड़ी को आगे बढ़ाया, यानी खेती की परिभाषा को, कृषि की परिभाषा को बदला और उसके दायरे को बढ़ाकर उसमें उन सेक्टर्स को भी डाला जो चूक हो रही थी या विलुप्त हो रहे थे, जैसे बागवानी का, हार्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, प्लस इसके अलावा डेयरी, पशुपालन और बी कीपिंग, मतलब खेती किसानी से जुड़े हुए जो उद्यम थे, सह उद्यम जिन्हें था, जो किसानों की जो आमदनी बढ़ाने की बात होती है, प्रधानमंत्री बार बार कहा करते हैं कि दोगुना करने की बात कही थी, मैं बार बार कहता हूं कि खेती के साथ अगर बाड़ी को जोड़ दिया जाए तो दोगुना नहीं, कई गुना की वृद्धि आमदनी बढ़ाई जा सकती है। और सरकार का पूरा प्रयास था कि हम कैसे खेती के साथ बाड़ी को आगे बढ़ाएं, और बाड़ी के आगे बढ़ाने का एक नतीजा है कि आज हम दुनिया में खेती के साथ साथ हार्टिकल्चर में, फिशरी में, आज हम हार्टिकल्चर में दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। कई ऐसे फ्रूट्स हैं, कई ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिसमें हम दुनिया में नंबर एक उत्पादन करने वाले कंट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरह से हम चावल, चीनी, गेहूं और तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको हम दुनिया में सबसे बड़े एक्सपोर्टर।
3: This is Akashwani. In the program Money Talk, now we bring you a discussion on key takeaways from RBI's annual report 2025-26. The participants are Shishir Sinha, economic analyst, and Rajesh Lekh, anchor.
4: Good evening and welcome to Money Talk. My name is Rajesh Lekh. Today we
2: खर्च चल रहा है, कैसे वो जीवन यापन कर रहे हैं। इस सरकार ने सबसे बड़ा फोकस उनके साथ किया जो बाड़ी को जोड़ा, जिसमें जमीन की जरूरत नहीं होती है। दो पशु रख लीजिए, चार पशु रख लेता है गांव का भूमिहीन किसान, उससे उसका काम चल जाता है, उससे उसकी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है और वो अपने किसान के खेत पर खेती करता है, उससे पैसे मिल जाते हैं और अपने पशुपालन है, भेड़ पालन है, मतलब ढेर सारी से पशुपालन से भी पैसे मिलते हैं। तो ऐसे सेक्टर खोल दे, बी कीपिंग है जिसमें कुछ नहीं लगता है, ऐसे ही फिशरी है, फिशरी में गाँव के जितने भी तालाब थे, सोचिए मनरेगा के तहत इस सरकार ने कई लाख जीर्णोद्धार कराया तालाबों का, पुराने तालाबों का, और नए तालाब को तैयार करवाया। उसमें जब पानी भरा तो वो उन लोगों को दिया गया जिनके पास, जो भूमिहीन किसान थे, जिनके पास खेती नहीं थी, ऐसे और जो लोग

0: जिनको पानी से बहुत पुराना नाता था, ऐसे मछुआरों को जो ये काम दिया गया तो वहां पे मछली का उत्पादन होने लगा, ऐसे ही डेयरी का उत्पादन होने लगा। जब डेयरी का उत्पादन हुआ तो दूध कहाँ बेचेगा वो, एक बड़ी समस्या का पैदा होने से पहले ही सरकार ने सोच लिया था कि उनके लिए क्या करना है। तो उसने कोऑपरेटिव सेक्टर को आगे बढ़ाया और एक नया कोऑपरेटिव मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय खड़ा कर दिया। और उसकी चेन इतनी है कि गांव का हमें लगता नहीं कि कोई किसान बचा होगा या कोई गांव बचा होगा जिसमें पैक्स ना हो, जिसमें सहकारिता का आंदोलन न पहुंच गया हो और किसान उससे जुड़े ना हो। जी
1: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, मिस्टर सिंह हैज यू नो आउटलाइन सो ब्यूटीफुली दैट व्हाट हैज बीन द बेसिक चेंज इन द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर सेक्टर। वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू द स्टेबिलिटी एंड द मोमेंटम दैट वी हैव सीन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। इवन इन द डिफिकल्ट इयर्स ऑफ कोविड द एग्रीकल्चर सेक्टर केप्ट ग्रोइंग। हाउ डू यू सी द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू हैव बीन द यू नो मेजर एरियाज वेयर द गवर्नमेंट यू feel has you know hit the bullseye and which is why we are seeing this buoyancy in our agriculture sector?
2: You know, for over a decade, you know, government of India under Prime Minister Modi ji's direction, you know, has placed agriculture at the heart of a vision of a plan of Viksit Bharat. So when we are talking of Viksit Bharat, agriculture is at the core of it, and that is why over at last 10 years, you have seen several schemes that have been launched, several projects. They are so interconnected, which ensures there is latest research also plays a part, technology plays a part, and farmers are empowered to ensure productivity and also their livelihoods become sustainable.
1: Yes.
2: And all the time, the goal has been to double the income of farmers. So whatever ideas you have seen in the last 10 years has been directed at that. And as recently, just a few days ago, we saw the Prime Minister giving a clarion call that India is, if India's economy is going to reach the third largest economy, that India should be annadata for the entire world. See, that is a kind of concept, that is a kind of imaginative vision with which this government is approaching agriculture. Yes, our farmers have been handheld. उनको मदद किया गया है, उनको हाथ पकड़ के खड़े होने के लिए जो भी साधन की जरूरत है वो सारी चीजें भी देते हुए भविष्य को भारत कृषि क्षेत्र में हाउ इट विल गो अहेड एंड हाउ इट विल बिकम द प्रोवाइडर फॉर द एंटायर वर्ल्ड, दैट इज बिहाइंड इट। सो इन दिस ड्रीम, यू नो, टू सी दैट द रूरल इंडिया ट्रांसफॉर्म्स, यू हैव सीन दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन इनटू अकाउंट ऑल द न्यू प्रॉब्लम्स दैट आर कमिंग लाइक क्लाइमेट चेंज, then ensuring market access, the challenges in market access, the setting up of warehouses, setting up of cold storages, and also running green trains. You know, produce from one region is immediately transported to the large market. So today, if you are seeing Karnataka tomatoes being available in Delhi, Nasik onions are moving to Bombay and to South, that this whole thing, that entire India being one market, so that our farmers get a better price, has been is just one indication how things are moving. Apart from that, you have also seen there are several other things which this government has done, which is, you know, looking at direct income support. For instance, the PM Kisan, then there is a Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, you know, to provide a safety net for the crop loss against natural disasters. Because somewhere or other, you have a cyclone or a flood or, you know, something or the other happens for which our farmer is not prepared. Then credit access, the Kisan credit card, you know, that is also a big thing to provide short-term and long-term credit. Apart from that, you have also seen in this budget, initiative has been where, you know, like a PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, so that, you know, it focuses on low productivity districts. Focus on that. Then also, the overall thing is, you know, mission for Atmanirbharta in pulses, which is the new area, the thrust area, to see that our dependence on import of pulses, that is dal vagara vagara, we don't have to depend. And lastly, I must add, the Prime Minister has also brought focus to natural farming. So that the future is natural farming. We can have chemical-free agriculture. And towards that goal, you are seeing a lot of steps being taken of late.
1: Yes. Mr. Singh, जैसा कि मिस्टर अय्यर ने कहा कि बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए हैं, अलग अलग जो स्टेज होती है एक एग्रीकल्चरल साइकिल की, अगर हम पहली जो स्टेज है इनपुट्स की उसकी बात करें, तो उसमें क्वालिटी इनपुट्स अफोर्डेबल रेट्स पर मुहैया कराना, इस पर जो प्रमुख कार्य किया गया है उसको

0: आप सटीक रूप में हमें बता सकें।
1: खेती में इनपुट की लागत को घटाना और उसके उपज का उचित मूल्य दिलाना सरकार का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि किसानों को कैसे फायदा मिल सकता है। तभी फायदा होगा जब इनपुट कास्ट घटेगी और उनके उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा, यानी उचित मूल्य या लाभकारी मूल्य मिलेगा। उसके लिए सबसे पहले दो हिस्सों में बांट के देखा जाए तो खेती के लिए जरूरी होती है मिट्टी, खाद, पानी, बीज और किसान, लेबर, ये और पैसा। तो इन सब चीजों का कैसे किया, मिट्टी की सबसे पहले सेहत जांची गई, सॉयल हेल्थ कार्ड के नाम पर देश के सारे किसानों के खेतों को जांचा गया, परखा गया कि उनके खेत में किस तत्व की कमी है। जो कम है वही चीज डाली जाए, क्योंकि अंधाधुंध फर्टिलाइजर का प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं था। तो सबसे पहले मिट्टी की जांच कराई गई,
0: 25 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ
1: लगभग सभी किसानों के करा दिया गया। उसका मकसद यह था कि हर 3 साल पर यह कराया जाता है ताकि इससे ये पता चल सके कि मिट्टी में कौन सी चीज कम है, कौन सी ज्यादा है, उसी हिसाब की खाद डाली जाए। दूसरा काम किया खाद का, फर्टिलाइजर का। हमारे यहाँ याद होगा आपको कि 2014 से पहले फर्टिलाइजर को लेकर हर सीजन में हाय तौबा मचती थी, लेकिन 14 के बाद ये स्थिति नहीं रही। तो आखिर कहाँ से खाद की उपलब्धता कहाँ से आ गई, ये था कि जो हमारे यहाँ लीकेज हुआ करता था उसे सरकार ने रोका। नीम कोटेड यूरिया, यूरिया का उपयोग किसी और इंडस्ट्रियल उपयोग में कर लिया जाता था रॉ मटेरियल की तरह से, इसको रोकने के लिए उसमें नीम का तेल या नीम की खाद को मिला दिया गया, जिससे वो नीम लेपित यूरिया जब दी गई किसानों को तो वो किसी और उपयोग की नहीं, सिर्फ खेतों के ही उपयोग की थी। उससे 10 से 20 हजार करोड़ रुपया सरकार का सब्सिडी का सीधे सीधे बचा। तीसरी जरूरत थी इनपुट था पानी, सिंचाई। सिंचाई के हिसाब से देखें तो पानी की हमारे यहाँ मैक्सिमम पानी जो नीचे जमीन से निकाला जाता है, पंप होता है या नहरों से जाता है, वो सिंचाई के काम में आता है। लेकिन पानी की जितनी जरूरत है और जितनी खेती है उसमें बहुत डिफरेंस था, बहुत मुश्किल थी। और हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी थी सिंचाई की वो ठीक नहीं थी, वैज्ञानिक नहीं थी। तो इसके लिए सबसे पहले सूक्ष्म करके जो माइक्रो इरिगेशन को सरकार ने हैवी सब्सिडी के आधार पर हर किसान तक पहुंचाने की कोशिश की है, ताकि इससे 30 से 70% तक पानी बचता है। जो फ्लडिंग के तौर पर हमारे यहाँ सिंचाई होती थी, फ्लडिंग सिस्टम से हट के वैज्ञानिकों ने बताया कि नहीं, ये सिस्टम नहीं, कम से कम पानी, यानी बूंद से बूंद पानी या थोड़ा थोड़ा पानी भी चाहिए, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री हर भाषण में शुरुआती दौर में इस पर जोर दिया करते थे कि गन्ने की खेती भी इससे हो सकती है। चौथा था बीज, बेहतर सीड। अगर आप, बड़ी सिंपल सी कहावत है कि बोए बीज बबूल का, आम कहाँ से होए। तो जब आप बेहतर सीड अगर उपयोग नहीं, बीज नहीं उपयोग करते हैं, तो उससे बेहतर उत्पादकता की उम्मीद, यील्ड अच्छी नहीं होगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बेहतर बीजों का उपयोग का, हमारे साइंटिस्ट, इतना बड़ा ICR का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का इतना बड़ा सिस्टम हमारे पास है, हमारे हर साल सैकड़ों बीज हर तरह के तैयार हो जाते हैं, आविष्कृत होते हैं, लेकिन वो खेतों के, किसानों के खेतों तक नहीं पहुंच पाते थे। उसको कैसे पहुंचाया जाए, इस सिस्टम को ठीक किया और बीज पहुंचाने के लिए, और हमारे यहाँ बीज की जरूरत थी। कि अभी अय्यर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जलवायु का जो विपरीत स्थितियां पैदा हो रही हैं और रोग, तो डिजीज से बचने के लिए, क्योंकि जब जलवायु परिवर्तन होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे यहाँ बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ढेर सारे रोग फैलते हैं, ऐसे रोगों से प्रतिरोधी क्षमता वाले बीज तैयार किए गए। और जलवायु जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए या बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ जाए या बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा पानी आ जाए, इन तीनों स्थितियों से बचने वाले ऐसे सीड तैयार किए गए जो उन फसलों पर इनका असर कम से कम हो या न्यूनतम हो। ये सबसे बड़ा काम किया इन्होंने इनपुट को घटाने का। उससे आगे बढ़ के इन्होंने किया बाजार को, कैसे बाजार इनको कैसे उपलब्ध कराया जाए, बेहतर बाजार। अब हर किसान तक बाजार को पहुंचाना आसान नहीं था, लेकिन नहीं, इस डिजिटल दुनिया में ये बहुत आसान बना दिया इस सरकार ने। प्रधानमंत्री ने कहा ई मार्केटिंग, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जिसको ई नाम के नाम से जाना गया, और इससे हर किसान अब जुड़ देता है अपने टेलीफोन से, अपने मोबाइल से, वो चाहे तो देश की हर मंडी से वो कनेक्ट होता है, उसे हमेशा पता चल सकता है कि किस मंडी में किस कमोडिटी का या किस उपज का क्या भाव चल रहा है, और अपनी मंडी के अपने व्यापारी से मोल भाव करने का उसे मौका मिल जाता
0: है। रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल जाता
1: है, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन। तीसरा सबसे बड़ी बात थी कि जोखिम, किसान कहा जाता था कि ऊपर वाले पर भगवान बरसेंगे तो बारिश होगी, खेती होगी, मतलब सब कुछ ऊपर वाले पर निर्भर था। नहीं, इस सरकार ने इसको तय किया कि नहीं, किसानों को किसी के भरोसे छोड़ा नहीं जा सकता। किसान को जोखिम फ्री किया गया, उसको एक ऐसा कवच दिया गया कि उसकी खेती अगर नुकसान हो जाती है तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। बीमा योजना लाई गई, प्रधानमंत्री बीमा योजना इतना बढ़िया योजना है कि बहुत नॉमिनल, और जो प्रीमियम जमा होता है वो पैसा किसान नहीं देता, उसका बहुत छोटा सा 5% किसान देता है, बाकी और 2.5% से 5%, बाकी सब सरकार के खाते से जाता है।

0: किसी भी कंपनी को, उसका फायदा मिला तो जोखिम बच गया है, अच्छे सीड मिल गए, अच्छे इनपुट मिल गए और अच्छा बाजार मिल गया। और सरकार ने इसके अलावा सरकार ने अपनी ओर से एक कवच दिया कि आपका जो भी बाजार के मुकाबले बाजार में मूल्य अगर आपकी उपज का कम मिलता है तो वो सरकार खरीदेगी। सरकार ने इस बात की एक तरह से आज से नहीं बहुत लंबे समय से यह परंपरा चली आ रही है कि सरकार खरीदती है, लेकिन
1: तब से हम न्यूनतम समर्थन मूल्य
0: कहते हैं। किसान इसको बहुत लाइक करता है, बहुत पसंद करता है कि गाढ़े दिनों में सरकार हमारे साथ खड़ी रहती है। सरकार की पूरी कोशिश है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करेंगे, लेकिन कोशिश ये होती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद न करनी पड़े, उसकी उपज का मूल्य बाजार में बेहतर मिले। यानी एमएसपी के का जो घोषित मूल्य है, अगर कोई किसी चीज का 2500 रुपये क्विंटल मूल्य है, अगर बाजार में 2700 या 3000 रुपया मिलता है तो किसान 27 या 3000 पर बेचेगा, 2500 पर सरकार को नहीं देगा। यही सरकार की पूरी कोशिश है कि बाजार में उसकी उपज उसके कहे दाम पर मोल तोल के आधार पर बेहतर मूल्य उसको मिले। ये सरकार ने बहुत बेहतर
1: बिल्कुल सो जैसा आप कह रहे हैं कि इनपुट कॉस्ट और रिम्यूनरेटिव प्राइस दोनों पर ध्यान दिया गया है। मिस्टर अय्यर, व्हाट वुड यू से, यू नो द आइडिया इज टू इंक्रीज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ फार्मर्स एंड एंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी फॉर द कंज्यूमर्स ऑल्सो, सो हाउ फार यू फील द फूड मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द वैल्यू एडिशन मैकेनिज्म्स, दे हैव इमर्ज्ड एज द सेंट्रल पिलर ऑफ योर इंडियाज फार्म टू मार्केट स्ट्रेटेजी and have been successful?
2: See, the farmer needs correct inputs at the right time, at a right price. And after that, at the time of harvest, he needs some financial help to take care of the expenditures. Then after the produce is harvested, he needs a market and a good price that will, that will take care of his cost as well as give him some reasonable profit to sustain his livelihood. So towards this end, what that he revised, keep into account the rise in the input cost. And as per the Swaminathan Committee report, the effort has been to see that at least the cost is covered as per the recommendation to the great extent possible. At the same time, as Sinsab was saying, if the market offers a better price, the farmers have a choice to move on. And with this e-market, with the e-NAM, and along with that, you know, now the lot of attention is being given for storage facilities. See, the biggest problem is when the prices, have not reached their optimum level, the farmer has a problem in disposing his produce. Yes. So therefore, he requires good storage facilities. And we have seen in the last two budgets, and in fact, the last budget has set aside at least 1 lakh crore to particularly to take into account this particular problem. Because you need to see financial risk management, and what is needed today is a large-scale infrastructure investment to increase farm incomes and build these kind of facilities and connectivity. So this is very important. This is the thrust area. So the government has been encouraging also private-public partnership also in this region for having a chain of cold storage chains in everywhere. Because invariably when you hear stories of farmer in distress because the production there is, like for instance, a crop like onion or a crop like cotton or even a crop like even tomatoes. See, what happens is suddenly there is a glut in the market and the prices fall. And there is no food processing industry which is developed to the full extent to take care of this. So the government thrust area is food production as well as necessary food processing industry that can take care of these vagaries, caused by nature or by otherwise, to see that the farmer doesn't lose out on getting the best price.
1: Yes. Coming to you, Mr. Singh, अभी आपने थोड़ी देर पहले cooperative model की बात करी थी कि Ministry of Cooperation बनी इन 12 वर्षों में, इसका कृषि क्षेत्र को किस तरह फायदा हुआ है और जिस तरह का हम cooperation models कृषि क्षेत्र में देख रहे हैं, डेयरी सेक्टर में या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनका क्या फायदा हो रहा है उसके बारे में आप हमें थोड़ा बता सकते हैं? प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज जो है या मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ये किस तरह का भूमिका प्ले कर रही है?
0: देखिए, कोऑपरेटिव को लाने से पहले कोऑपरेटिव का एक डिपार्टमेंट हुआ करता था। इस सरकार के आने के साथ ही एक नया मंत्रालय बना, सहकारिता मंत्रालय। जिस तरह से उसका विस्तार हो रहा है, गांव शायद ही देश का कोई ऐसा गांव बचा हो जहां पर कोऑपरेटिव आंदोलन न पहुंचा हो। और किसान तो हमें लगता है किसान ऐसा होगा जो किसी न किसी तरह से कोऑपरेटिव से जुड़ा ही होगा, चाहे उसे लोन लेना हो, क्रेडिट चाहिए होगा, दूसरा उसे सीड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, या सुगर का प्रोडक्शन हो, यानी किसी भी चीज से अगर जुड़

0: तो किसान है तो वह कोऑपरेटिव से जुड़ा ही होगा। सरकार ने इसको कैसे जोर से दिया, आप समझिए कि डेयरी डिपार्टमेंट को, डेयरी सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें भूमिहीन किसानों की एक बड़ी संख्या है। दुनिया का आज की तारीख में हम 25% अकेले हमारा कंट्रीब्यूट करता है इंडिया डेयरी में, और प्रोडक्शन वाइज हम दुनिया के नंबर एक प्रोडक्शन करने वाले देश बन चुके हैं। जरा सोचिए कि इतना बड़ा डेयरी सेक्टर में काम करने वाला भारत आखिर कैसे यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया। तो यह आंदोलन सिर्फ सहकारिता के बूते हुआ, सहकारिता के नाते हुआ, और ये पिछले 10-12 सालों में तो कई फोल्ड के, कई गुना के वृद्धि दर्ज कर रहा है। इसकी ग्रोथ बहुत तेज है। डेयरी सेक्टर में सबसे ज्यादा भूमिहीन किसान इसमें काम करते हैं। 2-4-5 पशु रख करके, दुधारू पशु रख लिया और दूध सवेरे उनका कलेक्शन सेंटर पे आज पहुंचा देते हैं और उनको पैसा मिल जाता है, हाथ के हाथ पैसा मिलता है। कोऑपरेटिव सेक्टर से खाद मिलती है, सारा इनपुट। आप समझिए कि हमें लगता है कि 60-70% किसान फर्टिलाइजर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू कोऑपरेटिव ही जाता है, उनके पास पहुंचता है, और सब उधारी पर मिलता है, सब क्रेडिट पर मिलता है। किसान को जब सख्त जरूरत होती है फर्टिलाइजर की, सीड की, किसी भी इनपुट की, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू ही जाता है, और जब उसकी खेती हो जाती है, जब उसकी उपज तैयार होती है, जब वो मार्केट में बेच लेता है, यानी उपज को खरीदने का भी काम कोऑपरेटिव सेक्टर की एजेंसीज ही करती हैं। हर स्टेट की अपनी नोडल एजेंसीज हैं जो कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, जो उनके लिए काम करती हैं। अब इसके बाद फिर वो पैसा जमा करते हैं। एक छोटा सा डेटा दूंगा आपको कि पिछले 14 के पहले हमें लगता है कि मुश्किलन 25 से 28 हजार रुपया, या मैक्सिमम मान लीजिए 30 हजार करोड़ कुल टोटल क्रेडिट रही होगी कोऑपरेटिव की ग्रामीण क्षेत्रों में। कोऑपरेटिव सेक्टर का एक कॉर्पोरेशन है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NCDC बोलते हैं, उसका आज की तारीख में जो डिसबर्समेंट है, इस साल का जो बजट है, जो उसका टारगेट है, वह 1.5 लाख करोड़ का है। जरा सोचिए, एक साल में, सिर्फ एक वर्ष का 1.5 लाख करोड़। और पिछली सरकारों का, पिछली कितनी सरकारें नहीं, वो सिर्फ 25 और 30 हजार करोड़ पर टिकी रही।
1: तो ये एक आजादी भी मिल रही है छोटे और सीमांत किसानों को जो प्राइवेट मनी लेंडर्स हैं उनसे।
0: सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट लेंडर से उनका बचाव हो गया, सूदखोरों से उनको पैसा नहीं लेना पड़ता, अपनी पैक से ले सकते हैं या कोऑपरेटिव बैंक से ले सकते हैं। दूसरी बात कि सरकार ने सबको KCC दे रखा है। आपने जो कहा ना कि इस सूदखोरों से तो इनका छुटकारा ही हो गया, क्योंकि KCC आपके हर एक के हाथ में आ गया। हाँ, एक बात और कि जितने भी दूसरे एलाइड सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए संबद्ध जो क्षेत्र हैं, उन्हें किसान सरकार मानती ही नहीं थी, उनके उनके किसी परिभाषा में आते नहीं थे। आज जो पशुपालक हैं, डेयरी वाले हैं, जो दूध वाले हैं, या मछुआरे हैं, बी कीपिंग वाले हैं, बागवानी करने वाले हैं, इन सबको किसान मान लिया गया है। और किसान क्रेडिट कार्ड अब सिर्फ किसान को नहीं, खेती करने वाले को नहीं, ये सेक्टर में काम करने वाले लोगों को भी KCC का लाभ मिलता है। यानी बहुत नॉमिनल ब्याज दर पर उनको जितना उनकी डिमांड होती है उसको पैसा मिल जाता है। इसलिए उनकी स्थिति में बहुत भारी सुधार हुआ है।
1: Mr. Iyer, coming to you, can you tell us that this government has always had an inclusive approach towards development in any and every sector? So if we talk about the vulnerable section, the small and marginal farmers, of course, you mentioned the PM Kisan Samman Nidhi Yojana, the very word Samman is giving respect to the farmers. Then the Fasal Bima Yojana you talked about, Kisan Mandhan Yojana is giving pension for small and marginal farmers, and nearly about 25 lakh farmers have enrolled. And also another very interesting enlightening statistic is that 51% beneficiaries of PM Fasal Bima Yojana belong to the scheduled caste, scheduled tribe, OBC categories. And of course, you mentioned PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, which is going to benefit 1.7 crore farmers in most low productivity areas, the aspirational districts. So you feel that it is one of the intentions of the government is to take this prosperity to every farmer, be it in a remote area or be it from a backward area?
2: Absolutely, absolutely. You see, the overall philosophy of Prime Minister Modi has been that beech se lekar bazaar tak. And this is a broad concept, you know, from the seed to the market, the final product. In that, whatever process is involved, including the economic condition of the farmer, the health of the farmer, and also use of modern technology. And do not forget, particularly irrigation. Now, in the last budget, they have got it for micro irrigation, where 5,000 crore has been set apart. Yes. See, apart from major irrigation projects, because the underlying philosophy is per drop more crop. That is for every drop that is being, you know, water that is, that the productivity must go up, which will require, you know, streamlining your canals, repair and maintenance of your canals, sub canals, and all these requirements.

0: requires, you know, all the ministries of the government, along with the state governments, they have to work hand in hand to ensure the benefit reaches everybody. You mentioned about the Dalit farmers, you mentioned about tribal farmers. They have a problem of their own, a very unique problem. That is also being tackled in a different way, particularly, you know, the climatic conditions as well as the land condition. You know, there are places which are receiving rainfall throughout the year. There are places that do not receive rainfall at all. So you have already schemes to tackle that also. This particular approach we have seen is there is not one single aspect that is neglected. Yes. And our farmer knows that he has a confidence that this government, whatever problem comes, they will take care of it. And take, for instance, the role of technology. I want to make a special mention. Now, Drone Didi Yojana. Now, look at Drone Didi Yojana. This is to empower the women self-help groups in our villages. But that is also connected with agriculture productivity. Now, these Didi, Drone Didis are being trained to use the technology for, you know, pesticides, spreading the pesticide, spraying of pesticide, as well as finding out the condition of the crops. You know, we had a vast acreage under crop. What is the condition of the crop? So this kind of technology availability is also giving boost to the farmer, like the soil health card and other things. So the overall idea is, you know, there should be an integrated development.
1: Absolutely. So Mr. Singh, jaisa unhone kaha, Mr. Iyer ne, ki ek parikalpana hai ki hum jo vishv hai, usko bhi export kare. Hum already exporter, major agriculture exporter ban gaye hain. 2014 se dekhen to 37% bade hain hamare agriculture exports. $51 billion ho gaye hain. Aur isme jo processed food exports hai, unka share bhi badhkar 20% ko paar kar gaya hai. So ek shift hai towards higher value added. So ek progressive shift dikhai de raha hai food processing ki taraf. Food processing par bahut sarkar ne jo bal diya hai, PLI bhi aaya hai food processing industry ke liye. Iske bare mein aap hamara thodi bata sakte hain jo value added aur food processing hai, is par bal diya jana kyun itna important hai?
2: फूड प्रोसेसिंग क्या है कि रा फूड आइटम्स यानी जो कृषि उपज है, अगर उसको हम प्रोसेस्ड करके बेचते हैं, वैल्यू एडिशन कर देते हैं, तो उसका मूल्य बेहतर मिलेगा, किसान को फायदा होगा. हो क्या रहा है कि जैसे हमारे यहाँ जितना दूध पैदा होता है पूरे देश में, दुनिया का सबसे ज्यादा दूध पैदा करने वाला देश, जिसका मोर देन 60% कच्चा यूज होता है, जिसकी प्रोसेसिंग नहीं होती है, 30-40% ही दूध का अभी तक प्रोसेसिंग हो पाती है. अगर इस दूध की प्रोसेसिंग होने लगे तो बेहतर मूल्य किसानों को और बेहतर मूल्य मिल सकता है और कंज्यूमर्स को भी राहत मिलेगी. इसी तरह से अगर हम देखें हमारे यहाँ जो फिशरी है, फिशरी एक बड़ा सेक्टर है. अगर हम इसकी प्रोसेसिंग सेंटर खोल दें, प्रोसेसिंग में प्रोसेसिंग बेहतर होने लगे, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा और डोमेस्टिक डिमांड जो पूरी होगी होगी और फिशरमैन को बेहतर मूल्य मिलेगा, अच्छा मूल्य मिलेगा, लाभकारी मूल्य मिलेगा. तो हमारे देश में जितने भी अब तक फूड प्रोसेसिंग के वो बने सेंटर बनाए गए, मेगा फूड पार्क बनाए जाते हैं, कितने साल से हमें लगता है 201 साल से हम सुनते आ रहे हैं जब से ये मिनिस्ट्री बनी है, इस सेक्टर में बहुत अच्छा काम नहीं हुआ जितनी संभावना है. यहाँ पर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, काम उस गति से नहीं हुआ है. इस सरकार का फोकस पूरा रहा है, खासतौर से प्रधानमंत्री का, कि किसानों की उपज का बेहतर मूल्य तब मिलेगा जब उसके उपज का प्रोसेसिंग होगी, प्रसंस्कृत के तौर पर जाएगा. कोई भी चीज टमाटर के तौर से, टमाटर है, आलू है, एक सिंपल वे में अगर टमाटर जाता है तो किस साल के कुछ महीनों तक ही वो सप्लाई की जा सकती है. लीन पीरियड में उसके मूल्य बढ़ जाते हैं, जिसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे कंज्यूमर्स पर. तो कंज्यूमर्स को भी प्रभावित ना होना पड़े, किसान को अच्छा मूल्य मिले साल भर, इसके लिए प्रोसेसिंग का होना बहुत जरूरी है. और जितने भी प्रोड्यूसर, जितने भी प्रोड्यूस हैं हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उनके सारा प्रोसेसिंग सेंटर उसी जगह पे होना चाहिए जहां से वो पैदा होते हैं.
1: तो इस संदर्भ में मिस्टर सिंह, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत 1185 प्रोजेक्ट्स मॉडर्न प्रोसेसिंग और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एस्टैब्लिश किए गए हैं नवंबर 2025 तक. और जो PLI, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए लाई गई है, जिसके अंतर्गत 169 एप्लीकेशंस को मंजूरी मिली है. और PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्कीम भी है, जिसमें 4 लाख से अधिक एप्लीकेशंस के माध्यम से 1,70,000 से अधिक लोन्स को मंजूरी मिली है. सो आपको लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत है, और आपको लगता है कि इसमें, जैसा आप कह रहे हैं, कि स्कोप और भी ज्यादा है?
2: कोरोना के पीरियड में प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी, और कही ही नहीं थी बल्कि उन्होंने घोषणा भी की थी, कि 1,00,000 करोड़ का एग्री इंफ्रा फंड का अनाउंसमेंट किया था, और उस फंड का पिछले अगले 5 सालों तक उसका उपयोग किया जाएगा. और अब समझिए कि 1,00,000 करोड़ का एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, तो ये जितना आपने बताया, मत्स्य संपदा हो, चाहे फूड संपदा हो, जितनी भी योजनाएं परियोजनाएं बनाई जा रही हैं, सब उसका पार्ट हैं. और इसका मतलब है कि

0: प्रोसेसिंग के सेक्टर पर पूरा फोकस रहेगा। जब प्रोडक्शन बेहतर होगा, अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो गया तो हो सकता है उसके खराब होने के चांस हो जाएंगे, तो उसको अगर प्रसंस्करण कर देते हैं तो वो हमारी चीज बच जाती है। और कम उत्पादन में बेहतर उपयोग करने का तरीका है प्रसंस्करण। प्रसंस्करण से कई फायदे होते हैं, जो किसान को फायदा, कंज्यूमर को फायदा, और उससे जो उस पूरी चेन बनती है उसमें लोगों को रोजी रोजगार मिलते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है।
1: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, एज वी मेंशन्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम दैट वी हैव रीच्ड अ रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड अ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन हैज ऑल्सो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज्ड इन द लेटेस्ट बजट। प्रमोशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स लाइक कोकोनट, कोको, कैश्यू, सैंडलवुड इन कोस्टल रीजन्स एंड अगर ट्रीज इन नॉर्थ ईस्ट एंड आमंड्स, वॉलनट्स एंड पाइन नट्स एंड हिली एरियाज, दीज हैव बीन डिफाइंड एज द फोकस एरियाज। सो यू थिंक यू नो दिस काइंड ऑफ वेरी फोकस्ड अप्रोच दैट द गवर्नमेंट इज टेकिंग, लुकिंग एट द वेरी वास्ट एंड वेरीड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, दैट इज द वे टू गो फॉरवर्ड यूजिंग द स्ट्रेंथ्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी?
2: No, you have raised a very, very important dimension to the government's priority. Particularly, yes. You talked of the need for to go in for high-value crops. You know, in fact, the Prime Minister, soon after the last budget, you know, he specifically addressed a webinar where he spoke about this and he appealed to the farmers to take care of this diverse climatic condition and focus on scaling up the harvest of these high-value crops. Yes. And some of the crops you mentioned. Because today, as the Prime Minister looks at the possibility of Indian farmers getting great access to world market, it is important for to take care of quality, to take care of branding and standards of our produce. This is very, very important. And for that, you know, agriculture experts, industry and farmers will have to jointly work towards this goal, which is actually the thrust area. Because as the markets of world are opening, as the Prime Minister himself put it, and global demand is changing, so we need to see that how we are more export oriented in our production. That is very, very important, because we have a rich agroclimatic zones. That is why, you know, Prime Ministers particularly mentioned, you know, you mentioned cashew, cocoa, sandalwood, and this national mission on edible oil and pulses, and the national mission for natural farming are particularly to meet this objective.
1: Thank you so much, Mr. Iyer. We are running out of time. Thank you so much, Mr. Singh, for this in-depth discussion on the various aspects of the progress in agriculture and farmers' welfare that has taken place in the last 12 years of the NDA government and the way forward. Thank you.
2: Thank you very much.
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल किसान कल्याण और किसान केंद्रित नीतियों के माध्यम से किसानों का सशक्तिकरण। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: इन द स्पेशल सीरीज यू वर लिसनिंग टू अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट Empowering farmers through welfare and farmer-centric policies. The participants were Shekhar Iyer, political analyst, and S.P. Singh, senior journalist. The moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
5: अभी आप सुन रहे थे केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम किसान कल्याण। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10 बजे हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को दुर्गेश कुमार का नमस्कार। पहले गीत के लिए फरमाइश आप सबकी है। आप हैं भाटापारा से बचकमल, मोतीलाल यादव, बसंत भृगु, विनय ठाकुर, सोनाडी से सुब्रत चौधरी, इंदिरानगर भंवरपुर से राधेश्याम देवांगन, चंपा जगदीश, राजू देवांगन, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, कोटा रायपुर से अरुण वर्मा, अनिल ईश्वर वर्मा, दिनेश सेन, यहीं से साथी हैं योगिता वर्मा, रुचि खुशील खुशी और ओजल वर्मा, जय मां कर्मा रेडियो श्रोता संघ गाता पार से साथी हैं श्रीमती धनेश्वरी साहू, ओम प्रभा, बिंदेश्वरी साहू, नागेश्वरी, श्रीमती चमेली साहू, भूमिका साहू, मोनिका और

अगले गीत की फरमाइश भेजने वाले श्रोता है शांतिनगर भाटापारा से रमज़ान खान सिकंदर, अशरफ खान, अयाज अलफैज खान और बिल्हा से शेख नासिर मज़बीन बानू, भाटापारा से राम कुमार राउत, अमरीका गणेश, कार्तिक युवराज राउत, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफ़र हुसैन, नाइमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनेद अब्बासी, बलौदा अकलतरा से दिलहरन गौतम, अंजलि, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातमा खातून अंसारी, डुमराव बिहार से डब्लू अंसारी, सोनम, अदीबा और दानिश अंसारी, सारिमपुर बक्सर से राज एसडी अंसारी और आसमा खातून अंसारी, जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती, दतरिंगी से विश्राम यदु, पार्वती यदु, प्रतिमा रीना यदु, लक्ष्मीना यदु, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, शिव मंदिर रोड खैरागढ़ से रविंद्र अग्रवाल, पुष्पलता, डॉक्टर झरना, प्रेरणा, दीक्षा और शिक्षा, रामनगर रायपुर से राजेश अम्बादे, शशिकल अम्बादे, पूजा अम्बादे, गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जूंधले, आरती जूंधले, पावर हाउस भिलाई से विकास वर्मा, खुशी ग्रंथ, संजय प्रधान, पूजा प्रधान, इच्छा महासमुंद से अदालत दास वैष्णव, मानस सतीश, रीचा गायत्री वैष्णव, भीषम दास मानिकपुरी, इंद्रप्रस्थ सदन धमतरी से चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश, शुभम, सावित्री साहू, सिमगा से प्रदीप, सविता जैन, देवेंद्र जैन और साथी, शिक्षक नगर दुर्ग से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा, वाणी वर्मा, भाटापारा से लोकेश वर्मा, तुषार वर्मा, बंगला मटिया बालो से शिव कुमार अंगारे, लीना अंशुमाला, अंजनी त्रैंबिका, आशुतोष अंगारे और नर्मदा धाम सुरसुली से कैलाश यादव, सुरेश, डिकेंद्र और योगेश यादव। आप सबकी पसंद पर आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म सनम तेरी कसम का गीत आपको सुनवा रहे हैं। धुन आर डी बर्मन की बनाई और गुलशन बावरा की शब्द रचना।

अगले गीत के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं दामनी मानोरा से तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश, आदेश, किरण, प्रज्वल, अनुत और दादुल्य डेरे, बनियापारा धमतरी से रामचंद मखीजा, श्रीमती सविता बेबी स्वाति मखीजा, अमरपुर पिंडरा से दीपक कुमार, रोशन कुमार और बंशीलाल श्रीवास्तव, बेमेतरा से ही राज और सारिका वैष्णव, दिल्ली शहर मुरीगेट से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, हरदेवलाल वार्ड सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकू सन्नी, कोमल यादव, दरचूरा से ददवा साहू, भूरी साहू, रेखा मोतीलाल साहू, सिहावा पर्वत बेलर गांव से मिथिलेश देवांगन, मधु हिमांशु, अंकित देवांगन, मगरलोड से पुनुराम साहू, तेजस्वरी साहू, राजश्री और राजवीर साहू, सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम रेशमा, आदिबा थापा, बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली और कुमारी डब्लू डोम, जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बिलदार, अकरम आसमा, उल्ला आसमा बिलदार, सादुल शहर राजस्थान से आप हैं ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान। आप सबने सुनना चाहा है रविंद्र जैन के गीत और संगीत से सजी फिल्म हीना का गीत, आवाज़ है लता मंगेशकर की।

गांव परसा टोला अंबागढ़ चौकी से ओम प्रकाश मसिया सिलोचनी तुसारणी खुमेंद्र मसिया, पहारा अहिवारा से पोषण बंछोर चंद्रकिरण प्रीति छाया बंछोर, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन प्रभा देवी सेन लक्की विक्की नानू रविंद्र सेन खुशी रौनक रौनक सेन, भाटापारा से चुवाराम वर्मा मुकेश दुलारी और दुर्गा दुर्गेश्वरी वर्मा, धुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू देव कुमार नवीन कुमार और युवराज साहू, अरमरी खुर्द बटरेल से चुरामनलाल वाडे जैनी वाडे विवेक कुमार वाडे और नेहा वाडे, धरसीवा से छेदूलाल यादव सीता यादव अर्चना अरुणा अनुराधा और अल्पना यादव, दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव अनुराग अभिषेक अलका अनामिका बलदाऊ और रानू खुशी प्रवीण सीएल यादव, बाजारपारा बेमेतरा से भरतलाल सिन्हा लव कुमार लक्की सिन्हा भगवान सिंह राजपूत, यहीं से साथी हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा किशोर कुमार दीपक कुमार जावेंद्र कुमार वर्मा, बेमेतरा से सुरेश कुमार सारथी पूर्णिमा

हेमलता सारथी, कमलकांत सारथी, वीरेंद्र ब्रिजकांत सारथी, मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से, नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, सीमा, शारदा, दामनी वर्मा, आप सबकी पसंद पर फिल्म प्रेम रोग का गीत लीजिए सुनिए, आवाजें लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की, संतोष आनंद के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

दोस्तों, ये है कार्यक्रम का अंतिम गीत और इस गीत के संग अब आपकी पसंद कार्यक्रम से अपने साथी दुर्गेश कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आपकी पसंद, श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। रात के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए कीर्ति व्यास का वायलिन वादन, राग है पूरिया धनाश्री।

शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे कीर्ति व्यास का वायलिन पर बजाया राग पूरिया धनाश्री। आकाशवाणी का ये रायपुर और सराईपाली केंद्र है।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सराईपाली केंद्र है। रात के 11 बजने को है। समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
2: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
1: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिग्स के साथ कैबिनेट

0: कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेश निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत ने श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों के लिए अपनी छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियां वितरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इस योजना के अंतर्गत अब 100 प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रति माह 7,500 श्रीलंकाई रुपए की सहायता दी जाएगी। यह सहायता उनकी पूरी डिग्री अवधि तक जारी रहेगी। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. The government has constituted a one-member committee to probe into matters relating to procurement of services for on-screen marking OSM system by Central Board of Secondary Education, CBSE. OSM is a new digital evaluation system introduced by CBSE this year for Class 12 board examinations, replacing traditional paper checking. The committee will be chaired by Chairperson of the Capacity Building Commission's S. Radha Chauhan. The committee will submit its report within a month to the Department of Personnel and Training. Meanwhile, the CBSE today officially activated online portal for verification of marks and re-evaluation of answer sheets of Class 12 students. Our correspondent reports that the facility is available only to those students who have obtained scanned copies of their evaluated answer books. A Delhi court today extended the judicial custody of 5 accused in the NEET paper leak case till 15th of this month. Yesterday, 2 other accused were sent to 14 days of judicial custody. The CBI has arrested 13 accused in the case so far. Last month, the National Testing Agency cancelled the National Eligibility Cum Entrance Test held on 3rd May amid allegations of paper leak. A re-examination has been scheduled for 21st of this month. India has rejected any role for third parties to resolve its boundary matters with Nepal, days after Nepalese Prime Minister Balendra Shah sought involvement of China and the UK to address the long-standing dispute. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said both sides have established bilateral mechanisms to deal with all aspects of the border matter.
2: While close to 98% of India-Nepal boundary has been demarcated, there are some unresolved segments

हेलो टॉक स्टूडियो घड़ी में समय हुए 5:22, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 सेकेंड्स हुए हैं। समय एक बार पुनः मिला लेंगे। 5:22, 46, 47, 48, 49 और 50 सेकेंड्स हुए हैं। वर्क स्टेशन 1।

आर्टिस्ट साइड घड़ी में समय हुए हैं 5:24, 6, 7, 8, 9, 10 सेकेंड्स हुए हैं। आर्टिस्ट साइड माइक नंबर 2 घड़ी में समय हुए हैं 5:24, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 सेकेंड्स हुए हैं। टेस्टिंग ओवर फ्रॉम टॉक स्टूडियो और ट्रांसमिशन स्टूडियो में मैंने घड़ी नहीं मिला पाया था, मैं वहाँ से घड़ी एक बार टेस्टिंग दे देता हूँ।